प्यारी जिसनो होए दयाला सफल मूर्त गुरुदेव स्वामी सर्व कला पर पूरे नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सदा सदा हजूरे सुन सुन जीवा सोए तिना की।

पूरा कर्म कमावा। नानक की बेनती स्वामी तेरे जन देखन पावा। वड भागी से कांडी है प्यारी संत संगत जिन्ना वासु। अमृत नाम अराधिय निर्मल मन हुए परगासु। जन्म मरण दुख काटिय प्यारी चूके जम की कानी। तिना प्राप्त दर्शन नानक जो प्रभ अपने पाणी। ऊच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे। गावते उधर है सुनते उधर है बिनसे है पाप कनेरे। पशु परेत मुग्ध कौ तारे पाहन पार उतारे। नानक दास तेरी सरनाई सदा सदा बलिहारे। बलावल महला पंजवा विखे बन फीका त्यागरी सखिए। नाम महारस पियो बिन रस चाखे बुढ़ गई सगली। सुखी ना होवत जियो मान महत ना सकते ही काई। साधा दासी थियो नानक से दर सोभावंते जो प्रभ अपने कियो। हर चंदौरी चित भ्रम सखिए मृग तृष्णा द्रुम छाया। चंचल संग ना चालती सखिए अंत तज जावत माया। रस भोगन अत रूप रस माते इन संग सूख ना पाया। धन धन हर साध जन सखिए नानक जिन्नी नाम ते आया। जाए बसो वडभागनी सखिए संतां संग समाइए। तह दुख ना भूख ना रोग ब्यापै चरण कमल लिव लाइए। तह जन्म ना मरण ना आवन जाना निश्चल सरनी पाइए। प्रेम बशोहो ना मोह ब्यापै नानक हर एक त्याईए। दृष्ट धार मन बेदिया प्यारी रतड़े सहज सुपाए। सेज सुहावी संग मिल प्रीतम आनंद मंगल गुण गाए। सखी सहेली राम रंग राती मन तन इच पजाए। नानक अचरज अचरज स्यों मिलिया

बहु तपत व्यापिया शीतल भये हर हर जस जापिया कोट जतन संतोख ना पाया मन त्रिपताना।

मन तन निर्मल पाप जल खीना कहो नानक प्रभ भये परसीना बिलावल महला पंजवा सगल मनोरथ पाई है मीता चरण कमल स्यों लाई है चीता हौ बलिहारी जो प्रभु ते आवत जलन बुझै हर हर गुण गावत रहाउ सफल जन्म होवत वड भागी साध संग रामह लिव लागी मत पत धन सुख सहज आनंदा एक निमुख न विसरहु परमानंदा हर दर्शन की मन प्यास कनेरी भणत नानक सरन प्रभ तेरी बिलावल महला पंजवा मोहे निर्गुण सब गुणै बिहुना दया तार अपना कर लीना मेरा मन तन हर गोपाल सुहाया कर कृपा प्रभ घर मह आया रहाउ भगत वचल पै काट नहारी संसार सागर अब उतरी पारी पतत पावन प्रभ बिरद भेद लेखिया पार ब्रह्म सो नैन उपेखिया साध संग प्रगटे नारायण नानक दास सब दुख पलायन बिलावल महला पंजवा कवन जाने प्रभ तुमरी सेवा प्रभ अविनाशी अलख अपेवा गुण बेअंत प्रभ गहर गंभीरे।

तुम ही जानो अपनी पूजा, आपो हो कछु ना होवत पाई, जिस प्रभ देवै सो नाम पाई। कहो नानक जो जन प्रभ पाया, गुण निधान प्रभ तिन ही पाया। बिलावल महला पंजवां, मात गर्भ मह हाथ दे राखिया, हर रस छोड़ बिख्या फल चाखिया। पज गोविंद सब छोड़ जंजाल, जब जम आए संघारे मूड़े, तब तन बिन सजाए बेहाल रहाव। तन मन ताने अपना कर थापिया, करन हार एक निमख ना जापिया। महामोह अंधकूप परिया, पार ब्रह्म माया पटल बिसरिया। वड्डे भाग प्रभ कीर्तन गाया, संत संग नानक प्रभ पाया। बिलावल महला पंजवां, मात पिता सुत बंधप पाई, नानक होआ पार ब्रह्म सहाई। सुख सहज आनंद घने, गुरपूरा पूरी जाकी बाणी। अनक गुणा जाके जाहि ना गणे रहाव। सगल सरंजाम करे प्रभ आपी, भय मनोरथ सो प्रभ जापी। अर्थ धर्म काम मोख का दाता, पूरी भई सिमर सिमर बेधाता। साध संग नानक रंग माणिया, कर आया पूरे गुरे आणिया। बिलावल महला पंजवां, सर्व निधान पूर्ण गुरदेव रहाव। हर हर नाम जपत नर जीवे, मर खवार साक्त नर थीवे। राम नाम हुआ रखवारा, चख मारो साकत बेचारा। निंदा कर कर पचह कनेरे, मृतक फास गले सिर पैरी। कहो नानक जपह जन नाम, ताके निकट न आवे जाम। राग बुलावल महला पंजवां, कर चौथा दुपदे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कवन संजोग मिलो प्रभ अपने। पल पल निमख सदा हर जपने, चरण कमल प्रभ के नित ध्यावो। कमन सो मत जित प्रीतम पावो रहाओ। ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे, हर नानक बिसर ना काहू बेरे। बिलावल महला पंजवां, चरण कमल प्रभ हृदय त्याय। रोग गए सगले सुख पाए, गुर दुख काटे दीनो दान। सफल जन्म जीवन परवान रहाव। अकथ कथा अमृत प्रभ बाणी, कहो नानक जप जीवे ज्ञानी। बिलावल महला पंजवां, शांत पाई गुर सतगुर पूरे। सुख उपजे बाजे अनहद तूरे रहाव। ताप पाप संताप बनासे, हर सिमरत किल विख सब नासे। आनंद करहु मिल सुंदर नारी, गुरु नानक मेरी पैज सुवारी। बिलावल महला पंजवां, ममता मोह त्रोह मद माता। बंधन बांधिया अत बिकराल, दिन दिन सिजत बकार करत औद। फाही फाता जम कह जाल, तेरी शरण प्रभ दीन दयाला। महाबिखम सागर अत भारी, उधरहु साधु संगर वाला रहाव। प्रभ सुखदाते समरथ स्वामी, जियो पिंड सब तुमरा माल। भ्रम के बंधन काटहु परमेश्वर, नानक के प्रभ सदा कृपाल। बिलावल महला पंजवां, सगल आनंद किया परमेश्वर। अपना बिरद समारिया, साध जना हुए कृपाला। बिगसे सब परवारिया, कारज सतगुर आप सुवारिया। वड्डी आरजा हर गोबिंद की, सुख मंगल कल्याण बिचारिया रहाव। वण तिण त्रे भवन हरिया होए, सगले जी साधारिया। मन इच्छे नानक फल पाए, पूर्ण इच्छ पुजारिया। बिलावल महला पंजवां, जिस ऊपर होवत दयाल। हर सिमरत काटे सो काल रहाव। साध संग भजिए गोपाल, गुण गावत टूटे जम जाल। आपे सतगुरे आपे प्रतपाल,
नानक जाचै साधरवाल। बलावल महला पंजवां, मन मैं सिंचहो हर हर नाम, अन दिन कीर्तन हर गुण गाम। ऐसी प्रीत करो मन मेरे, आठ पैर प्रभ जानो नेरे रहाओ। कहो नानक जाके निर्मल भाग, हर चरणी ताका मन लाग। बलावल महला पंजवां, रोग गया प्रभ आप गवाया, नींद पई सुख सहज घर आया रहाओ। राज राज भोजन खावो मेरे भाई, अमृत नाम रिद माही त्याई। नानक गुर पूरे सरनाई, जिने अपने नाम की पैज रखाई। बलावल महला पंजवां, सतगुर कर दीने अस्थिर घर बार रहाओ। जो जो निंद करे इन ग्रहण की, तिसे आगे ही मारे करतार। नानक दास तां की सरनाई, जा को शब्द अखंड अपार। बलावल महला पंजवां, ताप संताप सगले गए, बिनसे ते रोग पार। ब्रह्म तू बख्शिया संतन रस भोग रहाओ। सर्व सुखा तेरी मंडली, तेरा मन तन अरोग। गुण गावो नित राम के, एह अवखद जोग। आए बसो घर देश मह, एह भले संजोग। नानक प्रभ सो प्रसन्न पहे, लह गए बियोग। बलावल महला पंजवां, काहू संग ना चाल ही माया जंजाल। ऊठ सधारे शतरपथ संतन कै ख्याल रहाओ। हम बुद्ध को बिनसना एह तुर की ताल, बहु जोनी जन्मह मरह बिख्या बिकराल। सत बचन साधु कह नित जपह गोपाल, सिमर सिमर नानक तरे हर के रंग लाल। बलावल महला पंजवां, सहज समाद आनंद सुख पूरे गुरदीन। सदा सहाई संग प्रभ अमृत गुण चीन रहाओ। जय जय कार जगतर मह, लोचह सब जिया। सो प्रसन्न पए सतगुर प्रभु, कछ बिघन ना थिया। जा का अंग दयाल प्रभ, ताके सब दास। सदा सदा वडियाईया नानक गुरपास। राग बलावल महला पंजवां, घर पंजवां चौपदी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मृत मंडल जग साजिया। ज्यों बालू घर बार, बिन सतबार ना लाग गई। ज्यों कागद गुंदार, सुन मेरी मनसा मने माहे। सत देख बीचार, सिद्ध साधक गिरही जोगी। ताज गए घर बार रहाओ, जैसा सुपना रैन का तैसा संसार। दृष्ट मान सब बिनसी है, क्या लग है गावार। कहां सुपाई मीत है, देख नैन पसार। एक चाले एक चाल सह, सब अपनी वार। जिन पूरा सतगुर सेविया, से अस्थिर हर द्वार। जन नानक हर का दास है, राख पैज मरार। बलावल महला पंजवां, लोकन किया वड़ियाईया। बैसंतर पागों, ज्यो मिले प्यारा अपना, ते बोल करागो। जो प्रभ जियो दयाल हुए, तो भगती लागो। लपट रहे मन बासना, गुर मिल एह त्यागो। रहाओ करो बेनती अत घनी, एहो जियो हमागो। अर्थ आन सब वारिया, प्रिय निमक सुहागो। पंच संग गुरते छुटे, दुख अर रागो। हृदय परगास प्रगट भया, निसबासुर जागो। सरल सुहागन आया, जिस मस्तक भागो। कहो नानक तिन पाया, तन मन सीत लागो। बलावल महला पंजवां, लाल रंग तिस को लगा, जिसके वड भागा। मैला कदे ना होवई, नह लागे दागा। प्रभ पाया सुखदाईया, मिलिया सुख पाए।
सहज समाना पीतरे।

गुर अमर कराया, सो जाने जिन चाखिया हर नाम अमोला। कीमत कही ना जाइए क्या कह मुख बोला, सफल दर्श तेरा पार ब्रह्म गुण निध तेरी बाणी। पावो तूर तेरे दास की नानक कुर्बानी। बलावल महला पंजवा, राख हो अपनी शरण प्रभ मोहे कृपा तारी। सेवा कछु ना जानू नीच मूर्खारी, मान करो तुदे उपरे मेरे प्रीतम प्यारे। हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शन हारी। रहाओ हम अवगन करह असंख नीत तुम निर्गुण दातारे। दासी संगत प्रभु त्याग हे कर्म हमारे। तुम देव हो सब किश दया तार हम अकिर्त कनारे। लाग परे तेरे दान स्यों नह चित खसमारे। तुझ ते बाहर किश नहीं भव काटन हारे। कहो नानक सरन दयाल गुर लेहो मुगद उधारे। बलावल महला पंजवा, दोष न काहू दीजिए प्रभ अपना त्याइए। जित सेवे सुख होए कना मन सोई गाइए। कहिए काए प्यारे तुझ बिना तुम दयाल स्वामी। सब अवगुण हमा रहाओ ज्यों तुम राख हो त्यों रहा। अवर नहीं चारा ने धरिया धर तेरिया एक नाम आधारा। जो तुम करहो सोई भला मन लेता मुक्ता। सगल समगरी तेरिया सब तेरी जुगता। चरण पखारो कर सेवा जे ठाकुर पावे। हो कृपाल दयाल प्रभ नानक गुण गावे। बलावल महला पंजवा, मृत हसै श्री उपरे पशुआ नहीं बूझै। बाद साध अहंकार मह मरना नहीं सूझै। सतगुर से ओह अपना काहे फिर हो अभागे। देख कसुम्बा रंगुला काहे भूल लागे। रहाओ कर कर पाप दर्ब किया वर्तन कह ताई। माटी स्यो माटी रली नांगा उठ जाई। जा कह किए श्रम करे ते बैर बरोधी। अंतकाल भज जाहेंगे काहे जलो क्रोधी। दास रेन सोई हुआ जिस मस्तक कर्मा। कहो नानक बंधन छुटे सतगुर की सरना। बलावल महला पंजवा, पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर्भ कीता। अंधले त्रे पवन सूजिया गुर पेट पनीता। महमा साधु संग की सुनो मेरे मीता। मैल खोई कोट अग हरे निर्मल पे कीता। रहा ऐसी भगत गोविंद की पीत हस्ती जीता। जो जो कीनो अपनो तिस अपै दान दीता। सिंह बलाई होए गयो त्रिण मेर दखीता। श्रम करते दम आड़ को ते गनी तनीता। कवन वडाई कह सको बेअंत गुनीता। कर कृपा मोहे नाम देहो नानक दर सरीता। बलावल महला पंजवा, हम बुद्ध प्रबाद नीत लोग रसना साध। लपट कपट ग्रह बेदया मिथ्या बिख्याद। ऐसी पेखी नेत्र मह पूरे गुर प्रसाद। राज मिलख धन योगना नामे बिन बाद। रहाउ रूप धूप सुगंधता कापर पोगहाद। मिलत संग पापिष्ट तन होए दुर्घाद। फिरत फिरत मानुख भया खिन भंगन देहाद। एह अवसर ते चूकिया बहु जोन प्रमाद। प्रभ कृपा ते गुर मिले हर हर बिस्माद। सुख सहज नानक आनंद ताकै पूर्ण नाद। बलावल महला पंजवा, चरण पए संत बोहिथा तरे सागर जेत। मार्ग पाए उद्यान मह गुर दसे भेत। हर हर हर हर हर हरे हर हर हर हेत। उठत बैठत सोवते
हर हर हर चेत रहाउ। पंच चोर आगे भगे जब साध संगेत, पूंजी साबत घणो लाभ ग्रह सूबा सेत। निश्चल आसन मिटी चिंत नाही डोलेत, परम पलावा मिट गया प्रभ पेखत नेत। गुण गंभीर गुण नायका गुण कहिए केत, नानक पाया साध संग हर हर अमरेत। बिलावल महला पंजवां, बिन साधु जो जीवना एतो बिरथारी, मिर्त संग सब भ्रम मिटे गत पई हमारी। जा दिन पेटे साध मोहे वा दिन बलिहारी, तन मन अपनो जियरा फिर हों वारी। रहाउ एत सडाई मोहे ते इतनी दृढ़ तारी, सगल रेन इहु मन भया बिनसी अपतारी। निंद किंद पर दुख नाए खिन मह जारी, दया मया अर निकट पेख नाही दूरारी। तन मन शीतल भये अब मुक्ते संसारी, हीत चीत सब प्राण तन नानक दरसारी। बिलावल महला पंजवां, टहल करो तेरे दास की पग चार।

असर मन आनंद होत चितवत कृपाल रहाव। जगत उदारन साध प्रभ इन लागो पाल, मोको दीजै दान प्रभु संतन पगराल। उकत सियानप कछ नहीं नाही कछ काल, परम पै राखो मोहते काट हो जमजाल। बिनो करो करना पते पिता प्रतपाल, गुण गावो तेरे साध संग नानक सुख साल। बलावल महला पंजवा, कीता लोड़ है सो कर है तुझ बिन कछ नाही। प्रताप तुम्हारा देख कै जमदूत छड जाए, तुमरी कृपा ते छूती है बिनसै अहमेव। सर्व कला समर्थ प्रभ पूरे गुरुदेव रहाओ। खोजत खोजत खोजया नामै बिनकूर, जीवन सुख सब साध संग प्रभ मनसा पूर। जित जित लाभ हो तित तित लग है सियानप सब जाली, जात कत तुम भरपूर हो मेरे दीन दयाली। सब किश तुम ते मांगना बड़ भागी पाए, नानक की अरदास प्रभ जीवा गुण गाए। बलावल महला पंजवा, साध संगत कै बास बै कल मल सब नसना। प्रभ सेती रंग रातिया ताते गर्भ ना ग्रसना। नाम कहत गोबिंद का सूची पई रसना, मन तन निर्मल हुई है गुर का जप जपना रहाव। हर रस चाखत त्रापिया मन रस लै हसना, बुद्ध प्रगास प्रगट पई उल्ट कमल बिगसना। शीतल शांत संतोख होए सब बूझी तृष्णा, दह दिस धावत मिट गए निर्मल थान बसना। राखन हारे राखिया पई भ्रम पसना, नाम निधान नानक सुखी एक साध दर्शना। बलावल महला पंजवा, पानी पखा पीस दास कै तब होहे निहाल। राज मिलक सिकदारिया अग्नि मह जाल, संत जना का शोहरा इस चरणी लाग। माया तारी शत्रपत तिन छोडो त्याग रहाओ। संतन का दाना रूखा सो सर्ब निदान, ग्रह साकत शक्ति ही प्रकार ते बिखु समान। भगत जना का लूघरा ओड नग्न ना होई, साकत सिर पाओ रेशमी पहरत पत खोई। साकत स्यो मुख जोरे है अद विचो टूटे, हर जन की सेवा जो करे इत उतह छूटे। सब किश तुम ही ते होवा आप बनत बनाई, दर्शन भेट तसाद का नानक गुण गाई। बलावल महला पंजवा, सर्वनी सुनो हर हर हरे ठाकुर जस गावो। संत चरण कर सीस तर हर नाम त्यावो, कर कृपा दयाल प्रभ एह निध सिद्ध पावो। संत जना की रेणुका ले माथे लावो रहाओ। नीच ते नीच अत नीच होए कर बिनो बलावो, पाव मनोवा आप त्याग संत संग समावो। सास सास नह विसरै अनकत है ना तावो, सफल दर्शन गुर पेटिया मान मोह मटावो। सत संतोख दया धर्म सिंगार बनावो, सफल सुहागन नानका अपने प्रभ पावो। बलावल महला पंजवा, अटल बचन साधु जना सब मह प्रगटाया। जिस जन होवा साध संग तिस भेटै हर राया। एह प्रतीत गोविंद की जप हर सुख पाया, अनक बातां सब कर रहे गुर घर लै आया रहाओ। सरन परे की राखता नाही सहसाया, कर्म भूम हर नाम बोए अवसर दुलभाया। अंतर जामी आप प्रभ सब करे कराया, पतत पनीत घने करे ठाकुर बिरदाया। मत भूलो मनुख जन माया परमाया, नानक तिस पत राख सी जो प्रभ पहराया। बलावल महला पंजवा,
माटी ते जिन साजिया कर दुर्लभ दे अनक सिदर मन में ढके निर्मल दृष्टि क्यों बिसर प्रभ मने ते जिसके गुण ए प्रभ ताज रचे जे आन स्यो सोरलिये खे रहा सिमरहो सिमरहो सास सास मत बिलम करे छोड़ पर पंच प्रभ स्यो रचो ताज कूड़े ने जिन अनक एक बहुरंग किए है हो सीए कर सेवा तिस पार ब्रह्म गुरते मत ले ऊचे ते ऊचा वड्डा सब संग बरने दास दास को दासरा नानक कर ले बलावल महला पंजवा एक टेक गोविंद की त्यागी अन्यास सब ऊपर समरथ प्रभ पूरन गुणतास जन का नाम आधार है प्रभ सरणी पाहे

सास सास सुमारे करनहार जो कर रहे आ साई वडे आई गुर पूरे अपदेसिया सुख खसमर जाई चिंत अंदेसा गणत ताज जन हुक्म पछाता नह बिन सह नह छोड़ जाए नानक रंग राता। बिलावल महला पंजवा महा तप्त ते भई शांत परसत पाप नाठी अंधकूप मैं गलत थे काढ़े दे हाथे ओए हमारे साजना हम उनकी रेन जिन भेटत होवत सुखी जी दान देन रहाओ। परा पूर्व ला लिखिया मिलिया अब आए बस्त संग हर साधकै

मन नाम नानक की तू टेक प्रभ तेरा आधार करन कारण समरथ प्रभ हरे अगम अपार बलावल महला पंजवा सोई मलीन दीन हीन जिस प्रभ बिसराना करने हार ना बूझई आप गने बिगाना दुख तदे जद विसरै सुख प्रभ चेते आए संतन कै आनंद एहो नित हर गुण गाए रहाओ ऊचे ते नीचा करे नीच खिन मह थापै कीमत कही ना जाइए ठाकुर प्रतापै पेखत लीला रंग रूप चलने दिन आया सुपने का सुपना भया संग चलिया कमाया।

जापै, हर हर हर हर जापी अंतर लिव लाई, के लिवक उतर है सुध हुए साधु सरनाई, सुनत जपत हर नाम जस ताकी दूर बलाई, महामंत्र नानक कथ है हर के गुण गाई। बलावल महला पंजवा, पै ते उपजै भगत प्रभ अंतर होए शांत, नाम जपत गोविंद का बिनसै भ्रम भ्रांत, गुरपूरा जिस भेटिया ता कै सुख प्रवेश, मन की मत त्यागी है सुनिए उपदेश, रहाउ सिमरत सिमरत सिमरिए सो पुरख दातार, मन ते कबहु ना विसरै सो पुरख अपार, चरण कमल स्यों रंग लगा अचरज गुरदेव, जाको कृपा करो प्रभ ताको लावो सेव, निद निदान अमृत पिया मन तन आनंद, नानक कबहु ना विसरै प्रभ परमानंद। बलावल महला पंजवा, कृष्ण बुझी ममता गई नाठे भय परमा, थित पाई आनंद भया गुर कीने धर्मा, गुरपूरा आराध्या बिनसी मेरी पीर, तन मन सब शीतल भया पाया सुख बीर, रहाउ सोवत हर जप जागया

ही तरे कुल कटंब उधारे सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबारे नीच अनाथ अजान में निर्गुण गुणहीन नानक को कृपा पई दास अपना कीन बलावल महला पंजवा हर भगता का आसरा अन नाही ठाऊ तान दे बाण परवार तन प्रभ तेरा नाऊ कर कृपा प्रभ अपनी अपने दास रख लिए निंदक निंदा कर पचे जमकाल ग्रसिए रहाव संता एक त्यामना दूसर को नाहे एक से आगे बेनती रव्या सब थाई कथा परातन इयों सुनी भगतन की बानी सगल दुष्ट खंड खंड किए जान लिए मानी सत बचन नानक कह प्रगट सब माही प्रभ के सेवक सरन प्रभ तिनको भओ नाही बलावल महला पंजवा बंधन काटे सो प्रभु जा कह कल हाथ अवर कर्म नहीं छूती है राखो हर नाथ तौ शरणागत माधवे पूर्ण दयाल छूट जाए संसार ते राखे गोपाल रहाओ आसा परम बकार मोह इन मह लोभाना झूठ समगरी मन वसी पार ब्रह्म ना जाना परम ज्योत पूर्ण पुरख सब जी

नानक करिया साध संग हर हर गुण गाव। बलावल महला पंजवां। कवन कवन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत, महा मोहनी मोहया नरक की रीत। मन खुटहर तेरा नहीं बसास, तू महा उदमादा। खर का पैखर तौ छुट्टै जो ऊपर लादा रहाउ। जप तप संयम तुम खंडे, जम के दुख डांड। सिमर है नाही जोन दुख निरलजे पांड। हर संग सहाय महामीत, तिस स्यों तेरा भेद। बीदा पंच बटवारे उपजियो महाखेद। नानक तिन संतन शरणागति, जिन मन वस कीना। तन तन सरबस अपना, प्रभ जन को दीना। बलावल महला पंजवा। उदम करत आनंद भया, सिमरत सुख सार। जप जप नाम गोविंद का पूरन विचार। चरण कमल गुर के जपत, हर जप हो जीवा। पार ब्रह्म अराधते, मुख अमृत पीवा रहाउ। जी जंत सब सुख बसे, सब कै मन लोच। पर उपकार नित चितवते, नाही कछ पोच। धन सो थान बसंत धन, जह जपिए नाम। कथा कीर्तन हर अत घना।

जिस सिमरत सुख पाई है बिनसै बेयोग, नानक प्रव शरणागति करन कारण जोग। राग बलावल महला पंजवां, दुपदे घर पंजवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अवर उपाव सब त्यागिया, दारू नाम लया।

राखन हारे राखिया अपनी करमया रहाउ बाहां पकड़ प्रभ काढ़िया कीना अपनया सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निरपया बलावल महला पंजवां कर तर मस्तक थापिया।

प्रभ राखता भगतन की यान। जो जो चितव है साध जन सो लेता मान रहाओ। शरण परे चरनारविंद जन प्रभ के प्राण। सहज सुपाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बलावल महला पंजवा चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप। प्रभ शरणागत जन परे ता का सद प्रताप। राखनहार अपार प्रभ ताकी निर्मल सेव। राम राज राम दासपुर कीने गुरदेव रहाओ। सदा सदा हर त्याई है किस बिघन ना लागे। नानक नाम सलाही है भय दुश्मन भागे। बलावल महला पंजवा मन कन प्रभ आराधी है मिल साध समागे। उचरत गुण गोपाल जस दूर ते जम भागे। राम नाम जो जन जपे अन दिन सद जागे। तंत मंत नह जो हुई तित चाख ना लागे रहाओ। काम क्रोध मद मान मोह बिनसे अनरागे। आनंद मगन रस राम रंग नानक सरनागे। बलावल महला पंजवा जी जुगत वस प्रभु कै जो कह सो करना। पये प्रसन्न गोपाल राय पहु किश नहीं करना। दुख ना लागे कदे तुद पार ब्रह्म चितारे।

समरथ है तिस बिन नहीं होर। नानक प्रभ शरणागति साचा मन जोर। बलावल महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ अपना। नाठा दुख ठाओ विश्राम पाए मिल साध संग। ताते बहुड़ ना ताओ बलिहारी गुरे अपने चरणन बल जाओ। आनंद सुख मंगल बने देखत गुण गाओ रहाओ। कथा कीर्तन राग नाद धुन एहो बनियो सुवाओ। नानक प्रभ सो प्रसन्न पए बांचत फल पाओ। बलावल महला पंजवा दास तेरे की बेनती रिद कर परगास। तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दुखन को नास। चरण कमल का आसरा प्रभ पुरख गुणतास। कीर्तन नाम सिमरत रहूं जब लग घट सास। रहाओ मात पिता बंदब तू है तू सर्ब निवास। नानक प्रभ शरणागति जाको निर्मल जास। बलावल महला पंजवा सर्ब सिद्ध हर गाइय सब भला मनाव है। साध साध मुख ते कह सुन दास मलाव है। सुख सहज कल्याण रस पूरे गुर कीन। जी सगल दयाल पए हर हर नाम चीन। रहाओ पूर रहे हो सर्वत्र में प्रभ गुणी गहीर। नानक भगत आनंद में पेख प्रभ की तीर। बलावल महला पंजवा अरदास सुनी दातार प्रभ होए कृपाल। राख लिया अपना सेव को मुख निंदक शार। तुझे ना जो है को मीत जन तू गुर का दास। पार ब्रह्म तू राखिया दे अपने हाथ। रहाओ जीयन का दाता एक है बिया नहीं होर। नानक की बेनंतिया मैं तेरा जोर। बलावल महला पंजवा मीत हमारे साजना राखे गोविंद। निंदक मृतक होए गए तुम हो निचिंद। रहाओ सगल मनोरथ प्रभ किए भेटे गुरुदेव। जय जय कार जगत में सफल जाकी सेव। ऊच अपार अगंत हर सब जी जिस हाथ। नानक प्रभ शरणागति जत कत मेरे साथ। बलावल महला पंजवा गुरपुरा आराध्या होए कृपाल। मार्ग संत बताया टूटे जम जाल। दुख भूख संसा मिटिया गावत प्रभ नाम। सहज सुख आनंद रस पूरन सब काम। रहाओ जलन बुझी शीतल पए राखे प्रभे आप। नानक प्रभ शरणागति जाका वड प्रताप। बलावल महला पंजवा तरत सुहावी सफल थान पूर्ण पए काम। पौ नाठा प्रम मिट गया रव्या नित राम। साध जना कै संग बस्त सुख सहज विश्राम। साई करी सुलखणी सिमरत हर नाम। रहाव प्रगट पए संसार मह फिरते पहनाम। नानक तिस शरणागति घट घट सब जान। बलावल महला पंजवा रोग मटाया आप प्रभ उपजिया सुख शांत। वड प्रताप अचरज रूप हर कीनी दात। गुरु गोविंद कृपा करी राख्या मेरा भाई। हम तिसकी शरणागति जो सदा सहाई। रहाओ बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास। नानक जोर गोविंद का पूरन गुणतास। बलावल महला पंजवा मर मर जन्मे जिन बिसरिया जीवन का दाता। पार ब्रह्म जन सेविया अन दिन रंग राता।
शांत सहज आनंद घना पूर्ण भई आस सुख पाया हर साध संग सिमरत गुणतास रहाओ सुन स्वामी अरदास जन।

पार ब्रह्म शरणाई चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे ना पाई सतगुर पूरा पीटिया जिन बणत बनाई राम नाम औखद दिया एका लिवलाई रहाओ राख लिए तिन रखन हार सब ब्याध मटाई कहो नानक कृपा पई प्रभ पये सहाई बलावल महला पंजवा अपने बाल के आप रखियन

आप रोग मटाए जिवालियन जा कावड प्रताप दोख हमारे बख्शियन अपनी कल तारी मन बाचत फल दितियन नानक बलिहारी। राग बलावल महला पंजवां चौपदे दो पदे कर शिवां।

पुरख दाते मिल संगत हर गुण गाए, रसना अगह अगह गुण राती नैन दर्श रंग लाए। हो कृपाल दीन दुख भंजन मोहे चरण हृदय वसाए, सबहू तले तले सब ऊपर

दंडौत बंदना अनकबार जाओ बारे रहाओ उठत बैठत सोवत जागत एह मन तुझह चितारे सुख दुख इस मन की बिरथा तुझ ही आगे सारे तू मेरी ओट बाल बुद्ध धन तुम ही तुम्हें मेरे परवार है जो तुम करो सोई भल हमरे एक नानक सुख चरनारे बलावल महला पंजवा सुनियत प्रभ तो सगल उदारन मोह मगन पतत संग प्राणी ऐसे मन बसारन रहाउ संच बिख्याले ग्राह जकीनी अमृत मन ते डारन काम क्रोध लोभ रत निंदा सत संतोख।

ब्रह्मण पूर रही दिन अर रात रहाव कर कृपा अपने प्रभ कीने नाम अपने की कीनी दात आठ पहर गुण गावत प्रभ के काम क्रोध इस तन ते जात तृप्त अगाए पेख प्रभ दर्शन अमृत हर रस भोजन खात चरण सरन नानक प्रभ तेरी कर कृपा संत संग मलात बलावल महला पंजवा राख लिए अपने जन आप कर कृपा हर हर नाम दीनो बिनस गए सब सोग संताप रहाव गुण गोविंद गावो सब हर जन राग रतन रसना आलाप कोट जन्म की तृष्णा निवरी राम रसायन आत्म त्राप चरण गहे शरण सुख दाती

सतगुर अपने कौ बल जाई, जिन पैज रखी सारे संसार रहाउ। कर मस्तक धार बालक रख लीनो, प्रभ अमृत नाम महारस दीनो। दास की लाज रखे मेहरवान,

अपर अपारा, एक बस तीरन एक संपूर्ण, एक है प्राण अधारा, निर्मल निर्मल सूचा सूचो, सूचा सूचो सूचा, अंत ना अंता सदा बेअंता, कहो नानक ऊचो ऊचा। बिलावल महला पंजवा, बिन हर काम न आवत हे, जां स्यो राच माच तुम लागे, ओहो मोहनी महावत हे रहाओ, कनक कामनी सेज सोहनी, छोड़ खिनह मैं जावत हे, उर्ज रहियो इंद्री रस प्रेरियो, बिखै ठगौरी खावत हे, त्रिण को मंदर साज सुवारियो, पावक तलै जरावत हे, ऐसे गढ़ मह ऐठ ठीलो, फूल फूल क्या पावत हे, पंच दूत मूंड पर ठाटे, केस गहे फेरावत हे, दृष्ट न आवह अंध अज्ञानी, सोए रहो मद मावत हे, जाल पसार चोग बिस्थारी, पंखी ज्यों फहावत हे, कहो नानक बंधन काटन को, मैं सतगुर पुरख त्यावत हे। बिलावल महला पंजवा, हर हर नाम अपार अमोली, प्राण प्यारू मन है अधारू, चीत चितवो जैसे पान तंबोली रहाओ, सहज समायो गुरह बतायो, रंग रंगी मेरे तन की चोली, प्रिय मुख लागो जो वड भागो, सुहाग हमारू कतो ना डोली, रूप ना धूप ना गंध ना दीपा, ओत पोत अंग अंग संग मौली, कहो नानक प्रिय रवि सुहागन, अतनी की मेरी बनी खटोली। बिलावल महला पंजवा, गोविंद गोविंद गोविंद मई, जब ते भेटे साध दयारा, तब ते दुर्मत दूर पई रहाओ, पूर्ण पूर रहो संपूरन, शीतल शांत दयाल दई, काम क्रोध तृष्णा अहंकारा, तन ते होए सगल खई, सत संतोख दया धर्म सोच, संतन ते एहो मंत लई, कहो नानक जिन मनो पछानिया, किनको सगली सोज पई। बिलावल

सिद्ध मुन इंदिरा बेअंत ठाकुर तेरी गत नहीं पाई। क्या कथिया किस कथन ना जाई, जह जह देखा तह रह समाई रहाओ। जह महाभयान दुख जम सुनिए, तह मेरे प्रभ तू है सहाई। शरण परयो हर चरण गहे प्रभ, गुरु नानक को बूझ बुझाई। बलावल महला पंजवा, अगम रूप अबनासी करता, पतत पवित एक निमुख जपाई है। अचर्ज सुनियो प्राप्त भेटले, संत चरण चरण मन लाई है। कित विधि है कित संयम पाई है, कहो सुरजन कित जुगती त्याय रहाओ। जो मानुख मानुख की सेवा, ओह तिसकी लई लई फुन जाई है। नानक सरन सरन सुख सागर, मोहे टेक तेरो एक नाई है। बलावल महला पंजवा, संत सरन संत टहल करी, तंद बंद अर सगल जंजारू। अवर काज ते छूट परी रहाओ, सुख सहज अर कनो अनंदा। गुर ते पायो नाम हरी, ऐसो हर रस बन ना साको। गुर पूरे मेरी उल्ट तरी, पेखियो मोहन सब कै संगे। ऊन ना काहू सगल भरी, पूर्ण पूर रहियो कृपा नित। कहो नानक मेरी पूरी परी। बुलावल महला पंजवा, मन क्या कहता हौ क्या कहता, जान परवीन ठाकुर प्रभ मेरे। तिस आगे क्या कहता रहाऊ, अनबोले को तू ही पछान है। जो जीन मह होता रे मन काए, कहां लो डह कहें। जो पेखत ही संग सुनता, ऐसो जान भये मन आनंद। आन ना बियो करता, कहो नानक गुर पर।

सुनो तुम भाई, जो कालर भीत गिरी है रहाओ, जो देखै शिदर तो निंदक अमाह, भलो देख दुख भरी है, आठ पहर चितवै नहीं पहुंचै, बुरा चितवत चितवत मरी है, निंदक प्रभु पलाया, काल नेरह आया, हर जन स्यों बाद उठरी है, नानक का राखा आप प्रभ स्वामी, क्या मानस बपरे करी है, बलावल महला पंजवा, ऐसे काहे भूल परे, करह करावह मुकर पावह, पेखत सुनत सदा संग हरे रहाओ, काच बिहाजन कंचन छाडन, बैरी संग हेत साजन त्याग खरे।

परम गबार मोह बंद परी कहो नानक प्रभ होत दयारा गुर भेटै काढे बाहां परे बलावल महला पंजवां मन तन रसना हर कीना भय आनंदा मिटे अंदेसे सर्ब सुख मोको गुर दीना रहाओ ज्ञान पते सब भई सिया।

बल जावो दर्शन साधु कै जे प्रसाद हर नाम लीना कहो नानक ठाकुर परोसै कहू ना मान्यो मन शीना बलावल महला पंजवा गुरपुरै मेरी राख लई अमृत नाम।

नाम, जरा मरा कछु दुख न व्यापै, आज्ञा दरगाह पूर्ण काम रहाउ। आप त्याग परियै नित सरनी, गुर ते पाइयै एहो निदान, जन्म मरण की कटियै फासी।

पंजवा अच्युत पूजा जोग गोपाल मन तन अर्प रखो हर आगे सर्व जिया का है प्रतपाल रहाउ सरन समरथ अकत सुख दाता कृपा सिंध बड़ो दयाल कंठ लाए राखे अपने को तिसनो लगे ना ताती बाल दामोदर दयाल स्वामी सर्वस संत जना धन माल नानक जाचक दर्श प्रभ मांगे संत जना की मिले रवाल बलावल महला पंजवा सिमरत नाम कोट जतन पए साध संग मिल हर गुण गाए जम दूतन को त्रास अहे रहाओ जेते पुनः चरण से कीने मन तन प्रभ के चरण गहे आवन जान परम पौ नाठा जन्म जन्म के किल विख दहे निरपौ होए भजो जगदीसै इहो पदार्थ बड भाग लहे कर कृपा पूर्ण प्रभ दाते निर्मल जस नानक दास कहे।

काटिया, हिनमह हुए गया है खाक, मंदा चितवत चितवत पचिया, जिन रचिया तिन दीना ताक, पुत्र मीत तन किशु ना रहो, सो छोड़ गया सब पाई साक, कहो नानक तिस प्रभ बलिहारी, जिन जन का कीनो पूर्ण वाक, बलावल महला पंजवा, पूरे गुर की पूरी सेवा, आपे आप वरतै स्वामी, कार्ज रास किया गुरुदेव रहाऊ।

हस्त प्रभु दीने जगत उधार नव खंड प्रताप दुख बिन से सुख अंध प्रवेशा त्रिशन बुझे मन तन सच त्राप नाथ को नाथ सरन समरथा सगल श्रेष्ठ को माई बाप भगत वचन पै पंजन स्वामी गुण गावत नानक अलाप बलावल महला पंजवा जिसते उपजिया तह पछान पार ब्रह्म परमेश्वर ध्याया कुशल खेम हुए कल्याण रहाउ गुरपुरा पेट्यो बड़ भागी अंतर जामी सुगड़ सुजान हाथ दे राखे करे अपने बड़ समरथ नमाणिया को मान ब्रह्म पै बिन स गए खिन पीतर अंधकार प्रगटे चानान सास सास अराध नानक सदा सदा जाइए कुर्बान बलावल महला पंजवा दुए थाम रखे गुर सूरे हलत पलत पार ब्रह्म सवारी कार्ज हुए सगले पूरे रहाओ हर हर नाम।

अनक प्रकार भोजन नित खाते मुख दंता कस खीन खया मेरी मेरी कर कर मूठो पाप करत नह परी दया महाविकार घोर दुख सागर तिसमह प्राणी गलत पया सरन परे

चीत। दुश्मन दुष्ट रहे झख मारत, कुशल भया मेरे भाई मीत रहाउ। गई ब्याद अपाद सब नासी, अंगीकार कियो करतार। शांत सुख अर आनंद कनेरे, प्रीतम नाम हृदय उरहार। जियो पिंड तन रास प्रभ तेरी, तू समरथ स्वामी मेरा। दास अपने को राखन हारा, नानक दा

आपे राखी, पै भंजनी ऊपर करते मान, भई मित्राई मिटी बुराई, दुष्ट दूत हर काढे शान, सुख सहज आनंद कनेरे, नानक जीवै हर गुण है बखान, बलावल महला पंजवां, पार ब्रह्म प्रभ भये कृपाल, कार्य सगल सवारी सतगुर, जप जप साधु भये निहाल रहाउ, अंगीकार किया प्रभ अपने, दुखी सगले भये रवाल, कंठ लाए राखे जन अपने, उधर लिए लाए अपने पाल, सही सलामत मिल घर आए।

प्रीत बनी रहाओ, तोरी ना टूटे शोरी ना छूटे, ऐसी माधो खिंच तनी, दिन सरैन मन माही बस्त है, तू कर कृपा प्रभे अपनी, बल बल जाओ श्याम सुंदर को, कथ कथा जा की बात सुनी, जन नानक दासन दास कहियत है, मोहे करहो कृपा ठाकुरे अपनी, बलावन महला पंजवा, हर के चरण जप जाओ कुर्बान, गुर मेरा पार ब्रह्म परमेश्वर, ताका हृदय धर मन ध्यान रहाओ, सिमर सिमर सिमर सुखदाता, जाका किया सगल जहान, रसना रवहु एक नारायण, साची दरगाह पावु मान, साधु संग परापत जाको, तिन्ही पाया एहो निदान, गावो गुण कीर्तन नित स्वामी, कर कृपा नानक दीजे।

विश्वंबर पूर्ण सुखदाता सगल समगरी पोखण भरन थान थनंतर सर्व निरंतर बल बल जाई हर के चरण जी जुगत वस मेरे स्वामी सर्व सिद्ध तुम कारण करन आद जगाद प्रभ रखदा आया हर सिमरत नानक नहीं डरन राग बलावल महला पंजवां दुपदी घर अठवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद मैं नाही प्रभ सब किछ तेरा एक है निर्गुण उग है सरगुण केल करत बिच स्वामी मेरा रहाव नगर मह आप बाहर फुन आपन प्रभ मेरे को सगल बसेरा आपे ही राजन आपे ही राया कह कह ठाकुर कह कह चेरा का कौ दराओ का स्यो बल बंचा जह जह पेखो तह तह नेरा साध मूत गुर भेट्यो नानक मिल सागर बूंद नहीं अनहेरा बलावल महला पंजवां तुम समरथा कारण करन ताकन ताक गोबिंद गुर मेरे मोहे अपराती सरन चरन रहाओ जो जो कीनो सो तुम जान्यो पेखियो ठौर नाही कस ढीठ मुकरन बड प्रताप सुनियो प्रभ तुमरो कोट अगा तेरो नाम हरन हमरो सहाओ सदा सद भूलन तुमरो बिरद पतत उधरन करना मैं किरपाल किरपा निद जीवन पद नानक हर दर्शन बलावल महला पंजवां ऐसी कृपा मोहे करो संतह चरण हमारो माथा नैन दर्स तन धूर पर हो रहाओ गुरु को शब्द मिरही अरे बासै हर नामा मन संग धरो तस्कर पंच नवारो ठाकुर सगलो भरमा होम जरो जो तुम करो सोई भल मानै पावन दुबदा दूर टरो नानक के प्रभ तुम ही दाते संत संग ले मोहे उधरो बलावल महला पंजवां ऐसी दीख्या जन स्यों मंगा तुमरो

जन चर राजमुख माथे लागी आसा पूर्ण अनंत तरंगा जन पार ब्रह्म जाकी निर्मल महिमा जन के चरण तीर्थ कोट गंगा जन की धूर कियो मज्जन नानक जन्म जन्म के हरे कलंगा बिलावल महला पंजवा ज्यो भावै त्यो मोहे प्रतपाल पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर हम बारक तुम पिता कृपाल रहाओ मोहे निर्गुण गुण नाही कोई।

जानू हाल तन मन शीतल होए हमारू नानक प्रभ जीओ नदर निहाल बिलावल महला पंजवा राख सदा प्रभ अपने साथ तू हमरो प्रीतम मन मोहन तुझ बिन जीवन सगल अकाथ रहाओ रंक तेराओ करत खिन पीतर प्रभ मेरो अनाथ को नाथ जलत अग्न मह जन आप उधारी कर अपने दे राखे हाथ शीतल सुख पायो मन तृप्ते हर सिमरत श्रम सगले लाथ निद निधान नानक हर सेवा अवर सियानप सगले अकाथ बिलावल महला पंजवां।

पतत पावन प्रभ बिरद तुम्हारु हमरे दुख हृदय मत तारु जीवन प्राण हर धन सुख तुम ही हो मैं पटल कृपा कर जारु जल बिहून मीन कत जीवन दूध बिना रहन कत बारु जन नानक प्यास चरण कमलन की पेक दर्स स्वामी सुख सारु बिलावल महला पंजवा आगै पाछै कुशल भया गुरपूरै पूरी सब राखी पार ब्रह्म प्रभु कीनी माया रहाउ मन तन रव रहया हर प्रीतम दुख दर्द सगला मिट गया शांत सहज आनंद गुण गाए दूत दुष्ट सब हुए खया गुण अवगुण प्रभु कछ ना बिचारियो कर कृपा अपना कर लया अतुल बढ़ाई अचुत अभनासी नानक उचरै हर की जया बलावल महला पंजवां बिन पै भगती तरन कैसी करहु अनग्रहु पतत उदारन राख स्वामी आप परोसे रहाओ सिमरन नहीं आवत फिरत मद मावत बिख्या राता स्वान जैसी औद बिहावत अधिक महावत पाप कमावत बुढ़े ऐसी सरन दुख भंजन पुरख निरंजन साधु संगत रमन जैसे केशव कलेश नास अग खंडन नानक जीवत दर्श दिसे राग बलावल महला पंजवां।

जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए रहाओ। ताजे अभिमान अरचिंत बरानी साध है शरण पाए, जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग खाए। महामुगद अजान अज्ञानी राखे तार दए, कहो नानक गुर पूरा पिट्यो आवन जान रहे। बलाव महला पंजवा जीवो नाम सुनी, जो सो प्रसन्न पए गुर पूरे तब मेरी आस पुनी। रहाओ पीर गई बांदी मन तीरा, मोहे हो आनंद तुनी उपजो चाओ मिलन प्रभ प्रीतम रहन ना जाए खिनी। अनक भगत अनक जन तारे सिमर है अनक मुनि, अंदले टेक निरतन तन पायो प्रभ नानक अनक गुनी।

दो पद एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुख हरता हर नाम पछानो अजा मल गण का जेह सिमरत मुक्त भये जी जानो रहाओ गज की त्रास मिटी सिन्हु मह जब ही राम बखानो नारद कहत सुनत ध्रुव बारक भजन माहे लपटानो अचल अमर निरभय पद पायो जगत जाहे हैरानो नानक कहत भगत रस कहार निकट ताहे तुम मानो।

तेहे नर जन्म अकारथ खोया, यह राखो मन माही रहाउ। तीर्थ करे व्रत फुन राखे, नह मनुआ बस जाको। निःफल धर्म ताहे तुम मानु, साच कहत मैं जाको।

वेद पकार भगत सरोत सुन सुन मान वेखै जोत शास्त्र सिमरत नाम दृढ़ामं गुरमुख शांत उत्तम करामं मनमुख जोनी दुख सहामं।

को दूजा देख कहो पावे मन सोए। नानक कह अवर नहीं कोई बलावल महला पहला। मन का कहया मनसा करै इहो मन पुन पाप उचरै। माया मद माते त्रिपत ना आवे त्रिपत मुकत मन साचा पावे। तन तन कलत सब देख अभमाना।

ठाकू खा करल सब फैल, बिन शब्द नहीं उतरे मैल। गीत राग कान ताल से पूरे त्रिह

आप न बूझे लोक बुझावे, मन का अंधा अंध कमावे, दर कर महल ठौर कैसे पावे, हर जियो सेविया अंतर जामी, घट घट अंतर जिसकी जोत समानी, किस नाल क्या चले पहनामी, साचा नाम साचा शब्द जाने, आपे आप मिले चूके अभमाने, गुरमुख नाम सदा सदा बखाने, सतगुर सेवे है दूजी दुरमत जाई, औगण काट पापा मत खाई, कंचन काया ज्योति ज्योत समाई, सतगुर मिले वड्डी वड्याई।

अर्थ खैया, गुरमत नाम अमृत जल पाया, अगन बुझी गुर शब्द बुझैया। इह मन नाचे सत गुर आगे, अनाद शब्द धुन तूर बजैया। हर हर उस्तत करै दिन राती, रख रख चरण हर ताल पूरैया। हर कै रंग रत्ता मन गावे, रस रसाल रस शब्द रवैया। निज कर तार चोए अत निर्मल, जिन पिया तिन्ही सुख लहिया। मन हट कर्म करे अभमानी, ज्यो बालक बालू कर उसरैया। आवे लहर समुंद सागर की, खिन मह भिन भिन टह पैया। हर सर सागर हर है आपे, एहो जग है सब खेल खलैया। ज्यो जल तरंग जल जलह समावे, नानक आपे आप रमैया। बलावल महला चौथा, सतगुर परचै मन मुंदरा पाई। गुर का शब्द तन भस्म दरड़ैया। अमर पिंड भये साधु संग, जन्म मरण दो मिट गईया। मेरे मन साध संगत मिल रहीया, कृपा करहु मधुसूदन माधव। मैं खिन खिन साधु चरण पखैया, रहाउ तजै गिरहस्थ भया बनवासी। एक खिन मनुआ टिकै ना टिकैया, धावत धाए तदे घर आवै।

से तज उत्पुज सब वर्ण रूप जी जंत उपैया साधु सरन परे सो उबरे खतरी ब्राह्मण सूद वैस चंडाल चंडैया नामा जय देव कंबीर त्रिलोचन औजात रविदास चमयार चमैया जो जो मिले साधु जन संगत तन तना जात सहन मिलिया हर दैया संत जना की हर पैज रखाई भगत वचल अंगीकार करैया नानक सरन

सुन गुर बचन मन तीर लगैया, मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। राम गुर मोहन मोहे मन लैया, हम आकल बिकल पई गुर देखे, हम लोट पोट होए पैया रहाओ। हम निरखत फिरऊं सब देश दसंतर, मैं प्रभ देखन को बहुत मन चैया। मन तन काट देऊं गुर आगै, जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखैया। कोई आन संदेशा दे प्रभ केरा, हृदय अंतर मन तन मीठ लगैया। मस्तक काट देऊं चरना तल, जो हर प्रभ मेले मेल मलैया। चल चल सखी हम प्रभ प्रबुद्ध है, गुण कामन कर हर प्रभ लहिया। भगत वचल ओआ को नाम कहियत है, शरण प्रभु तिस पाछे पैया। हिमा शिंगार करे प्रभ खुशियां, मन दीपक गुर ज्ञान बलैया। रस रस भोग करे प्रभ मेरा, हम तिस आगे जियो कट कट पैया। हर हर हार कंठ है बनिया, मन मोती चूर वड गहन गहनैया। हर हर शरदा सेज वछाई, प्रभ छोड़ ना सकै बहुत मन पैया। कह प्रभ अवर अवर किश कीजै, सब बाद शिंगार फोकट फोकटैया। कियो शिंगार मिलन कै ताई, प्रभ लियो सुहागन।

सतगुरु प्रसाद। उपमा जात ना कही मेरे प्रभु की, उपमा जात ना कही, ताजे आन शरण गही रहाओ। प्रभ चरण कमल अपार, हौ जाऊं सद बलिहार, मन प्रीत लागी ताहे, ताजे आन कतह ना जाहे। हर नाम रसना कहन, मल पाप कल मल दहन,

बिस्माद चख अनद पूर्ण साध नह डोली है इत ऊत प्रभ बसे हर हर चीत तिन नाहे नरक निवास नित सिमर प्रभ गुणतास ते जम ना पे कह नैन सुन मोहे अनहत बैन हर सरन सूर गोपाल प्रभ भगत वस दयाल हर निगम लह ना पेव नित करह मुन जन सेव दुख दीन दर्द निवार जा की महा बिखड़ी कार ता की मित न जाने कोए जल थल महियल सोए कर बंदना लख बार थक परियो प्रभ दरबार प्रभ करहो साधु तूर नानक मन सापूर बलाव महला पंजवा प्रभ जन्म मरण निवार हार परियो द्वार गह चरण साधु संग मन मिष्ट हर हर रंग कर दया ले हो नर लाए नानका नाम त्याए दीना नाथ दयाल मेरे स्वामी दीना नाथ दयाल जाचों संतरवाल रहाओ संसार बिखिया कूप तम अज्ञान मोहत कूप गह पुजा प्रभ जी ले हो हर नाम अपना दे हो प्रभ तुझ बिना नहीं ठाओ नानका बल बल जाओ लोभ मोहे बांदी दे बिन भजन होवत खे जमदूत महाभयान चित गुप्त कर मह जान दिन रैन साख सुनाए नानका हर सरनाए पै भंजना मरार कर दया पतत उदार मेरे दुख गने ना जाहे हर बिना कतह समाए गह ओट चित वी नाथ नानका दे रख हाथ हर गुण निदे गोपाल सर्ब घट प्रतपाल मन प्रीत दर्शन प्यास गोविंद पूर्ण आस एक निमख रहन ना जाए वड भाग नानक पाए प्रभ तुझ बिना नहीं होर मन प्रीत चंद चकोर ज्यो मीन जल स्यो हेत अल कमल भिन्न ना भेत ज्यो चकवी सूरज आस नानक।

ज्यो महा खुदयारथ भोग ज्यो मात पूतहि हेत हर सिमर नानक नेत ज्यो दीप पतन पतंग ज्यो चोर हित न संग मैगल है कामै बंद ज्यो ग्रस्त बिखई।

गोविंद भजना रंग रसना बखाने नाम नानक दर्शन दान गुण गाए सुन लिख दे सो सर्ब फल हर ले कुल समूह करत उधार संसार उतरस पार हर चरण बोहित ताहे मिल साध संग जस गाहे हर पैज रखे मरार हर नानक सरन द्वार बलावल महला पहला थिती घर दसवां जत एक ओंकार सतगुर प्रसाद एकम एकंकार नराला अमर अजोनी जात ना जाला अगम अगोचर रूप ना रेखिया खोजत खोजत घट घट देखिया जो देख दिखावे तिसको बल जाई गुर प्रसाद परम पद पाई क्या जप जापो बिन जगदीसै गुर कै शब्द महल घर दीसै रहाओ दूजे पाए लगे पछताने जम दरबांदे आवन जाने क्या लै आवे है क्या ले जाहे सिर जमकाल से चोटा खाहे बिन गुर शब्द ना छूटस कोए पाखंड कीने मुक्त ना होए आपे सच किया कर जोड़ अंडज फोड़ जोड़ विछोड़ तरत आकाश किए बैसन कौ थाओ रात दिनंत किए पौ पाओ जिन किए कर वेखण हारा अवर न दूजा सिर जनहारा तृतीया ब्रह्म

कीमत पाए रहया भरपूर किस नेड़े किस आखां दूर चौथ अपाए चारे बेदा खानी चारे बाणी भेदा अष्ट दशा।

मूक शरीर सात समुंद भरे निर्मल नीर मज्जन सील सच हृदय विचार गुर कै शब्द पावे सब पार मन साचा मुख साचो पाए सच निशाने ठाक न पाए अष्टमी अष्ट सिद्ध बुद्ध साधे सच निह केवल कर्म अराधे पौन पानी अग्नि बिसराऊ तही निरंजन साचो नाऊ किसमें मनुआ रहया लिबलाय प्रणवत नानक काल न खाय नाऊ नौमी नवे नाथ नव खंडा घट घट नाथ महाबलवंडा आई कूता एहो जग सारा प्रभ आदेश आद रखवारा आद जगादी है पी होग ओहो अपरंपर करन जोग दसमी नाम दान इशनान अन दिन मज्जन सच्चा गुण ज्ञान सच मैल न लागे ब्रह्म पौ भागे बिलम न टूट सका चै तागे ज्यों तागा जग ए वै जानहु अस्त्र चीत साच रंग माणहु एकादशी एक हृदय वसावे हिंसा ममता मोह चुकावे फल पावे व्रत आत्म चीने पखंड राच तत नहीं बीने निर्मल निराहार ने केवल

हलुहार किए फल जाए, रस कस खाए साध गवाए, कूड़ै लालच लपटै लपटाए, छूटै गुरमुख साच कमाए, द्वादस मुद्रा मन अवतूता, ऐन सजागै कभै ना सूता, जागत जागरै

अमृत मूल शिखर लिवतार है। डर डर मरे न बूढ़े कोए, नडर बूढ़ मरे पत खोए। डर मह घर, घर मह डर जाने, तख्त निवास सच मन पाने। चौदस चौथे थावे लह पावे, राजस तामस सतकाल समावे। ससियर कह कर सूर समावे, जोग जुगत की कीमत पावे। चौदस भवन पताल समाए, खंड ब्रह्मांड रहया लिवलाए। अमावस्या चंद गुप्त गैनार, बुझ हो ज्ञानी शब्द विचार। ससियर गगन जोत तिहो लोई, कर कर वेख करता सोई। गुरते दिसै सो तिस ही माहि, मनमुख भूले।

माई आप अपाए सब कीमत पाई गुरमुख हो ऐसो करे विचार सच संयम करनी है कार वर्त नेम नेता प्रत पूजा।

0: बार बार
1: दिन सनहण तिमें संसार आवागौन किया करतार निश्चल साच रहया काल तार नानक गुरमुख बूझै को शब्द विचार बिलावल महला तीजा आदि पुरखे आपे श्रेष्ठ साजे जी जंत माया मोहे पाजे दूजे पाए परपंच लागे आवह जावह मरह अपागे सतगुर भेटे सो जी पाए परपंच चूकै सच समाए जाकै

रह मुग्ध गुआर नानक गुरमुख बूजे सूजी पाए इकत नाम सदा रह आसमाय। बलावल महला पहला शंत दखनी।

हर धरी हर लिवलाई राम लिवलाई हर सिउ रही गोयल सहज शब्द शिंगारिया कर जोड़ गुर पह कर बेनंती मिलो साच प्यारिया तन पाए भगती देख प्रीतम काम क्रोध निवारिया नानक।

गुरु तुठे हर प्रभ पाया, रंग रलिया माना राम, वड भागियां सोहागनी, हर मस्तक माना राम, हर प्रभ हर सुहाग।

सफल जन्म हर पाया, नानक प्रभ की नाराम। बलावल महला चौथा सलोक, हर प्रभ सज्जन लोड़ लहो। मन वसै वडभाग गुर पूरै वेखा लिया।

हर हर लिव लागे राम। अंतर कमल पर गासिया गुर ज्ञानी जागे राम। जन नानक हर प्रभ पाया पूरे वड भागे राम। हर प्रभ हर मन पाया हर नाम वधाई राम। गुर पूरे प्रभ पाया हर हर लिव लाई राम। अज्ञान अंधेरा कटिया जोत प्रगट आई राम। जन नानक नाम आधार है हर नाम समाई राम। तन हर प्रभ प्यारे राविया जा हर प्रभ भाई राम। अखी प्रेम कसाईया जो बिलक मसाई राम। गुर पूरे हर मेलिया हर रस अघाई राम। जन नानक नाम बिगसिया हर हर लिव लाई राम। हम मूर्ख मुग्ध मलाया हर कृपा तारी राम। तन तन गुरु साबास है जिन हों मैं मारी राम। जिन वड भागियां वड भाग है हर हर पुर तारी राम। जन नानक नाम सलाहे तू नामे बलिहारी राम।

अविनाशी वर सुनिया मन उपजया चाया राम मन प्रीत लागे वड्डे भागे कब मिलिया पूर्ण पति सहजे समाइया गोविंद पाइया देहो सखिए मोहे मते दिन रहन थाडी करो सेवा प्रभ कमन जुगती पाया बिनवंत नानक करो कृपा लहू मोहे लड़ लाया भया समाहड़ा हर रतन वसाहा राम खोजी खोज लद्दा हर संतन पाहा राम मिले संत प्यारे दया धारे कथ है अकथ बिचारू एक चित एक मन त्याए स्वामी लाए प्रीत प्यारू कर जोड़ प्रभ पह कर बेनंती मिले हर जस लाहा बिनवंत नानक दास तेरा मेरा प्रभ अगम अथा।

मिल संते आए प्रभ ते आए बने अचरज जानिया मिल अकत्तर होए सहज ढोए मन प्रीत उपजी मानिया मिल जोत ज्योति पोत पोती हर नाम सब रस भोगो बिनवंत नानक सब संत मेली प्रभ करन कारण जोगो पवन सुहावड़ा धरत सुभागी राम प्रभ घर आयड़ा गुरचरणी लागी राम गुरचरण लागी सहज जागी सगल इच्छा पुनिया मेरी आस पूरी संत धूरी हर मिले कंत विछुनिया आनंद अंदिन वजह वाजे अहं मत मन की त्यागी बिनवंत नानक सरण स्वामी संत संग लिव लागी बलावल महला पंजवा भाग सलखना हर कंत हमारा राम अनहद बाजितरा तिस धुन दरबारा राम आनंद आंदिन बजह वाजे दिन सरैन अमाहा तह रोग सोग ना दुख ब्यापै जन्म मरन ना ताहा रिद सिद्ध सुधारा से अमृत भगत भरे भंडारा बिनवंत नानक बलिहार वन्या पार ब्रह्म प्राण अधारा सुन सखी सहेलरियो मिल मंगल गावह राम मन तन प्रेम करे तिस प्रभ को रावह राम कर प्रेम रावह तिसै भावह एक निमख पलक ना त्यागी है गह कंठ लाइय नह लज्जाइय चरण राज मन पागी है।

आत्म पसारा करनहारा प्रभ बिना नहीं जानिए आप करता आप भुगता आप कारण किया बिनवंत नान।

वास आओ सखी असी तिरका मंगल गावे तजमान सखी तजमान सखी माते अपने प्रीतम भाव है तजमान मोह बेकार दूजा सेव एक निरंजनो लग चरण सरन दयाल प्रीतम सगल दुर्त बिखंडनो होए दास दासी तज उदासी बहुड़ विधि ना तावां।

सगला बानहरा हर हरा स्वामी सुखागामी आनंद मंगल रस घना नवल नवतन नाह बाला कवन रसना गुण भणा मेरी सेज सोही देख मोही सग

पियो सुख सागर प्रभ भेटे है नानक सुखी होत एहो जीओ संत सुख सागर प्रभ पाई है जब होवे भागो राम मानन मान वंजाई है हर चरनी लागो राम छोड़ सियान पचातुरी दुर्मत बुद्ध त्यागो राम नानक पाओ सरनाई राम राय फिर हुए सुहागो राम सो प्रभ तज कत लागी है जिस बिन मर जाइए राम लाज ना आवे ज्ञान मती दुर्जन बिरमाइए राम पतत पावन प्रभ त्याग करे कहो कत ठहराइए राम नानक भगत पाओ कर दयाल की जीवन पद पाइए राम श्री गोपाल ना उचरह बल गईये दोहचार नरसना राम प्रभ भगत बछल न सेवही काया काक ग्रसना राम भ्रम मोही दुख ना जानही कोट जोनी बसना राम नानक बिन हर अवर जे चाहना बिस्ता क्रिम पसमा राम लाए बिरो भगवंत संगे होए मिल बैरागण राम चंदन चीर सुगंध रसा हौ मैं बिख त्यागण राम ईत ऊत नह डोलिया हर सेवा जागण राम नानक जिन प्रभ पाया अपना सा अटल सुहागण राम बलावल महला पंजवा हर खोज हो वडभागी हो मिल साधु संगे राम गुण गोविंद।

जप अनत तरंगे राम एक तिल प्रभु ना विसरे जिन सब किछ दीना राम बड़ भागी मेला वड़ा गुरमुख पिर चीना राम बाहां पकड़ तम ते काढ़िया।

कह सको प्रभ अंतर जामी राम सिमर सिमर नारायण भय पार ग्रामी राम गुण गावत गोविंद के सब इच्छ पजामी राम नानक उदरे जप हरे सबहू का स्वामी राम रस पिन्याड़े अपने राम संगे से लोयन नीके राम प्रभ देखत इच्छा पुनिया मिल साजन जी के राम अमृत रस हर पाया बिखिया रस फीके राम नानक जल जल

था हरि उत्तम हर प्रभ गावया करनाद बलावल राग अपदेश गुरु सुन मन्या तुर मस्तक पूरा पाग सब दिन सरैन गुण उच्चरै हर हर हर उर लिवलाग सब तन मन हरिया होया मन खिड़िया हरिया बाग अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर चानन ज्ञान चराग जन नानक जीवै देख हर एक निमख घड़ी मुख लाग महला तीजा बलावल तब ही कीजिय जब मुख होवै नाम राग नाद शब्द सोहणे जान लागै सहज ध्यान राग नाद छोड़ हर सेवी ता दरगाह पाई मान नानक गुरमुख ब्रह्म बिचारी चूकै मन अभमान पौड़ी तू हर प्रभ आप अगम है सब तुद पाया तू आपे आप वरतदा सब जगत सबाया तुद आपे ताड़ी लाई आपे गुण गाया हर त्यावो भगत हो दिन सरात अंत लय छाया जिन सेव्या तिन सुख पाया हर नाम समाया सलोक महला तीजा दूजे पाए बलावल ना होवे मन मुख ताए ना पाए पाखंड भगत ना होवे पार ब्रह्म ना पाया जाए मन हट कर्म कमावणी थाए ना कोई पाए नानक गुरमुख आप बिचारी है बिचो आप गवाए आपे आप पार ब्रह्म है पार ब्रह्म वस्या मन आए जम्मन मरना कटिया ज्योति जोत मलाई महला तीजा बलावल करे हो तुम प्यारे हो एक स्यों लिबलाई जन्म मरण दुख कटिए सच्चे रह समाई सदा बलावल आनंद है जे चल है सतगुर पाई।

फित की है सच भगत वडियाई सच साहेब सच्चा न्याओ है सिर निंदक शाई जन नानक सच अरादिया गुरमुख सुख पाई। श्लोक महला तीजा पूरे भाग सतगुर पाई है जे हर प्रभ बख्श करे।

गुणी निदान सुखदाता तेरे मन वसै हम जाए अभमान नानक नदरी पाई अमृत गुणी निदान पौड़ी जितने पातशाह सहारा जे खान उमराव सिकदार है कितने सब हर के किए जो किछ हर करावे सो ओए कर है सब हर के अर्थिये सो ऐसा हर सबना का प्रभ सतगुर कै वल है जिन सब वर्ण चारे खानी सब सृष्ट गोले कर।

कडिए, हर हर कृपाल हुआ भगत जना उपर, हर अपनी कृपा कर हर आप रख लिए। श्लोक महला तीजा। अंदर कपट सदा दुख है, मनमुख ध्यान न लागे, दुख विच कार कमावनी, दुख वरतै दुख आगै, करमी सतगुर भेटियै तां सच नाम लिव लागै, नानक सहजे सुख होए, अंदरों भ्रम भउ भागै। महला तीजा। गुरमुख सदा हर रंग है, हर का नाउ मन पाया, गुरमुख वेखण बोलना, नाम जपत सुख पाया, नानक गुरमुख ज्ञान परगासिया, तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया। महला तीजा। मनमुख मैले मरह गवार, गुरमुख निर्मल हर राखिया उरतार, भणत नानक सुनो जन भाई, सतगुर सेवहो हउ मैं मल जाई। अंदर संसा दुख व्यापे, सिर धंधा नित मार, दूजै पाए सूते कबहु ना जाग है, माया मोह प्यार। नाम ना चित है, शब्द ना विचार है, इहो मनमुख का विचार, हर नाम ना पाया, बिरथा जन्म गवाया, नानक जम मार करे खुआर पौड़ी। जिसनो हर भगत सच बख्शियन, सो सच्चा साहु, तिसकी महताजी लोक कढ़दा, होर तहट ना वथ ना विसाहु। भगत जना को सन्मुख होवै, सो हर रास लए, वे मुख पास

आप तरिया कुल उदरे धन जने दी माया सदा सहज सुख मन वसिया सच्चे स्यों लिवलाया ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण भुले हमें मोह वधाया पंडित पढ़ पढ़ मोनी भुले दूजे पाए चित लाया जोगी जंगम सन्यासी भुले विण गुर तत न पाया मनमुख दुखिए सदा भ्रम भुले तिन्नी बिरथा जन्म गवाया नानक नाम रते सही जन समधे जे आपे बख्श मलाया महला तीजा नानक सो सलाही है जिस वस सब किश होए।

जे हुए कहना किशु ना जाए। नानक तिनका आख्या आप सुने, जे लयन पन्ने पाए महला तीजा। काल मार मनसा मन है समाणी, अंतर निर्मल नाव। अन दिन जागे कदे ना सोवे, सहजे अमृत पियाओ। मीठा बोले अमृत बाणी, अन दिन हर गुण गाओ। निज कर वासा सदा सुंदे, नानक तिन मिलिया सुख पाओ। पौड़ी हर तन रतन जवेहरी, सो गुर हर धन हर पासों देवाया। जे किसै किहो दिस आवै, तां कोई किहो मंग लए। अकै कोई किहो देवाए, इहो हर धन जोर कीतै किसै नाल ना जाए बंडाया। जिसनो सतगुर नाल हर शरदा लाए, तिस हर धन की वंड हाथ आवै। जिसनो करतै तुर लिख पाया, इस हर धन का कोई शरीक नाही। किसै कै खत नाही, किसै कै सीव बन्ने रोल नाही। जे को हर धन की बखीली करे, तिसका मुंह

आए ना ही मारी ना मरे ना ही हट बकाए गुर कै शब्द पर जाली है तां एह विचों जाए तन मन होवे उजला नाम वसे मन आए नानक माया का मारन शब्द है गुरमुख पाया जाई पौड़ी सतगुर की वड़ियाई सतगुर दित्ती तुरों हो।

सबना का अभिमान जिथे को वेखे तिथे मेरा सतगुरु हर बख्शियोस सब जहान जे सतगुरु नो मिल मन्ने सो हलत पलत सिजे जे विमुख होवे सो फिरे भ्रिष्ट थान जन नानक कै वल हुआ मेरा स्वामी हर सज्जन पुरख सुजान पौंदी भित देख कै सब आए पए सतगुर की पैरी नाहे उन सबना

नारायण का अन्न, पांच चोर तिना घर मोहन, हम मैं अंदर सन्न, साकत मुठे दुर्मती हर रस ना जानन, जिन्नी अमृत भरम लुटाया देख सियो रचह रचन, दुष्टा से ती पिरहड़ी जान सियो वाद करन, नानक साकत नरक मह जम बदे दुख सहन, पै किरत कमाम दे जिव राख है तिवै रहन, महला तीजा जिन्नी सतगुर सेविया ताणन ताने तिस, सास ग्रास सदा मन वसै जम जोहे न सकै तिस, हिरदय हर हर नाम रस कबला सेवक तिस, हर दासां का दास हुए परम पदार्थ तिस, नानक मन तन जिस प्रभ वसै हम सद कुरबान है तिस, जिनको पूर्व लिखिया रास संत जना सियो तिस, पौड़ी जो बोले पूरा सतगुरु सो परमेश्वर सुनिया, सोई वर्तिया जगत मह कट कट मुख भणिया, बहुत वड्याईया साहिब है नह जाही गणिया, सच सहज आनंद सतगुरु पास सच्ची गुरमणिया, नानक संत सवारे पार ब्रह्म सच्चे ज्यों बनिया।

मनमुख जन्म गवाया झूठै लालच पूर नानक बख्श मलायन सच्चै शब्द हदूर महला तीजा।

आनंद वडभागी हर पाया पूर्ण परमानंद जन नानक नाम सलाहया बहुड़ ना मन तन भंग पौड़ी कोई निंदक होवे सतगुरु का फिर शरण गुर आवे पिछले गुनाह सतगुरु बख्श लई।

जो हर पाए तिनकी कथा नरारी रे, आवह ना जाहे ना कबहू मरते, पार ब्रह्म संगारी रे, पुत्र

कियो बौरा, सतगुर जार गयो भ्रम मोरा। मैं बिगड़े अपनी मत खोई, मेरे परम भूलो मत कोई। सो बौरा जो आ

जाई, अनक जतन कर राखी है, फिर लपटाई। जरा जीवन जो बन गया, किस किया ना नीका, एहो जियरा निर्मूल को कौडी लग मीका। कहो कबीर मेरे मां।

राम दयो संत प्रहलाद की पैज जिन राखी हरनाखस नख बिदरियो घर के देव पितर की छोड़ी गुर को शब्द लयो।

बिलावल बाणी रविदास भगत के एक ओंकार सतगुर प्रसाद दारद देख सबको हसे ऐसी दशा हमारी अष्ट दशा सिद्ध कर तले सब कृपा तुम्हारी तू जानत मैं किस नहीं।

ऐसा तुही क्या उपमा दीजै बलावल जेहे कुल साद बैसनो होए बर्ण अबर्ण रंक नहीं ईसर बिमल बास जानिए जग सोए रहाव ब्राह्मण बैस सूद अर क्षत्री डोम चंडार मलेश मन सोए हुए पुनीत भगवंत भजन ते आप तार तारे कुल दोए धन सो गाओ धन सो ठाओ धन पुनीत कतंब सब लोए जिन पिया सार रस तजे आन रस होए रस मगन डारे बिख खोए पंडित सूर सतर पत राजा भगत बराबर और ना कोए जैसे परैन पात रह।

नृप कन्या के कारण एक भया भेख धारी कामार्थी स्वार्थी वाकी पैज सवारी तब गुण कहां जगत गुरा जो कर्म ना नासै सिंह सरन कत जाइए जो जम्बुक ग्रासै रहाऊ एक बूंद जल कारणी चात्रिक दुख पावे।

केश किसी कै हाथ नाही मेरे स्वामी, ऐसी मेरे सतगुर बूझ बुझाई। जन नानक की आस तू जान है, हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई। गोंड महला चौथा। ऐसा हर सेवी है नित त्याई है, जो खिन मैं किलविक सब करे बनासा। जे हर त्याग अवर की आस कीजै, तां हर निफल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेवे हो सुख दाता स्वामी, जिस सेवे है सब भुख लहासा। मेरे मन हर ऊपर कीजै परवासा, जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी।

अपनी बिरथा बहु बहुत कढासा, अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पह, जो तुमरे दुख तत्काल कटासा, सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पह कही है, अवरा पह कह मन लाज मरासा, जो संसार के कटम मित्र भाई दी सह मन मेरे, ते सब अपने स्वाई मलासा, जित दिन उनका सुहाओ होए ना आवै, तित दिन नेड़े को ना टुकासा, मन मेरे अपना हर सेव दिन राती, जो तुद उपकरे दुख सखासा, इसका प्रवासा क्यों कीजै मन मेरे, जो अंति अवसर रख ना सकासा, हर जप मंत गुर उपदेश ले जाप हो, तिन अंत छडाए जिन हर प्रीत चितासा, जन नानक अन दिन नाम जप हो हर संत हो, इहो छूटण का साचा परवासा, गोंड महला चौथा, हर सिमरत सदा हुए आनंद, सुख अंतर शांत शीतल मन अपना, जैसे सकत सूर बहु जलता, गुर सस देखे लह जाए सब तपना, मेरे मन अन दिन त्याए नाम हर जपना, जहां कहां तुझ राखै सब ठाई, सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना, रहाउ जा मह सब निदान, सो हर जप मन मेरे, गुरमुख खोज लहो हर रत्ना, जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी, किनके चरण मलहो हर दसना, शब्द पिशान राम रस पाव हो, ओहो उत्तम संत भयो बड़ बड़ना, किस जन की वड़ियाई हर आप बधाई, ओहो कटै ना किसे की कटाई, एक तिल तिल तिल ना, जिस ते सुख पावह मन मेरे, सो सदा त्याए नित कर जुरना, जन नानक कहो हर दान एक दीजै, नित बसह हृदय हरी मोहे चरना, गोंड महला चौथा, जितने शाह पातशाह उमराव सिकदार चौधरी, सब मिथ्या झूठ।

जो हर जन नीच जात सेवकान गोंड महला चौथा हर अंतर जामी सब तह वरत जिहा हर कराए तिहा को करइए सो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे जो तुदनो सब दू रख लइए मेरे मन हर जप हर नित पड़इए हर बिन को मार जवाल ना साके ता मेरे मन कायत कड़इए रहाउ हर परपंच किया सब करता विच आपे अपनी जोत तरइए हर एक को बोले हर एक बुलावे गुर पूरे हर एक दिखइए हर अंतर नाले बाहर नाले कहो तिस पासो मन क्या चोरइए निह कपट सेवा कीजे हर केरी ता मेरे मन सर्ब सुख पइए जिस दे वस सब किश सो सब दू वड्डा सो मेरे मन सदा धिआइए जन नानक सो हर नाल है तेरे हर सदा धिआए तू तुद ले छडइए गोंड महला चौथा।

ताबीर। मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के, ले सतगुर की मत तीर। जन नानक की हर आस पुजावहो, हर दर्शन शांत शरीर। शका एक राग गोंड महला पंजवा, चौपदे कर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सब करता सब भुगता रहाओ। सुनतो करता पेखत करता, अदृष्टो करता दृष्टो करता। ओपत करता परलो करता, व्यापत करता लिपतो करता। भक्तो करता बूजत करता, आवत करता जात पी करता। निर्गुण करता सरगुण करता, गुरु प्रसाद नानक समदृष्टा। गोंड महला पंजवा, फाक्यो मीन कपक की न्याई। तू उर्ज रहो संपाए ले, पग धार है सास लेख लै। तो उदर है हर गुण गाए ले, मन समझ छोड़ आवाए ले। अपने रह

ज्यो पंखी एकत्र हुए फिर बिछरे, फिर संगत हर हर त्याए ले। जैसे मीन रसन साध बिनसेउ, ओह मूठो मूड लभाए ले। तू हुआ पंच वास वैरी कै, छूट है पर सरनाए ले। ओह कृपाल दीन दुख भंजन, सब तुमरे जी जनताए ले। पाव दान सदा दर्श पेखा, मिल नानक दास दसाए ले। राग गोंड महला पंजवा, चौपदे हर दूजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जी प्राण किए जिन साज। माटी मह जोत रखी निवाज, बर्तन को सब किश भोजन पुगाए। सो प्रभ तज मूड़े कत जाए, पार ब्रह्म की लागो सेव। गुरते सुजै निरंजन देव, रहाओ जिन किए रंग अनक प्रकार। उपत पर लो निमख मजार, जा की गत मित कही ना जाए। सो प्रभ मन मेरे सदा त्याए, आए न जावे निश्चल कनी। बेअंत गुना ताके केतक गनी, लाल नाम जाके परे पंडार। सगल कटां देवे आधार, सत पुरख जाको है नाओ। मिटे कोट अग निमक जस गाओ, बाल सखाई भगतन को मीत। प्राण आधार नानक हित चीत, गोंड महला पंजवा।

सेवक की पूरन का हाल, गुर के सेवक को दुख ना व्यापे, गुर का सेवक दह दिस जापे, गुर की महिमा कथन ना जाए, पार ब्रह्म गुर रहे आसमाय। कहो नानक जाके पूरे पाग, गुर चरणीता का मन लाग, गोंड महला पंजवा, गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद, गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत, गुर मेरा देव अलख अपेव, सर्ब पूज चरण गुर सेव, गुर बिन अवर नाही मैं थाओ, अन दिन जपो गुरु गुर नाओ रहाओ, गुर मेरा ज्ञान गुर हृदय ध्यान, गुर गोपाल पुरख भगवान, गुर की शरण रहो कर जोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर बोहित तारे भव पार, गुर सेवा जमते छुटकार, अंधकार में है गुर मंत्र उजारा, गुर कै संग सगल निस्तारा, गुर पूरा पाई है बड़ भागी,

जप नानक दास गोंड महला पंजवां उनको खसम कीनी ठाक हारी दास संग ते मार बदारी गोविंद भगत का महल ना पाया राम जना मिल मंगल गाया सगल सृष्ट के पंच सिकदार राम भगत के पानी हार रहाओ जगत पास्ते लेते दान गोविंद भगत को करह सलाम लूट ले साकत पत खो है सात जना पग मल मल धो है पंच पूत जने एक माए उत्पुज खेल कर जगत व्याय तीन गुणा कै संग रच रसी इनको छोड़ ऊपर जन बसे कर कृपा जन लिए छाए जिसके सेत न रखे हटाए कहो नानक भगत प्रभ सार बिन भगती सब हुए खुआर गोंड महला पंजवां कल कलेश मिटे हर नाई दुख बिन से सुख की नो ठाओ जप जप अमृत नाम अगाई संत प्रसाद सगल फल पाई राम जपत जन पार परी जन्म जन्म के पाप हरी रहाओ गुर के चरण हृदय उर तारी अग्न सागर ते उतरे पारी जन्म मरण सब मिटी उपाद प्रभ स्यों लागी सहज समाद थान थनंतरे को स्वामी सगल कटा का अंतर जामी।

पातार पंच दूत भागे बिकराल जुए जन्म ना कबहू हार नानक का अंग किया करतार गोंड महला पंजवा कर कृपा सुख आनंद करे बालक राख लिए गुरुदेव प्रभ कृपाल दयाल गोबिंद जी जंत सगले बख्शिंद तेरी शरण प्रभ दीन दयाल पार ब्रह्म जप सदा निहाल रहाओ प्रभ दयाल दूसर कोई नाही घट घट अंतर सर्ब समाही अपने दास का हलत पलत सुवारे पतत पावन प्रभ बिरद तुम्हारे औखद कोट सिमर गोविंद तंत मंत भजिए भगवंत रोग सोग मिटे प्रभ त्याए मन बाशत पूरन फल पाए कर्म कारण समरथ दयार सर्व निदान महा विचार नानक बख्श लिए प्रभ आप सदा सदा एको हर जाप गोंड महला पंजवा हर हर नाम जपो मेरे मीत निर्मल होए तुम्हारा चीत मन तन की सब मिटे बलाई दुख अंधेरा सगला जाए हर गुण गावत तरिये संसार वडभागी पाइये पुरख अपार रहाओ जो जन करे कीर्तन गोपाल तिसको पोहे ना सके जमकाल जग मह आया सो परवान गुरमुख अपना खसम पछान हर गुण गावे संत प्रसाद काम क्रोध मिटह उन्माद सदा हजूर जान भगवंत पूरे गुर का पूर्ण मंत हर तन खाट किए पंडार मिल सतगुर सब काज सुवार हर के नाम रंग संग जागा हर चरणी नानक मन लागा गोंड महला पंजवा पव सागर बोहित हर चरण सिमरत नाम नाही फिर मरन हर गुण रमत नाही जम पंथ महाबीचार पंच दूत मंथ तो सरनाई पूर्ण नाथ जंत अपने को दीजह हाथ रहाओ सिमरत शास्त्र वेद पुराण पार ब्रह्म का करह वख्यान जोगी जति वैष्णो रामदास मित नाही ब्रह्म अबनास कर्ण पलाहा करह शिव देव तिल नहीं बूझ है अलख अपेव प्रेम भगत जिसे आपे।

गुण महला पंजवां संत का लिया तर्त बदारो संत का निंदक आकाश ते टारो संत को राखो अपने जी नाल संत उदारो तत खिण ताल सोई संत जे पावे राम संत गोविंद कै कै काम रहाओ संत कै ऊपर दे प्रभात संत कै संग बसै दिन रात सास सास संत है प्रतपाल संत का दुखी राज ते टाल संत की निंदा करो ना कोए जो निंदा तिसका पतन होए जिस कौ राख सिर जनहार चख मारो सगल संसार प्रभ अपने का पया बसास जियो पिंड सब तिसकी रास नानक कौ उपजी प्रतीत मनमुख हार गुरमुख सद जीत गुण महला पंजवां नाम निरंजन नीर नारायण रसना सिमरत पाप बलायण रहाओ नारायण सब माहि निवास नारायण कट कट परगास नारायण कहते नरक ना जाहे नारायण सेव सगल फल पाहे नारायण मन माहि आधार नारायण बोहित संसार नारायण कहत जम भाग पलायन नारायण दंत पानी दायन नारायण सद सद बख्शिंद नारायण की

नारायण साध संग नारायण बारंबार नारायण गायन वस्त अगोचर गुर मिल लही नारायण ओट नानक दास गई गोंड महला पंजवा जां को राखे रखन हार तिसका अंग करे निरंकार रहाउ मात गर्भ में अग्न ना जो है काम क्रोध लोभ मोह ना पो है साध संग जप

जाए, जो जो गर्व करे सो जाए, गरीब दास की प्रभु शरणाए, जो जो शरण पया हर राय, सो दास रखिया अपने कंठ लाई, जे को बहुत करे अहंकार, ओह खिन महरो ताखा कूनाल, है पी साचा होवन हार, सदा सदा जाई बलिहार, अपने दास रखे कृपा तार, नानक के प्रभ प्राण आधार, गोंड महला पंजवां।

जागै चरण कमल जन का आधार गुण गोविंद रौ सच व्यापार दास जना की मनसा पूर नानक सुख पावे जन तूर राग गोंड अष्टपदियां।

उमराओ पतियाई, दुष्ट अहंकारी मार पचाई, निंदक कै मुख कीनो रोग, जय जय कार करे सब लोग, संतन कै मन महा आनंद, संत जप है गुरुदेव भगवंत, संगत के मुख उजल पए, सगल थान निंदक के गए, सास सास जन सदा सलाहे, पार ब्रह्म गुर बे परवाही, सगल पै मिटे जाकी सरन, निंदक मार पाए सब धरन।

निंदक अहंकारी जान पाल मान है निंदक वेकारी। गुर कै सिख सत गुरु ते आया जन उबरे निंदक नरक पाया। सुन साजन मेरे मीत प्यारे सत बचन वरत है हर द्वारी। जैसा करे सो तैसा पाई अबमानी की जाड़ सर पर जाए। ने धरिया सत गुर धर तेरी कर कृपा रख हो जन केरी। कहो नानक तिस गुर बलिहारी जा कै सिमरन पै जसवारी। राग गोंड बाणी भगतां की कबीर जी घर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद संत मिलै किस सुनिए कहिए। मिलै असंत मस्त कर रही है बाबा बोलना क्या कहिए। जैसे राम नाम रव रही है रहाओ संतन स्यों बोले उपकारी। मूर्ख स्यों बोले झक मारी बोलत बोलत बढ़ बेकारा। बिन बोले क्या करह बिचारा कहो कबीर शूशा घट बोले। भरिया हुए सो कबो ना डोले गोंड नरु मरे नर काम न आवे। पशु मरे दस काज सुआरे अपने कर्म की गत मैं क्या जानो। मैं क्या जानो बाबा रे रहाओ। हाड़ जले जैसे लकड़ी का तूला केस जले जैसे घास का पूला। कहो कबीर तब ही नर जागे जम का डंड मूंड में लागे। गोंड आकाश गगन पाताल गगन है चहो दिस गगन रहाए ले। आनंद मूल सदा पुरखोत्तम कट बिन सह गगन ना जाए ले। मोहे बैराग भयो एहो जियो आए कहां गयो रहाओ। पंच तत् मिल काया कीनी तत् कहां ते कीन रे। कर्म बद तुम जियो कहत हो कर्म है किन जियो दीन रे। हर मह तन है तन मह हर है सर्व निरंतर सोए रे। कह कबीर राम नाम ना छोड़ो सहजे होए सो होए रे। राग गोंड बाणी कबीर जियो की घर दूजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पूजा बांध पिला कर डार्यो। हस्ती क्रोप मूंड मह मार्यो हस्त भाग कै चीसा मारे। या मूर्त कै हौ बलिहारे आहे मेरे ठाकुर तुमरा जोर। काजी बकबो हस्ती तोर रहाओ। रे महावत तुझ डारो काट इसे तराव हो काल हो साट। हस्त न तोरे तरै ध्यान वाके हृदय बसे भगवान। क्या अपराध संत है कीना बांध पोट कुंचर कौ दीना। कुंचर पोट लै लै नमस्कार बूझी नहीं काजी अंधियार। तीन बार पतिया भर लीना मन कठोर अजहू ना पतीना। कह कबीर हमरा गोविंद चौथे पद में है जन की जिंद। गोंड ना एहु मानस ना एहु देव ना एहु जति कहा वैसे ओ। ना एहु जोगी ना अवतूता ना इस माए ना काहू पूता। या मंदर में कौन बसाई ता का अंत न को उपाई रहाओ। ना एहु गिरही ना ओदासी ना एहु राज ना भीख मगासी। ना इस पिंड न रख तू राती ना एहु ब्राह्मण ना एहु खाती। ना एहु तपा कहावै सेख ना एहु जीवै ना मरता देख। इस मरते को जे को रोवै जो रोवै सोई पत खोवै। गुर प्रसाद में डगरो पाया जीवन मरन दो मिटवाया। कहो कबीर एहो राम की अंश जस कागद पर मिटै ना मंस। गोंड टूटे तागे न खुट्टी पान द्वार ऊपर चिलका वह कान। कूच बिचारे पुए फाल
या मुंडिया सिर चढ़बो काल, एहो मुंडिया सगलो द्रब खोई, आवत जात नाक सर होई, रहाओ तुरी नार की छोड़ी बाता, राम नाम वाका मन राता, लड़की लड़कन खैबो नाही, मुंडिया अन दिन तापे जाहि, एक दोए मंदर एक दोए बाट, हमको साथर उनको खाट, मूंड पलोस कमर बद पोथी, हमको चाबन उनको रोटी, मुंडिया मुंडिया हुए एक, ए मुंडिया बूडत की टेक, सुन अंधली लोई बे पीर, इन मुंडियन भज सरन कबीर, गोंड खसम मरे तो नार ना रोवे, उस रखवारा औरो होवे, रखवारी का हुए बनास, आगे नरक इहा भोग बलास, एक सुहागन जगत प्यारी, सगले जी जंत की नारी, रहाओ सुहागन गल सो है हार, संत को बिख बिगसे संसार, कर शिंगार बह पखियारी, संत की ठिठकी फिरे बेचारी, संत भाग ओ पाछे परे, गुर प्रसादी मारू डरे, साकत की ओह पिंड परायण, हमको दृष्ट परे त्रिख डायण, हम तिस काबो जानिया पेव, जब हुए कृपाल मिले गुरुदेव, कहो कबीर अब बाहर परी, संसार के अंचल लरी, गोंड ग्रह सुबा जा करे नाही, आवत पहिया खुदे जाए, वाके अंतर नहीं संतोख, बिन सुहागन लागे दोख, धन सुहागन महापवीत, तपे तपीसर डोले चीत, रहाओ सुहागन किरपन की पूती, सेवक ताज जगत स्यों सूती, साधु कै ठाडी दरबार, सरन तेरी मोको निस्तार, सुहागन है अत सुंदरी, पग नेवर सनक सनहरी, जौ लग प्राण तऊ लग संगे, नाहे ता चली बेग उठ नंगे, सुहागन भवन त्रै लिया, दस अठ प्राण तीर्थ रस किया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बेदे, बड़े भूपत राजे है शेदे, सुहागन उरवार ना पार, पांच नारद के संग बिदवार, पांच नारद के मिटवे फूटे, कहो कबीर गुर कृपा छूटे, गोंड जैसे मंदर मह बलहर ना ठहरे, नाम बिना कैसे पार उतरे, कुंभ बिना जल ना टीकावे, साधु बिन ऐसे अबगत जावे, जारो तिसे जो राम ना चेते, तन मन रमत रह मह खेते, रहाउ जैसे हलहर बिना जिमी नहीं बोइए, सूत बिना कैसे मणि परोइए, कुंडी बिन क्या गंथ चढ़ाइए, साधु बिन तैसे अबगत जाइए, जैसे मात पिता बिन बाल न होई, बिंब बिना कैसे कपरे धोई, कोर बिना कैसे असवार, साधु बिन नाही दरबार, जैसे बाजे बिन नहीं लीजे फेरी, खसम दुहागन ताज ओहेरी, कह कबीर एक कर करना, गुरमुख होए बहुर नहीं मरना, गोंड कूटन सोए जो मन को कूटे, मन कूटे तो जमते छूटे, कुट कुट मन कसवटी लावे, सो कूटन मुक्त बहु पावे, कूटन किसे कहो संसार, सगल बोलन के माहे विचार, रहाउ नाचन सोए जो मन स्यो नाचे, झूठ ना पतिए परचे साचे, इस मन आगे पूरे ताल, इस नाचन के मन रखवाल, बजारी सो जो बजारे सोदे, पांच पलीते है कौ पर बोधे, नौ नायक की भगत पछाने, सो बाजारी हम गुरमाने, तस्कर सोए जे तात न करे, इंद्री कै जतन नाम उच्चरे, कहो कबीर हम ऐसे लखन, धन गुरुदेव अत रूप विचखन, गोंड धन गोपाल धन गुरुदेव, धन अनाद भूखे कवल टहकेव, धन ओए संत जिन ऐसी जानी, तिनको मिलबो सारंग पानी,
आद पुरख ते होए अनाद जपिए नाम अन्न के साद रहाउ जपिए नाम जपिए अन्न अम्बे के संग निकावन अन्न बाहर जो नर होवे तीन पवन में अपनी खोह छोड़ह अन्न करह पाखंड ना सुहागन ना ओहे रंड जग में बक्ते दूधा तारी गुप्ती खाव है बटका सारी अन्न बिना ना हुए सुकाल तजय अन्न ना मिले गोपाल कहो कबीर हम ऐसे जानिया तन अनाद ठाकुर मन मानिया राग गोंड बाणी नाम देव जी की घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद असमेद जगने तुला पुरख दाने पराग इशनाने तौ ना पुजह हर कीर्त नामा अपने राम है भजरे मन आलसिया रहाउ गया पिंड भरता बनारस अस बसता मुख बेद चतर पढ़ता सगल कर्म अशता गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता खट कर्म सहत रहता सेवा सकत संबादं मन छोड़ छोड़ सगल भेदं सिमर सिमर गोबिंदं पाज नामा तरस पाव सिंदं गोंड नाद भ्रमे जैसे मृगाए प्राण तजे वाको ध्यान ना जाए ऐसे रामा ऐसे हेरो राम छोड़ चित अंत ना फेरो रहाउ ज्यो मीना हिरै पशुआरा सोना गढ़ते हिरै सुनारा ज्यो बिखी हिरै परनारी कौडा डारते हिरै जुआरी

तरपे न जानो बाप बीतला बाहां दे रहाउ नर ते सुर होए जात निमख मैं सतगुर बुद्ध सिखलाई नर ते उपज सुर्ग को जीत्यो सो अवखद मैं पाई जहां जहां तू नारद टेके नैक टकावो मोहे तेरे नाम अविलंब बहुत जाने उदरे नामे की निज मत ए गोंड मोहे लागती ताला बेली बछरे बिन गाय अकेली पानिया बिन मीन तलफ है ऐसे राम नामा बिन बापरो नामा रहाउ जैसे गाय का

करी, हरे नमस्ते हरे नमः, हर हर करत नहीं दुख जमह, रहाउ हर हर नाक्ष हरे प्राण, अजय मलकियो बैकुंठ थान, सुआ पढ़ावत गनका तरी, सो हर नैनो की पूतरी, हर हर करत पूतना तरी, बाल घातनी कपटह भरी, सिमरन द्रोपद सुत उदरी, गौतम सती सिला निस्तरी, केसी कंस मथन जिन किया, जी दान काली कौ दिया, प्रणवै नाम ऐसो हरी, जास जपत पै अपदा टरी, गोंड पैरों पूत सीतला तावे, खर बाहन उहिशार उड़ावे, हौ तौ एक रमैया लै हो, आन देव बदलावन दै हो, रहाउ शिव शिव करते जो नर त्यावे, बर्द चढ़े डौरू डमकावे, महामाई की पूजा करे, नर सह नार हुए अवतरे, तू कहियत ही आद पुहानी, मुक्त की बरिया कहाँ छपानी।

पीतल देखिया मूर्ख को समझाऊं दे रहाओ पांडे तुमरी गायत्री लोदे का खेत खाती थी लेकर ठेंगा टगरी तोरी लांगत लांगत जाती थी पांडे तुमरा महादेव तौले बल्द चढ़िया आवत देखिया था मोदी के करखाना पाका वाका लड़का मारिया था पांडे तुमरा रामचंद सो पी आवत देखिया था रावण सेती सरबर होई घर की जोए गवाई थी।

निंदक का प्रगट पाहारा, निंदक सोद साध बिचारिया, कहुरव दास पापी नरक सधारिया जोड़। राम कली महला पहला, कर पहला चौपदे, एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निरपो निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद। कोई पढ़ता सहसा किरता, कोई पढ़े पुराना, कोई नाम जपे जपमाली, लागे तिसे त्याना, कब ही किशु ना जाना, तेरा एको नाम पछाना, ना जाना हरे मेरी कवन गति, हम मूर्ख अज्ञान सरन प्रभ तेरी, कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहा।

रास बलाए निहचो नानक करते पाए प्रणवत नानक अगम सुनाए गुर चेले की संद मलाए दीखिया दारू भोजन खाए छे दर्शन की सोजी पाए राम कली महला पहला हम डोलत बेड़ी पाप भरी है पवन लगे मत जाई सनमुख सिद्ध भेटन को आए निश्चो देह वड्याई गुर तार तारन हारिया देह भगत पूर्ण अवनासी हौ तुझको बलिहारिया रहाउ सिद्ध साधक जोगी अर जंगम एक सिद्ध जिन्नी त्याया परसत पैर सिजत ते स्वामी अखर जिनको आया जप तप संयम कर्म ना जाना नाम जपी प्रभ तेरा गुर परमेश्वर नानक भेट्यो साचै शब्द नवेरा राम कली महला पहला सुरती सुरतर लाइय एत तन कर तुलहा लंघ जेत अंतर पाहे तिसे तू रख अहनस दीवा बले अथक ऐसा दीवा नीर तराए जित दीवे सब सोजी पाए रहाओ हसी मिट्टी सोजी होए ताका किया माने सोए करनी ते कर चको ढाल ऐथे उथे निभि नाल आपे नदर करे जा सोए गुरमुख विरला बूझै कोए तित घट दीवा निश्चल होए पानी मरे ना बुझाया जाए ऐसा दीवा नीर तराए डोले वाओ ना वड्डा होए जापै ज्यो संघासन लोए खतरी ब्राह्मण सूद के वैस निरत ना पाइया गणी संस ऐसा दीवा बाले कोए नानक सो पारंगत होए राम कली महला पहला तुदनो निमन मनन तेरा नाउ साच भेट बैसन कौ थाउ सत संतोख होवे अरदास तां सुन सद बहाले पास नानक बिरथा कोए ना होए ऐसी दरगाह साचा सोए रहाउ प्राप्त पोता कर्म पसाउ तू देव है मंगत जन चाउ भांडे भाउ पवे ते त्याए तुरते छोड़ी कीमत पाए जिन किश किया सो किश करे अपनी कीमत आपे तरे गुरमुख प्रगट हुआ हर राय ना को आवे ना को जाए लोक तकार कह मंगत जन मांगत मान ना पाया सहकिया गल्ला दरकिया बाता तैं तां कहन कहाया राम कली महला पहला सागर मह बूंद बूंद मह सागर कमन बुझै बिद जाने उत कुछ चलत आप कर कीने आपे तत पछाने ऐसा ज्ञान बिचारे कोई तिस्ते मुक्त परम गत होई रहाउ दिन मह रैन रैन मह दिनियर उसन सीत बिद सोई ताकी गत मित अवर न जाने गुर बिन समझ न होई पुरख मह नार नार मह पुरखा बूझो हो ब्रह्म ज्ञानी तुन मह ध्यान ध्यान मह जानिया गुरमुख अकथ कहानी मन मह जोत जोत मह मनुआ पंच मिले गुर पाई नानक तिनकै सद बलिहारी जिन एक शब्द लिवलाई राम कली महला पहला जा हर प्रभ किरपा तारी ता हो मैं विचो मारी सो सेवक राम प्यारी जो गुर शब्दी बिचारी सो हर जन हर प्रभ पावे अहनस भगत करे दिन राती लाज छोड़ हर के गुण गावे रहाओ तुन वाजे अनहद घोरा मन मानिया हर रस मोरा गुर पूरे सच समाया गुर आद पुरख हर पाया सब नाद बेद गुरबाणी मन राता सारंग पानी तह तीर्थ वर्त तप सारी गुर मिलिया हर निस्तारी जह आप गया पौ भागा गुर चरणी सेवक लागा
गुर सत गुर परम चुकाया, कहो नानक शब्द मलाया। राम कली महला पहला, साधन भोजन मांगत भागे, खुदया दुष्ट जलै दुख आगे। गुरमत नहीं लीनी दुरमत पत खोई, गुरमत भगत पावे जन कोई। जोगी जुगत सहज घर वासै, एक दृष्ट एको कर देखिया। भीखिया पाए शब्द त्रिपतासै रहाउ, पंच बैल गडिया देह धारी। राम कला निबह पत सारी, धर टूटी गाडो सिर भार। लकड़ी बिखर जरी मंज भार, गुर का शब्द विचार जोगी। दुख सुख सम करना सोग बियोगी, भुगत नाम गुर शब्द विचारी। अस्थिर कंध जपै निरंकारी, सहज जगोटा बंधन ते छूटा। काम क्रोध गुर शब्दी लूटा, मन मह मुंदरा हर गुर सरना। नानक राम भगत जन तरना, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राम कली महला तीजा घर पहला, सत जुग सच कह सब कोई। घर घर भगत गुरमुख होई, सत जुग धर्म पैर है चार। गुरमुख बूझै को बीचार, जुग चारे नाम वडियाई होई। जे नाम लागै सो मुक्त होवै, गुर बिन नाम ना पावै कोई। रहाउ त्रेतै एक कल कीनी दूर, पाखंड वर्त्या हर जानन दूर। गुरमुख

दोई द्वापर धर्म दोए पैर रखाई गुरमुख होवै ता नाम दृढ़ाई कलयुग धर्म कला एक रहाई एक पैर चले माया मोह वधाई माया मोह अत गुबार सतगुर भेटै नाम उधार सब जुग मह साचा एको सोई सब मह सच दूजा नहीं कोई साची कीरत सच सुख होई गुरमुख नाम बखाने कोई सब जुग मह नाम उत्तम होई गुरमुख विरला बूझै कोई हर नाम त्याए भगत जन सोई नानक जुग जुग नाम वड्याई होई राम कली महला चौथा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जे वड पाग हुवै वड भागी ता हर हर नाम त्यावै नाम जपत नामे सुख पावै हर नामे नाम समावै गुरमुख भगत करहु सद प्राणी हृदय प्रगास हुवै लिव लागै गुरमत हर हर नाम समाणी रहाओ हीरा रतन जवे हर माणक बहु सागर भरपूर किया जिस वड भाग हुए वड मस्तक तिन गुरमत काड काड लिया रतन जवेहर लाल हर नामा गुर काड तली दिखलाया भाग हीन मनमुख नहीं लिया त्रिन ओले लाख छपाया मस्तक भाग हुए तुर लिखिया ता सतगुर सेवा लाए नानक रतन जवेहर पावे तन तन गुरमत हर पाए राम कली महला चौथा राम जना मिल भया आनंदा हर नीकी कथा सुनाई दुर्मत मैल गई सब निकल सत संगत मिल बुद्ध पाए राम जन गुरमत राम बुलाए जो जो सुने कह सो मुक्ता राम जपत सोहाए रहाउ जे वड पाग हो वह मुख मस्तक हर राम जना पेटाय दर्शन संत देहो कर कृपा सब दालत दुख लह जाय हर के लोग राम जन नीके भागहीन ना सुखाए ज्यों ज्यों राम कह जन ऊचे नर निंदक डंस लगाए त्रिग त्रिग नर निंदक जिन जन नहीं पाए हर के सखा सखाए से हर के चोर वे मुख मुख काले जिन गुर की पैज ना पाए दया दया कर रख हो हर जियो हम दीन तेरी सरनाए हम बारक तुम पिता प्रभ मेरे जन नानक बख्श मलाए राम कली महला चौथा हर के सखा साध जन नीके तिनी ऊपर हाथ बतावै गुरमुख साध से प्रभ पाए कर कृपा आप मलावै राम मोको हर जन मेल मन पावै अमयो अमयो हर रस है मीठा मिल संत जना मुख पावै रहाउ हर के लोग राम जन उत्तम मिल उत्तम पदवी पावै हम होवत चेरी दास दासन की मेरा ठाकुर खुशी करावे सेवक जन सेव है सेव वड पा

जीवन दाते हर संत पगी ले पावे हों काटो काट बाद सिर राखो जित नानक संत चढ़ आवे राम कली महला चौथा जे वड पाग होवे वड मेरे जन मिलदियां ढिल ना लाईए हर जन अमृत कुंट सरनी के वड भागी तित नवाईए राम मोको हर जन कार लाईए हों पानी पखा पीसो संत आगे पग मल मल तूर मुख लाईए रहाओ हर जन वड्डे वड्डे वड ऊचे जो सतगुर मेल मलाई है सतगुर जेवड अवर ना कोई मिल सतगुर पुरख त्याई है सतगुर सरल परे तिन पाया मेरे ठाकुर लाज रखाई है एक अपने सवाए आए बह गुर आगे जो बगल समाध लगाई है बगला काग नीच की संगत जाए करंग बिखू मुख लाई है नानक मेल मेल प्रभ संगत मिल संगत हंस कराई है राम कली महला चौथा सतगुर दया करहो हर मेलो मेरे प्रीतम प्राण हर राया हम चेरी होए लग है गुर चरनी जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाया राम मैं हर हर नाम मन पाया मैं हर बिन अवर ना कोई बेली मेरा पिता माता हर सिखाया रहाओ मेरे एक खिन प्राण ना रहे बिन प्रीतम बिन देखे मरह मेरी माया तन तन वड भाग गुर सरणी आई हर गुर मिल दर्शन पाया मैं अवर ना कोई सूजे बूजे मन हर जप जपो जो पाया नाम हीन फिर है से न कटे तिन कस कस नक वढाया मोको जग जीवन जवाल लै स्वामी हृदय अंतर नाम वसाया नानक गुरु गुरु है पूरा मिल सतगुर नाम ते आया राम कली महला चौथा सतगुर दाता वड्डा वड पुरख है जित मिले हर उर तारे जी दान गुर पूरै दिया हर अमृत नाम सुमारे राम गुर हर हर नाम कंठ तारी गुरमुख कथा सुनी मन पाई तन तन वड भाग हमारे रहाओ कोट कोट ते तीस त्यावह ताका अंत ना पावह पारी हृदय काम कामनी मांगह हृद मांगह हाथ पसारी हर जासु जप जप वड्डा वडेरा गुरमुख रखो उर धारी जे वड भाग होवह ता जपिया हर पहो जल पार उतारी हर जन निकट निकट हर जन है हर राख है कंठ जन धारी नानक पिता माता है हर प्रभ हम बारक हर प्रित पारी राग राम कली महला पंजवां घर पहला

सुख होई, जो इच्छो हो सोई फल पावहु, फिर दुख न व्यापै कोई रहाउ। काचे भांडे साज नवाजी, अंतर जोत समाई, जैसा लिखत लिखिया धुर करतै, हम तैसी किरत कमाई। मन तन थाप किया सब अपना, एहो आवन जाना, जिन दिया सो चित ना आवै, मोहे अंध लपटाना। जिन किया सोई प्रभ जाने, हर का महल अपारा।

ऊपर आवहु, ऐसी सेव कमावहु, आपस ते ऊपर सब जानहु, तौ दरगाह सुख पावहु। संत हो ऐसी कथो कहानी, सुर पवित्र नर देव पवित्रा, खिन बोल हो गुरमुख बाणी रहाव। परपंच छोड़ सहज कर बैसो, झूठा कहो ना कोई, सतगुर मिलहो नवे निध पावहो, इन बिद तत बिलोई। परम चकावहो गुरमुख लिव लावहो, आत्म चीनो पाई, निकट कर जानहो सदा प्रभ हाजिर,

हे बिद है मन जोगनी मोह सोग रोग लोग ना व्यापै तह हर हर हर रस भोगनी रहाउ सुर्ग पवित्रा मृत पवित्रा पयाल पवित्र अलोगनी आज्ञाकारी सदा सुख पुंचै जत कत पेखो हर गुनी नह सिर शक्ति जल नहीं पवना तह अकार नहीं मेदनी सतगुर जोग का कहां निवासा जह अवगत नाथ अगम तनी तन मन हर का तन सब हर का हर के गुण हो क्या गनी कहो नानक हम तुम गुर खोई है अम्बे अम्ब मलोगनी राम कली महला पंजवां त्रै गुण रहत रह निरारी साधक सिद्ध ना जाने रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण सतगुर कै खजाने अचरज किश कहन ना जाई बस्त अगोचर भाई रहाओ मोल नाही कछ करने जोगा क्या को कह सुनावे कथन कहन को

पूर पंडारा ऐसा रस अमृत मन चाखिया तृप्त रहे आगाई कहो नानक मेरी आसा पूरी सतगुर की सरनाई। राम कली महला पंजवां अंगीकार किया प्रभ अपने बैरी सगले साधे जिन बैरी है इहो जग लूटिया ते बैरी लै बहांदे सतगुर परमेश्वर मेरा अनक राज भोग रस माणी नाउ जपी परवासा तेरा रहाउ चीत न आवस दूजी बाता सिर उपर रखवारा बेपरवाह रहत है स्वामी एक नाम कह आधारा पूर्ण होए मिलियो सुखदाई ऊन न काई बाता तत सार परम पद पाया छोड़ ना कतहू जाता बरना साकों जैसा तू है साचे अलाखे अपारा अतुल अथाह अडोल स्वामी नानक खसम हमारा। राम कली महला पंजवा तू दाना तू अब चल तू ही तू जात मेरी पाती तू अडोल कदे डोलह नाहीं।

तूने अगाजा निर्त करे कर मनुआ नाचे आनी घुंघर साजा राम को नृत्यकारी पेखे पेखन हार दयाला जेता साज सिंगारी रहाउ अखार मंडली तरन सबाई ऊपर गगन चंदोवा पवन विचोला करत अकेला जल के ओपत होआ पांच तत कर पुतरा कीना किरत मलावा होआ चांद सूरज दोए जरे चरागा चौहों कुंट पीतर राखे दस पातों पांच संगीता एक है पीतर साथे पिन पिन हुए भाव दिखावे सबहु नरारी पाखे कर कर निरत हो दिन राती कट कट वाजै तूरा एक नचाव है एक पवाव है एक आई जाए होए तूरा कहो नानक सो बहुर ना नाचै जिस गुर भेटै पूरा राम कली महला पंजवां ओ अंकार एक धुन एक है एक है राग अलापै।

कब ही एक शब्द बंद पाले नार दी नरहर जान हदूरे पूंगर खड़क त्याग विसूरे सहज आनंद दिखावे पावे एहो नित कारी जन्म ना आवे जे को अपने ठाकुर भावे कोट मद एहो कीर्तन गावे साध संगत की

कोई बादशाह पिसत कोई सुरगिंदु, कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। राम कली महला पंजवा, पवन मह पवन समाया, ज्योति मह ज्योत रल जाया, माटी माटी हुई एक, रोवन हारे की कवन टेक, कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिलकर हो बिचारा, एहो तौ चलत भया रहाउ, अगली किश खबर न पाई, रोवन हार पे उठ सदहाई, परम मोह के बांधे बंद, सुपन भया पखलाए अंध, एहो तौ रचन रचिया।

यो जपया नाथ दिन रह नाई, हुण पाया गुरु गोसाई। रहाओ दूजा राम कली महला पंजवां, करन करावन सोई आन ना दिसै कोई। ठाकुर मेरा सुगड़ सुजाना, गुरमुख मिलिया रंग माना, ऐसो रे।

तन मन सी तले अग्न निवारी अनंद रूप प्रगटे संसारी क्या देवो जा सब किश तेरा सद बलिहार जाऊं लख बेरा तन मन जियो पिंड दे साजिया गुर किरपा ते नीच निवाजिया फूल कुवारा महल बुलाया जैसा सा तैसा दिखलाया कहो नानक।

देवा अमृत नाम दियो मुख देव सगली चिंता आप नवारी किस गुर को हौ सद बलिहारी काज हमारे पूरे सतगुर बाजे अनहद तूरे सतगुर रहाओ महिमा जा की गहर गंभीर।

हर हर जाप जपला गुर कृपा ते हृदय वासै पौजल पार परला रहाओ नाम निदान त्याए मन अटल ता छूटह माया के पटल गुर का शब्द अमृत रस पियो ता तेरा होए निर्मल जियो सोदत सोदत सोद बीचारा बिन हर भगत नहीं छुटकारा सो हर भजन साध कै संग मन तन रापै हर कै रंग छोड़ सियाणप बहु चतराई मन बिन हर नावै जाए ना काई दया तारी गोविंद गुसाई।

आया संत प्रसाद कमल बिगसाया, नाम रतन जिन पाया दान, तिस जन होए सगल निदान, संतोख आया।

जिस हृदय वसाई, नानक ते जने उत्तम पाई, राम कली महला पंजवा, गौ कर पकरी ना आई हाथ, प्रीत करी चाली नहीं साथ, कहो नानक जो त्याग दई, तब ओह चरणी आए पई, सुन संतो हो निर्मल विचार, राम नाम बिन गत नहीं काई, गुर पूरा भेटत उदार, रहाओ जब उसको कोई देवे मान, तब आपस ऊपर रखे गमान, जब उसको कोई मन पर हरे, तब ओह सेवक सेवा करे।

सो भूखा रह, इस संग राचे सो कछु न लह, इस त्याग सतसंगत करै, वड भागी नानक ओह तरै। राम कली महला पंजवां, आत्म राम सर्ब मह पेख, पूर्ण पूर रहया प्रभ।

ना किस सेवा ना किस काल, कर कृपा प्रभु कीनी दया, बूढ़त दुख मैं काढ़ लया, सुन सुन उपजियो मन मह चाओ, आठ पहर हर के गुण गाओ, गावत गावत पर

पर पूर्ण परमेश्वर हर ना चेत्यो मन माही रहाओ। अमृत कौरा बिखिया मीठी साकत की बिद नैनो दीठी कूड़।

कबह न उस्तत करे निरपहो निरंकार दातार तिस स्यों प्रीत न करे गवार सब साहा सिर साचा साह वे मोहताज पूरा पातशाह मोह मगन लपटयो भ्रम ग्रह नानक तरिया तेरी मेहर राम कली महला पंजवा रैन दिनस जपो हर नाम आगे दरगाह पावो थाऊ सदा आनंद न होवी सोग कबहू न व्यापै हो मैं रोग खोजो संत हो हर ब्रह्म ज्ञानी बिस्मन बिस्म पये बिस्मादा परम गत पावह हर सिमर प्राणी रहाऊ गण में देखो सगल बीचार नाम बिना को सके न तार सगल अपाव न चालह संग पवजल तरिया प्रभ कै रंग देही तोये न उतरे मैल हम मैं व्यापै दुबदा फैल हर हर औखद।

नानक की प्रभ शरदा पूर राम कली मोहल्ला पंजवा तेरी शरण पूरे गुरुदेव तुद बिन दूजा नाही कोई तू समरथ पूर्ण पार ब्रह्म सो त्याए पूरा जिस कर्म तरन तारन प्रभ तेरो नाओ एका शरण गही मन मेरा

दुख अंधेरा मनते जाए, दुर्मत बिन सह राचे हर नाए, चरण कमल स्यों लागी प्रीत, गुर पूरे की निर्मल रीत, पौ भागा निरपौ मन बसे, अमृत नाम रसना नित जपे, कोट जन्म के काटे पाहे, पाया लाभ सच्चा तन लाहे, टूट ना आवे अखुट भंडार, नानक भगत सो है।

आऊ संकरा नहीं जान पेव खोज तहारे देव देवियां नहीं जान मरम सब ऊपर अलख पार ब्रह्म अपने रंग करता केल आप बिछोड़ आपे मेल एक परमे एक भगती लाए।

नानक कर्म प्राप्त हुए राम कली महला पंजवा दलाब दे सवार जाहि ना दरगाह हार हलत पलत तुद हुए वडियाई अंत की बेला ले छुडाई राम के गुण गाओ हलत पलत होए दोहे सुहेले अचरज पुरख त्याओ रहाओ उठत बैठत हर जाप बिनसै सगल संताप बैरी सब हो वह मीत निर्मल तेरा हो वह चीत सब ते उत्तम एहु कर्म सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर सिमरन तेरा हुए उदार जन्म जन्म का उतरे पार पूरन तेरी होवे आस जम की कटिया तेरी पास गुर का उपदेश सुनीजै।

तिसका सब कोए, तिसह अराध सदा सुख होए। काहे भ्रम भ्रम है बेगानी, नाम बिना किस काम ना आवे। मेरा मेरा कर बहुत पछताने रहाउ, जो जो करे सोई मान ले हो। बिन माने रल हो वह खेह, किसका पाणा।

जिस चेते आए बिन सह दुखा, हलत पलत तेरा उजल मुखा, कौन कौन उधरे गुण गाए, गनन ना जाई कीम ना पाए, बूढ़त लोह साध संग करे, नानक जिसह प्राप्त करे, राम कली महला पंजवां, मन माहे जाप भगवंत, गुरपुरे इहो दीनो मंत, मिटे सगल पै त्रास, पूर्ण होई आस, सफल सेवा गुरदेवा, कीमत किस कहन ना जाई, साचे सच अलग।

ओ नमो भगवंत गुसाई खाल करव रहया सर्ब ठाई रहाउ जगन्नाथ जगजीवन माधो पौ पंजन रिद माहे अरादो।

चित लागा तन तन संयोग सुभागा संत की धूर लागी मेरे माथे किल विख दुख सगले मेरे लाथे साध की सच टहल कमानी तब होए मन शुद्ध परानी जन का सफल दर्श डी।

प्रभ पूरे नानक बख्शिंद राम कले महला पंजवां गऊ को चारे सार दूल कौडी का लख हुआ मूल बकरी को हस्ती प्रतपाले अपना प्रभ नजर निहाले।

बूटा सूके काष्ट हरे चलूल ऊचे थल फूले कमल अनूप अग्न नवारी सत गुरुदेव सेवके अपनी लायो सेव किरत घणा का करे उदार प्रभ मेरा है सदा दयार संत जना का सदा सहाई चरण कमल नानक सरनाई राम कली महला पंजवां पंच सिंह राखे प्रभ मार दस बिगियाड़ी लई निवार तीन अवर्त की चूकी घेर साध संग चूके पै फेर सिमर सिमर जीवा गोविंद कर कृपा राखियो दास अपना सदा सदा साचा बख्शिंद रहाउ दाज गए त्रिण पाप समेर जप जप नाम पूजे प्रभ पैर अंध रूप प्रगट

सिंध समायो कट के माही करनहार को किस अचरज नाही जो छूटो तो जाए पयाल जो काडे हो तो नदर निहाल पाप पुन हमरे बस नाही रसक रसक नानक गुण गाई राम कली महला पंजवां।

चिंत जाल काल चक्र पेल हर चरण कमल सरनाए मना राम नाम जप संग सहाई गुरमुख पावह साच तना रहाऊ ऊणे काज न होवत पूरे काम क्रोध मद सद ही चूरे करे बिकार जियरे कैताई गाफल संग न तसुआ जाई तरत तो हो अनक छल जाने

पार ब्रह्म जब भये दयाल एह मन हुआ सादरवाल हस्त कमल लड़ लीनो लाए नानक साचे

पाक करे, साध संग सो भव जल तरै, अमृत पीवो साध प्यारे, मुख उजल साचै दरबारे, आनंद करहो तज सगल विकार, नानक हर जप उतरोह पार, राम कली महला पंजवां, ईंधन ते बैसंतर भागै, माटी को जल दह दिस त्यागै, ऊपर चरण तले आकाश, घट मह सिंध कियो परगास, ऐसा समरथ हर जियो आप, निमख न बिसरै जी भगतन कै।

गर्भ जोन मह किरत पया पूर्व कमाणे छोडह नाही जमदूत ग्रास्यो महा भया बोले झूठ कमावे अवरा कृष्ण ना बूझे बहुत हया असाध रोग उपजया संत दुखन देह बलासी महा खया जिन्ह नवाजे तिन्ही साजे आपे कीने संत जया नानक दास कंठ लाए राखे कर कृपा पार ब्रह्म मया राम कली महला पंजवा ऐसा पूरा गुरुदेव सहाई जाका सिमरन बिरथा न जाई रहाओ दर्शन पेखत हुए निहाल जाकी धूर काटे जम जाल चरण कमल बसे मेरे मन के कार्ज सवारे सगले तन के जाके मस्तक राखे हाथ प्रभ मेरो अनाथ को नाथ पतत उदाहरण।

बिन से अभमान, एक त्याई है साध कै संग, पाप बनासे नाम कै रंग, गुर परमेश्वर सगल निवास, काट काट रव रहया गुणतास, दर्श दे तारू प्रभ्यास, नित नानक चितवै सच अरदास, राग राम कली महला पंजवां, कर दूजा दुपदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद गावु राम के गुण गीत, नाम जपत परम सुख पाई, आवागौन मिटै मेरे मीत, रहाओ गुण गावत होवत परगास, चरण कमल मह होए निवास, संत संगत मह होए उदार, नानक भवजन उतरस पार, राम कली महला पंजवां, गुरपूरा मेरा गुरपूरा, राम नाम जप सदा सुहेले, सगल मनासे रोग कूरा रहाओ, एक अरातो साचा सोए, जा की सरन सदा सुख होए।

सुख संत भावनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग राम कली महला नौवां ए पदे रे मन ओटले हो हर नामा जा कै सिमरन दुरमत नासै पावह पद निर्वाणा रहाउ बड भागी ते जन कौ जानहु जो हर के गुण गावै जन्म जन्म के पाप खोए कै हुन बैकुंठ सदावै अजामल कौ अंत काल में नारायण सुध आई जा गत को जोगी सर्वांशत सो गत छिन मह पाई नाहिन गुण नाहिन कछ विद्या धर्म कौन गज कीना नानक बिरद राम।

जाते दुर्मत सगल बनासे राम भगत मन पीजे रहाउ। मन माया में उर्ज रहियो है बूझे नह कछ ज्ञाना। कौन नाम जग जाके सिमरे पावे पद निर्वाणा। पई दयाल कृपाल संत जानू।

विश्वास सुर मह निमख एक उर धार है जम को त्रास मिटे नानक तेहे अपनो जन्म सवार है राम कली महला नवा प्राणी नारायण सुध ले छिन छिन औध घट है निस्बासुर बिरथा जात है दे रहाओ तरना पो बिखिन स्यो खोयो बालपन अज्ञाना बिरद भयो अजहु नहीं समझे कौन कुमत उरजाना मानस जन्म दियो जेह ठाकुर सोते क्यों बिसरायो मुक्त होत नर जा कै सिमरै

नानक कहत चेत चिंता मन, हुए है अंत सहाई। राम कली महला पहला अष्टपदिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिन यर तपत रहै। सा धरती सो पौन चुलारे, जुग जी खेले थाम कैसे। जीवन तलब निवार, हुए परवाना करै तिंगाना। कल लखन विचार रहाउ, कितै देश न आया सुनिए। तीर्थ पास न बैठा, दाता दान करे तह नाही। महल उसार न बैठा, जे

ब्रह्मा वेद अथर्वण करनी कीरत लहया पातविण पूजा सतविण संयम जातविण काहे जनेऊ नावहो धोवहो तिलक चढ़ावहो सोचविण सोच ना होई कल परवान कते बखराण पोथी पंडित रहे पुराण नानक नाओ पया रहमान कर करता तू एको जान नानक नाम मिले वडियाई एदू उपर कर्म नहीं जे घर हुंदे मंगण जाइए फिर ओ लामा मिले तही राम कली महला पहला जग प्रबोध है मड़ी बंधावह आसन त्याग काहे सच पावह ममता मोह कामन हितकारी ना अवतूती ना संसारी जोगी बैस रहो दुबदा दुख भागै धर कर मांगत लाज ना लागै रहाउ गावह गीत ना चीनह आप ज्यों लागी निवरै प्रताप गुर कै शब्द रचै मन पाए भिख्या सहज विचारी खाए पसम चढ़ाए करह पाखंड माया मोहे सह जमदंड फूटे खापर भीख न पाई बंधन बांधिया आवे जाए बिंद न रख है जति कहावह माई मांगत त्रै लभावह निर्दया नहीं जोत उजाला बूढ़त बूढ़े सर्ब जंजाला पेख करह खिंथा बहु थटुआ झूठो खेल खेले बहु नटुआ अंतर अगन चिंता बहु जारी विण कर्मा कैसे उतर सपारी मुंदरा पटक बनाई कान मुक्त नहीं विद्या विज्ञान जिहवा इंद्री साध लुभाना पशु पये नहीं मिटे निशाना त्रिभिद लोगा त्रिभिद जोगा शब्द विचारै चूक ससोगा उजल साच सो शब्द होए जोगी जुगत विचारे सोए तुझ पह नौ नित तू करने जोग थाप उथापे करे सो होग जत सत संयम सच सुचीत नानक जोगी त्रे पवन मीत राम कली महला पहला खट मट देही मन बैरागी सुरत शब्द धुन अंतर जागी वाजै अनहद मेरा मन नीना गुरबचनी सच नाम पतीना प्राणी राम भगत सुख पाईऐ गुरमुख हर हर मीठा लागै हर हर नाम समाइऐ रहाउ माया मोह विवर्ज समाए सतगुर भेटै मेल मलाए नाम रतन निर्मोल कहीरा तितराता मेरा मन पीरा हमै ममता रोग न लागै राम भगत जम का पौ भागै जम जंदार न लागै मोहे निर्मल नाम हृदय हर सोहे शब्द विचार भय निरंकारी गुरमत जागे दुरमत परहारी अन दिन जाग रहे लिवलाई जीवन मुकत गत अंतर पाई अलिपत गुफा मह रह निरारी तस्कर पंचो शब्द संघारी पर कर जाए ना मन डुलाए सहज निरंतर रहो समाए गुरमुख जाग रहे अवतूता सद बैरागी तत् परूता जग सूता मारे आवै जाए बिन गुर शब्द ना सोजी पाए अनहद शब्द बजै दिन राती अवगत की गात गुरमुख जाती।

को जाता गुर चेले अपना मन मानिया नानक दूजा मेट समानिया राम कली महला पहला साहा गणह न करह विचार साहे ऊपर एक कंकार जिस गुर मिले

नरदुंदर पास तरीजै तुरकी सेवा राम रुवीजै नानक नाम मिले कृपा प्रभु की जय। राम कली महला पहला अंतर उत्पोज अवर ना कोई जो कही ऐसो प्रभ ते होई जुगा जुगंतर साहिब सच सोई उत्पत पर लहो अवर ना कोई ऐसा मेरा ठाकुर गहर गंभीर जिन जपया तिन्हीं सुख पाया हर कै नाम ना लगे जम तीर रहाउ नाम रतन हीरा निर्मोल साचा साहिब अमर अतोल जेवा सूची साचा बोल घर दर साचा नाही रोल एक बन मह बैस है डूंगर अस्थान नाम बसार पच है अभमान नाम बिना क्या ज्ञान त्यान गुरमुख पाव है दरगह मान हठ अहंकार करे नहीं पावे पाठ पढ़े ले लोक सुनावे तीरथ परमस ब्याद न जावे नाम बिना कैसे सुख पावे जतन करे बिंद किवे ना रहाई मनुआ डोले नरके पाई जमपुर बहदोल है सजाई बिन नामे जियो जल बल जाई सिद्ध साधक केते मुन देवा हठ निग्रह ना तृप्ताव है पेवा शब्द विचार गह गुर सेवा मन तन निर्मल अभमान अभेवा कर्म मिले पावे सच नाउ तुम शरणागत रहो स्वभाव तुम ते उपजेओ भगति पाओ जप जप गुरमुख हर नाउ हौ मैं गर्भ जाए मन पीने झूठ ना पावस पाखंड कीने बिन गुर शब्द।

भया ज्यो रस भोग किए तेता दुख लागै नाम विसार भवजल पया तन तन देखत गर्भ गया कनक कामनी स्यो हेत वधाई हे की नाम विसार है भरम गया रहाउ जत सत संयम सील ना राखिया प्रेत पिंजर मह काष्ट भया पुन दान इशनान ना संयम साध संगत बिन बात जया लालच लागै नाम बसारियो आवत जावत जन्म गया जां जम धाई केस गह मारै सुरत नहीं मुख काल गया अहनस निंदा तात पराई हिरदय नाम ना सर्ब दया बिन गुर शब्द न गत पत पावह राम नाम बिन नरक गया खिन मैं वेश करह नटुआ ज्यो मोह पाप मह गलत गया हित उत माया देख पसारी मोह माया कै मगन भया करह विकार वथार कनेरे सुरत शब्द बिन भरम पया हौ मैं रोग महा दुख लागा गुरमत लेव हो रोग गया सुख संपत को आवत देखै साकत मन अभमान पया जिसका एहो तन तन सो फिर लेवै अंतर सहसा दुख पया अंतकाल किस साथ ना चालै जो दिसै सब तिसह मया आद पुरख अपरंपर सो प्रभ हर नाम हृदय लै पार पया मुए को रोवह किसे सुनावह पै सागर असराल पया देख कटंब माया ग्रह मंदर साकत जंजाल पराल पया।

जोग जुगत एव पाए नदरी आवंदा सब किस बिनसै हर सेती चित लाए सतगुर नाल तेरी भावनी लागै ता एह सोझी पाए एहो जोग न होवै जोगी जे कटंब छोड़ पर भवन करह ग्रह शरीर मह हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रभ लह एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी इसमें रूग वड्डा तृष्णा माया अनेक जतन भेख करे जोगी रोग न जाए गवाया हर का नाम औखद है जोगी जिसनो मन वसाए गुरमुख होवै सोई बूझै जोग जुगत सो पाए जोगै का मार्ग बिखम है जोगी जिसनो नदर करे सो पाए अंतर बाहर एको वेखै विचों भरम चुकाए बिन

परम पलाय उपदेश कह किस पाई भगत जना की उत्तम बाणी जुग जुग रही समाई बाणी लागे सो गत पाए शब्दे सच समाई काया नगरी शब्दे खोजे नाम नमंग निद पाई मनसा मार मन सहज समाना बिन रसना उस्तत कराई लोयन देख रहे बिस्मादी एता अधिष्ट लगाई अधिष्ट सदा रह निरालम ज्योति ज्योत मलाई हो गुर सलाही सदा अपना

भय भंजन अत पाप निखंजन मेरा प्रभ अंत सखाई सब किसे आपे आप वरतै नानक नाम वडियाई राम कली महला तीजा हम कुचल कुचील अत अभमानी मिल शब्दे मैल उतारी संत हो गुरमुख नाम निसतारी सच्चा नाम वस्या घट अंतर करतै आप सवारी रहाउ पारस परसे फिर पारस होए हर जीव अपनी कृपा तारी एक भेख करह फिर है अभमानी इन जूए बाजी हारी एक अन दिन भगत करह दिन राती राम नाम उरतारी अन दिन राते सहजे माते सहजे हों मैं मारी भय बिन भगत न होई कब ही भय पाए भगत सवारी माया मोह शब्द जलाया ज्ञान तत बीचारी आपे आप कराए करता आपे बख्श पंडारी तिस क्या गुणा का अंत ना पाया औ गावा शब्द बीचारी हर जियो जपी हर जियो सालाही विच हो आप निवारी नाम पदार्थ गुरते पाया अखुट सच्चे पंडारी अपनिया भगतानो आपे तुठा अपनी कृपा कर कल धारी किन साचे नाम की सदा भुख लागी गावन शब्द विचारी जियो पिंड सब किश है तिसका आखन बिखम विचारी शब्द लगे से जन स्तरे भौजन पार उतारी बिन हर साचे को पार ना पावे बूझे को विचारी जो तुर लिखिया सोई पाया मिल हर शब्द सुवारी काया कंचन शब्दे राती साचे नाई प्यारी काया अमृत रही पर पूरे पाईए शब्द विचारी जो प्रभ खोज है से ही पाव है और फूट मुए अहंकारी बादी बिन सह सेवक सेव है गुर कै हेत प्यारी सो जोगी तत् ज्ञान बिचारी हम मैं तृष्णा मारी सतगुर दाता तिने पछाता जिसनो कृपा तुम्हारी सतगुर ना सेव है माया लागे डूब मुए अहंकारी जिचर अंदर सास तिचर सेवा कीचै जाए मिलिए राम रारी अन दिन जागत रह दिन राती अपने प्रिय प्रीत प्यारी तन मन वारी वार कमाई अपने गुर विटो बलिहारी माया मोह बिनस जाएगा उभरे शब्द विचारी आप जगाए से ही जागे गुर कै शब्द विचारी नानक से ही मुए जे नाम ना चेत है भगत जीवे विचारी राम कली महला तीजा नाम खजाना गुरते पाया कृपत रहे आघाई संत हो गुरमुख मुक्त गत पाई एक नाम वस्या घट अंतर।

विश्वकर्मा सु कर रहया अवर ना करना जाय। आपे साजे सृष्ट अपाए सिर सिर तंदै लाई, तिसह सरेवो ता सुख पावहु सतगुर मेल मलाई। अपना आप उपाय लख न लखना जाई, आपे मार्ज वाले आपे तिसनो तिन ना तमाई। एक दाते एक मंगते कीते आपे भगत कराई, सेवड भागी जिनी एको जाता सच्चे रहे समाई। आप स्वरूप सियाणा आपे कीमत कहन ना जाई, आपे दुख सुख पाए अंतर आपे परम पलाई। बड़ा दाता गुरमुख जाता नगुरी अंध फिरै लोकाई, जिन्नी चाखिया तिन्ना साध आया सतगुर बूझ बुझाई। इकना नाम हो आप पलाई, इकना गुरमुख दे बुझाई। सदा सदा सलाहे हो संतो हो तिस दी वड्डी वड्याई, तिस बिन अवरना कोई राजा करत पावस बणत बनाई। न्याओ तिसै का है सद साचा बिरले हुक्म मनाई, तिसनो प्राणी सदा त्याव हो जिन गुरमुख बणत बनाई। सतगुर भेटै सो जन सीजै जिस हिरदय नाम वसाई। सच्चा आप सदा है साचा बाणी शब्द सुनाई, नानक सुन वेख रहया विस्माद मेरा प्रभ रव्या सर्ब थाई। राम कली महला पंजवां अष्टपदियां।

किन्ही निवल कोयंगम साधे मोहे दीन हर हर अरादे तेरा भरोसा प्यारे आन ना जाना विसारा हाव किन्ही ग्रह तज वन खंड पाया किन्ही मोन अवतूत सदाया कोई कहतो अनन भगौती मोहे दीन हर हर ओट लेती किन्ही कहया हौ तीर्थवासी कोई अन तज भया उदासी किन्ही भवन सब धरती करया मोहे दीन हर हर दर परया किन्ही कहया मैं कुलह वड्याई किन्ही कहया बाहां बहु पाई कोई कह मैं तनह पसारा मोहे दीन हर हर आधारा किन्ही कुंगर।

प्रबोधे। कहो नानक जो साध संग पाया, बूझी तृष्णा महा शीतलाया। राम कले महला पंजवा, इस पानी ते जिन तू करया, माती काले देहरा करया। उक्त जोत लै सुरत परीखिया, मात गर्भ मह जिन तू राखिया। राखन हार समार जना, सगले छोड़ बेचार मना। रहाउ जिन दिए तुद बाप महतारी, जिन दिए प्रात पुतहारी। जिन दिए तुद बंता अरमीता, तिस ठाकुर को रख ले हो चीता। जिन दिया तुद पवन अमोला, जिन दिया तुद नीर निर्मोला। जिन दिया तुद पावक बलना, तिस ठाकुर की रहो मन सरना। शक्ति अमृत जिन भोजन दिए, अंतर खान ठहरावन को दिए। बसदा दियो बर्तन बलना, तिस ठाकुर के चित रख चरना। पेखन को नेतर सुनन को करना, हस्त कमावन बासन रसना। चरण चलन को सिर कीनो मेरा, मन तिस ठाकुर के पूजो पैरा। अपवित्र पवित्र जिन तू करया, सगल जोन मह तू सिर धरया। अब तू सीज पावे नहीं सीजै, कार्य सबरे मन प्रभत आईजै। इहां उहां एकै ओही, जत कत देखियै तत तत तोही। तिस सेवत मन आलस करै, जिस विसरै एक निमख ना सरै। हम अपराधी निर्गुण यारे, ना किस सेवा ना कर मारे। गुर बोहित वडभागी मिलिया, नानक दास संग पाथर तरिया। राम कली महला पंजवा, काहू बिहावै रंग रस रूप। काहू बिहावै माए बाप पूत, काहू बिहावै राज मिलख वापारा। संत बिहावै हर नाम अधारा, रचना साच बनी सबका एक तनी रहाउ। काहू बिहावै वेद अर बाद, काहू बिहावै रसना साध। काहू बिहावै लपट संग नारी, संत रचे केवल नाम मरारी। काहू बिहावै खेलत जुआ, काहू बिहावै अमली हुआ। काहू बिहावै पर दर्ब चुराए, हर जन बिहावै नाम त्याय। काहू बिहावै जोग तप पूजा, काहू रोग सोग परमीजा। काहू पवन धार जात बिहाई,

का धन प्राण आधार त्यों हर जन हर हर नाम प्यार किरसानी ज्यों राखै रखवाला मात पिता दया ज्यों बाला प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए त्यों हर जन राखै कंठ लाए ज्यों अंधले पेखत होए आनंद।

कोट जाने ऊपर नानक वन्य वारना राम कली महला पंजवा अष्टपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद दर्शन भेटत पाप सब नास है।

आप संभाले आप लिए लड़ लाई साच धर्म का बेड़ा बांधिया भवजन पार पवाई बेशमार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई अकाल मूरत अजूनी संभव कल।

जन्म मरण की टेक, मुख उज्जल सदा सुखी, नानक सिमरत एक, मन तन राता राम प्यारी, हर प्रेम भगत बन आई संतो, सतगुरु खेप निबाही संतो, हर नाम लाहा दास को दिया।

निहाला हर सिमरत तृप्त अगाई संतो आत्म राम रविया सब अंतर कत आवै कत जाई संतो आदि जुगादी है पी होसी सब जिया का सुखदाई संतो आप बेअंत अंत नहीं पाईए पूर रहया सब ठाई संतो मीत साजन माल जोबन सुत हर नानक बाप मेरी माई संतो राम कली महला पंजवा मन बच क्रम राम नाम चितारी घूमन घेर महा अत बिखड़ी गुरमुख नानक पार उतारी रहाओ अंतर सूखा बाहर सूखा हर जप मलन भये दुसकारी जिसते लागे तिन्ह निवारी प्रभ जीओ अपनी कृपा तारी उदरे संत परे हर सरनी पच बिन से महा अहंकारी साधु संगत एहो फल पाया एक केवल नाम अधारी ना कोई सूर ना कोई हीना सब प्रगति जोत तुम्हारी तुम समर्थ अकथ अगोचर रविया एक मरारी कीमत कौन करे तेरी करते प्रभ अंत न पारा वारी नाम दान नानक वडियाई तेरिया संत जना रे नारी राम कली महला।

राम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे साचा नाम मेरा आधारू साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया।

संतोह शब्द तरहु प्यारु साचा नाम मेरा आधारु वाजे पांच शब्द तित कर सा भागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पांच दूत तुद वास कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको ते नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे साची लिवै बिन देह निमाणी देह निमाणी लिवै बाजो क्या करे बेचारिया तुद बाज समरथ कोए नाई किरपा कर बनवारिया एस नौ होर थाऊ नाही शब्द लाग सवारिया।

आनंद सदा गुरते किरपा करे प्यारिया कर किरपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया।

विचारिया। एक भरम भूले फिर दह दिस, एक नाम लाग सुवारिया। गुर प्रसादी मन भया निर्मल, जिन्ना पाणा पावे। कह नानक जिस देह प्यारे, सोई जन पावे। आवहु संत प्यारे हो, अकथ की करह कहानी। करह कहानी कथ केरी, कित द्वारे पाई है। तन मन तन सब सौंप गुर को, हुक्म मन्ने है पाई है। हुक्म मन्ने हो गुरु केरा, गाव हो सच्ची बाणी। कह नानक सुनो संत हो, कथे हो अकथ कहानी। ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया, चतुराई ना पाया किने। तू सुन मन मेरिया, ए माया मोहनी। जिन एत परम पलाया, माया ता मोहनी तने कीती।

सुरलार मुन जाने अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया, जी जंत सब तुद उपाय, एक वेख परसन आया, लब लोभ अहंकार चूका, सतगुरु भला पाया,

शब्द सहावा शब्दो सहावा सदा सुहिला सतगुरु सुनाया एहो तिन कै मन वसिया जिन तुरहो लिखिया आया एक फिरह कनेरे करह गल्ला गल्ली किने ना पाया कह नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया पवित होए से जना जिन्नी हर त्याया हर त्याया पवित होए गुरमुख जिन्नी त्याया पवित माता पिता कटंब सहत सियो पवित संगत सबाइया कहंदे पवित सुनदे पवित से पवित जिन्नी मन वसाया कह नानक से पवित जिन्नी गुरमुख हर हर त्याया।

न है। कित संयम धोता जाय मन तो वोहो शब्द लागो हर सिंह रहो चित लाय कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै इहो सहसा इव जाय जियो मैले बाहरो निर्मल जियो ता मैले तिन्नी जन्म जुए हारिया ए तिसना वड्डा रोग लगा मरन मनो विसारिया।

जन्म जुए हारिया, जियो निर्मल बाहरो निर्मल, बाहरो ता निर्मल जियो निर्मल, सतगुर ते करनी कमाणी, कूड़ की सोए पहुंचे नाई, मनसा सच समाणी, जन्म रतन

सेती सन्मुख होवै, होवै ता सन्मुख सिख कोई, जियो रह गुर नाले, गुर के चरण हिरदय त्याए, अंतर आत्मै सुमाले, आप छड सदा रह परनै, गुर बिन अवर न जाने कोई, कह नानक सुनो संत हो, सो सिख सन्मुख होए, जे को गुर ते वे मुख होवै, बिन सत

मेरी मन वणजारा, हर रास मेरी मन वणजारा, सतगुर तेरा आस जानी, हर हर रित जपे हो जियो, लाहा कटे हो दिहाड़ी, एहो धन तिना मिलिया, जिन हर आपे।

प्यास न जाए, प्यास न जाए होत किते, जिचर हर रस पल्ले ना पाए, हर रस पाए पल्ले पीए हर रस, बहुड़ ना तृष्णा लागे आए, एहो हर रस करमी पाईए, सतगुर मिले जिसे आई, कह नानक होर अन रस सब विसरे, जा हर वसे मन आई, ए शरीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी, तां तू जग मह आया, हर जोत रखी तुद विच, तां तू जग मह आया, हर आपे माता आपे पिता, जिन जियो उपाय जगत दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया, तां चलत हुआ चलत नदरी आया, कह नानक सृष्ट का मूल रचिया, जोत राखी तां तू जग मह आया, मन चाहो पया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनिया, हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख ना व्यापे, गुर चरण लागे दिन सभागे, अपना फिर जापे, अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो।

तुद कर्मक माया, हे कर्मक माया तुद शरीरा, जां तू जग मह आया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन ना वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूर्व लिखिया पाया, कह नानक एहो शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया, ए नेत्र हो मेरे हो, हर तुम मह जोत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर ने हालिया, एहो इस संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया, जा वेखा हर एक है, हर बिन अवर ना कोई, कह नानक एह नेत्र अंध से, सतगुर मिले है।

भय सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रहे आपर पूरे विद्वंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे राम कली सत एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगदाता सोए भगत वसल तिहो लोए जियो गुर शब्द समावे अवर ना जाने कोई जियो अवरो ना जाने शब्द गुर कै एक नाम त्यावहे प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावहे आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया हर पाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रभ पास जियो सतगुर करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो पैज राखो हर जन है केरी हर देहो नाम निरंजनो अंत चल दिया हुए बेली जमदूत काल निखंजनो सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो हर धार कृपा सतगुरु मिलाया तन तन कहे साबास जियो मेरे सिख सुनो पुत भाई हो मेरे हर भाणा आओ मैं पास जियो हर भाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे साबास जियो भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ पाणा पावे आनंद अनहद वजह वाजे हर आप गल मिलावे तुसी पुत भाई परवार मेरा मन वेखो कर निरजास जियो तुर लिखिया परवाणा फिरे नाही गुर जाए हर प्रभ पास जियो सतगुर पाणे अपने बह परवार सदाया मत मैं पिछे कोई रोसी सो मैं मूल ना पाया मित पैजै मित बिगसै जिस मित की पैज पावै तुसी विचार देखो पुत भाई हर सतगुरु पैदावै सतगुरु प्रतख हुंदै बहराज आप टकाया सब सिख बंधप पुत भाई

केशो गोपाल पंडित सद्यो हो, हर हर कथा पढ़े पुराण जियो, हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए, बेबान हर रंग गुर भावे, पिंड पत्तल किरिया दीवा, फुल हर सर पावे, हर पाया सतगुर बोलिया, हर मिलिया पुरख सुजान जियो, रामदास सोडी तिलक दिया, गुर शब्द सच निशान जियो, सतगुर पुरख जे बोलिया, गुर सिक्खा मन लई रजाए जियो, मोहरी पुत सन

आप रखिया कोई करब खीली निवै नाही। फिर सतगुरु आण निवाया हर गुरह भाणा दी बड़े आई। तुर लिखिया लेख रजाए जियो कह सुंदर सुनो संतो सब जगत पैरी पाए जियो। राम कली महला पंजवा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद। साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोयड़ा मेरा साजनड़ा। जानियड़ा हर जानियड़ा नैन अलोयड़ा हर जानियड़ा। नैन अलोया कट कट सोया हत अमृत प्रिय गूड़ा। नाल होंदा लह ना सकंदा सुआओ ना जाने मूड़ा। माया मद माता होची बाता मिलन न जाई परम तड़ा। कहो नानक गुरबिन नाही सूजै हर साजन सब कै निकट खड़ा। गोविंदा मेरे गोविंदा

सुगड़ सुजान। सुगड़ सुजाना सद परधाना, अमृत हर का नामा, चाक अगाणी सारंग पाणे, जिनके भाग मथाना। तिन ही पाया तिन्ह त्याया, सगल तिसै का माणु, कहो नानक थिर तख्त निवासी, सच तिसै दी बाणु। मंगला हर मंगला, मेरे प्रभ कै सुनिए मंगला, सोहिलड़ा प्रभ सोहिलड़ा, अनहद तुनिए सोहिलड़ा, अनहद वाजे शब्द अगाजे, नित नित जिसै वधाई, सो प्रभ त्याई सब किश पाईए, मरे ना आवे जाई। चूकी प्यासा पूर्ण आसा, गुरमुख मिल निर्गुणिए, कहो नानक घर प्रभ मेरे कै, नित नित मंगल सुनिए। राम कली महला पंजवां, हर हर त्याए मना खिन ना विसारी है, राम रामा राम रमा कंठ उर तारी है, उर तार हर हर पुरख पूरन, पार ब्रह्म निरंजनो, पै दूर करता पाप हरता, दुसह दुख भव खंडनो, जगदीश ईस गोपाल माधो, गुण गोविंद विचारी है, बिनवंत नानक मिल संग साधु, दिन सरैन चितारी है, चरण कमल आधार जन का आसरा, माल मिलक भंडार नाम अनंत धरा, नाम नरहर निदान जिनकै, रस भोग एक नारायणा, रस रूप रंग अनंत बीठल, सास सास त्याणा, किल विख हरना नाम पुनः चरना, नाम जम की त्रास हरा, बिनवंत नानक रास जन की, चरण कमल है आसरा, गुण बेअंत स्वामी तेरे, कोई ना जाने, देख चलत दयाल, सुन भगत बखाने, जी जंत सब तुझ त्याव है, पुरख पत परमेश्वरा, सर्ब जाचिक एक दाता, करुणा मैं जगदीशरा, साधु संत सुजान सोई, जिसै प्रभ जी माने, बिनवंत नानक करहो कृपा, सोए तुझे पछाने, मोहे निर्गुण अनाथ सरनी आया, बल बल बल गुरुदेव जिन नाम दृढ़ाया, गुर नाम दिया कुशल थिया, सर्ब इच्छा पुनिया, जल ने बुझाई शांत आई, मिले चिरी वछुनिया, आनंद हरख सहज साचे, महामंगल गुण गाया, बिनवंत नानक नाम प्रभ का, गुरपुरे ते पाया, राम कली महला पंजवां, रुण चुनो शब्द अनाहद, नित उठ गाइए संतन कै, किल वेख सब दुख बनासन, हर नाम जपिए गुरमंतन कै, हर नाम लीजै अमयो पीजै, रैन दिनस अराधिए, जोग दान अनेक किरिया, लग चरण कमल है साधी है, भाओ भगत दयाल मोहन, दुख सगले पर हरै, बिनवंत नानक तरै सागर, त्याए स्वामी नर हरै, सुख सागर गोविंद सिमरन, भगत गावह गुण तेरे राम, अंध मंगल गुर चरणी लागे, पाए सूख कनेरे राम, सुख निदान मिलया दुख हरिया, कृपा कर प्रभ राखिया, हर चरण लागा भ्रम पौ भागा, हर नाम रसना भाखिया, हर एक चितवै प्रभ एक गावै, हर एक दृष्टि आया, बिनवंत नानक प्रभ करी कृपा, पूरा सतगुर पाया, मिल रही है प्रभ साध जना, मिल हर कीर्तन सुनिए राम, दयाल प्रभु दामोदर माधो, अंत ना पाइए गुनिए राम, दयाल दुख हर सरण दाता, सगल दुख निवारनो, मोह सोग बकार बिखड़े, जपत नाम उदारनो, सब जी तेरे प्रभु मेरे, कर कृपा सब रेण थीवा, बिनवंत नानक प्रभ मया कीजै, नाम तेरा जप जीवा, राख लिए प्रभ भगत जना,
अपनी चरणी लाए राम। आठ पैर अपना प्रभ सिमरह, एको नाम त्याए राम। त्याए सो प्रभ तरे भवजल, रहे आवन जाना। सदा सुख कल्याण कीर्तन, प्रभ लगा मीठा पाना। सब इच्छ पुन्नी आस पूरी, मिले सतगुर पूरिया, बिनवंत ना।

है कोई साजन संत जन नानक प्रभ मेलन हार बिन मिल बे शांत ना उपजै तिल पल रहन ना जाए हर साध शरनागति नानक आस पुजाई संत रोत शरद अडंबरु असू कट के हर प्यास जियो खोजंती दर्शन फिरत तब मिलिए गुणतास जियो बिन कंत प्यारे नह सूख सारे हार कंगन त्रिक बना सुंदर सुजान चतुर बेती सास बिन जैसे तना ईत उत दह दिस अलोकन मन मिलन की प्रभ प्यास जियो बिनवंत नानक तार कृपा।

नानक प्रभ पूरन मिले दुतिया बिनसी प्रांत साध पठाए आप हर हम तुम ते नाही दूर नानक भ्रम पै मिट गए रमन राम भरपूर शंत रुत सिसियर सीतल हर प्रगटे मंगर पोह जियो जलन बुझी दर्स पाया बिनसे माया त्रोह जियो सब काम पूरे मिल हजूरे हर चरण सेवक सेवया हार डोर शिंगार सब रस गुण गाओ अलख अपेवया पाओ भगत गोविंद बांछत जमना साकै जोहे जियो बिनवंत नानक प्रभ आप मेली तहना प्रेम बशोह जियो सलोक हर तन पाया सुहागिनी दौलत नाही कीत संत संजोगी नानका ग्रह प्रगटे प्रभ मीत नाद विनोद आनंद कोट प्रिय प्रीतम संग बने मन बांछत फल पाया हर नानक नाम भने संत हिम कर रुत मन भावती माघ फगण गुणवंत जियो सखी सहेली गाओ मंगलो ग्रह आए हर कंत जियो ग्रह लाल आए मन त्याए सेज सुंदर सोहिया वन त्रिण त्रे पौन भये हरिया देख दर्शन मोहिया मिले स्वामी इच्छ पुन्नी मन जपया निर्मल मंत जियो बिनवंत नानक नित करो रलिया हर मिले श्री तारकंत जियो सलोक संत सहाई जी के भवजल तारन हार सब ते उचे जानिए नानक नाम प्यार जिन जानिया से तरे से सूरे से वीर नानक तिन बलिहार न हर जप उतरे तीर संत चरण बराजत सब उपरे मिटिया सगल कलेश जियो आवन जावन दुख हरे हर भगत किया प्रवेश जियो हर रंग राते सहज माते तिलना मन ते बिसरे तज आप सरनी परे चरनी सर्व गुण जगदीसरे गोविंद गुण निद श्री रंग स्वामी आदि कौ आदेश जियो बिनवंत नानक मया तारहो जुग जुगो एक वेश जियो राम कली महा।

ओंकार शब्द उधरे ओंकार गुरमुख तरे ओन में अखर सुनो विचार ओन में अखर त्रे पवन सार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाउ सत्सै सब जग सहज उपाया तीन भवन एक ज्योति गुरमुख वस्त प्राप्त होवै चुन लै माणक मोती समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै अंत निरंतर साचा गुरमुख देखै साथ संभाले बिन साचे जग काचा तद्दै धर्म धरे धर्मापुर गुणकारी मन पीरा तद्दै धूल पड़ै मुख मस्तक कंचन भये मनूरा तन धरनी तर आप अजोनी

आया गर्भ गले बिख खाया गुर रस गीत बाद नहीं भावे सुनिए गहर गंभीर गवाया गुर सच कहया अमृत लहया मन तन साच।

गोपाला उगव्या असरूप दिखावे कर कृपा अपन घर आवे ऊनव बरसै नीचर तारा उत्तम शब्द सुहार नहारा इस एके का जाने पेव आपे करता आपे देव उगवै सूर असुर संघारे ऊचो देख शब्द बीचारे ऊपर आदि अंत त्यो लोय आपे करे कथै सुने सोई ओहो बधाता मन तन दे ओहो बधाता मन मुख सोय रब जग जीवन अवर ना कोय नानक नाम रते पत होय राजन राम रवै हितकार रण महलू जय।

घर हुए आथ देख निवै जिस दोए आथ हुए ता मुग्ध सियाना भगत बिहुना जग बौराना सब मह वरतै इको सोए जिसनो कृपा करे तिस प्रगट होए।

वणज व्यापार वणजै व्यापारी बिन नावे कैसी पत सारी गुण विचारे ज्ञानी सोए गुण मह ज्ञान प्राप्त होए गुण दाता विरला संसार साची करनी गुर विचार अगम अगोचर।

मुक्त पया पत सियो घर जाए सीजै दे खुले एक गंड छिया नित देखो जग हंड धूप शाम जे सम कर जान बंधन काट मुक्त घर आने छाया शूशी जगत भुलाना

जागत जाग रहा तुद पावा, जा तू मेलहै ता तुझै सुमावा। जय जय कार जपो जगदीश, गुरमत मिलिया बीस अकीस। चख बोलन क्या जग स्यों वाद, झूर मरे देखै परमाद। जन्म मुए नहीं जीवन आसा, आए चले पय आस मरासा। चुर चुर चख माटी रल जा।

सूझै, गुर का कहया अंक समावै, निर्मल सूचे साचो पावै, गुर सागर रतनी नहीं तोट, लाल पदार्थ साची अखोट, गुर कहया साकार कमावहु, गुर की करनी काहे तावहु, नानक गुरमत साच समावहु, टूटै नेहो के बोलह सही, टूटै बाह दुहू दिस गही, टूट परीत गई बुर बोल, दुर्मत पर हर छाडी ढोल, टूटै गंठ पड़ै विचार, गुर शब्दी घर कारज सार, लाहा साच न आवै टोटा, त्रे पवन ठाकुर प्रीतम मोटा, ठाको मनुआ राखो ठाई, ठहक मुई अब गुण पछताय, ठाकुर एक सबाई नार, बहुते वेश करे कूड़ियार, पर घर जाती ठाक रहाई, महल बलाई ठाक न पाई, शब्द सवारी साच प्यारी, साई सुहागन ठाकुर तारी, डोलत डोलत हे सखी, फाटे चीर सिंगार, दाहपन तन सुख नहीं, बिन डर बिन ठी डार, डरप मुई घर आपण, दीठी कंत सुजान, दर राख्या गुर आपण, निरपौ नाम बखान, ढूंगर वास तिखा कणी, जब देखा नहीं दूर, तिखा नवारी शब्द मन, अमृत पिया भरपूर, देह देह आखै सब कोई, जय पावै तै दे, गुरु द्वारै देवसी, तिखा नवारै सोय, टंडोलत टूंडत हौ फिरी, तह तह पवन करार, भारे तह ते तह पए, हौले निकसे पार, अमर अजाची हर मिली, तिनकै हौ बल जाऊं, तिनकी धूड़ अकुली है, संगत मेल मलाऊं, मन दिया गुर आपने, पाया निर्मल नाऊं, जिन नाम दिया तिस सेवसां, तिस बलिहारै जाऊं, जो असारे सो ताहसी, तिस बिन अवर ना कोई, गुर परसादी तिस सम्मला, तां तन दुख ना होए, ना को मेरा किस गही, ना को हुआ ना होगा, आवन जानव गुची है, दुबदा व्यापै रोग, नाम मिहुने आदमी, कल्लर कंद ग्रंत, बिन नाम क्यों छूटी है, जाए रसातल अंत, गणत गणावै अखरी, अगणत साचा सोए, अज्ञानी मतहीन है।

नै प्रभु नानक कर संजोग तरवर काया पंख मन तरवर पंखी पंच तत चुगह मिले एक से तिनको फास नारंच।

सर्वे थान थनंतरी तू दाता दातार जह देखा तह एक तू अंत ना पारावार थान थनंतर रव रहया गुर शब्दी विचार अणमंगया दान देवसी वड्डा अगम अपार दया दान दयाल तू कर कर देखना।

कर मोए माया किसै ना साथ, हंस चलै उठ डुम्मण माया भूली आथ। मन झूठा जम जोहया अवगुण चलै नाल, मन मह मन उल्टो मरै जे गुण होवै नाल। मेरी मेरी कर मोए विणनावै दुख भाल, गण मंदर महला कहां ज्यों बाजी दी बाण। नानक सच्चे नाम।

अपना तन मन आगै देव अस्त्र करता तू धनी तिस ही की मैं ओट गुण की मारी हो मुई शब्द रत

राह गुरा पेहावला सर ढूंगर असगाह मैं तन अवगुण चुर मुई बिन गुण क्यों कर जाह गुणिया गुण ले प्रभ मिले क्यों तिन मिलो प्यार तिन ही जैसी थी रहा जप जप हृदय मुरार अवगुणी भरपूर है गुण पी वसह नाल बिन सतगुर गुण ना जापनी जिचर शब्द ना करे बीचार नस करिया घर संभले आए वजह लिखाए कार कमावे है सिर धनी लाहा पल्ले पाए लब लोभ बुरे आईया छोडे मनो विसार गढ़ दोही पातशाह की कदे ना आवे हार चाकर कहिए खसम का सौहे उत्तर दे वजह गवाए अपना तख्त ना बैसह से प्रीतम हथ वडियाईया जय भावे तै दे आप करे किसे आखिए अवर ना कोई करे बीजो सूजै को नहीं बह दलीचा पाए नरक नवारन नरह नर साचो साचे नाय वाण त्रिण ढूंढत फिर रही मन मह करो बीचार लाल रतन बहु मान की सतगुर हाथ भंडार उत्तम होआ प्रभ मिले एक मन एक पाए नानक प्रीतम रस मिले लाहा ले परथाए रचना राच जिन रची जिन सिरिया आकार गुरमुख बे अंत त्याई है अंत ना पारावार हड़ाड़े रूड़ा हर जियो सोई तिस बिन राजा अवर ना कोई हड़ाड़े गारड़ तुम सुनो हर वस्ते मन माहि गुर प्रसादी हर पाई है मत को परम पलाहि सो साहो साचा जिस हर धन रास गुरमुख पूरा तिस साबास रूड़ी बाणी हर पाया गुर शब्दी बीचार आप गया दुख कटिया हर वर पाया नार सोयना रूपा संचिय धन का चा बिखशार साहो सदाए संच धन दुबदा हुए खुआर सचियारी सच संचिया

साचो ठाकुर मन वसै हौं बलिहारी तिस माया ममता मोहनी जिन कीती सो जान बिख्या अमृत एक है बूझै पुरख सुजान खिमा विहूणे खप गए हूहन लख असंख गणत ना आवै क्यों गणी खप खप मोए बिसंख खसम पछाणे अपना खूलै बंद ना पाई शब्द महली खरा तू खिमा सच सुख पाई खर्च खरा तन ध्यान तू आपे वसह शरीर मन तन मुख जापै सदा गुण अंतर मन धीर हों मैं खपै खपाए सी बीजो वथ विकार जंत उपाय विच पायन करता अलग अपार सृष्टि प्यो न जाने कोए सृष्टा करै सुनिश्चो होए संपै को ईश्वर त्याई संपै पुरब लिखे की पाई है संपै कारण चाकर चोर संपै साथ ना चालै होर बिन साचे नहीं दरगाह मान हर रस पीवै छुटै निधान हेरत हेरत हे सखी होए रही हैरान हौं हौं करती मैं मुई शब्द रवै मन ज्ञान हार डोर कंकन घने कर था की शिंगार मिल प्रीतम सुख पाया सगल गुणा गलहार नानक गुरमुख पाई है हर स्यों प्रीत प्यार हर बिन किन सुख पाया देखो हो मन विचार हर पढ़ना हर बुझना हर स्यों रखो प्यार हर जपी है हर त्याई है हर का नाम आधार लेख न मिटई हे सखी जो लिखिया करतार आपे कारण जिन किया कर किरपा पग धार करते हथ वडियाईया बूझो हो गुर बीचार लिखिया फेर न सकी है ज्यों भावी त्यों सार नदर तेरी सुख पाया नानक शब्द विचार मनमुख भूले पच मोए उबरे गुर बीचार जे पुरख नदर ना आवे तिसका क्या कर कहया जाय बलिहारी गुर अपने जिन हिरदै दिता दिखाय पांदा पढ़िया आखिया विद्या विचरै सहज सुभाय विद्या सोधै तत लह राम नाम लिवलाय मनमुख विद्या बिकरदा बिख खटै बिख खाय मूर्ख शब्द ना चीनई सूझ बूझ नह काय पांदा गुरमुख आखिया चाटड़िया मत दे नाम संभालो नाम संग्रहो लाहा जग महली सच्ची पट्टी सच मन पढ़िए शब्द सो सार नानक सो पढ़िया सो पंडित बीना जिस राम नाम गलहार राम कली महला पहला सिद्ध गोष्ट एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारु तिस आगे रह रास हमारी साचा अपर अपारू मस्तक काट तरी तिस आगे तन मन आगे देउ नानक संत मिले सच पाईए सहज पाई जस लेउ क्या भवी है सच सूचा होए साच शब्द बिन मुक्त ना कोए रहाओ कौन तुम्हें क्या नाओ तुम्हारा कौन मार्ग कौन सुआओ साच कहो अरदास हमारी हौ संत जना बल जाओ कह बैसो हो कह रही है बाले कह आवो कह जाओ नानक बोले सुन बैरागी क्या तुम्हारा राहु घट घट बैस निरंतर रही है चल है सतगुर भाई सहजे आए हुक्म सदाई नानक सदा रजाई आसन बैसन फिर नारायण
ऐसी गुरमत पाई गुरमुख बूझै आप पछाणै सच्चे सच समाई दुनिया सागर दुत्तर कहिया क्यों कर पाई पारू चरपट बोलै औदू नानक देहो सच्चा बीचारू आपे आखै आपे समझै तिस क्या उत्तर दीजै साच कहो तुम पार जरामी तुझ क्या बैसन दीजै जैसे जल मह कमल नरालम मुर्गाई नैसाणी सुरत शब्द भव सागर तरियै नानक नाम बखाणी रह एकांत एको मन वसिया आसा माही निरासू अगम अगोचर देख दिखाए नानक ताका दासू सुन स्वामी अरदास हमारी पूछो साच बिचारू रोस न कीजै उत्तर दीजै क्यों पाईऐ गुरद्वारू इहो मन चल तो सच कर बैसै नानक नाम आधारू आपे मेल मलाए करता लागै साच प्यारू हाटी बाटी रह निराली रूख बिरख उद्यानी कंद मूल आहारू खाइयै औदू बोलै ज्ञानी तीरथ नहाइयै सुख फल पाइयै मैल न लागै काई गोरख भूत लहारी पा बोलै जोग जुगत बिद साई हाटी बाटी नींद ना आवै पर घर चेतना डुलाई बिन नावै मन टेक ना टिकई नानक भूख ना जाई हाट पटन घर गुरु दिखाया सहजे सच वपारो खंडत निंदरा अल्प आहारम नानक तत् बिचारू दर्शन भेख करो जोगिंदरा मुंदरा झोली खिंथा बारह अंतर एक सरेब हो खट दर्शन एक पंथा इन बिद मन समझाइय पुरखा बहुड़ चोट ना खाइय नानक बोलै गुरमुख बूझै जोग जुगत इव पाइय अंतर शब्द निरंतर मुंदरा हौमै ममता दूर करी काम क्रोध अहंकार निवारै गुर कै शब्द सो समझ परी हिंथा झोली भरपुर रहिया नानक तारै एक हरी साचा साहिब साची नाई परखै गुर की बात खरी ऊंदौ खप्पर पंच भू टोपी काया कड़ासन मन जा गोटी सत संतोख संजम है नाल नानक गुरमुख नाम संभाल कमन सो गुप्ता कमन सो मुक्ता कमन सो अंतर बाहर जुगता कमन सो आवे कमन सो जाई कमन सो त्रे भवन रहे आसमाई कट कट गुप्ता गुरमुख मुक्ता अंतर बाहर शब्द सो जुगता मनमुख बिन सह आवे जाई नानक गुरमुख साच सुमाई क्यों कर बादा सरपन खादा क्यों कर खोया क्यों कर लादा क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा इहो तत् बिचारै सो गुरु हमारा दुर्मत बादा सरपन खादा मनमुख खोया गुरमुख लादा सतगुर मिलै अंधेरा जाई नानक हों मैं मेक समाए सुन निरंतर दीजै बंद उड्डै ना हंसा पड़ै ना कंद सहज गुफा कर जाणै साचा नानक साचे भावै साचा किस कारण ग्रह तज्यो उदासी किस कारण एहो भेख निवासी किस वखर के तुम बन जारे क्यों कर साथ लंघावो पारी गुरमुख खोजत भये उदासी दर्शन कै ताई भेख निवासी साच वखर के हम बन जारी नानक गुरमुख उतर सपारी चित बिद पुरखा जन्म बटाया काहे को तुझ एहो मन लाया चित बिद आसा मनसा खाई चित बिद जोत निरंतर पाई बिन दंता क्यों खाइय सार
नानक साचा करहो विचार, सतगुर कै जन्मे गवन मटाया, अनहत राते इहु मन लाया, मन साया सा शब्द जलाई, गुरमुख जोत निरंतर पाई, त्रै गुण मेटे खाइए सार, नानक तारे तारनहार, आज को कवन विचार कथियले, सुन कहां घर वासो, ज्ञान की मुंदरा कवन कथियले, घट घट कवन निवासो, काल का ठींगा क्यों जलाइयले, क्यों निरपहो घर जाइए, सहज संतोख का आसन जाने, क्यों शेदे बैराइये, गुर कै शब्द हमे बिख मारे, ता निज कर होवे वासो, जिन रच रचिया किस शब्द पछाणे, नानक ताका दासु, कहां ते आवे, कहां एहु जावे, कहां एहु रहे समाई, एस शब्द को जो अर्थावे, तिस गुर तिल ना कमाई, क्यों तत्ते अवगत्ते पावे, गुरमुख लगे प्यारू, आपे सुरता आपे करता,

आवै गत मित शब्दे पाई आद कौ बिस्माद विचार कथियली सुन निरंतर वासलिया अकलपत मुंदरा गुरु ज्ञान विचारियली घट घट साचा सर्ब जिया गुरु बचनी अवगत समाई है।

जानै, जी जुगत सच जानै सोई, आप मेट निरालम होवै, अंतर साच जोगी कहियै सोई, अवगत हो निर्मायल उपजे, निर्गुण ते सरगुण थिया, सतगुर परचै परम पद पाईऐ, साचै शब्द समाए लिया, एक एको सच एका जानै, हौं मैं दूजा दूर किया, सो जोगी गुर शब्द पछाणै, अंतर कमल प्रगास थिया, जीवत मरै तां सब किछ सूझै।

आय गुर कै शब्द सो मुक्त भया नानक तारे तार नहारा हौ मैं दूजा पर हरिया मन मुख भूलै जम की कान पर कर जो है हाने हान मन मुख भरम पवै बेबान वे मार्ग मूसै मंत्र मसान शब्द ना चीनै लवै कुबान नानक साच रते सुख जान गुरमुख साचे का पौ पावै गुरमुख बाणी अखाड़ कढ़ावै गुरमुख निर्मल हर गुण गावै गुरमुख पवित्र परम पद पावै गुरमुख रोम रोम हर त्यावै नानक गुरमुख साच समावै गुरमुख परचै वेद बीचारी गुरमुख परचै तरियै तारी गुरमुख परचै सो शब्द ज्ञानी गुरमुख परचै अंतर बिद जानी गुरमुख पाईऐ अलाखे अपार नानक गुरमुख मुक्त द्वार गुरमुख अकथ कथै बीचार गुरमुख निबहै सब परवार गुरमुख जपिए अंतर प्यार गुरमुख पाईऐ शब्द अचार शब्द भेद जाणै जानाई नानक हौं मैं जाल समाई गुरमुख धरती साचै साजी तिसमह ओपत खपत सो बाजी गुर कै शब्द रपै रंग लाय साच रतो पत स्यों घर जाय साच शब्द बिन पत नहीं पावै नानक बिन नावै क्यों साच समावै गुरमुख अष्ट सिद्धि सब बुद्धि गुरमुख भवजल तरियै सच सुधि गुरमुख सारे अपसर बिद जानै गुरमुख पर विरत नर विरत पछाणै गुरमुख तारे पार उतारी नानक गुरमुख शब्द निसतारी नामे राते हौं मैं जाए नाम रते सच रही समाए नाम रते जोग जुगत बीचार नाम रते पावह मूख द्वार नाम रते त्रि भवन सोजी होए नानक नाम रते सदा सुख होए नाम रते सिद्ध गोष्ट होए नाम रते सदा तप होए नाम रते सच करनी सार नाम रते गुण ज्ञान बीचार बिन नावै बोलै सब वेकार नानक नाम रते तिनको जयकार पूरे गुरते नाम पाया जाई जोग जुगत सच रह समाए बारह मह जोगी परमाए सन्यासी छे चार गुर कै शब्द जो मर जीवै सो पाए मुख द्वार बिन शब्द सब दूजै लागे देखो हृदय बीचार नानक वड्डे से वड भागी जिन्नी सच रखिया उर धार गुरमुख रतन लह लिवलाय गुरमुख परखै रतन सुभाय गुरमुख साची कार कमाए गुरमुख साचे मन पतियाय गुरमुख अलख लखाए तिस भावै नानक गुरमुख चोट ना खावै गुरमुख नाम दान इशनान गुरमुख लागै सहज ध्यान गुरमुख पावै दरगाह मान गुरमुख पौ भंजन प्रधान गुरमुख करनी कार कराई नानक गुरमुख मेल मलाय गुरमुख शास्त्र सिमरत बेद गुरमुख पावै घट घट भेद गुरमुख वैर विरोध गवावै गुरमुख सगली गणत मटावै गुरमुख राम नाम रंग राता नानक गुरमुख खसम पछाता बिन गुर भरमै आवै जाई।

यार पवजल शब्द लंघावन हार पवन आरंभ सतगुर मत वेला शब्द गुरु सुरत धुन चेला कथ कथा ले रहो निराला नानक जुग जुग गुरु गोपाला एक शब्द जित कथा विचारी गुरमुख हो मैं अग्न निवारी मैण के दंत क्यों खाइए सार जित गर्भ जाए सो कवन आहार हिवै का घर मंदर अग्न पिराहन कवन गुफा जित रह अवाहन इत उत किस को जान समावे कवन ध्यान मन मनह समावे हों हों मैं विचों खोवे दूजा मेटै एको होवे जग करड़ा मनमुख गावार शब्द कमाइए खाइए सार अंतर बाहर एको जाने नानक अग्न मरे सतगुर के पाने सच पै राता गर्भ निवारे एको जाता शब्द विचारे शब्द वसै सच अंतर हीया तन मन सीतल रंग रंगिया काम क्रोध बेखे अग्न निवारी नानक नदरी नदर प्यारी कवन मुख चंद हिवै घर छाया कवन मुख सूरज तपैत पाया कवन मुख काल जोहत नित रह कवन बुद्ध गुरमुख पात रह कवन जोद जो काल संघारै बोलै बाणी नानक बीचारै शब्द भाखत सस जोत अपारा सस कर सूर वसै मिटै अंधियारा सुख दुख सम कर नाम आधारा आपे पार उतारन हारा गुर परचै मन

अनहत सुन कहां ते होई, अनहत सुन रते से कैसे, जिस ते उपजे तिस ही जैसे, कोई जन्म ना मरह ना आवह जाहि, नानक गुरमुख मन समझाहि, नौ सरस भार दसवै पूरे, तह अनहत सुन बजावह तूरे, साचै राचे देख हजूरे, घट घट साच रहिया परपूरे, गुप्ती बाणी प्रगट होए, नानक परख लए सच सोए, सहज भाए मिलिए सुख होवै, गुरमुख जागै नींद ना सोवै, सुन शब्द अपरंपर तारै, कहते मुक्त शब्द निस्तारै, गुर की दीखिया से सच राते, नानक आप गवाए मिलन नहीं प्रांते, कबुद्ध चुआवै सो के तठाए, क्यों तत न बूझै चोटा खाए, जम दरबाते कोई न राखै, बिन शब्द नाही पत साखै, क्यों कर बूझै पावै पार, नानक मन मुख न बूझै गवार, कबुद्ध मिटै गुर शब्द बीचार, सतगुर भेटै मुख द्वार, तत न चीनै मन मुख जल जाए, दुर्मत विछड़ चोटा खाए, माने हुक्म सबे गुण ज्ञान, नानक दरगाह पावे मान, साच वक्र तन पल्ले होए, आप तरे तारे पी सोए, सहज रत्ता बूझे पत होए, ताकी कीमत करे ना कोई, जह देखा तह रहे आसमाए, नानक पार परे सच पाए, सो शब्द का कहां वास कथियले, जित तरिया भवजल संसारो, त्रै सत अंगुल वाई कही है, इस कहो कवन अधारो, बोले खेले अस्थिर होवे, क्यों कर लख लखाए, सुन स्वामी सच नानक प्रणवे, अपने मन समझाए, गुरमुख शब्दे सच लिव लागे, कर नदरी मेल मलाई, आपे दाना आपे बीना, पूरे भाग समाई, सो शब्द को निरंतर वास अलखं, जह देखा तह सोई, पवन का वासा सुन निवासा, अकाल कला धर सोई, नदर करे शब्द घट मह वसै, विचों भरम गवाई, तन मन निर्मल निर्मल बाणी, नामो मन वसाई, शब्द गुरु भव सागर तरिया, इत उत एको जाने, जेहन वर्ण नहीं छाया माया, नानक शब्द पछाण, त्रै सत अंगुल वाई औदू, सुन सच आहारू, गुरमुख बोलै तत बिरोलै, चीनै अलख अपारू, त्रै गुण मेटै शब्द वसाई, ता मन चूकै अहंकारू, अंतर

नानक त्यों ते ऊपर साचा सतगुर शब्द समाय मन का जियो पवन कथि अले पवन कहां रस खाई ज्ञान की मुंदहा कवन औदू सिद्ध की कवन कमाई बिन शब्द रस न आवे औदू हमें प्यास न जाई शब्द रत्ते अमृत रस पाया साचे रहे अगाई कमल बुद्ध जित अस्थिर रही है कित भोजन तृप्ता सह नानक दुख सुख सम कर जापै सतगुर ते काल ना ग्रासै रंग ना राता रस नहीं माता बिन गुर शब्द है जल बल ताता बिंद ना राखिया शब्द ना भाखिया पवन ना साध्या सच ना अराध्या कथ कथा ले सम कर रह तो नानक आत्म राम कौल है।

सच सफाख है सच रपै रंग कबहू ना जावे जा एहो हिरदा दे ना होती तो मन कैठे रहता नाभ कमल अस्थंभ ना हो तो ता पवन कमन घर सहता रूप ना हो तो रेख ना काई ता शब्द कहां लिवलाई रखत बिंद की मड़ी ना होती मित कीमत नहीं पाई वर्ण भेख असरूप ना जापी क्यों कर जापस साचा नानक नाम रते बैरागी इब तब साचो साचा हिरदा दे न होती ओदू तौ मन सुन रह बैरागी नाब कमल असथंभ ना हो तो ता निज कर बस तौ पवन अनरागी रूप न रेखिया जात ना होती तौ अकुल लीन रह तो शब्द सोसार गौन गगन जब तब है न हो तो त्रे पवन ज्योत आपे निरंकार वर्ण भेख असरूप सो एको एको शब्द वडाणी साच बिना सूचा को नाही नानक अकथ कहानी कित कित बिद जग उपजै पुरखा कित कित दुख बिन सजाई हम मैं विच जग उपजै पुरखा नाम विसरे है दुख पाई गुरमुख होवै सो ज्ञान तत बीचारै हम मैं शब्द जलाई तन मन निर्मल निर्मल बाणी साचै रह समाई नामे नाम रह बैरागी साच रखिया उर धारी नानक बिन नावै जोग कदे ना होवै देखो हृदय बीचारी गुरमुख साच शब्द बीचारै कोई गुरमुख सच बाणी प्रगट होए गुरमुख मन भीजै बिरला बूझै कोई गुरमुख निज घर वासा होए गुरमुख जोगी जुगत पछाणै गुरमुख नानक एको जाणै बिन सतगुर सेवे जोग ना होए बिन सतगुर भेटे मुक्त ना कोई बिन सतगुर भेटे नाम पाया ना जाए बिन सतगुर भेटे महा दुख पाए बिन सतगुर भेटे महा गर्भ गोबार नानक बिन गुर मुआ जन्म हार गुरमुख मन जीता हूं मैं मार गुरमुख साच रखिया उर धार गुरमुख जग जीता जम काल मार बिदार गुरमुख दरगाह ना आवै हार गुरमुख मेल मलाए सो जाने नानक गुरमुख शब्द पछाणे शब्द काल बेड़ा सुन तू औदू बिन नावे जोग ना होई नामे राते अन दिन माते नामे ते सुख होई नामे ही ते सब प्रगट होवे नामे सूझी पाई।

सहसा गया बलाय। ना किश बीजे ना उगवै, जो बख्शे सो खाय। अम्बह सेती अम्ब रलिया, बहुड़ ना निकसिया जाय। नानक गुरु

होई। राम कसौटी सो सहै जो मर जीवा होए महला तीजा। क्यों कर इहो मन मारिय क्यों कर मृतक होई। कहया शब्द ना मानी हऊ मैं छड्डै ना कोई। गुर प्रसादी हऊ मैं छुट्टै जीवन मुक्त सो होई। नानक जिसनो बख्शे तिस मिलै तिस बिघन ना लागै कोई। महला तीजा जीवत मरना सब को कहै जीवन मुक्त क्यों होए। भय का संयम जे करे दारू भाउ लाए। अन दिन गुण गावै सुख सहजे बिख भव जल नाम तरे। नानक गुरमुख पाईऐ जा कौ नदर करे पौड़ी। दूजा भाउ रचायो त्रै गुण वरतारा ब्रह्मा विष्णु महेश उपायन। हुक्म कमावन कारा पंडित पढ़ दे जोत की ना बूझह बिचारा। सब किश तेरा खेल है सच सिरजन हारा। जिस भावै तिस बख्श लै सच शब्द समाई। सलोक महला तीजा मन का झूठा झूठ कमावै। माया नू फिरै तपा सदावै परमे भूला सब तीर्थ गह। ओ तपा कैसे परम गत लह। गुर प्रसादी को सच कमावै नानक सो तपा मुख अंतर पावै। महला तीजा सो तपा।

तिस दैद तै नानक का तेहो जेहा धर्म अपै निरंजन परम पद ताका भूखा होय तिसका भोजन नानका विरला पाए कोई महला तीजा अभ्यागत एह ना आखियन जे पर कर भोजन करेन उदरै कारण अपने बहले भेख करेन अभ्यागत से ही नानका जे आत्म गौण करेन पाल लहन सहो अपना निज कार रहन करेन पौड़ी अंबर धरत विछोड़ियन विच सच्चा असराऊ घर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाऊ सब सच्चा हुक्म वरतदा गुरमुख सच समाऊ सच्चा आप तखत सच्चा वह सच्चा करे नियाऊ सब सचो सच वरतदा गुरमुख अलख लखाई।

सच्चा शब्द सुवाही पौड़ी आप अलिप्त सदा रह होर तंदै सब ताव है आप निश्चल अचल है होर आव है जाव है सदा सदा हर त्याई है गुरमुख सुख पाव है निज कर वासा पाई है सच सिफत समाव है सच्चा गहर गंभीर है गुर शब्द बुझाई। सलोक महला तीजा सच्चा नाम त्याए तू सबो वरतै सच नानक हुक्म जो बुझै सो फल पाए सच कथनी बदनी करता फिरै हुक्म ना बुझै सच नानक हर का भाणा मन्ने सो भगत होए विण मन्ने कच न कच महला तीजा मनमुख बोल ना जाननी ओना अंदर काम क्रोध अहंकार होए थाओ कथाओ ना जाननी उन्हें अंतर लोभ विकार।

आई पौड़ी। हर मंदिर सोई आखी है जिथों हर जाता, मानस दे गुरबचनी पाया सब आत्म राम पछाता। बाहर मूल ना खोजी है कर माहे बधाता, मनमुख हर मंदिर की सार ना

मूर्ख के क्या लक्षण है, क्या मूर्ख का करना। मूर्ख ओह जे मुग्ध है अहंकारे मरना, एत कमाण सदा दुख दुख ही मह रहना। अत प्यारा पवे खूहु केहो संयम करना, गुरमुख होए सो करे विचार ओस अलिप्तो रहना। हर नाम जपे आप उधरे ओस पिछे डुब दे पी तरना, नानक जो तिस पावे सो करे जो दे सो सहना। महला पहला नानक आखे रे मना, सुनिए सिख सही लेखा रब मगेसिया, बैठा कड वही तलबा पौसन आकिया बाकी जिना रही। अजराइल फरिश्ता हुसी आए तई, आवन जान ना सुजई पीड़ी गली फही। कूड़न खुटे नानका ओड़क सच रही, पौड़ी हर का सब शरीर है हर रब रहया सब आपै। हर की कीमत ना पवै किस कहन ना जापै, गुर प्रसादी सलाही है हर भगती रापै। सब मन तन हरिया होया अहंकार गुआपै।

इंद्र रो आया, परशुराम रो वह घर आया, अजय सुरो वह भीख्या खाई, ऐसी दरगाह मिले सजाई, रोए राम निकाला पया, सीता लक्ष्मण बिछड़ गया, रोए दह सिर लंक गवाई, जिन सीता आंधी डौरू वाई, रोए है पांडव पये मजूर, जिनकै स्वामी रहत हदूर, रोए जनमेजा खोए गया, एकी कारण पापी पया, रोए है शेख मसाइक पीर, अंतकाल मत लागे पीड़, रोवे है राजे कान पड़ाए, कर कर मांगे है भीख्या जाए, रोवे है किरपन संच है धन जाए, पंडित रोवे है ज्ञान गवाए, बाली रोवे नाहे पतार, नानक दुखिया सब संसार, मन्ने नाओ सोई जन जाए, औरी कर्म ना लेख लाए, महला दूजा जप तप।

पाया, सब मैं गुप्त वर्तदा गुरमुख प्रगटाया, गुण गावे गुण उच्चरै गुण माही सुमाया, सच्ची बाणी सच है सच मेल मलाया, सब किछ आपे आप है आपे दे वड़ियाई, श्लोक महला दूजा नानक अंधा होए कै रतना।

सो क्यों उजड़ पाए। अंधे एह ना आखियन जिन मुख लोइन नाहि, अंधे से ही नानका खसम हो कुत्थे जाहि। महला दूजा साहिब अंधा जो किया करे सुजाखा होए, जेहा जाने ते हो वरतै जे सौ आखै कोई। जितै सो वस्त ना जापई आपे वरतौ जान, नानक गाहक क्यों लय सकै ना वस्त पछाण। महला दूजा सो क्यों अंधा आखियै जे हुक्म हो अंधा होए, नानक हुक्म ना बुझई अंधा कहियै सोए। पौड़ी काया अंदर गढ़ कोट है सब दे संतर देसा, आपे तारी लाइन सब मह परवेसा। आपे सेख साजियन आप गुप्त रखेसा, गुर सेवा ते जानिया सच प्रगटियेसा। सब किस सचो सच है गुर सोजी पाई। श्लोक महला पहला। सावन रात आहाड़ देहु काम क्रोध दोए खेता, लब वत्र दरोग बियो हाली राह कहेता। हल विचार वकार मन हुक्मी खट्टे खाए, नानक लेखै मंगिया औत जनेंदा जाए। महला पहला। पौ पोए पवित पानी सत संतोख बलेद, हल हले मी हाली चित चेता वत्र वक्त संजोग। नाउ बीज बख्शीस बोल

दूजै भाई बोलै, दूजै भाई सदा दुख है, नित नीर वरोलै, गुरमुख नाम त्याई है, मत तत कडोलै, अंतर परगास घट चानना, हर लद्दा टोलै, आपे परम भुलाए दा किछ कहण ना जाई। श्लोक महला दूजा, नानक कि

एहो धन सास सास अराधी निर्मल सोए जन अंतर जामी अगम रसना एक पन राव रहे आसरबत नानक बल जाई। श्लोक महला पहला सरवर हंस तुरे ही मेला खसमै वै पाणा सरवर अंदर ही राम मोती सो

सचो पाइए कूड़े कूड़ा माना। नानक तिनको सतगुर मिलिया जिन्ना तुरे पया परवाना। महला पहला साहिब मेरा उजला

हुई। जन नानक सो प्रभ सेविया तिस जेवड़ अवर ना कोई पौड़ी। देवन हार दतार कित मुख सलाहिया जिस रखै कृपा तार। रिजक समाहिया कोई ना किस ही वस सबना एक तार। पाले बालक वांग दे कै आप कर करदा आनंद बनोद किशु ना जानिए। सर्ब धार समरथ हो तिस कुरबाणीए। गाइए रात दिनंत गावन जोगिया जो गुर की पैरी पाहे तिन्नी हर रस भोगिया। श्लोक महला पंजवां भीड़ो मोक लाई कीतियन सब रखे कटंबे नाल कारजे आप सवारियन। सो प्रभ सदा संभाल प्रभ मात पिता कंठ लाईंदा लहुड़े बालक पाल। दयाल हुए सब जी जंतर हर नानक नदर निहाल। महला पंजवां बिन तुद होर जे मंगना सिर दुखा कै दुख। देह नाम संतोखिया उतरै मन की भुख। गुरवण तिन हरिया कीतिया नानक क्या मनुख। पौड़ी सो ऐसा दातार मनो ना विसरै घड़ी ना मोत चसा तिस बिन ना सरै। अंतर बाहर संग क्या को लुक करै जिस पत रखै आप सो भवजल तरै। भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करै सो पूरा प्रधान जिसनो बल धरै। जिसै जराए आप सोई अजर जरै तिस ही मिलिया सच मंत्र गुरमन धरै। श्लोक महला पंजवां धन सुराग सुरंगड़ी अलापत सब तिख जाए। धन सो जंत सुहावड़ी जो गुरमुख जप दे नाउ। जिन्नी एक मन एक अरादिया तिन सद बलिहारै जाऊ। तिन की धूड़ हम बाँच दे करमी पल्लै पाए। जो रत्ते रंग गोविंद कै हौ तिन बलिहारै जाऊ। आखा बिरथा जी की हर सज्जन में लोहराए। गुर पूरै मेलाया जन्म मरण दुख जाए। जन नानक पाया अगम रूप अनत ना काहू जाए। महला पंजवां तन सो वेला घड़ी तन तन मूरत पल सार। तन सो दिन संजोगड़ा जित डिठा गुर दरसार। मन किया इच्छा पूरिया हर पाया अगम अपार। हौ मैं टुटा मोहड़ा एक सच नाम आधार। जन नानक लगा सेव हर उदरिया सगल संसार। पौड़ी सिफत सलाहन भगत विरले दितियन सौंपे जिस भंडार। फिर पुछ ना लीतियन जिसनो लगा रंग से रंग रत्या। ओना इको नाम आधार इका उन पत्या। ओना पिछे जग पुंचै भू गई ओना प्यारा रब ओना हा जो गई। जिस मिलिया गुर आए तिन प्रभ जानिया हौ बलिहारी तिन जे खसमै पाणिया। श्लोक महला पंजवां हर इक सह नाल मैं दोस्ती हर इक सह नाल मैं रंग। हर इको मेरा सज्जनो हर इक सह नाल मैं संग। हर इक सह नाल मैं गोसते मुँह मैला करै ना भंग। जाने बिरता जी की कदे ना मोड़ै रंग। हर इको मेरा मसलती भन्नण घड़न समरथ। हर इको मेरा दातार है सिर दात्या जग हाथ। हर इक सह दी मैं टेक है जो सिर सबना समरथ। सतगुर संत मलाया
मस्तक तर कै हाथ वड्डा साहिब गुरु मलाया जिन तारिया सगल जगत मन किया इच्छा पूरिया पाया तुर संजोग नानक पाया सच नाम सद ही भोगे भोग महला पंजवा मन मुखा केरी दोस्ती

रावणे टिचर रखन गांड जित दिन किश ना होवे तित दिन बोलन गंद जी की सार ना जाननी मनमुख ज्ञानी अंद कूड़ा गंड ना चलई।

लाई तहों लगी तू सुन सच संदेसा साई सुहागण साई भागण जय फिर कृपा धारी फिर औगण तिसके सब गवाए गल सीती लाए सवारी कर्महीन धन करै बेनंती कद नानक आवै वारी सब सुहागण मान है रलियां एक देव हो रात मरारी महला पंजवां काहे मन तू डोलता हर मन सा पूर्ण हार सतगुर पुरख त्याए तू सब दुख वसारन हार हर नामा आराध मन सब किल विख जाहे विकार जिनको पूर्व लिखिया तिन रंग लगा निरंकार उन्नी छड़िया माया सुआवड़ा धन संचिया ना

देहो दर्स मन प्यार पौड़ी, जिस तू आवह चेत तिसनू सदा सुख, जिस तू आवह चेता

आवै वैष्णो नाम कर्म हो जुगता तोह कुट्टे क्या फल पावै हंसा विच बैठा बग न बणी नित बैठा मच्छी नो तार लावै जां हंस सुभा विचार

सत्तर सम्माने औगण कटे करे सुध देहा नानक जिस तुर मस्तक होवै लिखिया तिस सतगुर नाल सनेहा अमृत बाणी सतगुर पूरे की जिस कृपाल होवै तिस हृदय बसेहा आवण जाना तिस का कटिया सदा सदा सुख होहा पौड़ी जो तुद पाणा जंत सो तुद बुझई जो तुद पाणा जंत सो दरगाह सिजई जिसनो तेरी नदर हों मैं तिस गई जिसनो तू संतुष्ट कल मल तिस खई जिसकै स्वामी वल निरभउ सो भई।

संता संग विहावे तुदहो भुले से जम जम मरदे तिन कदे ना चुकन हावे महला पंजवा सतगुर सिमरो अपना काट अवकट काट काट

आहे सब सहनो कृपाल संभाली साहे साहे बिरथा कोई न जाय जे आवे तुदे आहे। सलोक महला पंजवा दूजा तिस न बजायो हो पार ब्रह्म नाम देहो आधार अगम अगोचर साहिबो समरथ सच दातार तू निश्चल निर्वैर सच सच्चा तुद दरबार कीमत कहन ना जाइए अंत ना पारावार प्रभ छोड़ होर जे मंगना सब बिख्या रस शार से सुखिए सच साहसे जिन सच्चा व्यवहार जिन्ना लगी प्रीत प्रभ नाम सहज सुख सार नानक एक अरादे संतन रे नार महला पंजवा आनंद सुख विश्राम नित हर का कीर्तन गाय अवर सियाण पछाड़ दे नानक उदरस नाए पौड़ी ना तू आवे वस बहुत कणावणे ना तू आवे वस बेद पढ़ावणे ना तू आवे वस

हर का आनंद हुक्मे जपे निरोधर गुरमंत हुक्मे आवन जान रहाय नानक जाको भगती लाई पौड़ी हों तिस ढाडी कुर्बान जे तेरा सेवदार हों तिस ढाडी बलिहार जे गावे गुण अपार सो ढाडी धन धन जिस लोड़े निरंकार सो ढाडी भागठ जिस सत्या द्वार बार वो ढाडी तुद त्याई कलाने दिन रैनार मंगया अमृत नाम ना आवे कदे हार कपड़ भोजन सच रहंदा लिवै धार सो ढाडी गुणवंत।

मन तन हृदय सिमर हर आठ पहर गुण गाओ। उपदेश सुनो तुम गुर सिखो सच्चा एह सुआओ। जन्म पदार्थ सफल होए मन मह लायो पाओ। सुख सहज आनंद घना प्रभ जपत्या दुख जाए। नानक नाम जपत सुख उपजे दरगाह पाईए थाउ। महला पंजवा नानक नाम त्याई है गुरपूरा मत दे। भाणे जप तप संयम भाणे ही कड ले। भाणे जून पवाई है भाणे बख्श करे। भाणे दुख सुख भोगी है भाणे कर्म करे। भाणे मिट्टी साज कै भाणे जोत तरे।

कोई। जाचक सदा जाचो है महला पंजवा, देह सजंदड़ी ऊण मचूणा। गुर सज्जन जियो तराया, हब्बे सुख सुहेलड़ा सुता। जिता जग सवाया पौड़ी, वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तखत। सिर शाह पातशाह निश्चल चौर छत, जो भावे पार ब्रह्म सोई सच न्याऊ। जे भावे पार ब्रह्म

मेरा अंदर ठंडा, गुर दर्शन देख निहाली महला पंजवा, हठ मंजाहू मैं मानक लद्दा, मुल ना किदा मैं कु सतगुर दिता, ढूंढ वजाई थिया थिता, जन्म पदार्थ नानक जिता पौड़ी, जिसका मस्तक कर्म होए सो सेवा लागा, जिस गुरमिल कमल परगासिया सुवन दिन जागा, लगा रंग चरनार बिंद सब भ्रम पौ भागा, आत्म जिता गुरमति आगंजत पागा, जिसह त्याया पार ब्रह्म सो कल मह तागा, साधु संगत निर्मला अठ सठ मज नागा, जिस प्रभ मिलिया आपना सो पुरख सुभागा, नानक तिस बलिहार ने जिस एवड भागा।

आप वरन्या तन सो तेरा थान जिथै तू उठा तन सो तेरे भगत जिन्नी सच तू डिठा जिसनो तेरी दया सलाहे सोए तुद जिस गुर भेटे ना।

जुगत साई सहकाया फेर पलटी है चुलै सो छत निरंजनी मल तख्त बैठा गुर हटी है करह जे गुर फरमाया सिल जोग अलूणी चटी है लंगर चल गुर शब्द।

साली धर्म राय है देवता लै गल्ला करे दलाली सतगुरे आखे सच्चा करे सा बात हुए दरहाली गुरे अंगद दी दोही फिरी सच करते बंद बहाली नानक काया पलट कर मल तख्त बैठा सह डाली दर सेवे उम्मत खड़ी मस कल्ले हुए जंगाली दर दरवेश खसम दे नाए सच्चे बाणी लाली बलवंड खीवी नेक जन जिस बहुती छाओ पतराली लंगर दौलत वंडी है रस अमृत खीर कियाली गुरसिखा के मुख उजले मन मुख थीए पराली पए कबूल खसम नाल जा काल मरदी काली माता खीवी सहो सोए जिन गोए उठाली होरे ओ गंग बहाई है दुनियाई आखे के क्यों नानक ईसर जगन्नाथ उचहदी वैन बिरक्योन माधाना पर्वत कर नेत्र बासक शब्द रिड़क्योन चौदह रत्न निकालियन कर आवा गौन चिलक्योन कुदरत ऐह वे खालियन जिन ऐवड पिंड ठिणक्योन लहणे धरियन छत्र सिर असमान क्याड़ा सिक्योन ज्योत समाणी ज्योत माहे आप आपै सेती मिक्योन सिखा पुतना कोख कै सब उम

काम क्रोध मद मत्सर काट काट कस दीन रे कोई है रे संत सहज सुख अंतर जा को जप तप देओ दलाली रे एक बूंद भर तन मन देवो जो मद दे कलाली रे रहाओ पवन चतर दस पाठी कीनी ब्रह्म यगन तन जारी रे मुंदरा मदक सहज धुन लागी सुखमन पोचन हारी रे तीर्थ बरत नेम सुच संयम रव सस गहन देओ रे सुरत प्याल सुधा रस अमृत एहो महारस प्यो रे निचार धार चोवै अत निर्मल एह रस मनुआ रातो रे कह कबीर सगले मद छूछै एह महारस साचो रे गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर महुआ पौ पाठी मन धारा सुख मन नारी सहज समानी पीवै पीवन हारा औदू मेरा मन मतवारा उन्मद चढ़ा मदन रस चाखिया त्रे भवन भया उजियारा रहाउ दोए पुर जोर रसाई पाठी पियो महारस भारी काम क्रोध द्वे किए जलेता छूट गई संसारी प्रगट प्रगास ज्ञान गुर गम्मत सतगुर ते सुध पाई दास कबीर तास मत माता उचक ना कबहू जाई तू मेरो मेर पर्वत स्वामी।

कह कर जानी। हम निर धन ज्यो एहो धन पाया, मरते फूट गमानी करै गमान, चुभै तिस सूला को काढ़न को नाही। अजै सो चोभ को बिलल बलाते, नरके घोर पचाई, कवन नरक क्या सुर्ग बिचारा। संतन दो रादे, हम काहू की कान ना कटते, अपने गुर पर सादे। अब तो जाए चढ़े सिंघासन।

जप तप संयम गुरमुख भोगी रहाउ बुद्ध बेपूत चढ़ावो अपनी सिंगी सुरत मलाई कर बैराग फिरो तन नगरी।

जग पीतर जन्म कवन फल पाया भावनित तरन तारन चिंतामन एक निमुख नायो मन लाया गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन प्रभ जियो पिंड था दिया जिसकी भाव भगत नहीं साधी रहा पर तन पर तन पर ती निंदा पर अपवाद ना छूटे आवागमन होत है फुन फुन एहो प्रसंग ना टूटे जे घर कथा होत हर संतन एक निमख ना कीनो मैं फेरा लंपट चोर दूत मतवारी।

जाहि भलाई जे सिमरन तुझ पूहै नाम आई। सिमर सिमर हर हर मन गाइए एहो सिमरन सतगुर ते पाइए। सदा सदा सिमर दिन रात उठत बैठत सास ग्रास। जाग सोए सिमरन रस भोग हर सिमरन पाइए संयोग। जेहे सिमरन नाही तुझ भार

बंधन पाया, मुख तै गुरे अनल बुझाया, जब नक सिख इहो मन चीना, तब अंतर मज्जन कीना, पवन पत उन मन रहन खरा, नहीं मृत ना जन्म जरा रहाऊ, उल्टी ले सकत सहारं, पैसी ले गगन मजारं, बेदी अले चक्र पुवंगा, पेटी अले रायन संगा, चूकी अले मोह मै आसा, सस कीनो सूर ग्रासा, जब कुंभक पर फुर लीना, तह बाजे अनहद बीना, बकतै बक शब्द सुनाया।

पीले गुडी आकाश मदे परम यले पंच जनास्यो बात बतौआ चीत सो डोरी राखी अले मन राम नामा वेदी अले जैसे कनक कला चित मांडी अले रहाउ आनी ले कुंभ पराई ले उदक राजकुमार पुरंदरिये हस्त बनोद विचार करती है चीत सो गागर राखी अले मंदर एक द्वार दस जाके गऊ चरावन छाडी अले पांच कोस पर गऊ चरावत चीत सो बशरा राखी अले कहत नाम देव सुनो तलोचन बालक पालन पौडी अले अंतर बाहर काज विरुद्धी चीत सो बारक राखी अले वेद पुराण शास्त्र अनंता गीत कबेतना गावोगो अखंड मंडल निरंकार मह अनहद बीन बजावोगो वैरागी रामह गावोगो।

दोए सम कर राखो ब्रह्म जोत मिल जाओगो तीर्थ देख ना जल मह पैसो जी जंत ना सतावोगो अठ सठ तीर्थ गुरु दिखाए घट ही भीतर नाओगो पंच सहाई जन की सोबा पलो पलो ना कहावोगो नामा कह चित हर सिंह राता सुन समाद समाओगो माए ना होती बाप ना होता कर्म ना होती काया हम नहीं होते तुम नहीं होते कवन कहां ते आया राम कोई ना किसी केरा जैसे तरवर पर।

घर दूजा बनारसी तप करे उल्ट तीर्थ मरे अग्न दह काया कल्प कीजे अश्वमेध जग कीजे सोना गर्भदान दीजे राम नाम सर तउ ना पूजे छोड़ छोड़ रे पाखंडी मन कपट ना कीजे हर का नाम नित नित है लीजे रहाउ गंगा जो गोदावर जाइए कुंभ जो केदार नाइये गोमती सहस गऊ दान कीजे कोट जो तीर्थ करे तन जो हिवाले।

जप एहन सुनाम हरे, कोट कोट दोख बहु कीने, सब पर हर पास तरे रहाउ, हर हर नाम जपह आराध, सेवक पाए खरे, किल बिख दोख गए सब नीकर, ज्यो पानी मैल हरे, खिन खिन नर नारायण गावह, मुख बोलह नर नर हरे, पंच दोख असाध नगर मह, एक खिन पल दूर करे, वड भागी हर नाम त्यावह, हर के भगत हरे, तिनकी संगत देहे प्रभ जाच्यों, मैं मूड मुग्ध निस्तरे, किरपा किरपा तार जग जीवन, रख ले वो सरन परे, नानक जन तुमरी सरनाई, हर राख हो लाज हरे, नट महला चौथा, राम जप जन, राम नाम रले, राम नाम जपियो गुरबचनी, हर तारी हर किरपले रहाऊ, हर हर अगम अगोचर स्वामी, जन जप मिल सलल सलले, हर के संत मिल राम रस पाया, हम जन कै बल बलले, पुरखोत्तम हर नाम जन गायु, सब दालद दुख दलले, विच देही दोख असाध पंच धातु, हर किए खिन परले, हर के संत मन प्रीत लगाई, ज्यों देखै सस कमले, उनवै कन कन कन हर गरजै, मन बिगसै मोर मुरले, हमरै स्वामी लोच हम लाई, हम जीव है देख हर मिले, जन नानक हर अमल हर लाई, हर मेलो हो आनंद भले, नट महला चौथा, मेरे मन जप हर हर नाम सखे, गुर प्रसादी हर नाम त्यायु, हम सतगुर चरण पखे रहाउ, उत्तम जगन्ना जगदीश्वर, हम पापी सरन रखे, तुम वड पुरख दीन दुख भंजन, हर दियो नाम मुखे, हर गुण ऊच नीच हम गाए, गुर सतगुर संग सखे।

अवगनियारी पाथर भारी हर तारी संग जनखे जिनको तुम हर राखो स्वामी सब तिनके पाप क्रिखे जन नानक के दयाल प्रभ स्वामी तुम दुष्ट तारी हर नखे नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर राम रंगे हर हर कृपा करी जगदीश्वर हर त्यायो जन

पालक स्वामी हम राखो वड पाप गे, तुमरी संगत हर को ना उधरेओ। प्रभ किए पतत पवगे, गुण गावत शीपा दुष्टारेओ। प्रभ राखी पैज जनगे, जो तुमरे गुण गाव है स्वामी। हौ बल बल बल तिनगे, भवन भवन पवित्र सब किए। जह तूर परी जन पगे, तुमरे गुण प्रभ कह ना सकह हम। तुम वड वड पुरख वडगे, जन नानक को दया प्रभ धारो। हम सेव है तुम जन पगे।

प्रभ तारी मत गुरमत नाम बने रहाउ हर जन हर जस हर हर गायु अपदेश गुरु गुर सुने किल बिख पाप नाम हर काटे जिव खेत किरसान लुने तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानहु हम कह ना सकह हर गुने जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही गुण जानहु प्रभ अपने माया फास बंद बहु बंदे हर जप्यो खुल खुलने ज्यों जल कुंचर तंदुए बांधियो हर चेतियो मोख मुखने स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो हो जुग जुगने।

कल कीर्त हर प्रवणे हर हर दयाल दया प्रभ धारी लग सतगुर हर जपने रहाउ हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी सब त्याव है हर रुड़ने जिनको तुमरे वड कटाख है ते गुरमुख हर सिमरणे इहो प्रपंच किया प्रभ स्वामी सब जग जीवन जुगने ज्यों सललै सलल उठह बहु लहरी मिल सललै सलल समणे जो प्रभ किया सो तुम ही जानो हम नह जानी हर गहने हम बारक कौर देवस्तत तार हो हम करह प्रभु सिमरणे तुम जल निद हर मान सरोवर जो सेवै सब फलने जन नानक हर हर हर हर बांछ हर देव हो कर कृपणे नट नारायण महला चौथा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन सेव सफल हर काल ले गुर पग रे नरवाल सब दाल पांच दुख दाल हर हो नदर निहाल रहाउ हर का ग्रह हर आप सवारियु हर रंग रंग महल बेअंत लाल लाल हर लाल हर अपनी कृपा करी आप ग्रह आयु हम हर की गुर की है बसीठी हम हर देखे भई निहाल निहाल निहाल निहाल हर आपते की खबर गुर पाई मन तन आनंद आनंद भय हर आवते सुने मेरे लाल हर लाल जन नानक हर हर मिले भय गलतान हाल निहाल निहाल नट महला चौथा मन मिल संत संगत शुभवंती सुन कथ कथा सुखवंती सब किल विख पाप लहंती हर हो लिखत लखंती रहाउ हर कीरत कल युग विति उत्तम मत गुरमत कथा पजंती जिन जन सुनी मन्नी है जिन जन तिस जन कै हो कुर्बानंती हर कथ कथा का जिन रस चाखिया तिस जन सब भूख लहंती नानक जन हर कथा सुन तृप्ति जप हर हर हर होवंती नट महला चौथा कोई आन सुनावै हर की हर गाल तिस को हो बल बल बाल सो हर जन है पल पाल हर हो मेल निहाल रहाउ हर का मार्ग गुर संत बतायु गुर चाल बिखाई हर चाल अंतर कपट चकाव हो मेरे गुर सिख हो निह कपट कमाव हो हर की हर काल निहाल निहाल निहाल ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाई जिन्ना हर प्रभ जानियो मेरा नाल जन नानक को मत हर प्रभ दीनी हर देख निकट हदूर निहाल निहाल निहाल निहाल राग नट नारायण।

मन प्यास बहुत दर्शावे रहाउ। सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस ऊपर रुचि आवे, कृपा करहु जिस पुरख बधाते सो सदा सदा तुद त्यावे। कमन योग कमन ज्ञान ध्याना

साध संग नानक परगासियो आन नाही रे बियो नट महला पंजवा जाको पई तुम्हारी धीर जम की त्रास मिटी सुख पाया निकसी हम मैं पीर रहाऊ तप्त बुझानी अमृत बानी तृप्ते ज्यो बारक खीर मात पिता साजन संत मेरे संत सहाई वीर खुले ब्रह्म पीत।

अपना जन आपह आप उधारियो, आठ पैर जन कै संग बस्यो, मन ते नाही बसारियो रहाउ, वर्ण चिन्ह नाही किश पेखियो, दास का कुल ना बेचारियो, कर कृपा नाम हर दियो, सहज सुपाए सुवारियो, महा बिखम अग्न का सागर, तिस ते पारि उतारियो, पेख पेख नानक बिगसानो, पुनः पुनः बलिहारियो, नट महला पंजवा, हर हर मन में नाम कहियो, कोट अपराध मिट है खिन पीतर, ताका दुख न रहियो रहाउ, खोजत खोजत पयो बैरागी, साधु संग लहियो, सगल त्याग एक लिव लागी, हर हर चरण गहियो, कहत मुकत सुनते निस्तारी, जो जो शरण पयो, सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, कहो नानक आनंद पयो, नट महला पंजवा, चरण कमल संग लागी डोरी, सुख सागर कर परम गत मोरी, रहाउ अंचला गहायो जाने अपने को, मन बीदो प्रेम की खोरी, जस गावत भगत रास उपजियो, माया की जाली तोरी, पूर्ण पूर रहे कृपा निद, आना पेखो होरी, नानक मेल लियो दास अपना, प्रीत ना कबहू थोरी, नट महला पंजवा, मेरे मन जप जप हर नारायण, कबहू ना बिसरहो मन मेरे ते, आठ पहर गुण गायन, रहाउ साधु तूर करो नित मज्जन, सब किल बिख पाप गवायन, पूर्ण पूर रहे कृपा निद, घट घट दिष्ट समायन, जाप ताप कोट लख पूजा, हर सिमरन तुल न लायन, दुइ कर जोड़ नानक दान मांगै, तेरे दासन दास दसायन, नट महला पंजवा, मेरा सर्बस नाम निदान, कर कृपा साधु संग मिलियो, सतगुर दीनो दान, रहाउ सुख दाता दुख भंजन हारा, गाउ कीर्तन पूर्ण ज्ञान, काम क्रोध लोभ खंड खंड कीने, बिनस्यो मूड अभमान, क्या गुण तेरे आख बखाना, प्रभ अंतर जामी जान, चरण कमल सरन सुख सागर, नानक सद कुर्बान।

दहलिस हर मुश्की मुश्क गंधारी तेरी निर्गुण कथा कथा है मीठी गुरनी के बचन संहारी गावत गावत हर गुण गाई गुण गावत गुर निस्तारी विवेक गुरु गुरु समदर्शी तिस मिलिए संक उतारी सतगुर मिलिए परम पद पाया हम सतगुर कै बलिहारी पाखंड कर कर भरमी लोभ पाखंड जग बुरियारी हलत पलत दुखदाई होवे जम काल खड़ा सिर मारी उगवे दिनस आल जाल संभाले बिख माया के बिस्थारी आई रहन भया सुपनंतर बिख सुपने भी दुख सारी कल्लर खेत लै कूड़ जमाया सब कूड़े के खलवारी साकत नार सब भूख पुखानी दर ठाढ़े जम जंदारी मनमुख करज चढ़िया बिख भारी उतरे शब्द विचारी जितने करज करज के मंगिए कर सेवक पग लगवारी जगन्नाथ सब जंतर अपाई नक खीनी सब नथहारी नानक प्रभ खींच।

हर अमृत सर नावारे, सतगुरु ज्ञान मज्जन है नीको, मिल कलमल पाप उतारे रहाउ, संगत का गुण बहुत अधिकाई, पढ़ सुआगन के उधारी, परसन परस भय कुबिजा को, लै बैकुंठ सधारी, अजामल प्रीत पुत्र प्रत कीनी, कर नारायण बोलारी, मेरे ठाकुर कै मन पाए पावनी।

गुर सरल प्रभु रखवारे, ज्यो कुंचर तंदुऐ फकर चलायो, कर ऊपर कढ निसतारे रहाओ। प्रभ के सेवक बहुत अतनीके, मन श्रद्धा कर हर तारे, मेरे प्रभ श्रद्धा भगत मन भावै।

एका नगर निहारी हर प्रभ ठाकुर रविया सब ठाई सब चेरी जगत समारी आप दयाल दया दान देवे विच पाथर कीरे कारी अंतरवास बहुत मुचकाई ब्रह्म भूला मिर्ग सिंघारी।

जन माने प्रतख गुरु निस्तारी सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया मन बीजिया खवारी ज्यों जन चंद्र हांस दुखिया त्रिष्ट बुद्धि अपना घर लूकी जारी प्रभ को जन अंतर रिद लोचे प्रभ जन के सास निहारी कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए जन पीछे जग निस्तारे अपने आप आप प्रभ ठाकुर प्रभ आपे सिष्ट सवारी जन नानक आपे आप सब वरते कर कृपा आप निस्तारी नट महला चौथा राम कर कृपा लेहो उभारी जो पकर द्रौपदी दुष्टायानी हर हर लाज निवारी रहाउ कर कृपा जाचक जन तेरे एक मांगो दान प्यारे सतगुर की नित श्रद्धा लागी मोह को हर गुर मेल सवारी साकत कर्म पानी ज्यो मथिया नित पानी झोल चुलारे मिल सत संगत परम पद पाया कड माखन के गटकारी नित नित काया मजन किया नित मल मल दे सवारी मेरे सतगुर के मन बचन ना पाए सब फोकट चार शिंगारी मटक मटक चल सखी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारी गुरमुख सेवा मेरे प्रभ पाई मैं सतगुर अलख लखारी नारी पुरख पुरख सब नारी सब एको पुरख मरारी संत जना की रेन मन पाई मिल हर जन हर निस्तारी ग्राम ग्राम नगर सब फिरिया हृदय अंतर हर जन पारी श्रद्धा श्रद्धा अपाई मलाई मोह को हर गुर गुर निस्तारी पवन सूत सब नीका करिया सतगुर शब्द विचारी निज कर जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारी तौ गुण ईस वर्ण नहीं साको तुम मंदर हम निक कीरे नानक कृपा करो गुर मेलो मैं राम जपत मन तीरे नट महला चौथा मेरे मन भज ठाकुर अगम अपारी हम पापी बहु निर्गुण यारे कर कृपा गुर निस्तारे रहाउ साधु पुरख साध जन पाए एक बिनो करो गुर प्यारे राम नाम धन पूंजी देव हो सब तिसना भूख निवारे पचै पतंग मृग प्रिंग कुंचर मीन एक इंद्री पकर संघारे पंच भूत सबल है देहि गुर सतगुर पाप निवारे शास्त्र वेद सोध सोध देखे मुन नारद बचन पुकारे राम नाम पढ़ो गत पावहो सत संगत गुर निस्तारी प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी जिव सूरज कमल निहारे मेर समेर मोर बहु नाचै जब उनवै कन कनहारे साकत को अमृत बहु सिंचो सब डाल फूल बिस्कारी ज्यों ज्यो निवह साकत नर सेती छेड़ छेड़ कड्डै बिख खारी संतन संत साध मिल रही है गुण बोल है पर उपकारी संतै संत मिले मन बिगसै ज्यों जल मिल कमल सवारी लोभ लहर सब सुवान हलक है हलक्यो सबह बिगारी मेरे ठाकुर कह दिबान खबर हुई गुर ज्ञान खड़ग लै मारी राख राख राख प्रभ मेरे मैं राखो कृपा तारी नानक मैं

आदि अनक जतन कर रहे हर अंत नाही पाया हर अघम अगम अगाध बोध अदेश हर प्रबराया रहाऊ काम क्रोध लोभ मोह नित झगरते झगराया हम राख राख दीन तेरे हर शरण हर प्रभ आया शरणागति प्रभ पालते हर भगत वचल नाया प्रहलाद जन हर नाख पकरियो।

ललाट लिखे पाया गुर साधु, गुर बचनी मानता नराता। हर प्रभ आए मिले सुख पाया, सब किल विख पाप गवाता। राम रसायन जिन गुरमत पाया, इनकी उत्तम बाता। इनकी पंक पाई बड़भागी, जन नानक चरण पराता। माली गौड़ा महला चौथा, सब सिद्ध साधक मुन जना। मन भावनी हर त्यायो, अपरंपरो पार ब्रह्म स्वामी। हर अलख गुरु लखायो रहाओ, हम नीच मध्यम कर्म किए। नहीं चेतेओ हर रायो, हर आन मेलेओ सतगुरु। खिन बंद मुक्त करायो, प्रभ मस्त के तुर लिखिया। गुरमति हर लिव लायो, पंच शब्द दरगाह बाजिया। हर मिलेओ मंगल गायो, पतत पावन नाम नरहर। मंद भागियां नहीं पायो, ते गर्भ जोनी गाली है। ज्यों लोन जलह गलायो, मत देहे हर प्रभ अगम ठाकुर। गुर चरण मन मैं लायो, हर राम नाम मैं रहो लागो।

धार, चरण संतन के मेरे हृदय मझार, माली गौड़ा महला पंजवा, सब कै संगी नाही दूर, करन करावन हाजरा हजूर, रहाउ सुनत जियो जास नाम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम, सगल निद हर हर हरे, मुन जनता की सेव करे, जा कै घर सगले समाहे, तिस्ते बिरथा कोए नाहे, जी जंतर करे प्रतपाल, सदा सदा सेवो कृपाल, सदा धर्म जाकै दीवान, बेमोहताज नहीं किश कान, सब किश करना अपने आप, रे मन मेरे तू ता को जाप, साध संगत को हों बलिहार, जास मिल हुए उधार।

माधव तू धन के सो सावलियो बीठ लाए रहाओ कर धरे चक्र बैकुंठ ते आए गज हस्ती के प्राण उधारी अले दुःशासन की सभा द्रौपदी अंबर लेत उबारी अले गौतम नार अहल्या तारी पावन केतक तारी अले ऐसा अधम अजात नाम देव तौ शरणागत आई अले सब

सलाहिया जिन कर देखिया खेल संजोगी मेलावड़ा इन तन कीते भोग वे जोगी मिल विछड़े नानक भी संजोग मारू महला पहला मिल मात पिता पिंड कमाया तिन करता लेख लिखाया लिख दात जोत वड़ियाई मिल माया सुरत गुआई मूर्ख मन काहे कर सहमाना उठ चलना खसमै भाणा रहाउ तज साध सहज सुख होई घर छड़ने रह ना कोई किस खाजै किस धर जाइए जे बहुड़ दुनिया आइए सज काया पट हंडाई

मारू महला पहला कर पहला करनी कागद मन मसवाणी बुरा पला दुह लेख पई ज्यो ज्यो किरत चलाए त्यो चली है तौ गुण नाही अंत हरे चित चेत सकी नहीं बावरिया हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा जाली रैन जाल दिन हुआ जेती घड़ी फाही तेती रस रस चोग चुग है नित फस है सूटस मूड़े कमन गुणी काया आरन मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही कोले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया सन्नी चिंत भई।

पहला बिमल मजार बसस निर्मल जल पद्मन जावल रे पद्मन जावल जल रस संगत संग दुख नहीं रे दादर तू कबह न जानस रे पक्षस बाल बसस निर्मल जल अमृत ना लक्ष रे रहाव बस जल नेतना वस्त अलियल मेर चचा गुण रे चांद कुमुंदनी दूरों निवसस।

का आगम सास सुने अपना आप तू कबहु ना छोड़स स्वान पूछ ज्यों रे एक पाखंडी नाम ना राच है एक

दर ढोई झूठा आवण जान साचा नाम सलाही है साचे ते तृप्त होए ज्ञान रतन मन मांजी है बहुड़ न मैला होए जब लग साहिब मन वसे तब लग बिघन न होए नानक सिर दे छुटी है मन तन साचा सोए।

अजाची एको हाट साहो सबना सिर बनजारी एक भांति दोवें सिरे सतगुरु नबेड़े सो बूझै जिस एक लिव लागी जियो रह ने परांती।

तोड़े परम चुकाए, सहजे सिफती तनख चढ़ाए, गुर कै शब्द मरे मन मारी, सुंदर जोगा तारी जियो, हम है जलिया मनो विसारी।

मारू महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जह बसाल है तह बैसा स्वामी जह भेज है तह जावा सब नगरी मह एको

गुनहा बख्शाए जियो, अब तू मार्ग पाए। हर की चरनी लाग रहा, विचो हो आप गुआए। मेरे मन गुरमुख नाम हर त्याए।

सच सोए। एक भगती सार ना जाननी, मनमुख भरम भुलाए। ओना विच आप वरतदा, करना किशु ना जाए। जिस नाल जोर ना चले, खले की चै अरदास। नानक गुरमुख।

बाल लीक बटवारा गुरमुख पार पया रहाउ सुर नारे गण गंधर बेज पियो रिख बपरे हर गाया शंकर ब्रह्म देवी जपियो मुख हर हर नाम जपिया हर हर नाम जिन्ना मन पीना ते गुरमुख पार पया कोट कोट ते तीस त्यायो हर जपत्या अंत ना पाया वेद पुराण सिमरत हर जपया मुख पंडित हर गाया नाम रसाल जिन्ना मन वसिया ते गुरमुख पार पया अंत तरंगी नाम जिन जपया मैं गणत ना कर सकिया गोविंद कृपा करे थाए पाए जो हर प्रभ मन पाया।

मैं हर हर कथा मन पाणी, हर हर कथा नित सदा कर, गुरमुख अकथ कहानी रहाऊ। मैं मन तन खोज टंडोलिया, क्यों पाई अकथ कहानी, संत जना मिल पाया। सुन अकथ कथा मन पाणी, मेरा मन तन नाम आधार हर, मैं मेले पुरख सुजानी, गुरपुरख पुरख मलाए प्रभ, मिल सुरती सुरत समाणी, वडभागी गुर सेविया, हर पाया सुगड़ सुजानी।

गुण सुजानी जन नानक शरणागती कर कृपा नाम सुमानी। मारू महला चौथा हर भाव लगा बैरागिया वडभागी हर मन राख मिल संगत शरदायु पुजै गुर शब्दी हर रस चाख सब मन तन हरिया होया गुरबाणी हर गुण पाख।

हर का मन मानिया सो सेवक चौ जुग चौ कुंट जानिया जे उसका बुरा कह कोई पापी तिस जम कंकर खाई जियो सब मह एक निरंजन करता सब कर कर वेख अपने चलता जिस हर राख है तिस कौन मारे जिस करता आप छाई जियो हम अन दिन नाम लई करतारी जिन सेव

बात सुनी सो सुखिया सो सदा सुहेला जो गुर मिल गाए दुनी रहाओ देह धार अर देवा दर्पह सिद्ध साधक डर मोया लख चौरासी ही मर मर जन्मे फिर जो नी जोया राजस सातक तामस डरपह केते रूप उपाया छल बपरी एह कौला डरपै अत डरपै धर्म राया सगल समगरी डरह ब्यापी बिन डर करने हारा कहो नानक भगतन का संगी भगत सोह है दरबारा मारू महला पंजवा पांच बरख को अनाथ ध्रुव बारक हर सिमरत अमरे अटारी पुत्र हेत नारायण कहियो जम कंकर मार बदारी मेरे ठाकुर केते अगणत उधारी मोहे दीन अल्प मत निर्गुण परयो सरद द्वारी रहाओ वाल्मीक सुपचारो तरियो बदक तरे बेचारी एक निमख मन माहे अरादेव गजपत पार उतारी कीनी रखिया भगत प्रहलाद हरनाखस नखह बेदारी विदर दासी।

नानक ओट हर की लीजै पुजा पसारी मारू महला पंजवां वेतन वेत भ्रम्यो बहु भांति अनक।

सुनत भव तरी ता स्यो रंग न लाव सरी थोरी बात अल्प सुपने की बहुर बहुर अटका।

नर काय पर ग्रह जाय कुचल कठोर काम गर्धब तुम नहीं सुनियो धर्म राय रहाओ विकार पात्र गलह बांदी निंद पोट सिराय महासागर समुंद लंघना पार न परना जाय काम क्रोध लोभ।

ससी मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी अलिपाई स्वभावत जैसी बैसंतर अलिप्त सदा निर्मलाई जिस कर्म खुलिया तिस लहया पड़दा जिन गुर पह

आए मनुआ भलो समो सुआउ रहाउ खोए खहड़ा परम मन का सतगुर सरणी जाए। कर्म जिस कौ तुरहु लिखिया।

सब किस जाने मेरे जी का प्रीतम बिसर गए बकबाया रहा दूजा मारू महला पंजवा कोट लाख सर्ब को राजा जिस हृदय नाम तुम्हारा जाको नाम ना दिया मेरे सतगुर से मर जन्म है गावारा मेरे सतगुर ही पत राख चीत आवह तब ही पत पूरी बिसरत रलिए खाक रहाऊ रूप रंग खुशियां मन।

माया रंग बरंग खिना मह ज्यों बादर की छाया से लाल पये गूड़े रंग राते जिन गुर मेल हर हर गाया ऊच मूच अपार स्वामी अगम दरबारा नामो वड्याई सुबा नानक खसम प्यारा मारू।

नित परात ते गुहजी ता कै निकट न होई खलिया होए अवतूत बैठे लाए तारी जोगी जति पंडित बीचारी ग्रह मड़ी मसानी बन मह बसते ऊठ तिना कह लागी पलिया काटे बंधन ठाकुर जाके हर हर नाम बस्यो जी ताके साध संग भये जन मुक्ते।

मात गर्भ में जिन प्रित पारिया, जियो पिंड दे साज सवारिया, सोई बधाता खिन खिन जपिया, जिस सिमरत अवगुण सब ढकिया, चरण कमल उरे अंतर तारू, बिठिया बन ते जियो उधारू।

सत कर मानी, हित लायो सठ मूड अज्ञानी। काम क्रोध लोभ मद माता, कौडी बदलै जन्म गवाता। अपना छोड़ पराया राता, माया मद मन तन संग जाता। तृष्ण ना बूझै करत कलोला, ऊनी आस मिथ्या सब बोला। आवत अकेला जात अकेला, हम तुम संग झूठे सब बोला। पाए ठगौरी आप पलायो, नानक किरत न जाए मटायो। पास पंखी

न उठ उठ फिर तावे मन तन बासना बहुत विस्थारा अहम में मूठो बेचारा अनक दुख अर बहुत सजाई ता की कीमत कहन ना जाई प्रभ बिसरत नरक में पाया तह मात ना बंद ना मीत ना जाया जिस को होत कृपाल स्वामी सो जन नानक पार ग्रामी प्रमत प्रमत प्रव सरनी आया दीना नाथ जगत पित माया प्रव दयाल दुख दर्द बदारन जिस पावे तिस ही निस्तारन अंधकूप ते काड नहारा प्रेम भगत होवत निस्तारा साध रूप अपना तन तारिया महा अग्न ते आप उबारिया।

मेरा मारू महला पंजवां कत कौ डहकावो लोगा मोहन देन किरपाई ऐसी जान पाई सरन सूरो गुरदाता राखे आप वडाई रहाओ भगतां का आग्या का।

मोहन अलाखे अपारा दान पावो संता संग नानक रेन दसारा मारू महला पंजवा त्रिप्त अगाए संता गुर जाने जिन मंता ताकी किछ कहन ना जाई जाको नाम बड़ाई लाल अमोला लालो अगह अतोला नामो रहाओ अवगत सिओ मानिया मानो गुरमुख तत ज्ञानो पेखत सगल त्यानो तजियो मन ते अभिमानो निश्चल तिनका ठाणा गुर ते महल पछाणा अन दिन गुर मिल जागे हर की सेवा लागे पूरन त्रिपत अगाए सहज समाध सुपहाय हर भंडार हाथ।

चेत मन मह हर हर निधाना एह निर्मल रीत रहाउ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै तिस सीध नवल नवतन चतर सुंदर मन नानक तिस संग बीद मारू महला पंजवा चलत बैसत सोवत जागत गुरमंत्र हृदय चितार चरण सरन भज संग साधु भव सागर उतरह पार मेरे मन नाम हृदय धार कर प्रीत मन तन लाए हर सिउ अवर सगल विसार रहाउ जियो मन तन प्राण प्रभ के तू अपने आप निवार गोविंद भज सब स्वार्थ पूरे नानक कबहु ना।

हाथ महापौजन माहे तुलो जाको लिखियो माथ डूबे नाम बिन कन साथ करन कारण चेतना आवे देकर राखे हाथ रहाओ साध संगत गुण उचा।

पछताए, छूटत नाहिन भाग्यो, एह चिंता उपजी घट मह, जब गुर चरणन अनुराग्यो, सफल जन्म नानक तब हुआ, जो प्रभ जस मह पाग्यो, मारू अष्टपदियां महला पहला कर पहला।

साहिब निर्मल मन मान एका तू अजरावर अमर तू सब चालन हारी नाम रसायन पाए ले पर हर दुख भारी रहाओ हर पढ़िए हर बुझिए

दिया समुंद मझार कंदी देसना आवई ना उरवार ना पार वंजी हाथ ना खेवटू जल सागर असराल बाबा जग फाथा महाजाल गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम संभाल रहाउ सतगुरु है बोहिथा शब्द लंघावन हार तिथै पवन ना पावको

को कछ नहीं, गुरपुरे पूरी मत कीन रहाओ। अवगण सुपर गुण नहीं, बिन गुण क्यों कर जाओ। सहज शब्द सुख उपजे, बिन भागा तन नाही। जिनके नाम ना मन वसै,

साच पठायो लेख मुख तमाण तन खड़ी गुरमुख आखी देख तुद भावे तू मन वसै नदरी कर्म वसेख भूख प्यासो जे

थीऐ पारस संग पीजै वन्नी साचे लाल की किन कीमत कीजै पेखी हाथ न लभई तीरथ नहीं दाने पूछो वेद पढ़ंतिया मूठी विण माने नानक कीमत।

फिरै, ग्रह धर्म गवाए सतगुर ना पेटै, दुर्मत कुमन केरै, दसंतर भवै पाठ पढ़ थाका, तृष्णा हुए बधेरै, काची पिंडी शब्द ना चीनै, उदर भरै जैसे ढूरै, बाबा ऐसी रवत रवै सन्यासी, गुर कै शब्द एक लिव लागी, तेरे नाम रते त्रिपतासी रहाओ, कोली गेरू रंग चढ़ाया, वस्त्र पेख पेखारी, कापड़ फार बनाई खिंथा, चोली माया तारी, घर घर मांगे जग प्रबुद्ध, मन अंधे पतहारी, परम पलाना शब्द ना चीने, जुए बाजी हारी, अंतर अगन ना गुर बिन बूजे, बाहर कुवर तापे, गुर सेवा बिन भगत ना होवी, क्यों कर चीन से आपे, निंदा कर कर नरक निवासी, अंतर आत्म जापे, अठ सठ तीरथ परम बगूचे, क्यों मल धोपे पापे, छाणी खाक बेभूत चढ़ाई, माया का मग जो है, अंतर बाहर एक ना जाने, साच कहे ते शो है, पाठ पढ़े मुख झूठो बोले, निगुरे की मत ओ है ना।

दिस धावे बिन रत आत्म ज्ञाना अमृत छोड़ महाबिख पीवे माया का देवाना किरत न मिटई हुक्म न बूझे पशुआ माहे समाना हाथ कमंडल कापड़िया मन कृष्णा उपजी पारी स्त्री तज कर काम व्यापिया चेतन।

परांती तां जम करे खुआरी सो सन्यासी जो सतगुर सेवै विचो हो आप गवाई साधन भोजन की आस न करे अचिंत मिले सो पाई बकै ना बोले खिमा तन।

गगन पताली, जनता जोत तुम्हारी, सब सुख मुकत नाम धुन बाणी, सच नाम उरतारी।

मिल पिंड करे अंतर गर्भ पुरद लिव लागी सो प्रभ सारे दात करे संसार पव जल क्यों तरै गुरमुख नाम निरंजन पाई है।

हरि, तू दाता दयाल सबै सिर, एहन सदात सुमार करी। चार पदार्थ लै जग जन्मिया, सिर शक्ति घर वास धरी। लागी भूख माया मग जो है, मुक्त पदार्थ मोहे खरी। कर्ण पलाव करे नहीं पावे, एते उत ढूंढत थाक परे। काम क्रोध अहंकार व्यापे, कूड़ कतंब स्यो प्रीत करे। खावे भोगे सुन सुन देखे, पहर दिखावे काल करे। बिन गुर शब्द ना आप पछाणे, बिन हर नाम ना काल करे। जेता मोह हम मैं कर भूले, मेरी मेरी करते शीन खरे। तन धन बिन सह सह सह सहसा, फिर पछतावे मुख धूर परे। बिरद पया जो बन तन खिसिया, कप कंठ बरू दो नैनो नीर धरे। चरण रहे कर कंपन लागे, साकत राम ना हृदय हरे। सुरत गई काली हूं तौले, किसे न पावे रखियो करे। बिसरत नाम ऐसे दुख लागे, जम मार सम्हारे नरक खरे। पूरब जन्म को लेख ना मितई, जन्म मरे का को दोष तरे। बिन गुर बाद जीवन होर मरना, बिन गुर शब्द जन्म जरे। खुशी खुआर पए रस भोगण, फोकट कर्म विक

देव दृष्ट जागे परम चकाई, गुर प्रसाद परम पद पाई, सो जोगी एह जुगत पछाणे, गुर कै शब्द बिचारी जियो, संजोगी तन पिर मेला होवै।

न सोई। सतगुर मिले मरे मंदा होवे ज्ञान बिचारी जियो। एहो शब्द सार जिसनो लाए गुरमुख कृष्णा भुख गवाए। आपन लिया किशु ना पाईए कर कृपा कल तारी जियो। अगम निगम सतगुरु दिखाया कर कृपा अपने घर आया। अंजन माहि निरंजन जाता जिनको नदर तमारी जियो। गुरमुख होवे सो तत पाए अपना आप विचो गवाए। सतगुर बाजो सब धंद कमावे वेखो मन विचारी जियो। एक भ्रम भूले फिर अहंकारी

प्रभु की गही, गुर प्रसादी प्रभ आराधी, जम कंकर किशना कही, मोख मुकत द्वार जाके, संतरिदा पंडार, जी जुगत सुजान स्वामी, सदा राखन हार, दुख दर्द कलेश बिन सह, जिस बस है मन माहे, मृत नरक अस्थान बिखड़े,

अगम अगाह सिद्ध साधक देव मुन जान वेद करह उचार सिमर स्वामी सुख सहज पुंचह नहीं अंत पारावार अनक परासत मिटह खिन मह हृदय जप भगवान पाम नाते महापावन कोट दान स्नान बाल बुद्ध शुद्ध पुराण सर्व

तीर महासागर नह व्यापै खिनह उतरियो तीर चंदन अगर कपूर लेपन तिस संगे नहीं प्रीता।

मित्र सत्धर ना कछु जान सर्ब जी समत कर परगास प्रचंड प्रगट्यो अंधकार बनास पवित्र अपवित्र है किरण लागी।

का मान सुपाए अपाए जो निकट आवे सीत ता का जाए आप पर का कछ न जाने सदा सहज सुपाई चरण सरन सनाथ इहो मन रंग राते लाल गोपाल गुण नित गाउ नानक पए प्रभ कृपाल मारू महला पंजवां घर चौथा अष्टपदियां।

का हर जस गुर ते मांगना जागना जागन लीका हर कीर्तन मह जागना लागना लागन लीका गुर चरणी मन लागना एह बिदत सह प्रापते जा कै मस्तक भागना कहो नानक तिस सब कि

हर जस श्रवण सुनावना रहाउ। तुद आवत मेरा मन तन हरिया, हर जस तुम संग गावना। संत कृपा ते हृदय वासै, दूजा पाओ मिटावना। भगत दया ते बुध परगासै, दुर्मत दुख तजावना। दर्शन भेट तो होत पनीता, पुनरप गर्भ ना पावना। नौ निद रिद सिद पाई, जो तुमरै मन पावना। संत बिना मैं थाओ ना कोई, अवर ना सूजै जावना। मोहे निर्गुण को कोहे ना राखै, संता संग सुमावना। कहो नानक गुर चलत दिखाया, मन भदे हर हर रावना। मारु महला पंजवा, जीवना सफल जीवन। सुन हर जप जप सद जीवना रहाउ। पीवना जित मन आगावे, नाम अमृत रस पीवना। खावना जित भूख ना लागे, संतोख सदा तृप्तीवना। पहनना रख पत परमेश्वर, फिर नांगे नहीं थीवना। भोगना मन मदे हर रस, संत संगत महलीवना। बिन तागे बिन सोई आनी, मन हर भगती संग सीवना। मातिया हर रस महराती, तिस बहुड़ना कबहू औखीवना। मिलो तिस सर्ब निदाना, प्रभ कृपा।

उठ स ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिर परमंता, दुहु व्यवस्था तेजो मुक्ता, सोई सोहेला पाली है, ग्रह राज मह नरक उदास करोदा, बहु विद वेद पाठ सब सोदा, देही मैं जो रह अलिपता, जिस जन की पूर्ण काली है, जागत सूता परम भगूता, बिन गुर मुक्त न होइए मीता, साध संग टुट है हो बंधन, एको एक निहाली है, कर्म करे ता बंदा, नह करे ता निंदा, मोह मगन मन व्यापिया चिंदा, गुर प्रसाद सुख दुख सम जाने।

थे हस्त अदोत पया उठ चले ज्यो ज्यो औद बिहानिया पाप करेंदड़ सर पर मुठे अजराइल फड़े फड़ कुठे दोजक पाए सिरजनहार लेखा मंगै बाणिया संग न कोई भैया बेबा माल जोबन तन छोड़ वंजेसा करन करीम ना जातू करता तिल पीड़े ज्यो कहानिया खुस खुस लैंदा वस्त पराई वेखै सुने तेरे नाल खुदाई दुनिया लब पया खात अंदर

संगम अठसठ अंक समाई है। आपे सिद्ध साधक विचारी आपे राजन पंचाकारी तख्त बह अगली प्रभ आपे परम भेद पहु जाई है। आपे काजी आपे मुल्ला आप अपुल ना कबहू भुला आपे मेहर दया पत दाता ना किसे को बहराई है। जिस बख्शे तिस दे वड्याई सब सहदाता तिल ना तमाई पर पुर धार रहया ने केवल गुप्त प्रगट सब ठाई है। क्या सलाही अगम अपार है।

जल पड़कारी मनमुख तके कुंडा चारी बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाई है साचे हाथ वडाई है काम क्रोध अहंकार निवारी तस्कर पंच शब्द संघारी ज्ञान खड़गले मन स्यो लूजै मनसा मन है समाई है माँ की रकत पिता बिद धारा मूरत सूरत।

ब्राह्मण मरना, गुरते समझ पड़ी क्या डरना। तू दयाल दया कर देख है, दुख दर्द शरीर हो जाई है। निज कर बैस रहे पहु खाया, तावत राखे ठाक रहाया। कमल विगास हरे सरस पर आ।

जुग जुग विरली गुरमुख जाता, साचा रव रहया मन राता। तिसकी ओट गही सुख पाया, मन तन मैल ना काई। जीवर साइन साचे राती, हर प्रभ संगी पहो ना प्रांति। श्रवण स्रोत रजे गुरबाणी, ज्योति ज्योत मलाई। रख रख पैर तरे पौ तरना,

सत सत वरतै गहर गंभीरा, सच्चा साहेब सच परखै, साचै हुक्म चलाई हे। सत संतोखी सत गुर पूरा, गुर का शब्द मन्ने सो सूरा, साची दरगाह साच नवा।

साच परम पौ पंजन गुरमुख साच सखाई त्रेतै धर्म कला एक चूकी तीन चरण एक दुबदा सूकी गुरमुख हो सो साच पछाणे मनमुख पचै अवाई हे मनमुख कदे ना दरगाह सीजै बिन शब्द क्यों अंतर रीजै बांधे आवह बांधे जावह सोजी बूझ ना काई हे दया दुआ परे अद्धि होई गुरमुख विरला चीन कोई दोए पग धर

ठाके कर्म कमाई है। कर्म धर्म कर मुक्त मंगाही, मुक्त पदार्थ शब्द सलाही, बिन गुर शब्द मुक्त ना हुई, परपंच कर परमाई है। माया ममता छोड़ी ना जाई, से छूटे सचकार कमाई, अहनस भगत रते विचारी, ठाकुर स्यों बन आई है। एक जप तप कर कर तीरथ नावह, ज्यों तुद भावै तिवें चलावह, हठ निग्रह अपतीज ना पीजै, बिन हर गुर किन पत पाई है। कली काल मह एक कल राखी, बिन गुर पूरे किन ना पाखी, मन

रसन रसेरे उस्तत करह पर हर दुख दालत जिन नाही चिंत पराई है वे जागत रह ना सूते दिसह संगत कुल तारे साच परिसह कल मल मैल नाही ते निर्मल होय रह भगत लिवलाई है गूजो हर जन सतगुर बाणी एहो जोबन सास है देह पराणी आज काल मर जाइए प्राणी हर जप जप हृदय त्याई हे छोड़ो हो प्राणी कूड़ कबाड़ा कूड़ मारे काल उशाहाड़ा साकत कूड़ पचह मन हमै दोह मार्ग पचह पचाई हे छोड़ो हो निंदा तात पराई पड़ पड़ दज है शांत न आई मिल सत संगत नाम सलाहो आत्म राम सखाई हे छोड़ हो काम क्रोध बुरे आई हो मैं तंद छोड़ हो लंपटाई सतगुर सरन पर हो ता उबर हो यों तरिये पव जल पाई हे आगे बिमल नदी अगन बिख चेला तिथे अवर न कोई जियो अकेला पर पड़ अगन सागर दे लहरी पड़ दज है मन मुक्ताई हे गुर पह मुक्त दान दे पाने जिन पाया सोई बिद जाने जिन पाया तिन पूछो पाई

एकहु कर नंदर बिघन नाही गुरमुख तर तारी त्यों पव जल पार लंघाई है देही अंदर नाम नवासी आपे करता है अबनासी ना जियो मरे ना मारिया जाई कर देखै शब्द रजाई है ओह निर्मल है नाही अंधियारा ओह आपे तख्त बह सचियारा साकत कूड़े बंद पवाई है मर जन्म है आई जाई है गुर के सेवक सत गुर प्यारे वही बैस

चूज करे रंग महली होर माया मोह पसाराही गर्भ कुंडल मह उर्द त्यानी आपे जाने अंतर जामी सास सास सच नाम संभाले अंतर उदर मजारा ही चार पदार्थ लै जाग आया शिव शक्ति घर वासा पाया एक वसारे ता पेड़ हारे अंधलै नाम वसारा ही बालक मर बालक की लीला कह कह रू वह बाल रंगीला जिसका सास हो तिन ही लिया भूला रोवण हारा ही पर जोवन मर जाए के कीजै मेरा मेरा कर रो बीजै।

सहुरड़ करवास न पाई, पेयड़ सिर माराही, खाजे पेंजे रली करीजे, बिन अब भगती बाद मरीजे।

अंग शब्द कर जाने किसे ही मंदा आख न चले सच खरा सचियारा ही साच बिना दर्स जै न कोई साच शब्द पेंज है पत होई आपे बख्श लए किस पावे हम मैं गर्भ निवाराई गुर कृपा ते हुक्म पछाणै।

जिन तन मन दिया सुरत समोई सर्व जिया प्रतपाल संभाले सो अंतर दाना बीना है गुर सरवर हम हंस प्यारे।

पावे अमृत रस पाई, जम जगात नाही कर लागे, जिस अग्न बुझी ठर सीनाई, काया हंस प्रीत बहुतारी, ओह जोगी पुरख ओह सुंदर नारी, अहनस भोगै चोज बिनोदी, उठ चलते मता ना की नाही, श्रिष्ट अपाए रहे प्रभ साजै, पौन पानी बह संतर गाजै, मनुआ डोलै दूत संगत मिल, सो पाए जो किछ की नाही, नाम विसार दोख दुख सही है, हुक्म भया चलना क्यों रही है, नरक कूप मह गोते खावे, ज्यों जलते बाहर मीना है, चौरासी नरक साकत पोगाई है, जैसा की कहते सो पाई है, सतगुर बाजो मुक्त ना हुई, किरत बांधा ग्रस दीना है, खंडे तार गली अत पीड़ी, लेखा लीजै तिल ज्यों पीड़ी, मात पिता कलत्तर सुत बेली नाही, बिन हर रस मुक्त ना की नाही, मीत सखे केते जग माही, बिन गुर परमेश्वर

मुखर ले चलुहु दर्शन पावहु सहज महलुहु गुरमुख खोज लह जन पूरे यो समदर्शी चीना ही प्रभु बेअंत गुरमत को पावह गुर कै शब्द मन को समझावह सतगुर की बाणी सत सत कर मानुहु।

नाही। एक दर सेव है दर्द बुझाई, कोई दरगाह पैंदे सतगुरु छदाई। हम मैं बंधन सतगुरु तोड़े, चित चंचल चलन ना दीना है। सतगुरु मिलो चीनो बेदसाई, जित प्रभ पावो गणत ना काई। हम मैं मार करो गुर सेवा, जन नानक हर रंग पीना है। मारू महला पहला, असुर संघारण राम हमारा।

मक साधु शरण तुम्हारी, कर कृपा प्रभ पार उतारी। अगन पानी सागर अत गहरा, गुर सतगुर पार उतारा ही। मनमुख अंदले सो जी नाही, आवह जाहे मरह मर जाही। पूर्व लिखिया लेख न मिटई, जम दारे अंध खुआरा ही। एक आवह जावह कर वास न पावह, किरत के बांधे पाप कमावह। अंदले सोजी बूझ न काई, लोभ बुरा अहंकारा ही। फिर बिन क्या तिस धन शिंगारा, पर फिर राती खसम बसारा। ज्यो बेसवा पूत बाप को कही है, त्यों फोकट कार विकारा ही। प्रेत पिंजर मह दुख कनेरे, नरक पचह।

अगन बिख चाला अपत पशु मन मुख बेताला आसा मनसा कूड़ कमावह रोग बुरा पुरिया राही मस्तक पहार कलर सिर पहारा क्यों कर भवजल लंगस पारा।

मन मुख दाजे पढ़ पढ़ पाही अमृत नाम गुरु वद ताना नाम जपो सुख साराही सतगुरु तुठा सच दृढ़ाई सब दुख मेटे मार्ग पाई कंडा पाई न गडई मूले जिस सतगुर राखन हाराही खेहू खेहे रले तन सीजै मनमुख पाथर सैल न पीजै करन पलाव करे बहुतेरे नरक सुरग अवताराही माया बिख पोय अंगम नाले इन दुबदा कर बहुते गाले सतगुर बाजो हो प्रीत ना उपजै भगत रत्ते पतिया राही साकत माया कौ बहुतावह।

मन तन झूठे कूड़ कमावे दुर्मत दरगाह हारा ही सतगुर मिले तमनुआ टेक राम नाम बेसरन परेक हर तन नाम अमोलक देवे हर जस दरगाह प्यारा ही राम नाम साधु सरनाई सतगुर बचनी गत मित पाई नानक हर जाप।

राम जपहु अंतरगत ध्याने लालच छोड़ रचहु अपरंपर यूं पावहु मुक्त द्वारा ही जिस बिसरे जम जोहन लागे सब सुख जाहे दुखा फुन आगे राम नाम जप गुरमुख जी अड़ी।

खोज लहो घर अपना बहुड़ ना गर्भ मझारा ही सच तीर्थ नावहो हर गुण गावहो तत विचारहो हर लिव लावहो।

ताकत कूड़ कपट महतेका अहनस निंदा करह अनेका बिन सिमरन आवह फुन जावह गर्भ जोनी नरक मजारा ही साकत जम की कान ना चूके जम का डंड ना कबहू मूके बाकी धर्म राय की लीजह सिर अपरे हो पार अपारा ही बिन गुर साकत कहो को तरया हम मैं करता पव जल परया बिन गुर पार न पावे कोई हर जपिय पार उतारा ही गुर की दात न मेटे कोई जिस बख्शे तिस तारे सोई जन्म मरण दुख नेड़ न आवे मन सो प्रभ अपरे अपारा ही गुर ते भूले आवो जावो जन्म मरहो फुन पाप कमावो साकत मूड अचेत ना चेत है दुख लागे ता राम पकारा ही सुख दुख पूर्व जन्म के किए सो जाने जिन दाते दिए किसको दोष दे तू प्राणी सहो अपना किया करारा ही हम मैं ममता कर दाया आसा मनसा बंद चलाया मेरी मेरी करत क्या ले चाली बिखला दे शार बिकारा ही हर की भगत करो जन पाई अकथ कथो मन मन समाई उठ चलता ठाक रखो घर अपने दुख काटे काटन हारा ही हर गुरु पूरे की ओट पराती गुरमुख हर लेब गुरमुख जाती नानक राम नाम माते उत्तम।

गुप्त रहता ही। चार नदी अग्नि असराला, कोई गुरमुख बूझै शब्द नराला। साकत दुर्मत डूब बहता जह, गुर राखे हर लिवराता ही। अप तेज वाए पृथ्वी अकासा, तिन मह पंच तत् घर वासा। सतगुर शब्द रह रंग राता, तज माया हों मैं प्रांता ही। इह मन पीजै शब्द पतीजै, बिन नावै क्या टेक टकीजै। अंतर चोर मोह घर मंदर, इन साकत दूत ना जाता ही। दुंदर दूत पूत पीहाले, खिंचो तान करह बेताले। शब्द सुरत बिन आवै जावै,

ताही साकत फांसी पड़े अकेला जामवास किया अंध दुहेला राम नाम बिन मुक्त ना सूझे आज काल पच जाता ही सतगुर बाज ना बेली कोई ऐथे उथे राखा प्रभ सोई राम नाम देव है कर कृपा यूं सलले सलल मलाता ही भूले सिख गुरु समझाई उजड़ जांदे मार्ग पाई इस गुर सेव सदा दिन राती दुख भंजन संग सखाता ही गुर की भगत करह क्या प्राणी ब्रह्म इंद्र महेश ना जानी सतगुर अलख कहो क्यों लखी जिस बख्शे तिस पछाता ही अंतर प्रेम प्राप्त दर्शन गुरबाणी स्यों प्रीत सो परसन अहनस निर्मल ज्योत सुबाई।

बैरागी मन मनसा मार समाता ही सतगुर सेवह से परदाना तिन घट घट अंतर ब्रह्म पछाना नानक हर जस हर जन की संगत दीजै जिन सतगुर हर प्रभ जाता ही मारू महला पहला साचे साहेब सिरजनहारी जिन तार चक्कर

अंत ना जानी जाको अलख लखाई आपी अकथ कथा बुद्धताहाई जन्मे को वाजह वाधाई सोहे लड़े अज्ञानी गाई जो जन्म है तिस सर पर मरना किरत पया सिर साहाई संजोग वजोग मेरे प्रभ किए।

है, राम नाम घटे अंतर पूजा, अवरना दूजा काहा है, ओढ़ना कथन है सिफत सजाई, ज्यों तुद भाव है रह रजाई, दरगाह पहंदी जान सुहेली, हुक्म सच्चे पातशाह है, क्या कही है गुण कथ है कनेरे, अंत ना पाव है वड्डे वडेरे, नानक साच मिले पत राख हो, तू सिर शाह पातशाह है, मारू महला पहला दखनी, काया नगर नगर गाड़े अंदर।

बाल्दी जल निवरै किरपाती आपे जल निध पाईंदा तरत उपाए तरी धर्मशाला उत्पत परलो आप निराला पवन खेल किया सब थाई कला खिंच टहाईंदा भार अठारह मालन तेरी चौर टुलै पवन लै फेरी चंद सूरज दुए दीपक राखी सस कर सूर समाईंदा पंखी पंच उडर नहीं धावै।

अनहद वाजै ब्रह्म पौ भाजै सगल व्याप रहया प्रभ साजै सब तेरी तू गुरमुख जाता दरसो है गुण गाएं दा आद निरंजन निर्मल सोई।

जाने जो किछ करे सो आपन पाने लख चौरासी जी अपाई पाने सहा लवाईंदा जो तिस पावे सो निश्चो होवे मनमुख आप गणाई रोवे।

सब कोई, गुर बिन सोजी किना ना होई, साच मिले सो साचे पाई, ना विछड़ दुख पाईंदा, तुरो विछुन्ने ताही रुन्ने, मर मर जन्म है मोहलत पुन्ने, जिस बख्शे तिस

तुझ ते उपजह तुझ माहे समावह। नानक साच कह बेनंती मिल साचे सुख पाएंदा। मारू महला पहला अरबद नरबद तुंदू कारा। तरना गगना हुक्म अपारा ना दिन रैन ना चंद ना सूरज। सुन समाध लगाएंदा खानी ना बाणी पौन ना पानी। ओप

जति सती बनवासी ना ताद सिद्ध साधक सुखवासी जोगी जंगम भेख ना कोई ना को नाथ कहाईंदा जप तप संयम ना व्रत पूजा।

ती साजी सृष्ट अपाए काया गणराजी अग्न पानी जियो ज्योत तुम्हारी सुन्ने कला रहा इंदा सुन्नो ब्रह्मा विष्णु महेश उपाई सुन्ने वर्ते जुग सबाई इस पद विचारे सो जन पूरा तिस मिलिए परम चुकाएंदा सुन्नो सप्त सरोवर थापे जिन साजे विचारे आपे तित सत सर मनुआ गुरमुख नावे फिर बहुड़ जोन ना पाएंदा सुन्नो चंद सूरज गहनारी तिसकी ज्योत त्रे पवन सारी सुन्ने लख पार नरालम सुन्ने ताड़ी लाएंदा सुन्नो धरत आकाश पाए बिन थम्मा राखे सच कल पाए त्रे पवन साज में खुली माया आप उपाय खपाएंदा सुन्नो खाणी सुन्नो बाणी सुन्नो उपजी सुन्न समाणी उत्पुज चलत किया सिर करतै विस्माद शब्द देखाएंदा सुन्नो रात दिन सदोह किए ओपत खपत सुखा दुख दिए सुख दुख ही ते अमर हतीता गुरमुख निज कर पाएंदा श्याम वेद रिग जुजर अथर बण।

गंधर्व साजी सब लिखिया कर्म कमाईंदा गुरमुख समझै रोग ना होई ए गुर की पौड़ी जाने जन कोई जुगा जगंतर मुक्त परायण सो मुक्त भया पत पाईंदा पंच तत् सुनो परगासा देह संजोगी कर्म अभ्यासा बुरा भला दोए मस्त कलीखे पाप पुन भी जाएंदा उत्तम सतगुर पुरख निराले शब्द रत्ते हर रस मतवाले रिद बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाईए पूरा भाग मलाएंदा इस मन माया को नेहो कनेरा

संचो रे जन पाई सतगुर सेव रहो सरनाई तस्कर चोर न लागे ता को धुन उपजै शब्द जगाया तू एक अंकार नरानम राजा तू आप

सिर सिर करन हारे साजी दसवें पुरख अतीत नराला आपे अलख लखाया पुरख अलेख सच्चे दीवाना हुक्म चलाए सच निशाना नानक खोज लहो घर अपना।

कैल निवास निरंतर आवण जान चुकाया ना मन चले ना पौन उड़ावे जोगी शब्द अनाह दबावे पंच शब्द चुनकार नरालम प्रभ आपे वाहे।

कुन निरंजन गाया, हम अमित शब्द सुख हुई, आप विचारे ज्ञानी सोई। नानक हर जस हर गुण लाहा, सत संगत सच फल पाया। मारू महला पहला, सच कहो सच्चे कर रहना, जीवत मरहो पव जल जग तरना। गुर बोहित गुर बेड़ी तुलहा, मन हर जप पार लंघाया। हों मैं ममता लोभ बनासन, नौ दर मुक्ते दसवै आसन। ऊपर परे परे अपरंपर, जिन आपे आपे उपाया। गुरमत लेव हर लिव तरिया,

तुराई बिलम न लागै आवै जाई नाम विसार चलह अभमानी उपजह बिन सुख पाया उपजह बिन सह बंधन बंदे हम मैं माया के गल फंदे जिस राम नाम नाही मत गुरमत सो जमपुर बंद चलाया गुरबिन मोख मुक्त क्यों पाई बिन गुर राम नाम क्यों त्याई है गुरमत ले हो तरो भाव दुत्तर मुक्त पये सुख पाया गुरमत कृष्ण गवर धन तारी गुरमत शायर पाहन तारी गुरमत ले हो परम पद पाई है नानक गुर परम चुकाया।

गुरमुख बूजै शब्द पतीजै उस्तत निंदा किस की कीजै। तीनों आप जपो जगदीसर हर जगन्नाथ मन पाया। जो ब्रह्मांड खंड सो जानो गुरमुख बूजो शब्द पछाणो। कट कट भोगे भोगण हारा रह अतीत सबाया। गुरमत बोलो हर जस सूचा गुरमत आखी देखो ऊचा। सरवणी नाम सुने हर बाणी नानक हर रंग रंगाया। मारू महला पहला काम क्रोध पर हर पर निंदा। लभ लोभ तज हो निचिंदा भ्रम का संगल तोड़ नराला। हर अंतर हर रस पाया निस दामन ज्यों चम

नारी देख अदिष्ट रहो निवलागी सब त्रे पवन ब्रह्म सबाया अमृत रस पाए तृष्णा भव जाए अनुभव पद पावे आप गुआए ऊंची पदवी ऊंचो ऊंचा निर्मल शब्द कमाया अदृष्ट अगोचर नाम अपारा अतरस मीठा नाम प्यारा नानक को जुग जुग हर जस दीजै हर जपिया अंत ना पाया अंतर नाम परापत हीरा हर जपते मन मन ते धीरा दुखट कट पौ भंजन पाई बहुड़ जन्म ना जाया भगत हेत गुर शब्द तरंगा हर जस नाम पदार्थ मंगा हर पावे गुर मेल मलाए हर तारे जगत सबाया जिन जप जपे हो सतगुर मतवा के जम कंकर काल सेवक पगता के उत्तम संगत गत मित उत्तम जग पौजल भारत राया एहो पौजल जगत शब्द गुर तरी अंतर की दुबदा अंतर जरी है पांच बाण ले जम को मारे गगनंतर तनख चढ़ाया साकत नर शब्द सुरत क्यों पाई है शब्द सुरत बिन आई है जाई है नानक गुरमुख मुक्त परायण हर पूरे पहाग मलाया निरपो सतगुर है रखवाला भगत परापत गुर गोपाला तुन आनंद अनाहद वाजे गुर शब्द निरंजन पाया।

नानक गुरमत सो पाया अंतर की गत सत गुर जान सो निरभो गुर शब्द पछाण अंतर देख निरंतर बूजे अनत ना मन डोलाया निरपो सो आबे अंतर वसिया अहनस नाम निरंजन रसिया नानक हर जस संगत पाई है हर सहजे सह

आपे सिर सिर हुक्म चलाया, हुक्म चलाए रहया पर पूरे, किस नेड़े किस आखा दूरे, गुपत प्रगट हर कट कट देखो, वरतै ताक सुबाया, जिसको मेले सुरत समाए, गुर शब्दी हर नाम ते आए, आनंद रूप अनूप अगोचर, गुर मिले है परम जाया, मन तन तन ते नाम प्यारा, अंत सखाए चलन वारा, मोह पसार नहीं संग बेली, बिन हर गुर किन सुख पाया, जिसको नदर करे गुर पूरा, शब्द मलाए गुरमत सूरा, नानक गुर के चरण सरे वो, जिन पूला मार्ग पाया, संत जना हर तन जस प्यारा, गुरमत पाया नाम तुम्हारा, जाचक सेव करे दर हर कै, हर दरगाह जस गाया, सतगुर मिले त महल बुलाए, साची दरगाह गत पत पाए, साकत ठोर नाही हर मंदर, जन्म मरे दुख पाया, सेवहु सतगुर समुंद अथाह, पावहु नाम रतन तन लाहा, बिखिया मल जाए अमृत सर नावहु, गुर सर संतोख पाया, सतगुर सेवहु संक ना कीजै, आसा माहि निरास रहीजै, संसार दुख बनासन सेवहु, फिर बहुड़ रोग ना लाया, साचे पावे तिस वडियाई, कौन सो दूजा तिस समझाए, हर गुरु मूरत एका वरतै, नानक हर गुरु पाया, वाचह पुस्तक वेद पुराना, एक बह सुनह सुनावह काना, अजगर कपट कहो क्यों खुलै, बिन सतगुर तत ना पाया, करह विभूत लगावह पसमै, अंतर क्रोध चंडाल सो हों मैं, पाखंड कीने जोग ना पाईऐ, बिन सतगुर अलख ना पाया, तीर्थ वर्त नेम करह उदयाना, जत सत संजम कतह ज्ञाना, राम नाम बिन क्यों सुख पाईऐ, बिन सतगुर परम ना जाया, न्योली कर्म पुयंगम पाठी, रेचक कुंभक पूरक मन हाठी, पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर सो, गुर शब्द महारस पाया, कुदरत देख रहे मन मानिया, गुर शब्दी सब ब्रह्म पछानिया, नानक आत्म राम सबाया, गुर सतगुर अलख लखाया, मारू सोलहे महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हुक्मी सहजे सृष्टि उपाई।

नाम रतन पाया। मनसा मार मन माए समाया, आपे खेल करे सब करता, आपे दे बुझाई है।

तिस जोहे ना साकै साचे स्यों बन आई हे। तृष्णा यगन जलै संसारा जल जल खपै बहुत विकारा। मन मुख ठौर न पाए कबहू सतगुर बूझ बुझाई हे। सतगुर सेवन से वड भागी साचै नाम सदा निबलागी। अंतर नाम रव्या निह केवल तृष्णा शब्द बुझाई हे। सच्चा शब्द सच्ची है बाणी गुरमुख विरलै किन पछाणी। सच्चा शब्द रत्ते बैरागी आवण जान रहाई हे। शब्द बुझै सो मैल चुकाई निर्मल नाम वसै मन आई। सतगुर अपना सद ही सेवह हम मैं विचों जाई हे। गुरते बूझै ता दर सूझै नाम मिहूणा कथ कथ लूझै।

किशु ना सूजै। गुर की दात सदा मन अंतर, बाणी शब्द बजाई है। जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया, कोई ना मेटै तुर फुरमाया। सत संगत मह तिन्ही वासा, जिनको तुर लिख पाई।

सब सोई गुरमुख विरला बूझै कोई एको रब रहया सब अंतर तिस बिन अवर ना कोई है। लख चौरासी जी उपाय ज्ञानी ध्यानी आख सुनाए सबना रिजक समाहे आपे कीमत होर ना होई है। माया मोह अंध अंधारा हम मैं मेरा पसरिया पासारा अन दिन जलत रह दिन राती गुरबिन शांत ना होई है।

भागै अंतर शब्द सदा सुख दाता गुरमुख बूझै कोई आपे मेले मेल मलाए पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाए आन दिन भगत करे दिन

बार कृष्णा अग्न निवारी शब्द चीन सुख होई है। काया कटांब मोह ना बूझै गुरमुख होवै ता आखी सूझै। अन दिन नाम रवै दिन राती मिल प्रीतम सुख होई है। मनमुख तात दूजै है लागा जनमत की नाम वो अभागा।

परमहंस बैरागी निज कर ताड़ी लाई हे। शब्द मरे सोई जन पूरा, सतगुर आख सुनाए सूरा। काया अंदर अमृत सर साचा, मन पीवै पाए सुपाई हे। पढ़ पंडित अवरा समझाए, घर जलते की खबर ना पाई। बिन सतगुर सेवे नाम ना पाईए, पढ़ था के शांत ना आई हे। एक भस्म लगाए फिर भेख तारी, बिन शब्द होमै किन मारी। अन दिन जलत रह दिन राती, परम पेख परमाई हे। एक ग्रह कटम मह सदा उदासी, शब्द मोए हर नाम निवासी। हर दिन सदा रह रंग राती, पै पाए भगत चित लाई हे। मन मुख निंदा कर कर विगुत्ता, अंतर लोभ भौंकै जिस कुत्ता।

पावै कोई, बिन सतगुरु को नाव ना पाए, रब ऐसी बणत बनाई है। एक सिद्ध साधक बहुत विचारी, एक अहनस नाम रते निरंकारी, जिसनो आप मलाए सो बूझै, भगत पाए पहु जाई है। इस नान दान करह नहीं बूझै।

आपे पाणे दे मलाई, आपे नदर करे मन वस्या, मेरे प्रभ यों फरमाई है। सतगुर सेवह से जन साचे, मन मुख सेव न जानन काचे, आपे करता कर कर वेख, ज्यों पावे त्यों लाई है। जुग जुग साचा एको दाता, पूरे भाग गुर शब्द पछाता, शब्द मिले से विछड़े नाही, नदरी सहज मलाई है। हम मैं माया मैल कमाया, मर मर जम दूजा पाया, बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई, मन देखो हो निवलाई है। जोत सुभावे सोई करसी, आप हो आ ना किस होसी ना।

सुख पाया सहजे साच समाई है। तंदै तावत मन भया मनूरा फिर हुए कंचन पेटै गुरपूरा आपे बख्श लए सुख पाए पूरे शब्द मलाई है। दुर्मत झूठी बुरी बुरियार औगण यारी औगण यार कच्ची मत फीका मुख बोले दुर्मत नाम ना पाई है। औगण यारी कंत ना पावे मन की झूठी झूठ कमावे फिर का साहु ना जाने मूरख दिन गुर बूझ ना पाई है। दुर्मत खोटी खोट कमावे सिंगार करे फिर खसम ना पावे

नह पाई, बिन सतगुर सुख ना पाई। किसनों कहिए जाय आप कराई, जित पावे तित राहि चलाई। आपे मेहरवान सुखदाता, जो पावे

बिनसै तहत न लागे बारा कंचन काया गुरमुख बूजै जिस अंतर नाम नवासी है सच्चा चौका सुरत की कारा हर नाम भोजन सच आधारा सदा त्रिपत पवित्र है पावन जित घट हर नाम नवासी है हों तिन बलिहारी जो साचै लागे हर गुण गावे अन दिन जागे साचा सूख सदा तिन अंतर रसना।

सब सच दिखाया, सच्चै नाम निवासी हे, ब्रह्म ब्रह्म जोनी फिर फिर आया, आप भूला जा खसम भुलाया, हर जियो मिलै ता गुरमुख बूजै, चीनै शब्द अबनासी हे, काम क्रोध भरे हमे अपराधी, क्या मुँह लै बोलहै, ना हम गुण ना सेवा साधी, डुबदे पाथर

0: होएगा। आपे बख्श लह सुख पाई सद ही नाम नवासी है। एहो तन धरती शब्द बीज अपारा हर साचे सेती वणजवा पारा।
1: सच

एहो मन पी जाही। माया लहर शब्द निवारी, एहो मन निर्मल हो मैं मारी। सहजे गुण गावे रंग राता।

सदा सुख पाया। नाए साक्याय अमृत पी जय ही तिल बिख दुख निवारण हारा। गुरमुख सेवया शब्द विचारा सब किस आपे आप वरतै। गुरमुख तन मन पी जय ही माया अग्न जलै संसारी। गुरमुख निवारै शब्द विचारी अंतर शांत सदा सुख पाया। गुरमति नाम ली जय ही इंद्र इंद्रासन बैठे जम का पहु पाव है। जम ना छोड़ै बहु कर्म कमाव है। सतगुर भेटै तां मुक्त पाई। हर हर रसना पी जय ही मनमुख अंतर भगत ना होई। गुरमुख भगत

विचारी त्रै गुण बधक मुक्त निरारी गुरमुख ज्ञान एको है जाता अन दिन नाम रवीजै ही वेद पढ़ हर नाम ना बूझै माया कारण पढ़ पढ़ लूझै अंतर मैल अज्ञानी अंदा क्यों कर दुत्तर तरीजै ही वेद बाद सब आख बखान है ना अंतर पीजै ना शब्द पछाण है पुन पाप सब वेद दृढ़ाया गुरमुख अमृत पीजै ही आपे साचा एको सोई तिस बिन दूजा अवर ना कोई नानक नाम रते मन साचा सचो सच रवीजै ही मारू महला तीजा सच्चै सच्चा तख्त रचाया निज कर वसिया तिथै मोह न माया सद ही साच वसिया घट

सच कमावे साची करनी सारी है। कार कमाई जो मेरे प्रभ भाई हम मैं तृष्णा शब्द बुझाई गुरमत सद ही अंतर शीतल हम मैं मार निवारी है। सच लगे तिन सब किछ पावे सच्चे शब्द सच सुहावे एथे साचे से दर साचे नदरी नदर सवारी है। बिन साचे जो दूजे लाया माया मोह दुख सबाया बिन गुर दुख सुख जापे नाही माया मोह दुख भारी है। साचा शब्द जिन्ना मन पाया

सूख सहज समाधि हर हर करतियां मन निर्मल होआ गुर की सेव प्यारी है सीजन सुखिए सतगुर सच्चे लाए आपे भाणे आप मलाए सतगुर राखे से जन उबरे होर माया मोह खुआरी है गुरमुख साचा शब्द पछाता ना तिस कटंब ना तिस माता एको एक रव्या सब अंतर सबना जिया काया धारी है हम मैं मेरा दूजा पाया किसना चल तुर खसम लिख पाया।

तन साचा भगत परे भंडारी हे आपे वेखै हुक्म चलाए अपना भाणा आप कराए नानक नाम रते बैरागी मन तन रसना।

जीवन जिन अपनाया तो पछाता ही जिन ब्रह्मा विष्णु महेश उपाई सिर सिर तंदे आपे लाई जिस पावे।

लह तोल ज्यों भावै त्यों राखह रहना गुरमुख एको जाता ही जात पाणा ता सच्ची कारै लाई अवगण छोड़ गुण माहि समाई गुण मह एको निर्मल साचा गुर कै शब्द पछाता ही जह देखा तह एको सोई दूजी दुर्मत शब्द खोई एक समह प्रभ एक समाना अपने रंग सद राता ही काया कमल है कुमलाना मनमुख शब्द ना बुझे एयाना गुर प्रसादी काया खोजे पाए जग जीवन दाता ही कोट गही के पाप निवारे सदा हर जीओ राखे उर तारी।

ना कोई। गुरमुख ज्ञान सदा सलाही, जुग जुगे को जाता ही। मनमुख कार करे सब दुख सबाई, अंतर शब्द नाही क्यों दर जाई। गुरमुख शब्द वसै मन साचा,

तीजा आपे करता सब जिस करना जी जंत सब तेरी सरना आपे गुपत वरतै सब अंतर गुर कै शब्द पछाता ही हर के भगत परे भंडारा।

रतने अमोलो आपे नदनी तोले तोलो जी जंत सब शरण तुम्हारी कर कृपा आप पछाताई जिसनो नदर होवे तुर तेरी मरे न जम्मे चूकै फेरी साचे गुण गावे दिन राती जुग जुग एको जाताई माया मोहे सब जगते उपाया ब्रह्मा विष्ण देव सुबाया ज्योत दुपाणे से नाम लागे ज्ञान मती पछाताई पाप

आई रत्न अमोलक अग में अपारा कीमत कमन करे विचारा गुर कै शब्दे तोलत लाई अंतर शब्द पछाताई सिमरत शास्त्र बहुत बिस्थारा माया मोह पसरिया पासारा मूर्ख पढ़े शब्द ना बूझे गुरमुख विरले जाताई आपे करता करे कराई सच्ची वाणी सच दृढ़ाई नानक नाम मिले वड्याई जुग जुग एको जाताई मारू महला तीजा सो सच सेवे हो सिरजनहारा शब्दे दुख निवारण हारा अगम अगोचर कीमत नहीं पाई आपे अगम यथाहाई आपे सच्चा सच वरताई।

लाई, सच्ची भगति आपे लाई, साची बाणी सदा गुण गावे, इस जन्म में काला हाही, गुरमुख वणज करह पर आप पछाण है, एक सबिन को अवर ना जाण है, सच्चा साहु सच्चे वणजारी, पूंजी नाम वसाहाही, आपे साजे सेठ अपाई, विरले को गुर शब्द बुझाई, सतगुर सेव है से जन साची, काते जम का पाही, पन्ने कड़े सवारे साजी, माया मोहे दूजे जंत पाजी, मन मुख फिर है सदा अंध कमाव है, जम का जेवड़ा गल पाही, आपे बख्शे गुर सेवा लाई।

अपारा मनमुख हुक्म न जाने सारा हुक्मे मन्ने हुक्मे वड़ियाई हुक्मे वे परवाहाई गुर प्रसादी हुक्म पछाणे तावत राखे इकत कर आणे नामे राता सदा बैरागी नाम रतन मन ताहाई सब जग में वरतै इको सोई गुर प्रसादी प्रगट होई शब्द सलाह है से जन निर्मल निज करवासा ताहाई सदा भगत तेरी सरनाई अगमे अगोचर कीमत नहीं पाई ज्यों तुद भावै त्यों त्यों राख है गुरमुख नाम त्याहाई।

सतगुरु पूरा शब्द सुनाई, अन दिन भगत करहो लिवलाई। हर गुण गावे सद ही निर्मल, निर्मल गुण पातशाही। गुण का दाता सच्चा सोई, गुरमुख विरला बूझै कोई। नानक जन नाम सलाहे बिगसै, सो नाम बेपरवाहाहि। मारू महला तीजा, हर जियो सेवे हो अगम अपारा। तिसदा अंत न पाईऐ पारा वारा, गुर प्रसाद रविया घट अंतर। पित घट माते अगाहाहि, सब मह वरतै इको सोई। गुर प्रसादी प्रगट होई, सबना प्रतपाल करे जग जीवन। देंदा रिजक संबाहाई, पूरे सतगुर बूझ बुझाया। हुक्मे ही सब जगत पाया, हुक्म मन्ने सोई सुख पाए। हुक्म सिर चाह पात चाहाई, सच्चा सतगुर शब्द अपारा।

काचन काचे अगमे अगोचर वे परवाह भगत वच्छल आथाहाए सतगुर पूरा साच दृढ़ाए सच्चै शब्द सदा गुण गाए गुणदाता वरतै सब अंतर सिर सिर लिखदा सहाय सदा हदूर गुरमुख जापै शब्दे सेवै सो जन त्रापै अनदिन सेवह सच्ची बाणी शब्द सच्चै ओ माहाहि अज्ञानी अंधा बहु कर्म दृढ़ाए मन हठ कर्म फिर जोनी पाए बिखिया कारण लब लोभ कमावह दुर्मत का दुराहि पूरा सतगुर भगत दृढ़ाए गुर कै शब्द हर नाम चित लाए मन तन हर रविया काट अंतर मन पीने भगत।

पाया। आपे फर्क करे वेख विगसै, सब रस देही माहाई। वाजे पौन तै आप बजाई, शिव शक्ति देही मह पाई। गुर प्रसादी उल्टी होवै, ज्ञान रत्न

सील संतोख सब ताहाई, हम मैं मोह उपजे संसारा, सब जग बिन से नाम वसारा, बिन सतगुर सेवे नाम ना पाईए, नाम सच्चा जग लाहाई, सच्चा अमर शब्द सुहाया, पंच शब्द मिलवा जावाया, सदा कार्य सच नाम सुहेला,

जीवन मुक्त गुर शब्द कमाई, हर सिउ सद ही रह समाई, गुर कृपा ते मिले वडियाई, हम मैं रोग न ताहाई, रस कस खाए पिंड वडाई, भीख करे गुर शब्द ना कमाई, अंतर रोग महा दुख भारी, बिस्ता माहि समाहाई, वेद पढ़े पढ़ बाद बखान है, कट मह ब्रह्म तिस शब्द ना पछाण है, गुरमुख होवे सो तत् बलोवे, रसना हर रस ताहाई, तर वत छोड़ है बाहर धावे है, मन मुखे अंधे साध ना पावे है, अन रस राती रसना फीकी बोले, हर रस मूल ना ताहाई, मन मुख देही परम पतारू, दुर्मत मरै

हर पाया, हर जप जाप समाही, मारू महला तीजा। गुरमुख नाद बेद विचार, गुरमुख ज्ञान ध्यान अपार।

बैरागी निज करवा सा पाएंदा गुर की साखी अमृत पाखी सच्चा शब्दे सच सुपाखी सदा सच रंग राता मन मेरा सच्चे सच सुमाएंदा गुरमुख मन निर्मल सत सरनावे मैल न लागे सच सुमावे सचो सच कमावे सद ही सच्ची भगत दिरड़ाएंदा गुरमुख सच बैणी गुरमुख सच नैणी गुरमुख सच कमावे करनी सद ही सच कह दिन राती अवरा सच कहाएंदा गुरमुख सच्ची उत्तम बाणी गुरमुख सचो सच बखाणी गुरमुख सद सेव है सचो सच्चा गुरमुख शब्द सुनाएंदा गुरमुख होवै सो सोजी पाई हो मैं माया परम गवाई गुर की पौड़ी उत्तम उची दर सच्चै हर गुण गाएंदा गुरमुख सच संजम करनी सार गुरमुख पाए मोख द्वार पाए भगत सदा रंग राता आप गवाए समाएंदा गुरमुख होवै मन खोज सुनाई सच्चै नाम सदा निभलाई जो तिस भावै सोई करसी जो सच्चे मन पाएंदा जां तिस भावै सतगुरु मलाई जां तिस भावै तां मन वसाई अपने भाणे सदा रंग राता भाणे मन वसाएंदा मन हथ कर्म करे सो सीजै बहुते भेख करे नहीं पीजै भिख्या राते दुख कमावै दुखे दुख समाएंदा गुरमुख होवै सो सुख कमाए मरण जीवन की सोजी पाए मरण जीवन

पासारा बिन शब्द पसमै की ढेरी खेहू खेर लाएंदा काया कंचन कोटे पारा जिस विच रविया

पाई, सब खेल तमाशा तेरी वडियाई। आपे वेक करे सब साचा, आपे पन कढ़ाएंदा। बाजीगर इक बाजी पाई, पूरे गुर ते नदरी आई। सदा अलिपत रह गुर शब्दी, साचे सिंह चित लाएंदा। बाजे बाजे धुन अकारा, आप बजाए बजावण हारा। कट कट पौन वह इक रंगी, मिल पवन सब बजाएंदा। करता करे सो निश्चो होवे, गुर कै शब्दे हो मैं खोवे। गुर प्रसादी किसे दे वडियाई, नामो नाम त्याएंदा।

सेवह क्यों सुख पाइय बिन लावह दुख पाईंदा आप करे तै आप कराई गुर प्रसादी किसै बुझाई गुरु

0: गणत चुकाए सच्चे सच समाएंदा जे सच दे ता पाए कोई गुर प्रसादी प्रगट होई सच नाम सलाहे रंग राता गुर कृपा ते सुख पाएंदा जप तप संयम नाम प्यारा किल विख काटे काटन हारा हर कै नाम तन मन शीतल हुआ सहजी सहज समाएंदा
1: अंतर लोभ मन मैले मन लाए
0: मैले कर्म करे।

आई। गुर कै पाणे चलै दिन राती, नाम चेत सुख पाएंदा। आप सिरंदा सच्चा सोई, आप अपाए खपाए सोई। गुरमुख होवै सो सदा सलाही, मिल साचे सुख पाएंदा। नेक जतन करे इंद्री वासना हुई, काम क्रोध जलै सब कोई।

सतगुर सेवय सहज आनंदा फिर दयाए बुट्ठा गोविंदा सहजे भगत करे दिन राती आपे भगत कराएंदा सतगुर ते विछड़े तिन्नी दुख पाया आन दिन मारिय है दुख सबाया मत्थे काले महल ना पावे दुख ही विच दुख पाएंदा सतगुर सेव है सेवद भागी सहज पाए सच्ची लिवलागी सचो सच

आप बुझाए बुझा कोई आपे बख्शे दे वड्याई आपे मेल मलाएंदा हम मैं कर दिया जन्म गवाया आगे मोह ना चूके माया अगे जम काल लेखा लेवे जो तिन कहानी पीड़ा एंदा पूरे भाग गुर सेवा होई नदर करे ता सेवे कोई जम काल तिस नेड़ ना आवे महल सच्चे सुख पाएंदा किन सुख पाया जो तुद पाई।

सदा घट चानन अज्ञान अंधेर गवाएंदा अज्ञानी अंधे दूजे लागे बिन पानी डुब मुए अभागे चल दिया कर दर नजर न आवे जम दर बांदा दुख पाएंदा बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई ज्ञानी ध्यानी पूछो कोई सतगुर सेवे तिस मिले वडियाई दर सच्चै सोभा पाएंदा सतगुर नो सेवे तिसे आप मलाई ममता काट सच लिवलाई सदा सच बन जह वापारी ना मुहला पाएंदा आपे करे कराए करता शब्द मरे सोई जन मुक्ता नानक नाम वसै मन अंतर नामो नाम त्याईंदा मारू महला तीजा जो तुद करना सो कर पाया पाणी विच को विरला आया पाणा मन्ने सो सुख पाई पाणी विच सुख पाएंदा गुरमुख तेरा पाणा पावे सहजे ही सुख सच कमावे।

पाई सच्चे सच मलाईंदा नाम वसार मन तन दुख पाया माया मोह सब रोग कमाया बिन नावे मन तन है कुश्ती नरके वासा पाईंदा नाम रते तिन निर्मल देहा निर्मल हंसा सदा सुख नेहा नाम सलाहे सदा सुख पाया निज

पारा निःचलवा सा पाईला अंतर कारबंग के थान सुहाया गुरमुख विरलै किने थान पाया इत साथ निभ है सलाही सच्ची हर सच्चा।

हर दिन हर सेवियो सच्ची बाणी हर जियो शब्द मलाएंदा हर चेत है तिन बले हार है जाऊं गुर कै शब्द तिन मेल मलाऊं तिन की धूर लाई मुख मस्तक सत संगत बह गुण गाएंदा हर के गुण गावा जे हर प्रभ पावा अंतर हर नाम शब्द सुहावा गुरबाणी चहो कुंडी सुनिए साचे नाम समाएंदा सो जन साचा जे अंतर पाले गुर कै शब्द हर नदर निहाले ज्ञान अंजन पाए गुर शब्दी नदनी नदर मलाएंदा वड्डे भाग एहो शरीर पाया मानस जन्म शब्द चित लाया बिन शब्द है सब अंध अंधेरा गुरमुख किसह बुझाएंदा एक कित आए जन्म गवाए मनमुख लागे दूजे पाए एह वेला फिर हाथ ना आवे पग खिसे पछताएंदा गुर कै

दूजे पाए परम पलाया, हर ना चेते सदा दुख पाए, बिन हर चेते दुख पाएंदा, जे सतगुर सेवे सो परवान, काया हंस निर्मल दर सच्चे जान, हर सेवे हर मन वसाई, सो है हर गुण गाएंदा, बिन भागा गुर सेविया न जाए, मन मुख भूले मोए बिल लाए, जिन को नदर होवे गुर केरी, हर जियो आप मलाएंदा, काया कोट पक्के हट नाले, गुरमुख लेवे वस्त संभाले, हर का नाम त्याए दिन राती, उत्तम पदवी पाएंदा, आपे सच्चा है सुखदाता, पूरे गुर कै शब्द पछाता, नानक नाम सलाए साचा, पूरे भाग को पाएंदा, मारू महला तीजा, निरंकार आकार उपाया, माया मोह हुक्म बनाया, आपे खेल करे सब करता, सुन साचा मन वसाएंदा, माया माई त्रै गुण परसूत जमाया, चारे वेद ब्रह्मे नू फरमाया, वरे महावार तिथि कर, इस जग मह सोजी पाएंदा, गुर सेवा ते करनी सार, राम नाम राखो उरतार, गुरबाणी वरती जागे अंतर, इस बाणी ते हर नाम पाएंदा, वेद पढ़े अन दिन वाद समाली।

पाए, हित रंग साचे माहे समाए, पूरे भाग को एहो रंग पाए, गुरमति रंग चढ़ाईंदा, मन मुख बहुत करे अभिमान।

गुरमुख वणज सदा सुख पाई सहजी सहज मलाएंदा सच्चा महल सच्चे पंडारा आपे देवे देवनहारा गुरमुख सा लाहे सुखदाती मन मेले कीमत पाएंदा काया विच वसत कीमत नहीं पाई।

सब मैं रहे आसमाई, गुर प्रसादी पाया जाई, आपे मेल मलाए आपे, शब्दे सहज समाइंदा, आपे सच्चा शब्द मलाई, शब्दे विच्चो परम चुकाई।

रस न हर रस पाया, शब्द मर है से मरन सवार है, हर के गुण हृदय उरतार है, जन्म सफल हर चरणी लागी, दूजा पाओ चुकाया, हर जियो मेले आप मलाई, गुर कै शब्दे आप गुआई, अन दिन सदा हर भगती राती, इस जग महला हा पाया।

मुक्त होवै। पंच दूत वस आया, बाज गुरु है मोह गुबारा, फिर डुबै वारू वारा। सतगुर भेटे सच दृढ़ाई, सच नाम मन पाया।

माही समाया करै अंदर को कर पाई गुर कै शब्दे सहज सुपाई उतै सोग वियोग ना व्यापै सहजे सहज समाया दूजे पाए दुष्टा का वासा पौंदे फिरह बहु मोह प्यासा कुसंगत बह सदा दुख पावह दुखो दुख कमाया सतगुर बाजो संगत ना हुई बिन शब्दे पा

रतन धन पाया सतगुर की सेवा पाई बिन सतगुर जो दूजे लागे आवह जाहे भ्रम मरह अभागी नानक तिनकी फिर गत होए जे गुरमुख रह सरनाई गुरमुख प्रीत सदा है साची।

अमृत रास सतगुरु चवाया, दसवें द्वार प्रगट होए आया। तह अनहद शब्द बजह धुन बाणी, सहज सहज समाई है, जिनको करतै तुर लिख पाई। अन दिन गुर गुर करत विहाई, बिन सतगुर को सीजै नाही। गुर चरणी चित लाई है, जिस भावै तिसे

ज्ञान रतन मन प्रगट भया नाम पदार्थ सहजे लया एह वडे आई गुर ते पाई सतगुर कहो सद बल जाई हे प्रगटिया सूर निस मिटिया अंधियारा अज्ञान मिटिया गुर रतन अपारा सतगुर ज्ञान रतन अत भारी

सोवे। गुरमुख नाम समाए समावे, नानक नाम त्याई है। भगता मुख अमृत है बाणी, गुरमुख हर नाम आखव खाणी। हर हर करत सदा मन बिगसै, हर चरणी मन लाई है। हम मूर्ख अज्ञान ज्ञान किस नाही, सतगुर ते समझ पड़ी मन माही। हो दयाल कृपा करा हर जीओ, सतगुर की सेवा लाई है। जिन सतगुर जाता तिनेक पछाता, सर्वे राव रहया सुख दाता। आत्म चीन परम पद पाया, सेवा सुरत समाई है। जिनको आद मिली वड्याई, सतगुर मन वस्या निभलाई। आप मिलिया जग जीवन दाता, नानक अंक समाई है। मारू महला चौथा, हर अगम अगोचर सदा अबनासी। सर्वे रव रहया तटवासी, तिस बिन अवर न कोई दाता। हर तिस ऐसरे वो प्राणी है, जां को राखे हर राखन हारा। ताको कोई ना साख समा।

तुझै पह करते हरियन देन नाम बखानी है। किस ही जोर अहंकार बोलन का किस ही जोर देवान माया का। मैं हर बिन टेक तारे अवर ना काई तू करते राख मैं निमाणी है। निमाणे मान करह तुद पावे।

गुर पद साध परम पद पाया, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, बिन सेवा पछो ताणी हे। तू सब मह वर्त है हर जगन्नाथ, सो हर जपै जिस गुर मस्तक हाथ, हर की शरण पया हर जापी, जन नानक दास दसाणी हे। मारू सोले महला पंजवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कला उपाय तरी जिन धरना, गगन रहाया हुक्मे चरना, अगन उपाय ईंधन मैं बांदी, सो प्रभ राखै भाई हे। जी जंत को रिजक संबाही, करन कारण समरथ अपाही, खिन मह थाप यथापन हारा, सोई तेरा सहाई हे। मात गर्भ में जिन प्रित पालिया, सास ग्रास होए संग संभालिया, सदा सदा जपिया सो प्रीतम, वड्डी जिस वड्याई हे। सुल्तान खान करे खिन कीरे, गरीब नवाज करे प्रभ मीरे, गर्भ निवारण सर्ब सुधारन, किस कीमत कही ना जाई हे। सो पतवंता सो तनवंता, जिस मन वस्या हर भगवंता, मात पिता सुत बंधक पाई, जिन एह सृष्ट उपाई हे। प्रभ आए सरना पौ नहीं करना, साध संगत निश्चौ है तरना, मन बच कर्म अरादी करता, तिस नाही कदे सजाई हे। गुण निदान मन तन मह रविया, जन्म मरण की जोन ना पविया, दुख बनास किया सुख डेरा, जा तृप्त रहे आगाई हे।

कर चिंता गणत मटाई है। हर का नाम कोट लख बाहा, हर जस कीर्तन संग धन ताहा। ज्ञान खड़ग कर कृपा दीना, दूत मारे कर ताई है। हर का जाप जपो जप जपने, जीत आव हो वसो हो घर अपने। लख चौरासी नरक ना देखो, रसक रसक गुण गाई है। खंड ब्रह्मांड उधार नहारा, ऊच अथाह अगम अपारा। जिसनो कृपा करे प्रभ अपनी, सो जन तिसह त्याई है। बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले, कर कृपा की।

बनी प्रभ तेरी बिनस गई हूं मैं मत मेरी अंगीकार किया प्रभ अपने जग में है सोब सुहाई है जय जयकार जपो जगदीश बल बल जाई प्रभ अपने ईसे इस बिन दूजा अवर ना दिसे एका जगत सबाई है सत सत सत प्रभ जाता गुर प्रसाद सदा मन राता।

ग्रह पीतर जित उतरै भूख प्यासा ही सगले कर्म धर्म जुग साधा बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा पई कृपा नानक सत संगी तौ धन फिर आनंद उलासा ही तन अंधी फिर चपल सियाना पंच तत् का रचन रचाना जिस वखर को तुम आए हो सो पायो सतगुर पासाई धन कह तू वस मैं नाली प्रिय सुखवासी बाल गोपाली तुझे बिना हों कित ही ना लिख है वचन देह छोड़ ना जासा ही फिर कहे आहो हुक्मी बंदा ओ भारू ठाकुर जिस कान ना छंदा जिचर राख है तिचर तुम संग रहना जा सदे ता ऊठ सदा साहे जो प्रिय बचन कहे तन साचे तन कशु ना समझे चंचल काचे बहोर बहोर फिर ही संग मांगे ओह बात जाने कर हासा ही आई आ गया फिर हो बुलाया ना तन पूछी ना मता पकाया ऊठ सदायो शूटर माती देख नानक मिथन मुहासा ही रे मन लोभी सुन मन मेरे सतगुर सेव दिन रात सदेरे बिन सतगुर पचमुए साकत नगुरे गल जम फासा ही मनमुख आवै मनमुख जावै मनमुख फिर चोटा खावे जितने नरक से मनमुख भोगै गुरमुख लेप ना मासा ही गुरमुख सोए जे हर जियो पाया जिस कौन मिटावै जे प्रभ पहराया सदा आनंद करे आनंदी जिस सिर पाओ पया गल खासा ही हौ बलिहारी सतगुर पूरे शरण के दाते बचन के सूरे ऐसा प्रभ मिलिया सुखदाता विचड़ना कत ही जासा ही गुण निदान किश कीम ना पाई कट कट पूर रहो सब ठाई नानक सरन दीन दुख भंजन हौ रेण तेरे जो दासा ही मारू सोलह महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद करै आनंद आनंदी मेरा घट घट पूरन सिर सिरै नबेरा सिर साहा कै सच्चा साहिब अवर नाही को दूजा हे हर कवंत आनंत दयाला प्रगट रहो प्रभ सर्ब उजाला रूप करे कर देखै बिगसै आपे ही आप पूजा हे आपे कुदरत करे विचारा आपे ही सच करे पसारा आपे खेल खलावे दिन राती आपे सुन सुन पीजा ही साचा तखत सच्ची पातशाही सच खजीना साचा साही आपे सच धारियो सब साचा सच्चे सच वरती जाही सच तप

तू है वड राजा, हुक्म सच्ची कह पूरे काजा, अंतर बाहर सब किस जाने, आपे ही आप पति जाहे।

सहज घर तेरे हम्यो तेरी दृष्टि जाहे तेरी दात तुझे ते होवे देह दान सबसे जंत लोवे टूट न आवे पूर भंडारे तृप्त रहे आगी जाहे जाच है सिद्ध साधक बनवासी जाच है जति सती सुखवासी एक दातार सगल है जाचिक देह दान सृष्टि जाहि करह भगत अर रंग अपारा खिन मह थापयो थापनहारा भारू तोल बेअंत।

सवाया नित नितरंगा कटे नाही तोली जाही। बारहा कंचन शुद्ध कराया नदर सराफ बन्नी सचड़ाया परख खजाना पाया सराफी।

श्रवण सुनिए दूजी अवरना जाप सकाई सगल तुम्हारी तारना आप चितारे अपना किया आपे आप प्रवथिया आप उपाय रचियोन पसारा आपे कट कट सारना एक उपाय वड दरबारी एक उदासी एक घर बारी एक भूखे एक तृप्त अगाए सबसे तेरा पारना आपे सत सत सत साचा पोत पोत भगतन संग राचा आपे गुपत आपे है प्रगट अपना आप पसारना सदा सदा सद होवन हारा।

चंद सूरज गुण तासा पौन पानी बैसंतर सिमर है सिमर है सगले पार जना सिमर है खंड दीप सब लोवा सिमर है पाताल पुरिया सच सोवा सिमर है खानी सिमर है बाणी सिमर है सगले हर जना सिमर है ब्रह्मे विष्णु महेशा सिमर है देवते कोड़ ते तीसा सिमर है जख दैत सब सिमर है अगंत न जाई जस गना सिमर है पास पंखी सब कूता सिमर है बन पर्वत अवतूता लता बली साख सब सिमर है रव रहे आस्वामी सब मना सिमर है थूल सूखम सब जनता सिमर है सिद्ध साधक हर मंता गुप्त प्रगट सिमर है प्रभ मेरे सगल पवन का प्रभ तना सिमर है नर नारी आश्रमा सिमर है जात जोत सब वर्णा सिमर है गुणी चतुर सब बेते सिमर है रैणी अर दिना सिमर है घड़ी मूरत पल निमखा सिमर है काल अकाल सोच सोचा सिमर है सौन शास्त्र संजोगा अलख न लखिए एक खिना करण करामन हार स्वामी सगल कटां के अंतर जामी कर कृपा जिस भगती लाव हो जन्म पदार्थ सो जिना जान के मन बूठा प्रभ अपना पूरे कर्म गुर का जप जपना सर्व निरंतर सो प्रभ जाता बहुड़ना जोनी पर मुरुना गुर का शब्द वसे मन जाके दुख दर्द प्रमता का भागे सुख सहज आनंद नाम रस अनहद बाणी सहज तुना सो तनवंता जिन प्रभ त्याया सो पतवंता जिन साध संग पाया पार ब्रह्म जाके मन बूठा सो पूर करमा नाशिना जल फल महियल स्वामी सोई अवरमा कही है दूजा कोई गुर ज्ञान अंजन काटे ओ भ्रम सगला अवरना दिसै एक बिना ऊचे ते ऊचा दरबारा कहन न जाई अंत न पारा गहर गंभीर अथाह स्वामी अतुल न जाई क्या मिना तू करता तेरा सब किया तुझ बिन अवरना कोई बिया आद मद अंत प्रभ तू है सगल पसारा तुम तना जम दूत तिस निकट ना आवे साध संग हर कीर्तन गावे सगल मनोरथ ता के पूरन जो सर्वणी प्रभ का जस सुना।

स्वामी तुम मना मारू महला पंजवा प्रभ समरथ सर्व सुख दाना सिमरो नाम हो मेरवाना हर दाता जी जंत पेखारी जन बांछ जा चंगना मांगो जन तूर परम गत पावो जन्म जन्म की मैल मिटावो दीर्घ रोग मिट है हर औखद हर निर्मल रापै मंगना सरवणी सुनो बिमल जस स्वामी एका ओट तजो बिख कामी निव निव पाए लगो दास तेरे कर सो कृत नाही संगना रसना गुण गावे हर तेरे मिट है कमाते अव गुण मेरे सिमर सिमर स्वामी मन जीवे पांच दूत तज तंगना चरण कमल जप बोहित चरिये संत संग मिल सागर तरिये अर्चा बंदन हर समत निवासी बहुड़ जोन ना नंगना दास दासन को कर ले हो गोपाला कृपा निदान दीन दयाला सखा सहाय पूर्ण परमेश्वर मिल कदे न होवी भंगना मानता ने अर्प धरी हर आग्या जन्म जन्म का सोया जागे जिसका सा सोई प्रतपालक हाथ त्यागी हौ मैं हंतना जल फल पूर्ण अंतर जामी कट कट रव्या अशल स्वामी परम पीत खोई गुरपूरे एक रव्या सरबंगना जत कत पेखो प्रभ सुख सागर हर तोट भंडार नाही रतनागर अगह अगाह किस मित नहीं पाईए सो बूझै जिस किरपंगना छाती शीतल मन तन ठंडा जन्म मरण की मिटवी डंजा कर गह काड लिए प्रभ अपने हमें उतार दृश टंगना एको एक रव्या सब ठाई तिस बिन दूजा कोई नाई आद माद अंत प्रभ रव्या त्रिशन बुझी परमंगना गुर परमेश्वर गुर गोबिंद गुर करता गुर सद बख्शंद गुर जप जाप जपत फल पाया ज्ञान दीपक संत संगना जो पेखा सो सब किस स्वामी जो सुनना सो प्रभ की बानी जो कीनो सो तुम्हें करायो शरण सहाई संत है तना जाचक जाचे तुम्हें अरादे पतत पावन पूर्ण प्रभ सादे एको दान सर्व सुख गुण निद आन मंगन निह किंचना काया पात्र प्रभ करने हारा लगी लाग संत संगारा निर्मल सोए बणी हर बाणी मन नाम मजीठे रंगना सोलह कला संपूर्ण फलिया अनत कला हुए ठाकुर चढ़िया आनंद बनोद हर नाम सुख नानक अमृत रस हर कुंचना मारू सोले महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तू साहिब हो सेवक कीता जियो पिंड सब तेरा दीता करन करामन सब तू है नाही किस असाड़ा तुम्हें पठाए ता जग मह आए जो तुद पाणा से कर्म कमाए तुझ ते बाहर किशु ना हुआ ता भी नाही किस काड़ा ऊहा हुक्म तुम्हारा सुनिए ईहा हर जस तेरा भणिए आपे लेख अलेख है आपे तुम सियो नाही किस झाड़ा तू पिता सब बारक थारे ज्यो खिलावे है त्यों खेलन हारे उजड़ मार्ग सब तुम ही कीना चले नाही कोवे पाड़ा एक बसाए रखे ग्रह अंतर एक पठाए देश दसंतर एक ही को कास एक ही को राजा इन मैं कही है क्या कूड़ा कमन सो मुक्ति कमन सो नरका कमन संसारी कमन सो भगता कमन सो दाना कमन सो होछा कमन सो सुरता कमन जड़ा हुक्मे मुक्ति हुक्मे नरका हुक्म संसारी हुक्मे भगता
हुक्मे हो चा हुक्मे दाना दूजा ना ही अवर तड़ा सागर कीना आत तुम पारा एक खड़ेर सातल कर मनमुख गावारा एक ना पार लंगा वह आपे सतगुर जिनका सच बेड़ा कौतक काल एहो हुक्म पठाया जी जंत उपाय समाया विखै विगसै सब रंग माणी रचन कीना एक अखाड़ा वड्डा साहिब वड्डी नाई वड्डा तार वड्डी जिस जाई अगमे अगोचर बे अंत अतोला है नाही किस आहाड़ा कीमत कोई ना जाने दूजा आपे आप निरंजन पूजा आप सो ज्ञानी आप त्यानी आप सतवंता अत गाड़ा केतड़िया दिन गुप्त कहाया केतड़िया दिन सुन समाया केतड़िया दिन धुंधू कारा आपे करता प्रगटड़ा आपे शक्ति सबल कहाया आपे सूरा अमर चलाया आपे शिव वरताई नियंतर आपे शीतल ठार गड़ा जिसह नवाजे गुरमुख साजे नाम वसै तिस अनहद वाजे तिस ही सुख तिस ही ठकराई तिसह न आवै जम नेड़ा कीमत तागद कही ना जाई कहो नानक बे अंत गुसाई आद मद अंत प्रभ सोई हाथ तिसै कह निबेड़ा किसै शरीक ना ही रे कोई किसे ही बुतै जवाब ना होई नानक का प्रभ आपे आपे कर कर वेखै चोज खड़ा मारू महला पंजवा अचुत पार ब्रह्म परमेश्वर अंतर जामी मद सूदर दामोदर स्वामी रिखि केस गोवर्धन तारी मुरली मनोहर हर रंगा मोहन माधव कृष्ण मरारे जगदीश्वर हर जियो असुर संघारी जग जीवन अबनासी ठाकुर घट घट वासी है संगा धरनी तर ईस नरसिंह नारायण दाड़ा अगरे प्रथम तरायण बावन रूप किया तुद करते सब ही सेती है चंगा श्री राम चंद जिस रूप नारिखिया बनवाली चक्र पान दर्श अनूपिया सहस नेतर मूर्त है सहसा एक दाता सब है मंगा भगत वचल अनाथ है नाथे गोपी नाथ सगल है साथे वासुदेव नरंजन दाते वर्ण ना साको गुण अंगा मकंद मनोहर लक्ष्मी नारायण द्रौपदी लज्जा निवार उदाहरण कमला कंत करह कंतूहल अनद बनोदी निसंगा मोग दर्शन आजूनी संभव अकाल मूरत जिस कदे नाही खो अवनासी अवगत अगोचर सब किस तुझ ही है लगा श्री रंग बैकुंठ के वासी मच कछ कूरम आग्या अवतरासी केशव चलत करह निराले कीता लोड़ है सो होएगा निराहारी निरवैर समाया धार खेल चतुर्भुज कहाया सावल सुंदर रूप बनावह देन सुनत सब मोहैगा बनमाला बेभूखन कमल नैन सुंदर कुंडल मुकट बैन शंख चक्र गदा है धारी महासारथी सतसंगा पीत पितंबर त्रिपवन धनी जगन्नाथ गोपाल मुख पणी सारंग धर भगवान बीठला मैं गणत नाया वै सरबंगा निह कंटक निह केवल कही है तनंजय जल थल है मही है मृत लोक पयाल समीपत अस्तर थान जिस है अपगा पतत पावन दुख पै पंजन हंकार निवारण है पव खंडन भगती तोखत दीन कृपाला गुणे न कित ही है पिगा निरंकार अशल अडोलो ज्योत स्वरूपी सब जग मौलो सो मिले जिसे आप मलाहे आपो हो कोहे ना पावेगा आपे गोपी आपे काना आपे गऊ चरावे बाना
आप उपावह आप खपावह तुझ लेप नहीं एक तिलरंगा। एक जी ही गुण कमन बखान सैस फनी सेख अंत न जान। नव तन नाम जपे दिन राती एक गुण नाही प्रभ कह संगा। ऊट गही जगत पित सरनाया पै भयानक जम दूत दुतर है माया। हो कृपाल इच्छा कर राख हो साध संतन कह संग।

परम पद पावो जिस प्राप्त सो पावेगा जिनको कृपा करी सुख दाती तिन साधु चरण लै हृदय पराती सगल नाम निधान तिन पाया अनहद शब्द मन वाजंगा कीर्तम नाम कथे तेरे जिहवा सत नाम तेरा परा पूर्बला कहो नानक भगत पये सरनाई देहो दर्श मन रंग लगा तेरी गत मित तू है जान है तू आपे कथ है तै आप बखान है नानक दास दासन को करियो हर भाव है दासा राख संगा मारू महला पंजवा अल्लाह अगम खुदाई बंदे छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे हुए पै खाक फकीर मुसाफर एहो दरवेश कबूल दरा सच निवाज यकीन मसल्ला मनसा बार निवार हुआसा देह मसीत मन मौलाना कलम खदाई पाक खरा सरासरयत लेख मावहु तरीकत तर्क खोज टलावहु मारफत मन मारहु अबदाला मिलहु हकीकत जित फिर न मरा करान कतेब दिल माहे कमाही दस औरात रखो बदराही पंच मर्द सिदकले बंद हो खैर सबूरी कबूल परा मक्का मेहर रोजा पै खाका पिसत पीर लफज कमाए अंदाजा हूर नूर मुस्क खुदाया बंदगी अल्लह आला हुजरा सच कमावे सोई काजी जो दिल सोदे सोई हाजी सो मुल्ला मलऊन निवारे सो दरवेश जिस सिफत तरा सबे वक्त सबे कर वेला खालक याद दिले महमौला तस्बी याद करहु दस मर्दन सुन्नत सील बंधान बरा दिल मह जानहु सब फिलहाला खिलखाना बिरादर हमू जंजाला मीर मलक उमरे फानाया एक मकाम खुदाए दरा अवल सिफत दूजी साबूरी तीजै हलेमी चौथै खैरी पंजवै पंजे इकत मकामे एह पांज वक्त तेरे अपर परा सगली जान करो मौदीफा बद अमल छोड़ करो हाथ पूजा खुदाए एक बुझ देव हो बांगा बुरगु बर खुरदार खरा हक हलाल बखोरो खाना दिल दरियाओ तो वह मैं लाना पीर पछाण पिस्ती सोई अजराइल ना दोज ठरा काया किरदार औरत यकीना रंग तमाशे मान हकीना नपाक पाक कर हदूर हदीसा साबत सूरत दस्तार सिरा मुसलमान मोम दिल होवे अंतर की मल दिल ते धोवे दुनिया रंग ना आवे नेड़े ज्यों कुसम पाट घ्यो पाक हरा जा को मेहर मेहर मेहरवाना सोई मर्द मर्द मर्दाना सोई सेख मसाए कहाजी सो बंदा जिस नजर नरा कुदरत कादर करन करीमा सिफत महबत अथाह रहीमा हक हुकम सच खुदाया बुझ नानक बंद खलास तरा मारू महला पंजवा पार ब्रह्म सब ऊच बराजी आपे थापे थापे साजे प्रब की शरण गहत सुख पाई है किस भौ न व्यापै बालका गर्भ अगन मह जिन्ह उभारिया रक्त किरम मह नहीं संघारिया अपना सिमरन दे प्रतपालिया ओहो सगल कटा का मालका चरण कमल सरन आई आया साध संग है हर जस गाया जन्म मरण सब दुख नवारे जप हर हर भो नहीं काल का समरथ अकथ अगोचर देवा जी जंत सब तां की सेवा अंडज जेरज सेतज उत्पुज बहु परकारी पालका किसह प्राप्त तो

आदि अंत मद प्रभ सोई, आपे करता करे सो होई। ब्रह्म पो मिटिया साध संगते, दालत ना कोई काल का। उत्तम बाणी गाओ गोपाला, साध संगत की मंगो होर वाला। बासन मेट न बासन होई है, कल मल सगले जाल का। संतां की एह रीत नराली, पार ब्रह्म कर देख नाली। सास सास आराधन हर हर, क्यों सिमरत की जयाल का। जह देखा तह अंतर जामी, निमख न विसरहो प्रभ मेरे स्वामी। सिमर सिमर जीव है तेरे दासा, बन जाल पूर्ण थाल का। तत्ती वाओ ना ताको लागे, सिमरत नाम अन दिन जागे। आनंद बनोद करे हर सिमरन, तिस माया संग ना ताल का। रोग सोग दुख तिस नाही, साध संग हर कीर्तन गाही। अपना नाम देहे प्रभ प्रीतम, सुन बेनंती खालका। नाम रतन तेरा है प्यारी, रंग

जिन विसरह नाही काहू बेरा, इनकै संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अहंकार जाए, किस जन को उपदेश निर्माल का, तुद विण नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभ के पैरा, हौ बलिहारी सतगुर पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्रभ बिसरै नाही, आठ पहर हर हर को त्याई, नानक संत तेरे रंग राती, तू समरथ वडाल का, मारू महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, चरण कमल हिरदय नित तारी, गुरपूरा खिन खिन नमचकारी, तन मन अर्प धरी सब आगे, जग मह नाम सुहावना, सो ठाकर क्यों मनो वसारी, जियो पिंड दे साज सवारी, सास ग्रास संभाले करता, कीता अपना पावना, जाते बिरथा को नाही, आठ पहर हर रख मन माही, साध संग पाजे चुत स्वामी, दरगाह सोभा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौ निद,

पदार्थ जीत पराणी, काम क्रोध निंदा पर हरिये, हर रसना नानक गावना। जिस रूप ना रेखिया कुल नहीं जाती, पूर्ण पूर रहे दिन राती। जो जो जपै सोई बड़ भागी, बहुड़ना जोनी पावना। जिसनो बिसरै पुरख बधाता, जलता फिरै रह नित ताता। किरत कणै को रखै ना कोई, नरक घोर मह पावना। जियो प्राण तन धन जिन साजिया, मात गर्भ मह राख निवाजिया। तिस स्यों प्रीत

कह नेरे, हाथ हमारे कछु है नाही, जिस जनाई तिसे जनावना, जाके मस्तक तुर लिख पाया, तिस ही पुरख ना व्यापे माया, नानक दा सदा सरनाई, दूसर लवे ना लावना, आग्या दुख सुख सब कीने, अमृत नाम बिरले ही कीने, ताकी कीमत कहन ना जाई, जातकत ओही समावना, सोई भगत सोई वडदाता, सोई पूर्ण पुरख बधाता, बाल सहाई सोई तेरा, जो तेरे मन पावना, मृत दुख सुख लिख पाए, तिल नहीं बदह कटह ना कटाए, सोई होए जे करते पावे, कह कह आप मन्यावना, अंध कूप ते से ही काडे, जन्म जन्म के टूटे गांडे, कृपा तार रखे करे अपने, मिल साधु गोविंद त्यावना, तेरी कीमत कहन ना जाई, अचरज रूप बड़ी वड्याई, भगत दान मंगे जन तेरा, नानक

एक बांधे एक ढीलिया एक सुखिए हर प्रीता नानक सच्चा मन ले सच करनी सच रीत पौड़ी गुर ते ज्ञान पाया हथ खड़ग करारा दूजा भ्रम गढ़ कटिया मोह लोभ अहंकारा हर का नाम मन वसिया गुर शब्द विचारा सच संजम मत उत्तम हर लगा प्यारा सब सचो सच वर्तदा सच सिरजनहारा सलोक महला तीजा केदारा रागा विच जानिए भाई शब्दे करे प्यार सत संगत स्यों मिल दूर है सच्चे तरे प्यार विच्चों मल कटे अपनी कुल्ला का करे उदार गुणा की रास संग्रह अवगण कड्डै वडार नानक मिलिया।

गुर तीरख दे तित दर जाए उतारिया गुर दिसै सावधान नानक नदरी पाई है दरगाह चले मान पौड़ी निहकंटक राज पुंच तू गुरमुख सच कमाई सच्चै तख्त बैठा न्याओ कर सत संगत मेल मलाई सच्चा उपदेश हर जापना हर स्यों बन आई ऐथै सुखदाता मन वसै अंत हुए सखाई हर स्यों प्रीत उपजी गुर सोजी पाई सलोक महला पहला भूली भूली मैं फिरी पादर कह ना कोए पुछो जाए सियाणिया दुख काटै मेरा कोई सतगुर साचा मन वसै साजन उत ही ठाए नानक मन तृपतासी है सिफती साचै नाए महला तीजा आपे करनी कार आपे करे रजाए आपे किस ही बख्श ले आपे कार कमाए नानक चानन गुर मिले दुख बिख जाली नाए पौड़ी माया वेख ना भुल तू मनमुख मूरखा चलदिया नाल ना चलई सब झूठ धर्म लखा अज्ञानी अंध ना बूझई सिर उपर जम खड़ग कलखा गुर प्रसादे उबरे जिन हर रस चखा आप कराए करे आप

आवण जावण दुख घना कदे ना चूकै चिंदा कापड़ जिवें पछोड़ी है कड़ी मोहत कड़ियाल नानक सच्चे नाम बिन सिरों ना चुकै जंजाल महला तीजा त्रे पवन ढूंढी सजना हम मैं बुरी जगत ना चुरही अड़े सच चो नानक सचो सच पौड़ी गुरमुख आपे बख्शियोन हर नाम समाने आपे भगती लायोन गुर शब्द निशाने सनमुख सदा सोहने सच्चे दर जाने ऐथे उथे मुक्त है जिन राम पछाणी तन तन से जन जिन हर सेविया तिन हौ कुरबाणी सलोक महला पहला महल कुचजी मड़बड़ी काली मनहु कसुद जे गुण होवन ता पिर रवै नानक अवगुण मुंद महला पहला साच सील सच संजमी सा पूरी परवार नानक अहनस सदा भली फिर कै हेत प्यार पौड़ी अपना आप पछाणिया नाम निधान पाया किरपा करके अपनी गुर शब्द मलाया गुर की बाणी निर्मली हर रस पी आया हर रस जिन्नी चाखिया हन रस ठाक रहाया हर रस पी सदा तृप्त भये फिर तृष्णा भूख गवाया सलोक महला तीजा फिर खुशिये तन रावीए तन और नाम शिंगार नानक तन आगे खड़ी सोभा बंती लार महला पहला ससुरह पई है कंत की कंत अगम अथाह नानक तन सुहागणी जो भावे है वे परवाह पौड़ी तख्त राजा सो बह जे तख्त लायक होई जिन्नी सच पछाणिया सच राजे से एह भूपत राजे ना आखी है दूजे पाए दुख होई कीता क्या सलाही है जिस जांदे बिलम ना होई निश्चल सच्चा एक है गुरमुख बूझै सो निःचल होई सलोक महला तीजा सबना का फिर एक है फिर बिन खाली नाही नानक से सुहागणी जे सतगुर माहे समाहे महला तीजा मन के अधिक तरंग त्यों दर साहिब छुट्टी है जे राचै सच रंग गूढ़ै रंग अपार कै नानक गुर प्रसादी छुट्टी है जे चित लगे सच पौड़ी हर का नाम अमोल है त्यों कीमत कीजै आपे श्रेष्ठ सब साजियन आपे वरतीजै गुरमुख सदा सलाही है सच कीमत कीजै गुर शब्दी कमल बेगासिया एव हर रस पीजै आवण जाना ठाकिया सुख सहज सवीजै सलोक महला पहला।

सहज बनस्पत फुल फल भंवर वसै भय खंड नानक तरवर एक है एको फुल पे रंग पौड़ी जो जन लूजह मन सिउ से सूरे परदाना हर सेती सदा मिल रहे जिन्नी आप पुछाना ज्ञानिया का एहो महत है मन माहे समाना हर जियो का महल पाया सच लाए त्याना जिन गुर प्रसादी मन जीतया जगत नह जिताना सलोक महला तीजा जोगी होवा जग पवा कर कर भीख्या लेउ दरगाह लेखा मंगी है किस किस उत्तर देउ भिख्या नाम संतोख मड़ी सदा सच है नाल भेखी हाथ ना लदिया सब बद्दी जमकाल नानक गल्लां झूठियां सच्चा नाम समाल महला तीजा जित दर लेखा मंगी है सो दर सेवे हो ना कोई ऐसा सतगुर लोड़ लहो जिस जे वड़े अवर ना कोई किस सरनाई छूटी है लेखा मंगे ना कोई सच दृढ़ाए सच दृढ़ सच्चा ओह शब्द दे हिरदय जिस दै सच है तन मन भी सच्चा होए नानक सच्चा हुक्म मन्ने है सच्ची वड्याई दे सच्चे माहे समावसी जिसनो नदर करे पौड़ी सूरे एह ना आखी है अहंकार मर है दुख पाव है अंधे आप ना पछाणनी दूजे पच जावे है हत क्रोध स्यों लूज दे

सेव गति गए। मर जन्म है फिर आवह सलोक महला तीजा। कागो हुए न उजला लोहे नाव ना पार। किरम पदार्थ मन ले धन सवार नहार। हुक्म पछाण उजला सिर काष्ट लोहा पार। तृष्णा छोड़े भय वसे नानक करनी सार। महला तीजा मारू मारन जो गए मार ना सकह गवार। नानक जे उह मारी है गुर शब्दी विचार। इहो मन मारिया ना मरे जे लोचे सब कोई। नानक मन ही कहो मन मारसी जे सतगुर भेटै सोए। पौड़ी दोए तरफा उपायन विच सख्त शिव वासा। शक्ति किने ना पायो फिर जन्म बनासा। गुर सेवै शांत पाई जप सास ग्रासा। सिमरत सास्त सोध देख उत्तम हरदासा। नानक नाम बिना को थिर नहीं नामे बल जासा। सलोक महला तीजा हुआ पंडित ज्योत की। वेद पढ़ा मुख चार नव खन मदे पूजिया। अपने चज विचार मत सच्चा अखर भुल जाए। चौके पिटे ना कोए झूठे चौके नानका। सच्चा एको सोए महला तीजा। आप उपाय करे आप आपे नजर करे। आपे देवड़िया कहो नानक सच्चा सोए। पौड़ी कंटक काल एक है होर कंटक ना सूजै। अफर्यो जग मह वर्तदा पापी स्यों लूजै। गुर शब्दी हर पेदी है हर जप हर बूजै। सो हर सरनाई छुट्टी है जो मन स्यों जूजै। मन विचार हर जप करे हर दरगाह सीजै। सलोक महला पहला हुक्म रजाई साखती। दरगाह सच कबूल साहिब लेखा मंगसी। दुनिया देख ना भूल दिल दरवानी जो करे दरवेसी दिल रास। इश्क महबत नानका लेखा करते पास। महला पहला अलगो जोए मधुकड़ो सारंग पान सबाई। हीरे हीरा बेदिया नानक कंठ सुपाए। पौड़ी मनमुख काल वे आपदा मोहे माया लागे। हिन मह मार पछाड़ सी पाए दूजे ठागे। फिर वेला हाथ न आवई जम का डंड लागे। इन जम डंड न लगई जो हर लिव जागे। सब तेरी तुद छामणी सब तुदे लागे। सलोक महला पहला सर्बे जोए अगश्मी। दुख कनेरो आत कालर लादस सर लांगणो। लाभ ना पूंजी सात। महला पहला पूंजी साचो नाम तू अखुटो दर्ब अपार। नानक वखर निर्मलो धन साहा वापार। महला पहला पूरब प्रीत प्राण ले मोटो ठाकुर मान। माथे उभे जम मारसी नानक मेलन नाम। पौड़ी आपे पिंड सवारियों विच नव निद नाम। एक आपे परम पलायन तिन निफल काम। इकनी गुरमुख बुझिया हरे आत्म राम। इकनी सुनकै मन्या हरे उत्तम काम। अंतर हर रंग उपजिया गाया हर गुण नाम। सलोक महला पहला पोल तन पै मन वसै। एक पद रहीद अत डापन दुख कणु तीने थाम परीद। महला पहला मांडल बेद से बाजणु कणो तड़िया जोए। नानक नाम संभाल तू बीजो अवर ना कोए। महला पहला सागर गुणी अथाह किन हथाला देखी है। वड्डा वे परवाह सतगुर मिले ता पार पवा।
ਮਝ ਭਰ ਦੁਖ ਬਦੁਖ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਸੈ ਨਾ ਲੱਥੀ ਭੁੱਖ ਪੌੜੀ ਜਿਨੀ ਅੰਦਰ ਭਾਲਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵੈ ਜੋ ਇੱਛਣ ਸੋ ਪਾਏ ਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਨਕਾ ਮਿਤ ਹੈ ਜਮ ਮਗ ਨਾ ਪਾਵੈ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਵੈ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣੀਐ ਏਕ ਵਖਾਣੀਐ ਸੁਰਗ ਮਿਰਤ ਪਿਆਲ ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਈ ਮੇਟਿਆ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਨਾਲ ਕੌਣ ਮੂਆ ਕੌਣ ਮਾਰਸੀ ਕੌਣ ਆਵੈ ਕੌਣ ਜਾਏ ਕੌਣ ਰਹਿਸੀ ਨਾਨਕਾ ਕਿਸ ਕੀ ਸੁਰਤ ਸਮਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਉ ਮੂਆ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਪੌਣ ਵਹਿ ਦਰਿਆਓ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਥਕੀ ਨਾਨਕਾ ਜਾਂ ਮਨ ਰੱਤਾ ਨਾਏ।

अंदर मुश्क चुकोलिया कीमत कही ना जाय। पौड़ी इस युग में नाम निदान है नामो नाल चल एहो अखुट कदे नान खुटई खाए खर्चियो पल्ल हर जन नेड़ ना आवई जम कंकर जम कल से साहा सच्चे बन जा रहा जिन हर तन पल्ल हर कृपा ते हर पाई है जां आप हर कल। सलोक महला तीजा मनमुख व्यापार है सार ना जाननी बिक विहाज है बिक संग्रह बिक सिंह तर है प्यार बाहर हो पंडित सदाएं दे मनहो मूर्ख गावार हर सिंह चेतना लाएनी वादी धर्म प्यार वादा किया करन कहानिया कूड़ बोल कर है आहार जग मह राम नाम हर निर्मला होर मैला सब आकार नानक नाम ना चेतनी होए मैले मरह गवार। महला तीजा दुख लगा बिन सेवे है हुक्म मन्ने दुख जाए आपे दाता सुखै दा आपे दे सजाए। नानक एवै जानिए सब किश तिसै रजाए। पौड़ी हर नाम बिना जगत है निर्धन बिन नामै तृप्त नाही दूजै परम पलाया हौं मैं दुख पाही बिन कर्मा किछु ना पाईए जे बहुत लुचाही आवै जाए जम्मै मरै गुर शब्द छुटाही आप करै किसे आखीए दूजा को नाही। श्लोक महला तीजा इस जग मह संती धन खटिया जिन्ना सतगुर मिलिया प्रभयाई सतगुर सच दृढ़ाया इस धन की कीमत कही ना जाय। इत धन पाए भुख लखी सुख वस्या मन आय जिन्ना को तुर लिखिया तिन्नी पाया आय मनमुख जगत निर्धन है माया नो बिल लाय अन दिन फिरदा सदा रह भुख ना कदे जाय शांत ना कदे आवई नह सुख वसै मन आय सदा चिंत चित वधार है सहसा कदे ना जाय। नानक बिन सतगुर मत पवी सतगुर नो मिले ता शब्द कमाय सदा सदा सुख मह रह सच्चे माहे समाय। महला तीजा जिन उपाई मेदनी सोई सार करे एको सिमरहु पाए रहो तिस बिन अवर ना कोए खाना शब्द चंगियाईया जित खादै सदा तृप्त होए पैनन सिफत सुनाए है सदा सदा ओह ऊजला मैला कदे ना होए सहजे सच धन खटिया थोड़ा कदे ना होए देही नो शब्द शिंगार है जित सदा सदा सुख होए नानक गुरमुख बुझिए जिसनो आप बखाले सोए। पौड़ी अंतर जप तप संजमो गुर शब्दी जापै हर हर नाम त्याईए हम मैं अज्ञान गुआपै अंदर अमृत भरपूर है चाखिया साध जापै जिन चाखिया से निरपो भए से हर रस त्रापै हर कृपा तार पी आया फिर काल ना व्यापै। सलोक महला तीजा लोक अवगणा की बन्नै गंठड़ी गुण ना व्याजै कोए गुण का गाहक नानका विरला कोई होए गुर प्रसादी गुण पाइन जिसनो नदर करे। महला तीजा गुण अवगुण समान है जे आप कीते करतार नानक हुक्म मन्ने है सुख पाईए गुर शब्दी विचार। पौड़ी अंदर राजा तख्त है आपे करे न्याय गुर शब्दी दर जानिए अंदर महल असराव खरे परख खजाने पाइन खोटिया नाही थाव सब सचो सच वर्तदा सदा सच न्याय अमृत का रस आया
मन वसिया नाहु सलोक महला पहला हौ मैं करी ता तू नाही तू हो है हौ नाही बूझो ज्ञानी बूझना ए अकथ कथा मन माहे बिन गुर तत न पाईए अलख वसै सब माहे सतगुर मिले ता जानिए जा शब्द वसै मन माहे आप गया भ्रम पहु गया जन्म मरण दुख जाहे गुरमत अलख लखाईए उत्तम मत तराए नानक सोहं हंसा जप जापो त्रे भवन।

अगम दयाल बेअंत तेरी कीमत कह कौन। तुद सिरजिया सब संसार तू लायक सगल पौन। तेरी कुदरत कोई ना जाने मेरे ठाकुर सगल रौन। तुदे अपण कोई ना सकै तू अबनासी जग उधरन। तुद थापे चारे जुग तू करता सगल धरन। तुदे आवन जाना किया तुद लेप ना लगे त्रिण। जिस होवह आप दयाल तिस लावह सतगुर चरण। तू होरत अपाए ना लभही अवनासी सृत करन। दखणे महला पंजवां जे तू बतह अंगणे हब तरत सुहावी होए। हिकस कंतै बाहरी मैंडी वात ना पुछे कोई। महला पंजवां हबे टोल सहावणे सहो बैठा अंगण मल। पही ना वंजै बिरथड़ा जो घर आवै चल। महला पंजवां सेज वछाई कंतकू किया हब शिंगार। इत्ती मंज ना समावई जे गल पहरा हार पौड़ी। तू पार ब्रह्म परमेश्वर जोन ना आवही। तू हुक्मी साजह सृष्ट साज समावही। तेरा रूप ना जाई लखिया क्यों तुझह त्यावही। तू सब मह वरत है आप कुदरत देखावही। तेरी भगत परे भंडार तोट ना आवही। एह रतन जवेहर लाल कीम ना पावही। जिस होवह आप दयाल तिस सतगुर सेवा लावही। तिस कदे ना आवै तोट जो हर गुण गावही। दखणे महला पंजवां जामु पसी हठ मैं पिरी महिंजै नाल। हब्बे दुख उलाहयम नानक नदर निहाल। महला पंजवां नानक बैठा पखे वाऊ लम्मे सेवै दर खड़ा। प्रिये तू जान महिंजा साऊ जो ई साई मुह खड़ा। महला पंजवां क्या गलायो भूश पर वेल ना जो हे कंत तू। नानक फुला संधी वाड़ खिड़िया हब संसार ज्यो पौड़ी। सुगण सुजान स्वरूप तू सब मह वरतंता। तू आपे ठाकुर सेवको आपे पूजनता। दाना बिना आप तू आपे सतवंता। जति सती प्रभ निर्मला मेरे हर भगवंता। सब ब्रह्म पसार पसारे हो आपे खेलंता। एहो आवा गौण रिचायो कर चोज देखंता। तिस बहुड़ गर्भ ना पावही जिस देव है गुरमंता। ज्यों आप चलाव है त्यों चल दे किस वस ना जनता। दखणे महला पंजवां कुरिए कुरिए वैद्या तल गाड़ा महरीर। वेखे शिकड़ थीम दो जाम खिसन दो पेर। महला पंजवां सच जाने कच वैद्यो तू आगू आगे सलवे। नानक आत सड़ी मांज नैनू ब्या ढल पबण ज्यो जुम्यो। महला पंजवां भोरे भोरे रूहड़े से वेंदे आलक। मुद्दत पई चराणिया फिर कड्डू आवै रुत पौड़ी। तुद रूप ना रेखिया जात तू वरना बाहरा। ये मानस जाण है दूर तू वरत है जाहरा। तू सब कट भोग है आप तुद लेप ना लाहरा। तू पुरख आनंदी अनंत सब जोत समाहरा। तू सब देवा महदेव पदाते नरहरा। क्या अरादे जिहवा एक तू अबनासी अपर परा। जिस मेल है सतगुरे आप तिसके सब कुल तरा। सेवक सब कर दे सेव दर नानक जन तेरा। दखणे महला पंजवां गह डरड़ा तृण छाया गाफल जल्यो पाहे। जिन्ना भाग मथाहड़ै तिन उस्ताद पनाहे। महला पंजवां नानक पीठा पक्का साजिया धरिया आण मौजूद। बाजो सतगुर अपने
बैठा झाक दरूद महला पंजवा नानक पुसरिया पकाइया पाइया थाले माहे जिन्नी गुरु मनाया राज राज से खाहे पौड़ी तुद जग मह खेल रचाया विच हों मैं पाइया एक मंदर पंच चोर है नित करह बुरियाइया दस नारी एक पुरख कर दसे साद लुभाइया एन माया मोहनी मोहिया नित फिर है परमाइया हाथा दोवै कीतियो शिव सकत वरताइया शिव अगे सकती हारिया केवै हर पाइया एक विचो ही तुद रखिया जो सतसंग मलाइया जल विचो बिंब उठालियो जल माहे समाइया दखणे महला पंजवा अगाहा कूतरांग पिछा फेरना मोहडड़ा नानक सिज अवेहा वार बहुड़ ना होई जनमड़ा महला पंजवा सज्जन मैंदा चाइया हब कही दा मित हबे जानने अपना कहीं ना खाहे चित महला पंजवा गुजड़ा लदम लाल मथे ही प्रगट थिया सोई सहावा खान जिथे प्रिये नानक जी तू उठिया पौड़ी जा तू मेरे वल है ता क्या मुह छंदा तुद सब किछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा लक्ष्मी टोट ना आवई खाए खर्च रहंदा लख चौरासी मेदनी सब सेव करंदा एह वैरी मित्र सब कीतिया नह मंगै मंदा लेखा कोई ना पुछे जा हर बख्शंदा आनंद भया सुख पाया मिल गुर गोविंदा सबे काज सवारे है जा तुद पावंदा दखणे महला पंजवा देखण को मुस्ताक मुख कजिया तौ तनी फिरदा कितै हाल जा डिठम ता मन त्रापिया महला पंजवा दुखिया दर्द घणे वेदन जाने तू तनी जाना लख पवे इरी दिखंदो ता जीव सा महला पंजवा कहंदी जाए करार वैण वहंदे मैं डिठिया से ही रहे अमान जिन्ना सतगुरु भेटिया पौड़ी जिस जन तेरी भुख है तिस दुख ना व्यापै जिन जन गुरमुख बुझिया सो चहो कुंडी जापै जो नर उसकी सरनी परै किस कंबह पापै जन्म जन्म की मल उतरै गुर तूड़ी नापै जिन हर पाणा मन्या तिस सोग ना संतापै हर जियो तू सबना का मित है सब जान है आपै ऐसी शोभा जने की जे वड़ा हर परतापै सब अंतर जन वरताया हर जन ते जापै दखणे महला पंजवा जिन्ना पिछे हो गई से मैं पिछे पी रव्यास जिन्ना की मैं आसड़ी तिना महिंजी आस महला पंजवा गिल्ली गिल्ली रोडड़ी पौंदी भव पावे आए जो बैठे से फाथिया उबरे भाग मथाए महला पंजवा दिता हब मजाए खाली कोई ना जानिए तै सखी भाग मथाए जिन्नी मेरा सज्जन रावया पौड़ी हों ढाडी दर गुण गावंदा जे हर प्रभ पावे प्रभ मेरा थिर थावरी होर आवै जावे सो मंगा दान गुसाइया जित भुख लह जावे प्रभ जियो देवो दर्शन अपना जित ढाडी तृप्तावे अरदास सुनी दातार प्रभ ढाडी को महल बुलावे प्रभ देख दिया दुख भुख गई ढाडी को मंगण चेतना आवे सबे इच्छा पूरिया लग प्रभ कह पावे हो निर्गुण ढाडी बख्शियोन प्रभ पुरख वेद आवे दखणे महला पंजवा जा छुटे ता खाक तू सुनी कंतना जानही
ਦੁਰਜਨ ਸੇਤੀ ਨੇਹੋ ਤੂੰ ਕਹਿ ਗੁਣ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣ ਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਬਿਨ ਘੜੀ ਨਾ ਜੀਵਣਾ ਵਿਸਰੇ ਸਰੈ ਨਾ ਬਿੰਦ ਕਿਸ ਸਿਉ ਕਿਉ ਮਨ ਰੂਸੀਐ ਜਿਸ ਹਮਾਰੀ ਕਿੰਦ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਰੱਤੇ ਰੰਗ ਭਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਮਨ ਤਨ ਅਤ ਗੁਲਾਲ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਆਲੂ ਦਿਆਂ ਜਿੱਤੀ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਪਵੜੀ

मार निवाड़ा गुरपौ जले पार लंघाया जिता पावाड़ा गुरमति सब रस भोगदा वड्डा आखाड़ा सब इंद्रिया वस कर दितियो सतवंता साड़ा जित लायन पितै लग दिया नह खिंचो ताड़ा जो इच्छी सो फल पाएंदा गुर अंदर वाड़ा गुरु नानक तुठा पाई रहो हर वसदा नेड़ा दखने महला पंजवा जा मूह आवह चित तू ता हब्बे सुख लहाओ नानक मन ही मंज रंगावला प्री तिहिं जा नाओ महला पंजवा कप्पड़ भोग वकार ए हब्बे ही शार खाक लड़ेंदा तन के जो रत्ते दीदार महला पंजवा क्या तक है व्यापास कर ही अड़े एक आधार थियो संतन की रेण जित लब्बी सुख दातार पौड़ी बिन कर्मा हर जियो ना पाईए बिन सतगुर मनुआ ना लगे धर्म तीरा कल अंदरे एहो पापी मूल ना तगे एह कर करे सो एह कर पाए एक घड़ी मोहत ना लगे चारे युग मैं सोदिया बिन संगत अहंकार ना भगे हौ मैं मूल ना छुटई बिन साधु सत संगे तिचर था ना पावई जिचर साहिब स्यो मन भंगे जिन जन गुरमुख सेविया तिस घर दी बाण अपगे हर कृपा ते सुख पाया गुर सतगुर चरणी लगे दखणे महला पंजवा लोड़ींदो हब जाए सो मीरा मेरा नसिर हठ मंजाहू सो तनी चौंदो मुख अलाय महला पंजवा माणकू मोहे माओ दिन्ना तनी अपाए ह्याओ मिंजा ठंडड़ा मुख हो सच अलाय महला।

पौड़ी मन लोचै हर मिलन कौ क्यों दर्शन पाइया मैं लख विड़ते साहेबा जे बिंद बुलाइया मैं चारे कुंडा पालिया तुद जेवड़ ना साइया मैं दस्यो मार्ग संत हो क्यों प्रभु मिलाइया मन अर्प्यो हौ मैं तजो इत पंत जलाइया नित सेवे हो साहिब अपना सतसंग मलाइया सबे आसा पूरिया गुरमहल बुलाइया तुद जेवड़ होर ना सुजई मेरे मित्र गुसाइया दखणे महला पंजवा मूथिया तख प्री महिंजे पातशाह पाव मलावे कोल कमल जिवै बिगसाम दो महला पंजवा प्रिया संदड़ी भुख मूलावण थी वितरा जान मठाई इक बे पीड़े ना हुटे महला पंजवा ठगा नीहो मतरोड़ जान गंधर्बा नगरी सुख कटाऊ डूए इस पंधाणु घर कणी पौड़ी अकल कला नह पाई है प्रभ अलख अलेखं खट दर्शन भ्रमते फिरह नह मिलिए भेखं वर्त करह चंद्रायणा से कितै ना लेखं वेद पढ़ह संपूर्णा तत सार ना पेखं तिलक कढ़ह इशनान कर अंतर का लेखं भेखी प्रभु ना लभई बिन सच्ची सिखं भूला मार्ग सो पवै जिस तुर मस्तक लेखं इन जन्म सवारिया अपना जिन गुर अखी देखं दखणे महला पंजवा सो निवाहू गड जो चलाऊ ना थी कार कूड़ा भी छड संभल सच धनी महला पंजवा हब समाणी जोत ज्यो जल कटाऊ चंद्रमा प्रगट थी आयाप नानक मस्तक लिखिया महला पंजवा मुख सहावे नाम चौ आठ पहर गुण गाव नानक दरगाह मनी है मिली न थावे थाओ पौड़ी बाहर भेख ना पाई है प्रभ अंतर जामी इक सहार जियो बाहरी सब फिरै निकामी मन रता कटंब सियो नित गर्भ फिरामी फिरह गमानी जग मह क्या गर्भ है दामी चलदिया नाल ना चलई खिन जाए बिलामी विचरदे फिरह संसार मह हर जी हो कामी कर्म खुला गुर पाया हर मिलिया स्वामी जो जन हर का सेव को हर तिस की कामी।

कमावना किया तुर मौल तुदहों बार किस नहीं नानक गुण बोले राग मारू बाणी कबीर जीओ की एक ओंकार सतगुर प्रसाद पंडिया कवन कमत तुम लागे बूढ़ हो गए परवार सकल सिउ राम ना जपो अपागे रहाओ वेद पुराण पढ़े का क्या गुण खर चंदन जस पारा राम नाम की गत नहीं जानी कैसे उतरस पारा जी बद हो सो धर्म कर थापो अधर्म कहो कत पाई आपस को मुनवर कर थापो का को कहो कसाई मन के अंधे आप ना बूझो काहे बुझावो पाई माया कारण विद्या बेचो जन्म अभिथा जाई नारद बचन व्यास कहत है सुख को पूछो जाई कह कबीर रामै राम छूटो नाहे ता बूढ़े पहाई बनह बसे क्यों पाई है जौ लो मनहु ना तजह बेकार जेह घर बन समसर किया ते पूरे संसार सार सुख पाईए रामा रंग रवहो आत्मै राम रहाओ जटा भस्म लेपन किया कहां गुफा महबास मन जीते जग जीतिया जाते बिखिया ते हुए उदास अंजन दे सबै कोई टुक चाहन माहे बिडान ज्ञान अंजन जेह पाया ते लोइन परवान कह कबीर अब जानिया गुर ज्ञान दिया समझाए अंतरगत हर पेटिया अब मेरा मन कतहू ना जाए रिद सिद जा को फुरी तब काहू स्यो क्या काज तेरे कहने की गत क्या कहूं मैं बोलत ही बड लाज राम जेह पाया राम ते पवह न बारे बार रहाउ झूठा जग डहके कना दिन दोए बर्तन की आस राम उदक जेह जन पिया तेह बहुर न पई प्यास गुर प्रसाद जेह बूझिया आसा ते भया निरास सब सच नदरी आया जो आत्म भया उदास राम नाम रस चाखिया हर नामा हर तार कहो कबीर कंचन भया भ्रम गया समुन्द्र पार उदक समुन्द सलल की साखिया नदी तरंग समावहंगी सुनह सुन मिलिया समदर्शी पवन रूप होए जावहंगे बहुर हम काहे आवहंगे आवन जाना हुक्म तिसै का हुक्मै बुझ समावहंगे रहाउ जब चूकै पंच धात की रचना ऐसे भ्रम चुकावहंगे दर्शन छोड़ भये समदर्शी एको नाम त्यावहंगे जित हम लाए तित ही लागे कैसे कर्म कमावहंगे हर जी कृपा करे जो अपनी तौ गुर के शब्द समावहंगे जीवत मरहु मरहु पुन जीव हो पुनरप जन्म ना होई कहो कबीर जो नाम समाने सुन रहया लिव सोई जो तुम मोह को दूर करत हो तौ तुम मुक्त बताव हो एक अनेक होए रहो सगल मह अब कैसे परमाव हो राम मोह को तार कहां ले जई है सोदो मुक्त कहां देओ कैसी कर प्रसाद मोहे पाई है रहाव तारन तरन तबै लग कही है जब लग तत ना जानिया अब तो बिमल भये घट ही मह कह कबीर मन मानिया जिन गढ़ कोट किए कंचन के छोड़ गया सो रावन काहे की जत है मन पावन जब जम आए केस ते पकरे तह हर को नाम छडावन रहाओ काल अकाल खसम का कीना एहो परपंच बधावन कह कबीर ते अंते मुकते जिन हृदय राम रसायन देही गावा जियो तर महतो बसह पंच किरसाना नैनू नकटू सर्वनू रसपत इंद्री कहया ना माना बाबा
अब ना बसों ए गांव, करी करी का लेखा मांगे, कायत के तू नाव रहाओ। तरमराए जब लेखा मांगे, बाकी निकसी पहारी, पांच किरसानवा भाग गए, लह बांधो जी हो दरबारी। कह कबीर सुनो रे संत हो, खेत ही करो निबेरा, अब की बार बख्श बंदे को।

पर साधु अनुभव किने ना देखिया बैरागी अड़े बिन पै अनुभव होए बना हम्बे सहो हदूर देखे ता पौ पवे बैरागी अड़े हुक्मे बूझे ता निरपो होए बना हम्बे हर पाखंड ना कीजे बैरागी अड़े पाखंड रत्ता सब

कीता। कबीर का शब्द राग मारू बाणी नाम देओ जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद चार मुक्त चारै सिद्ध मिलकै दूल्हा प्रभु की शरण परेउ। मुक्त भयो चौहू जुग जान्यो जस कीरत माथै छतर धर्यो। राजा राम जपत को ना करेउ गुर उपदेश साध की संगत भगत भगत ताको नाम परेउ रहाउ। शंख चक्र माला तिलक विराजत देख प्रताप जम डरेउ। निरपौ भय राम बल गर्जित जन्म मरण संताप हिरेउ। अमरीक को दियो अपै पद राज पपीखन अधिक करेउ। नौनिग ठाकुर दई सुदामे त्रु अटल अजहू न टरेउ। भगत हेत मारेउ हरनाखश नरसिंह रूप होए दे धरेउ। नामा कह भगत बस केसव अजहू बल के द्वार खरु मारू कबीर जियो। दीन बसारे रे दीवाने दीन बसारे रे पेट भरियो पशुआ ज्यो सोयो मनुख जन्म है हारियो रहाओ। साध संगत कबहू नहीं कीनी रचियो तंदे झूठ स्वान सुकर बायस जिवे भटकत चालियो ऊठ। आपस को दीर्घ कर जाने औरन को लग मात मनसा बाचा कर्म ना मैं देखे दोजक जात। कामी क्रोधी चातुरी

मूर्ख मुग्ध ग्वार राम नाम जान्यो नहीं कैसे उतरस पार। राग मारू बाणी जय देओ जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चंद सत भेदया नाद सत पूरिया सूर सत खोड़ सादत किया। अबाल बाल तोड़िया अचल चल थपिया अकड़ घड़िया तहां अपियो पिया। मन आद गुण आद विखाणिया तेरी दुबदा दृष्ट समानिया। रहाओ अर्ध को अर्धया सर्द को सर्दया सलल को सलल सम्मान आया। बदत जय देव को रम्या ब्रह्म निर्वाण लिवलीन पाया। कबीर मारू राम।

दास जीओ की एक ओंकार सतगुर प्रसाद ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे गरीब नवाज गुसैया मेरा माते शतर तरह रहा।

सुख सागर सुर तर चिंता मन काम धीन बस जा कीरी चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध नव निध कर तल कै हर हर हर ना जपस रसना अवर सब शाद बचन रचना रहाव नाना ख्यान प्राण वेद बिद चौतीस अक्षर माही व्यास बी चार कहो परमार्थ राम नाम सर नाही सहज समाद अपाद रहत हुए बड़े भाग लिव लागी कह रविदास उदास दास मत जन्म मरन पै भागी।

देख दिखावे ढोलो, दूर ना जाना अंतर माना, हर का महल पछाना, नानक वै साखी प्रभ पावे, सुरत शब्द मन माना, माह जेठ भला प्रीतम क्यों बिसरे, थल तप है सर भार, सा तन बिनो करे।

नानक मूर्ख कबह ना चेतै, क्या सूझै रैन अंधेरिया, दूजा पहर भया जाग अचेती राम, वखर राख मुइये खाजै खेती राम, राखो खेती हर गुरहेती, जागत चोर ना लागै, जम मग ना जावहु ना दुख पावहु, जम का डर पहु भागै, राव सस दीपक गुरमत द्वारै, मन साचा मुख त्यावै, नानक मु

नैन अंधले तन पसम से नानक दुखिया जोग चारे बिन नाम हर के मन वसे खुली गंठ उठो लिखिया आया राम रस कस सुख ठाके बंद चलाया राम बंद चलाया जा प्रभ पाया ना दिसै ना सुनिए आपन वारी सब सह आवे पक्की खेती लुनिए घड़ी चसे का लेखा लीजे बुरा भला सहो जिया नानक सुर नर शब्द मलाए तिन प्रभ कारण किया तुखारी महला पहला तारा चढ़िया लम्मा क्यों नदर निहालिया राम सेवक पूर करम्मा सतगुर शब्द दिखा लिया राम गुर शब्द दिखा लिया सच संभालिया एहन सदेख बिचारिया

चूकी अभमानी राम अन दिन भोर भया साच समानी राम साच समानी गुरमुख मन भानी गुरमुख साबत जागे साच नाम अमृत गुर दिया हर चरणी लिव लागे प्रगटी जोत जोत मैं जाता मनमुख परम पलानी नानक भोर भया मन मानिया।

नाह प्यारी एक बेनंती मेरी तू निज घर वसे अड़ा हौ रुल भस्मै ढेरी बिन अपने ना है कोई ना चाहे क्या कही है क्या कीजै अमृत नाम रसन रस रसना।

साची सच मत तेरी साजन देस वदेसी अड़े सनेहड़े देंदी सार संभाले तिन सजना मुंद नैन परेंदी मुंद नैन परेंदी गुण सारेंदी क्यों प्रभ मिला प्यारी मार्ग पंथ ना जानो विखड़ा क्यों पाई है फिर पारे सतगुर शब्दी मिलै विछुनी तन मन आगे राख नानक अमृत बिरख महारस फलिया मिल प्रीतम रस चाख महल बुलाएड़िए बिलम ना कीजै अनदिन रतड़िए सहज मलीजै सुख सहज मलीजै रूस ना कीजै गर्भ निवार समाणी साचै राती मिलै मलाई मनमुख आवन जानी जब नाची तब घूंघट कैसा मटकी फोड़ नरारी नानक आपे आप पछाण गुरमुख तत बीचारी तुखारी महला पहला मेरे लाल रंगीले हम लालन के लाले गुर अलख लखाया अवर न दूजा भाले गुर अलख लखाया जा तिस पाया जा प्रभ कृपा धारी जग जीवन दाता पुरख बधाता सहज मिले बनवारी नदर करह तू तार है तरिये सच देव हो दीन दयाला प्रणवत नानक दासन दासा तू सर्ब जिया प्रतपाला भरपुर धार रहे अत प्यारे शब्दे रव रहिया गुर रूप मरारे त्रे भवन धारी

थाप उथापी तिस भावे सो होवै। नानक हीरा हीरे बिद्या गुण कै हार परोवै। गुण गुण है समाणी मस्तक नाम निशानु। सच साच समाया चूका आवन जानु। सच साच पछाता साच राता साच मिले मन भावे।

राम गुण गाए राम रसाए रसिय गुर ज्ञान अंजन सारे त्रैलोक दीपक शब्द चानन पंच दूत संघारे।

गुर शब्द सुरत लंघावे मिल साध संगत करह रलिया फिर ना पछोतावे कर दया दान दयाल साचा हर नाम संगत पावो नानक पयम पै सुनो प्रीतम गुर शब्द मन समझावो।

जब लग दर्श ना होए क्यों अमृत पीवी है राम क्यों अमृत पीवी है हर बिर जीवी है तिस बिन रहन ना जाए अन दिन प्रियो प्रियो करे दिन राती फिर बिन प्यास ना जाए अपनी कृपा करो हर प्यारी हर हर नाम सद सारिया गुर कै शब्द मिलिया मैं प्रीतम हों सतगुर विट हो।

अन दिन गुरु गोपाल ते आई, हम सतगुरु बिटहु कुमाए, हम पाथर गुर नाव, बिख भवजन तारिय राम, गुरुदेव हो शब्द सुपाए,

अनेक जन्म पाप कर भरमी हुण तौ शरणागत आई दया करहु रख लेवो हर जियो हम लाग हैं सतगुर पाए गुर पारस हम लोह मिल कंचन होया राम ज्योति ज्योत मलाई काया गढ़ सोहया राम काया गढ़ सोहया मेरे प्रभ मोहया क्यों सास ग्रास बसारी है अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी हों सतगुर कै बलिहारी है सतगुर आगे सीस भेट देओ जे सतगुर साचे पावे आपे दया करहु प्रभ दाती नानक अंक समावे तुखारी महला चौथा हर हर अगम अगाध अपरंपर अपर परा जो तुम प्यावे जगदीश ते जन पौ बिखम तरा बिखम पौ तिन तरिया सुहिला जिन हर हर नाम त्याया गुरवाक सतगुर जो पाए चले तिन हर हर आप मलाया ज्योति ज्योत मिल ज्योत समाणी हर कृपा कर धरनी तरा हर हर अगम अगाध अपरंपर अपर परा तुम स्वामी अगम अथाह तू घट घट पूर रहया तू अलख अपेओ अगम गुर सतगुर बचन लहया धन धन ते जन पुरख पूरे जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे विवेक बुद्ध विचार गुरमुख गुर शब्द खिन खिन हर नित चवे जां बह गुरमुख हर नाम बोलह जां खड़े गुरमुख हर हर कहया तुम स्वामी अगम अथाह तू घट घट पूर रहया सेवक जन सेवह ते प्रवान जिन सेविया गुरमत हरे तिनके कोट सब पाप खिन पर हर हर दूर करे तिनके पाप दुख सब बिन से जिन मन चित एक अराध्या तिनका जन्म सफलियो सब किया करते जिन गुरबचनी सच भाखिया ते धन जन वड पुरख पूरे जो गुरमत हर जप पौ बिखम तरे सेवक जन सेवह ते प्रवान जिन सेविया गुरमत हरे तू अंतर जामी हरे आप ज्यों तू चलावे प्यारे हों तिवें चलना।

का छुटक गया। तिनकी गणत ना करो को पाई, जो गुरबचनी हर मेल लया। नानक दयाल हुआ तिन ऊपर, जिन गुर का पाणा मन्या भला। तू अंतर जामी हर आप, ज्यो तू चला वह प्यारे हो तिवें चलना। तुखारी महला चौथा, तू जग जीवन जगदीश, सब करता श्रिष्ट नाथ। तिन तू त्याया मेरा राम, जिन कै तुर लेख मात। जिन को तुर हर लिखिया स्वामी, तिन हर हर नाम अरादिया। तिन के पाप एक निमख सब लाथे, जिन गुरबचनी हर जापिया। तन तन ते जन, जिन हर नाम जपिया। तिन देखे हो भया सनाथ, तू जग जीवन जगदीश, सब करता श्रिष्ट नाथ। तू जल थल मही अल भरपूर, सब ऊपर साच धनी। जिन जपिया हर मन चीत, हर जप जप मुक्त घणी। जिन जपिया हर ते मुक्त पराणी, तिनके पूजल मुख हर द्वार। ओए हलत पलत जन भये सोहेले, हर राख लिए रखण हार। हर संत संगत जन सुनो भाई, गुरमुख हर सेवा सफल बनी। तू जल थल मही अल भरपूर, सब ऊपर साच धनी। तू थान थनंतर हर एक, हर एको एक रविया। वण त्रिण त्रे भवन सब श्रेष्ठ, मुख हर हर नाम चवया। सब चवह हर हर नाम करते, असंख अगणत हर त्याव। सो धन तन हर संत साधु, जो हर प्रभ करते पावे। सो सफल दर्शन देहो करते, जिस हर हृदय नाम सद चवया। तू थान तनंतर हर एक, हर एको एक रवया। तेरी भगत भंडार असंख, जिस तू देव है मेरे स्वामी। तिस मिल है जिसका मस्तक गुर हाथ, तिस हृदय हर गुण टिक है। हर गुण हृदय टिक है तिस कह, जिस अंतर भौ भावनी होई। बिन भय किने ना प्रेम पाया, बिन भय पार ना उतरिया कोई। भौ भावो प्रीत नानक किसह लागे, जिस तू अपनी कृपा करहे। तेरी भगत भंडार असंख, जिस तू देव है मेरे स्वामी। तिस मिल है तुखारी महला चौथा, नावण पुरब अपीच। गुर सतगुर दर्श भया, दुर्मत मैल हरी। अज्ञान अंधेर गया, गुर दर्श पाया अज्ञान गवाया। अंतर ज्योत परगासी, जन्म मरण दुख खिन मह बिनसी। हर पाया प्रभ अवनासी, हर आप करतै पुरब किया। सतगुरु कुल खेत नावण गया, नावण पुरब अपीच। गुर सतगुर दर्श भया, मार्ग पंथ चले। गुर सतगुर संग सिखा, अन दिन भगत बनी। खिन खिन निमख विखा, हर हर भगत बनी प्रभ केरी। सब लोक वेखण आया, जिन दर्श सतगुर गुरु किया। तिने आप हर मेलाया, तीर्थ उदम सतगुरु किया। सब लोक उदरन अर्था, मार्ग पंथ चले। गुर सतगुर संग सिखा, प्रथम आए कुल खेत। गुर सतगुर पूर्व हुआ, खबर पई संसार। आए त्रै लोआ, देखने आए तीन लोक। सुर नर मुन जन सब आया, जिन परसया गुर सतगुरु पूरा। तिनके किल विख नास गुआया, जोगी दिगंबर सन्यासी। खट दर्शन कर गए गोष्ट ढोआ, प्रथम आए कुल खेत। गुर सतगुर पुरब हुआ, दुतिया जमन गए। गुर हर हर जपन किया, जगाती मिले दे भेट। गुर पिछे लंघाए दिया, सब छुट्टी सतगुरु पिछे। जिन हर हर नाम ते आया, गुर बचन मार्ग जो पंथ चाले। तिन जम जगाती नेड़ ना आया, सब गुरु गुरु जगत बोले। गुर कै नाए लै सब छुटक गया,
द्वितीया जमन गए गुर हर हर जपन किया, तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत पया, सब मोही देख दर्शन गुर संत किने आड़ ना दाम लया, आड़ दाम किस पया ना बोलक जगातिया मोहन मुंदन पई, भाई हम करहे क्या किस पास मांग है सब भाग सतगुर पिछे पई, जगातिया अपाव सियाणप कर विचार डिठा पन बोल का सब उठ गया, तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत पया, मिले आए नगर महाजना गुर सतगुर उठ गई, गुर सतगुर गुर गोविंद पुछ सिमरत कीता सही, सिमरत शास्त्र सबनी सही कीता, सुख प्रहलाद श्री राम कर गुर गोविंद त्याया, देही नगर कोट पंच चोर बटवारी तिनका थाऊ थे हो गुआया, कीर्तन पुराण नित पुन हो वह गुर बचन नानक हर भगत लही, मिल आए

प्रभ मेरे निमक दृष्ट पेख जीवा अमृत नाम सुनी जय तेरा कृपा करह ता पीवा आस प्यासी पिरकै ताई ज्यों

प्राण हित चिता प्राण सुख दाता गुरमुख जाता सगल रंग बने आए सोई कर्म कमावे प्राणी जेहा तू फरमाए जां को कृपा करी जगदीश्वर किन साध संग मन जिता कहो नानक जीअड़ा बलिहारी जियो पिंड तौ दिता निर्गुण राख लिया संतन का सदका सतगुर ताक लिया मोहे पापी पड़दा ताक नहारे प्रभु हमारे जी प्राण सुख दाते अवनासी अवगत स्वामी पूर्ण पुरख बिधाते उस्तत कहन न जाए तुम्हारी कौन कहे तू कद का।

आई संत संग जागी त्रिय रंग देखै जपती नाम निधानी रहाउ दर्शन प्यास लोचन तार लागी बिसरी त्यास बडानी अव गुर पायो है सहज सुखदायक दर्शन पेखत मन लपटानी देखद मोदर रहस मन उपजेउ नानक प्रिय अमृत बानी केदारा मोहल्ला पंजवा घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दीन बिनो सुन दयाल पंच दास तीन दोखी एक मन अनाथ नाथ रात हो कृपाल रहाओ अनक जतन गवन करूं खट कर्म जुगत ध्यान धरूं अपाव सगल कर हारियो नह नह हुटह बिकराल शरण बंदन करना पति भाव हरन हर हर हर हरे।

नाम प्रीत लागी मन पीतर मांगन को हरदान रहाउ सुखदाई पूर्ण परमेश्वर कर कृपा राखु मान देहो प्रीत साधु संग स्वामी हर गुण रसन बखान गोपाल दयाल गोविंद दामोदर निर्मल कथा ज्ञान नानक को हर कै रंग रंग हो चरण कमल संग ध्यान केदारा महला पंजवां हर के दर्शन को मन चाहो कर कृपा सतसंग मलाव हो तुम देव हो अपनो नाउ रहाओ करो सेवा सतपुरख प्यारे जत सुनिए तत मन रहसाओ वारी फेरी सदा कमाई कवन अनूप तेरो ठाओ सर्व प्रित पाल है सगल समाल है सगलिया तेरी छाओ नानक के प्रभ पुरख बधाती कट कट तुझह दिखाओ केदारा महला पंजवां प्रिय की प्रीत प्यारी मगन मने मह चितवों आसा नैनहु तार तुहारी रहाओ ओए दिन

अहम बुद्ध तजावहु अपनी भगत देह दयाला वडभागी नानक हर पावहु किदारा महला पंजवा हर बिन जन्म अकारथ जात ताज गोपाल आन रंग राचत मिथ्या पहरत खात रहाउ धन जोबन संपै सुख भोगवै सांगना निबहत मात मृग तृष्णा देख रचियो बावर द्रम छाया रंग रात मान मोह महा मद मोहत काम क्रोध कै खात कर गह लेहो दास नानक कहो प्रभ जियो हुए सहात केदारा महला पंजवा हर बिन कोए ना चालस साथ दीना नाथ करुणा पत स्वामी आनाथा के नाथ रहाउ सुत संपत बिखिया रस भुगवत नह निबहत जम कै पाथ नाम नदान गाओ गुण गोबिंद उदर सागर के खात सरल समरथ अकाथ अगोचर हर सिमरत दुख लाथ नानक दीन तूर जन बाछत मिले लिख

मन ते हरी अब ए प्रीत महा प्रबल भई आन बिखै जरी रहाउ बूंद कहां त्याग चात्रक मीन रहत ना करी गुण गोपाल उचार रसना टेव एहे परी महानाद करंक मोहयो वेद तीखन सरी प्रभ चरण कमल रसाल नानक गांठ बांध तरी केदारा मोहल्ला पंजवा प्रीतम बसत रिद मह खोर परम पीत नवार ठाकुर गह लिहो अपनी ओर रहाओ अधिक गर्त संसार सागर कर दया चारुह तूर संत संग हर चरण बोहित उदर ते लै मोर गर्भ कुंट मह जिनह तारियो नहीं बिखै बन मह होर हर सकत सरन समरत नानक

रहाउ त्याग चलना सगल संपत काल सिर पर जान मिथन मोह दुरंत आसा झूठ सर परमान सतपुरख अकाल मूरत हृदय धारो ध्यान नाम निधान लाभ नानक।

व्यापै संत संग व्यवहार रहाउ कर अनुग्रह आप राखियु नह उपजतो बेकार जिस प्राप्त हुए सिमरै तिस दहत नह संसार सुख मंगल।

जीवन रूप बसार जीव है, तेहे कत जीवन होत रहाओ। खात पीत अनेक बिंजन, जैसे भार बाहक खोत। आठ पहर महाश्रम पाया, जैसे बिरख जलती जोत। ताज गोपाल जे आन लागे, से बहु

आउ पूर रहया सर्वतन में सो पुरख बधाता मार्ग प्रभ का हर किया संतन संग जाता संतन संग जाता पुरख बधाता घट घट नदर निहालिया जो सरनी आवे सर्ब सुख पावे तिल नहीं पन्ने कालिया हर गुण निद गाई।

पड़िया निर्मोलक छूट गई संसारी रहाव साचे लाए तो सच लागे साचे के व्यवहारी साची बस्त के भार चलाए पहुंचे जाए भंडारी आपे रतन जवाहर मानक आपे है पासारी आपे दह दिस आप चलावे निश्चल है व्यापारी मन कर बैल सुरत कर पेंडा ज्ञान गुण भर डारी कहत कबीर सुनहो रे संतो निभही खेप हमारी री कलवार ग्वार मूड मत उल्टो पवन फरावो मन मतवार मेर सर पाठी अमृत धार चुआवो बोलो भैया राम की दोहाई पीवो संत सदा मत दुर्लभ सहजे प्यास बुझाई रहाओ पै बिच पाओ पाए को बूझ हर रस पावे पाई जेते घट अमृत सब ही मह पावे तिसह प्याई नगरी एक नौ दरवाजे तावत बरज रहाई त्रिकुटी छूटे दसवां दर खूले ता मन खीवा पाई अपै

बिन पानी चलत कत टेडे टेडे टेडे हस्त चरम बिस्टा के मुंडे दुर्गंध ही के बेडे रहाओ राम ना जप हो कमन भ्रम भूले तुम ते काल ना दूरे अनक जतन कर एहो तन राख हो रह अवस्था पूरे आपन किया कछु ना होवे क्या को करे प्राणी जा तिस भावे सतगुर भेटै एको नाम बखानी बलुआ के करुआ मह बसते फुलवत देह आया।

खान, भाऊ भगत सिंह काज न कछु है, मेरो काम दीवान, राम बसारियो है अभमान, कनक कामनी महासुंदरी, पेख पेख सच मान रहाओ, लालच झूठ बिकार महामद, एह बिद औद बिहान, कह कबीर अंत की बेर, आई लागो काल निदान, चार दिन अपनी नौबत चले बजाए, इतनक खटिया गठिया मतिया, संग ना कछ लह जाए रहाओ, गहरी बैठी मेहरी रोवे, द्वारे लो संग माए, मरहट लग सब लोग कटंब मिल, हंस अकेला जाए, वै सुत वै बित वै पुर पाटन, बहुर न देखे आए, कहत कबीर राम की ना सिमर हो, जन्म अकारथ जाए, राग के दारा बाणी रविदास जीओ की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, खट कर्म कुल संयुगत है, हर भगत हृदय नाही, चरनार बिंद ना कथा भावे, सुपच तुल

पद है अमरेउ राम भगत बसेख रहाउ स्वान सत्र अजात सब ते कृष्ण लावे हेत लोक बपरा क्या सरा है तीन लोक प्रवेश अजामल पिंगला लुभत कुंचर गए हर के पास ऐसे दुर्मत निस्तरे तू क्यों ना तरह रविदास राग भैरो।

ना जाए, जो किश अहै सब तेरी रजाए रहाओ, जो किश करना सो तेरे पास, किस आगे की कै अरदास, आखन सुनना तेरी बाणी, तू आपे जान है सर्ब वडाणी।

रूप रंग रहस नहीं साचा, क्यों छोड़े जम जालो प्राणी, हर जप जन्म गयो साच, शब्द बिन कभो ना छूटस, बिरथा जन्म भयो रहाओ, तन मह काम क्रोध हौ ममता, कठन पीर अत भारी, गुरमुख राम जपो रस रसना, इन बिद तर तू तारी, बहरे करन अकल पई होशी, शब्द सहज नहीं बूझिया, जन्म पदार्थ मन मुख हारिया, बिन गुर अंध ना सूझिया, रह उदास आस नरासा, सहज ध्यान बैरागी, प्रणवत नानक गुरमुख छूटस, राम नाम लिवलागी, भैरों महला पहला, पूंडी चाल चरण कर खिसरे, तुचा देह कुमलानी, नेत्री धुंद करन पय बहरे, मनमुख नाम ना जानी, अंधले क्या पाया जग आई, राम हृदय नहीं गुर की सेवा, चाले मूल गवाए रहाओ, जिहवा रंग नहीं हर राती, जब बोले तब फीके, संत जना की निंदा व्यापस, पशु पये कदे होहे ना नीके, अमृत का रस विरली पाया, सतगुर मेल मलाए, जब लग शब्द भेद नहीं आया, तब लग काल संताए, अन को दर कर कबहू ना जानस, एको दर सचियारा, गुर प्रसाद परम पद पाया, नानक कह विचारा, भैरू महला पहला, सगली रैन सोवत गल पाही, दिन सजंजाल गुआया, खिन पल घड़ी नहीं प्रभ जानिया, जिन एहो जगत उपाया, मन रे क्यों छूटस दुख भारी, क्या ले आवस क्या ले जावस, राम जपो गुणकारी रहाओ, ऊंदो कवल मनमुख मत होशी, मन अंधे सिर तंदा, काल बकाल सदा सिर तेरे, बिन नावे गल फंदा, डगरी चाल नेत्र फुन अंधले, शब्द सुरत नहीं पाई, शास्त्र वेद त्रै गुण है माया, अंध लो तंद कमाई, खोयो मूल लाभ कह पावस, दुर्मत ज्ञान विहूणे, शब्द बीचार राम रस चाखिया, नानक साच पतीने, भैरू महला पहला, गुर कै संग रह दिन राती, राम रसल रंग राता, अवर ना जानस शब्द पछाणस, अंतर जान पछाता, सो जाने ऐसा मैं मन भावे, आप मार अपरंपर राता, गुर की कार कमावे रहाउ, अंतर बाहर पुरख निरंजन, आद पुरख आदिसु, घट घट अंतर सर्ब निरंतर, रव रहिया सच वेसो, साच रते सच अमृत जिहवा, मिथ्या मैल न राई, निर्मल नाम अमृत रस चाखिया, शब्द रते पत पाई, गुणी गुणी मिल लाहा पावस, गुरमुख नाम वडाई, सगले दुख मिट है गुर सेवा, नानक नाम सखाई, भैरो महला पहला, हृदय नाम सर्ब धन धारण, गुर प्रसादी पाई, अमर पदार्थ ते किरतार्थ, सहज ध्यान लिवलाई, मन रे राम भगत चित लाई, गुरमुख राम नाम जप हृदय, सहज सेती घर जाई रहाउ, परम भेद पौ कबहु ना छूटस, आवत जात ना जानी, बिन हर नाम को मुक्त ना पावस, डूब मुए बिन पानी, धंधा करत सगली पत खोवस, परम ना मिटस गवारा, बिन गुर शब्द मुक्त नहीं कब ही, अंधले तंद पसारा, अकुल निरंजन

पहला जगन होम पुन तप पूजा दे दुखी नित दुख सह राम नाम बिन मुक्त ना पावस मुक्त नाम गुरमुख लह राम नाम बिन बिरथे जग जन्मा बिख खावे बिख बोली बोले बिन नावे निफल मर भ्रम ना रहाऊ पुस्तक पाठ व्याकरण वखाणे संध्या कर्म तिकाल करे बिन गुर शब्द मुक्त कहां प्राणी राम नाम बिन उर्ज मरे दंडक मंडल सिखा सूत धोती तीर्थ गमन अत भ्रमण करे राम नाम बिन शांत ना आवे जप हर हर नाम सो पार परे जटा मुकट तन भस्म लगाई वस्त्र छोड़ तन नग्न भया राम नाम बिन तृप्त ना आवे किरत कै बांधे भीख भया जेते जी जंत जल थल महियल जतर कतर तू सर्ब जिया गुर प्रसाद राख ले जन को हर रस नान।

जात का गर्भ ना करियो कोई, ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई। जात का गर्भ ना कर मूर्ख गवारा, इस गर्भ पे चल है बहुत बेकारा। रहाउ चारे वर्ण आखे सब कोई, ब्रह्म बिंद ते सब उपत होई। माटी एक सगल संसारा, बहु विद भांडे घड़े कुमारा। पंच तत् मिल देही का अकारा, घट वध को करे बिचारा। कहत नानक एहो जियो कर्म बंद होई, बिन सतगुर भेटे मुक्त ना होई। भैरो महला तीजा, जोगी गृही पंडित भेख धारी। ए सूते अपने अहंकारी, माया मद माता रहया सोए। जागत रहे ना मूसे कोई, रहाउ सो जागे जिस सतगुर मिले। पंच दूत ओह वसगत करे, सो जागे जो तत बिचारे। आप मरे अवरा नह मारे, सो जागे जो एको जाने। परकिरत छोड़े तत पछाणे, चहो वरना विच जागे कोई। जमे काले ते छूटे सोई, कहत नानक जन जागे सोए। ज्ञान अंजन जाकी नेत्री होए। भैरो महला तीजा, जाको राखे अपनी सरनाई। साची लागे साचा फल पाई, रे जन कैस्यो करो पुकारा। हुक्मे हुआ हुक्मे वर्तारा, रहाउ एहो आकार तेरा है तारा। खिन में बिनसै करत न लागे बारा, कर प्रसाद एक खेल दिखाया। गुर कृपा ते परम पद पाया।

हर का नाम निदानो पाया सुख वसिया मन आई। चौथी पदवी गुरमुख वरत है तिन निज कर वास्ता पाया। पूरे सतगुर कृपा कीनी विचो आप गवाया। एक सकी सिरकार एक जिन ब्रह्मा विष्ण रुद्र उपाया। नानक निहचल साचा एको ना ओह मरे ना जाया। पैरू महला तीजा मनमुख दुबदा सदा है रोगी रोगी सगल संसारा। गुरमुख बूझै है रोग गवाव है गुर शब्दी विचारा। हर जियो सत संगत मेलाए नानक तिसनो दे वडियाई। जो राम नाम चित लाए रहाउ ममता काल सब रोग व्यापे। तिन जम की है सिरकारा गुरमुख प्राणी जम नेड़ ना आवै। जिन हर राखिया उर तारा जिन हर का नाम न गुरमुख जाता। से जग मह काहे आया गुर की सेवा कदे ना कीनी बिरथा जन्म गवाया। नानक से पूरे वडभागी सतगुर सेवा लाए। जो इच्छ सोई फल पावे गुरबाणी सुख पाए। भैरो महला तीजा दुख विच जमे दुख मरे दुख विच कार कमाए। गर्भ जोनी विच कदे ना निकले बिस्टा माही समाए। त्रिग त्रिग मन मुख जन्म गवाया पूरे गुर की सेवना कीनी। हर का नाम ना पाया रहाउ गुर का शब्द सब रोग गवाए। जिसनो हर जियो लाए नामे नाम मिले वडियाई। जिसनो मन वसाए सतगुर भेटे ता फल पाए। सच करनी सुख सार से जन निर्मल जो हर लागे। हर नामे तरह प्यार तिनकी रेण मिले ता मस्तक लाई। जिन सतगुर पूरा त्याया नानक तिनकी रेण पूरे भाग पाई है। जिन्नी राम नाम चित लाया भैरो महला तीजा। शब्द बीचारे सो जन साचा जिनकै हृदय साचा सोई। साची भगत करै दिन राती ता तन दुख ना होई। भगत भगत कह सब कोई बिन सतगुर सेवे भगत ना पाई। पूरे भाग मिले प्रभ सोई रहाओ। मनमुख मूल गवाव है लाभ मांग है लाहा लाभ किडू होई। जम काल सदा है सिर ऊपर दूजे पाए पत खोई। बहले भेख पवह दिन राती हमें रोग ना जाई। पढ़ पढ़ लूजे है बाद बखान है मिल माया सुरत गवाई। सतगुर सेव है परम गत पाव है नाम मिले वडियाई। नानक नाम जिन्ना मन वसिया दर साचे पत पाई। भैरो महला तीजा मनमुख आसा नहीं उतरै दूजे भाई खुआई। उदर नै सान ना परिये कबहू तृष्णा अग्न पचाई। सदा आनंद राम रस राती हिरदय नाम दुबदा मन भागी। हर हर अमृत पी तृपताते रहा।

लाई। मेरा प्रभ है गुण का दाता, अवगुण शब्द जलाई। जिन मन वसिया से जन सोहे, हृदय नाम वसाई। घर दर महल सतगुरु दिखाया, रंग सोरलिया माण। जो किश कह सो भला कर मान, नानक नाम बखाण। भैरों महला तीजा, मनसा मन है समाए लै। गुर शब्दी विचार, गुर पूरे ते सो जी पवै। फिर मरे ना वारो वार, मन मेरे राम नाम आधार। गुर प्रसाद परम पद पाया, सब इच्छ पजामन हार रहाउ। सब मह एको रव रहिया, गुर बिन बूझ ना पाई। गुरमुख प्रगट हुआ मेरा हर प्रभ, अन दिन हर गुण गाई। सुख दाता हर एक है, होर थै सुख ना पाए। सतगुर जिनी ना सेविया दाता, से अंत गए पछताए। सतगुर सेव सदा सुख पाया, फिर दुख ना लागे ताई। नानक हर भगत प्राप्त होई, ज्योति ज्योत समाय। भैरों महला तीजा, बाज गुरु जगत बौराना। भूला चोटा खाई, मर मर जम्मै सदा दुख पाई। डर की खबर ना पाई, मेरे मन सदा रहो सतगुर की सरना। हृदय हर नाम मीठा सद लागा, गुर शब्दे भवजल तरना रहाउ। पेख करे बहुत चित डोले, अंतर काम क्रोध अहंकार। अंतर तिसा भूख अत बहुती, भौंकत फिरे दर बार। गुर कै शब्द मरह फिर जीव है, तिनको मुक्त द्वार। अंतर शांत सदा सुख होवे, हर राखिया उरतार। ज्यों तिस भावे तिवें चलावे, करना किछु ना जाई। नानक गुरमुख शब्द संभाले, राम नाम वडियाई। भैरों महला तीजा, हम मैं माया मोहे खोआया। दुख खटे दुख खाई, अंतर लोभ हलक दुख भारी। बिन विवेक परमहाय, मन मुख त्रिक जीवन संसार। राम नाम सुपने नहीं चेतिया, हर स्यो कदे न लागे प्यार। रहाउ पशुआ कर्म करे नहीं बूझै,

तुझ लय उबार खिन मह पयान रूप निकसिया थम उपाड़ हरनाकिश लखी बिदारिया प्रहलाद लिया उबार संत जना के हर जियो कार्य सुवारे प्रहलाद जन के इक्की ही कुल उधारे गुर कै शब्द हम मैं बिख मारे नानक राम नाम संत निस्तारे पैरू महला तीजा आपे दैत लाए दिते संत जना को आपे राखा सोई जो तेरी सदा सरनाई तिन मन दुख ना होई जुग जुग भगता की रखदा आया दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री तर्पण किसु ना जाने शब्दे मेल मलाया रहाउ हन दिन भगत करह दिन राती दुबदा शब्दे खोई सदा निर्मल है जो सच राते सच वसिया मन सोई मूर्ख दुबदा पढ़ है मूल ना पछाण है बिरथा जन्म गवाया संत जना की निंदा करह दुष्ट दैत चढ़ाया प्रहलाद दुबदा ना पढ़े हर नाम ना छोड़े डरे ना किसे दा डराया।

पग लाइन, गुर शब्दी हर भज सुत समायन, मेरे मन हर भज नाम नारायण, हर हर कृपा करे सुख दाता, गुरमुख भवजल हर नाम तरायण, रहाउ संगत साध मेल हर गायन, गुरमति ले राम रसायन, गुर साधु अमृत ज्ञान सर नायन, सब किलविख पाप गए गवायन, तू आपे करता सृष्ट तरायन, जन नानक मेल तेरा दास दसायन, भैरो महला चौथा, बोल हर नाम सफल सा करी, गुर उपदेश सब दुख पर हरी, मेरे मन हर पज नाम नरहरी, कर कृपा मेलोह गुर पूरा, सत संगत संग सिंध भौ तरी, रहाउ जगजीवन त्याए मन हर सिमरी, कोट कटंतर तेरे पाप पर हरी, सत संगत साध धूर मुख परी, इसनान कियो अठ सठ सुरसरी, हम मूर्ख कौ हर कृपा करी, जन नानक तारे उतारन हरी, भैरो महला चौथा, सो कृत करनी सार जप माली, हिरदय फेर चलै तुद नाली, हर हर नाम जपो बनवाली, कर कृपा मेलो सत संगत, टूट गई माया जम जाली, रहाउ गुरमुख सेवा काल जिन काली, तिस घड़ियै शब्द सची टकसाली, हर अगम अगोचर गुर अगम दिखाली, विच काया नगर लद्दा हर पाली, हम बारक हर

जाप। हौ तुद सलाही तू मेरा हर प्रभ बाप रहाउ। जह जह देखा तह हर प्रभ सोई, सब तेरे वस दूजा अवर ना कोई। जिस कौ तुम हर राखिया पावे, तिस कै नेड़ कोई ना जावे। तू जल थल महियल सब तै भरपूर, जन नानक हर जप हाजरा हजूर। भैरों महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर का संत हर की हर मूरत, जिस हिरदय हर नाम मरार। मस्तक भाग होवै जिस लिखिया, सो गुरमत हिरदय हर नाम सुमार। मधसूदन जपिया उरतार, देही नगर तस्कर पंच धातु। गुर शब्दी हर काढे मार रहाउ। जिनका हर सेती मन मानिया, तिन कारज हर आप सवार। तिन चूकी मोहताजी लोकन की, हर अंगीकार किया करतार। मता मसूरत ता किश कीजै, जे किश होवै हर बाहर। जो किश करे सोई भल होसी, हर त्याव हो अन दिन नाम मरार। हर जो किश करे सो आपे आपे, ओहो पूछ ना किसै करे बीचार। नानक सो प्रभ सदा त्याई, जिन मेलिया सतगुर कृपा धार। भैरों महला चौथा, ते साधु हर मेलो स्वामी। जिन जपिया गत होए हमारी, तिनका दर्श देख मन बिगसै। खिन खिन तिनको हौ बलिहारी, हर हिरदय जप नाम मरारी। कृपा कृपा कर जगत पित स्वामी, हम दासन दास की जय पनेहारी रहाउ। तिन माते उत्तम तिन पाते उत्तम, जिन हिरदय वसिया बनवारी। तिनकी सेवा लाए हर स्वामी, तिन सिमरत गत होए हमारी। जिन ऐसा सतगुर साधना पाया, ते हर दरगाह काढे मारी। ते नर निंदक सोभ ना पावह, तिन नक काटे सिरजनहारी। हर आप बुलावै आपे बोलै, हर आप निरंजन निरंकार निराहारी। हर जिस तू मिल है सो तुद मिलसी, जन नानक क्या एह जंत विचारी। भैरों महला चौथा, सत संगत साई हर तेरी। जित हर कीरत हर सुनने, जिन हर नाम सुनिया मन पीना। तिन हम श्रेम है नित चरने, जग जीवन हर त्याए तरने। अनेक असंख नाम हर तेरे, ना जाई जेवायत गनने रहाउ। गुरसिक हर बोलो हर गावहु, ले गुरमत हर जपने। जो उपदेश सुने गुर केरा, सो जन पावे हर सुख कने। धन सो वंश धन सो पिता, धन सो माता जिन जन जने। जिन सास ग्रास त्याया मेरा हर हर, से साची दरगाह हर जन बने। हर हर अगम नाम हर तेरे, विच भगता हर धरने। नानक जन पाया मत गुरमत, जप हर हर पार पवने।

अष्टम थीत गोविंद जन्मासी परम भूले नर करत कचरायण जन्म मरण ते रहत नारायण रहाव कर पंजीर खवायो चोर ओह जन्म ना मरे रे साकत ढोर सगल पराध देह लो रोनी सो मुख जलो जित कह ठाकुर जोनी जन्म ना मरे ना आवे ना जाए नानक का प्रभ रहो समाए पैरो महला पंजवा उठत सुखिया बैठत सुखिया।

सोए अचिंता जाग अचिंता, जहां कहां प्रभु तू वर्तनता। कर सुख वसया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। भैरू महला पंजवा, वर्त ना रहो ना मह रमदाना, तिस सेवी जो रखे निधाना। एक गुसाई अल्लो मेरा, हिंदू तुर्क दुहान बेरा। रहाओ हज का बह जाओ ना तीर्थ पूजा, एको सेवी अवर ना दूजा। पूजा करो ना नवाज गुजारो, एक निरंकार ले हृदय नमस्कारो। ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड प्राण। कहो कबीर एहो किया वखाना, गुर पीर मिल खुद खसम पछाना। भैरू महला पंजवा, दस मिर्गी सहजे बंद आनी, पांच मिर्ग बेदे शिव की बानी। संत संग ले चढ़ो शिकार, मृग पकड़े बिन घोर हथियार। रहाओ अखेर बिरत बाहर आयो ताए, अहेरा पायो कर कै गाय। मृग पकड़े कर आने हाट, चुख चुख ले गए बांडे बाट। एहो अहेरा कीनो दान, नानक कै कर केवल नाम। भैरू महला पंजवा, जे सौ लोच लोच खावाया, साकत हर हर चीत ना आया। संत जना की लेहो मते, साध संग पावो परम गते। रहाओ पाथर को बहु नीर पवाया, नह पीजै अधिक सुकाया। खट शास्त्र मूर्ख है सुनाया, जैसे दह दिस पवन चुलाया। बिन कण खलहान जैसे गाहन पाया, त्यों साकत ते को ना ब्रासाया। कित ही लागा जित को लाया, कहो नानक प्रभ बणत बणाया। भैरू महला पंजवा, जियो प्राण जिन रत्यो शरीर, जिन्ह अपाए तिस कौ पीर। गुरु गोबिंद जी कै काम, हलत पलत जाकी सद शाम। रहाओ प्रभ आराधन निर्मल रीत, साध संग बिनसी विपरीत। मीत हीत धन नह पारना, तन

नारायण मद भाग हर प्रेम रसायन प्रभु हमारे शास्त्र सोण सुख सहज आनंद ग्रह पौन रहाव रसना नाम करण सुन जीवे प्रभ सिमर सिमर अमर थिर थीवे जन्म जन्म के दुख निवारे अनहद शब्द बजे दरबारे कर कृपा प्रभ लिए मलाई नानक प्रभ शरणागत आय भैरो महला पंजवा कोट मनोरथ आवह हाथ जम मार्ग कै संगी पाथ गंगा जल गुरु गोविंद नाम जो सिमरै तिस की गत होवै पीवत बहुड़ ना जोन परमाम रह।

शोभा पावे प्रभु के द्वार, सर्व कल्याण चरण प्रभ सेवा, धूर बांछ है सब सुर नर देवा, नानक पाया नाम निदान, हर जप जप उदरिया सगल जहान, पैरों महला पंजवा, अपने दास कहो कंठ लगावे, निंदक कहो अगन मह पावे, पापी तेरा के नारायण, पापी की गत कत हूँ नाही, पापी पचिया आप कमाए रहाऊ, दास राम जियो लागी प्रीत, निंदक की होई विपरीत, पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगटाया, दुखी अपना कीता पाया, आए न जाई रहया समाई, नानक दास हर की सरनाई, राग भैरो महला पंजवा, चौपदी घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्री तर मोहन सगल उपावन, निरंकार सुखदाता, ऐसा प्रभ छोड़ करह अन सेवा, कमन बिख्या रस माता, रे मन मेरे तू गोविंद पाज, अवर उपाव सगल मैं देखे, जो चित भी है चित बिगरस काज रहाऊ, ठाकुर छोड़ दासी को सिमरह, मनमुख अंध अज्ञान, हर की भगत करह।

अहम बुद्ध दुर्मत है मैली बिन गुर पव जल फेरा होम जग जप तप सब संयम तट तीर्थ नहीं पाया मिटिया आप पय सरनाई गुरमुख नानक जगत तराया पहरो महला पंजवा बन मह पेखियो तृण मह पेखियो ग्रह पेखियो उदासाई दंड धार जट धारै पेखियो।

पढ़ाई तपी तपी सर मुन मह पेखियो नट नाटक निरताई चहो मह पेखियो खट मह पेखियो दस अस्ति सिमरताई सब मिल एको एक वखान है तौ किस्ते कहो दुराई अगह अगह बेअंत स्वामी नह कीम कीम कीमाई जन नानक तिन कह बल बल जाई जेह घट प्रगति आई भैरू महला पंजवा निकट बुझै सो बुरा क्यों करै बिक संचै नित डरता फिरै है निकते अर भेद ना पाया बिन सतगुर सब मोही माया।

परग्रह जाय दरबे रह मिथ्या कर खाय पैठ गौरी हर संग ना जानिया बाज गुरु है परम पुलानिया निकट ना जाने बोले कूड़ माया मोह मूठा है मूड़ अंतर वस्तद संतर जाय बाज गुरु है परम पुलाय जिस मस्तक कर्म लिखिया लीला।

जिन सेविया निरपहो सुखदाता, तिन पहो दूर किया एक प्राता। जो तू करह सोई फुन होए, मारे न राखे दूजा कोई। क्या तू सोचे है मानस बाण, अंतर जामी पुरख सुजान। एक टेक एको आधार, सब किस जाने सिरजनहार। जिसे ऊपर नदर करे करतार, तिस जन के सब काज सुवार। तिसका राखा एको सोए, जन नानक अपड़ ना साके कोए। पहरों महला पंजवा, तव कड़िया जे हुए बाहर। तव कड़िया जे विसरे नरहर, तव कड़िया जे दूजा भाई। क्या कड़िया जा रहया समाई, माया मोहे कड़े कड़ पचिया। बिन नाम भ्रम भ्रम भ्रम खपिया रहाओ। तव कड़िया जे दूजा करता, तव कड़िया जे अन्याय को मरता। तव कड़िया जे किस जाने नाही, क्या कड़िया जा भरपूर समाही। तव कड़िया जे किस होए तिंगाने, तव कड़िया जे पूल रिंजाने। गुर कहया जो हुए सब प्रभते, तब काड़ा छोड़ अचिंत हम सोते। प्रभ तू है ठाकुर सब को तेरा, ज्यों पावे त्यों करह निबेरा। द्वितीया नास्त एक रहया समाए, राखो पैज नानक सरनाई। पहरू महला पंजवा, बिन बाजे कैसो निर्तकारी। बिन कंठे कैसे गावन हारी, जील बिना कैसे बजे रबाब। नाम बिना बिरते सब काज, नाम बिना कहो को तरिया। बिन सतगुर कैसे पार परिया रहाओ। बिन जिहवा कहां को बकता,

विद्या कहाँ कोई पंडत, बिन अमरै कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहाँ मन ठहराना, नाम बिना सब जग बोराना, बिन बैराग कहाँ बैरागी, बिन हौ त्याग कहाँ को त्यागी, बिन बस पंच कहाँ मन चूरे, नाम बिना सद सद ही चूरे, बिन गुर दीख्या कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान,

दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा, जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी, रहाउ जिहवा रोग मीन ग्रसियानू।

फिर जो नी परम रोग बंद रहन रती ना पावे, बिन सतगुरु रोग कतह ना जावे, पार ब्रह्म जिस कीनी दया, बाहा पकड़ रोगों काड लया, टूटे बंधन साध संग पाया, कहो नानक गुर रोग मटाया, पैरों महला पंजवा, चीत आवे ता महा आनंद, चीत आवे ता सब दुख भंज, चीत आवे ता श्रद्धा पूरी, चीत आवे ता कबह ना चूरी, अंतर राम राय प्रगटे आए, गुरपुरे दियो रंग लाए रहाउ, चीत आवे ता सर्ब को राजा, चीत आवे ता पूरे काजा, चीत आवे ता रंग गुलाल, चीत आवे ता सदा निहाल, चीत आवे ता सद तनवंता, चीत आवे ता सद निपरंता, चीत आवे ता सब रंग माणे, चीत आवे ता चूकी काणे, चीत आवे ता सहज घर पाया, चीत आवे ता सुन समाया, चीत आवे सद कीर्तन करता, मन मानिया नानक भगवंता, पैरों महला पंजवा, बाप हमारा सद चिरंजीवी, भाई हमारे सद ही जीवी, नीत हमारे सदा अविनाशी, कुटुंब हमारा निज घरवासी, हम सुख पाया।

हे अन्ते अपूछे, राज हमारा सद ही निश्चल, माल हमारा अखूट अबेचल, शोभा मेरी सब जोगे अंतर, बाज हमारी थान थनंतर, कीरत हमारी कर कर होई, भगत हमारी सबनी लोई, पिता हमारे प्रगटे माज, पिता पूत रल कीनी सांझ, कहो नानक जो पिता पतीने, पिता पूत एक रंग लीने, भैरो महला पंजवा, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभदाते, हम अपराधी तुम बख्शाते, जिस पापी को मिले ना टोई, शरण आवे ता निर्मल होई, सुख पाया सतगुरु मनाए, सब फल पाए गुरु त्याए रहाओ, पार ब्रह्म सतगुर आदेश, मन तन तेरा सब तेरा देश, चूका पड़दा ता नदरी आया, खसम तू है सबना केराया, तिस भाणा सूके काष्ट हरिया, तिस भाणा ता थल सिर सरिया, तिस भाणा ता सब फल पाए, चिंत गई लग सतगुर पाए, हराम खोर निर्गुण कौ तूठा, मन तन सीतल मन अमृत बूठा, पार ब्रह्म गुर

सद बल जाया, प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया, जिन गुर सेविया तिस भौ ना व्यापै, जिन गुर सेविया तिस दुख ना संतापै, नानक सोधे सिमरत बेद, पार ब्रह्म गुर नाही भेद, भैरू महला पंजवा, नाम लैत मन प्रगट भया, नाम लैत पाप तन ते गया, नाम लैत सगल पुरबाया, नाम लैत अठसठ मजनाया, तीर्थ हमरा हर को नाम, गुर उपदेसिया तत ज्ञान रहाव, नाम लैत दुख दूर पराना, नाम लैत अत मूड सो ज्ञाना, नाम लैत

रहत दरगाह सुख पावे। नाम लैत प्रभ कह साबास, नाम हमारी साची रास। गुर अपदेश कहो इहो सार, हर कीरत मन नाम आधार। नानक उदरे नाम पुनः चार, अवर कर्म लोकह पतियार। भैरू महला पंजवां, नमस्कार ता को लख बार। एह मन दीजै ता को वार, सिमरन ता कै मिटह संताप। होए आनंद न व्यापह ताप, ऐसो हीरा निर्मल नाम। जास जपत पूर्ण सब काम, रहाउ जाकी दृष्ट दुख डेरा तह। अमृत नाम शीतल मन गह, अनक भगत जाके चरण पुजारी। सगल मनोरथ पूरन हारी, खिन मै ऊने सुपर भरिया। खिन मह सूके कीने हरिया, खिन मह न थावे को दीनो थान। खिन मह न माने को दीनो मान, सब मह एक रहिया पर पूरा। सो जा पै जिस सत गुर पूरा।

मोहे दुहागने आप सिंगारी, रूप रंग दे नाम सवारी, मिटयो दुख अर सगल संताप, गुर होए मेरे माई बाप, सखी सहेरी मेरा ग्रस्त आनंद, कर कृपा भेटे मोहे कंत रहाउ, तपत बुझी पूर्ण सब आसा, मिटे अंधेर भये परगासा, अनहद शब्द अचरज बिस्माद, गुरपूरा पूरा प्रसाद, जा को प्रगट भये गोपाल, ताकै दर्शन सदा निहाल, सर्व गुणा ताकै बहुत निदान, जा को सतगुर दियो नाम, जा को भेट्यो ठाकुर अपना, मन तन सीतल हर हर जपना।

आवे, बेसवा भजत किस नह शरमावे, सारो दिन समजूरी करे, हर सिमरन की वेला बजर सिर परे, माया लग भूलो संसार, आप भलाया भलावन हारे, राज रहिया बिरथा व्यवहार, रहाउ देखत माया रंग बिहाई, गड़बड़ करे कौडी रंग लाई, अंध व्यवहार बंद मन तावे, करने हार ना जी मह आवे, करत करत इव ही दुख पाया, पूर्ण होत ना कारज माया, काम क्रोध लोभ मन लीना, तड़प नुआ ज्यो जल बिन मीना, जिसके राखे होए हर आप, हर हर नाम सदा जप जाप, साध संग हर के गुण गाया, नानक सतगुर पूरा पाया, भैरो महला पंजवा, अपनी दया करे सो पाए, हर का नाम मन वसाए, साच शब्द हिरदे मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाए, राम नाम जी को आधार, गुर प्रसाद जप हो नित पाई, तार लए सागर संसार रहाउ, जिनको लिखिया हर एहो निदान, सीजन दरगाह पावह मान, सुख सहज आनंद गुण गाओ, आगे मिले न थावे थाओ, जुगा जगंतर एहो तत सार, हर सिमरन साचा विचार, जिस लड़ लाए लए सो लागे, जन्म जन्म का सोया जागे।

रोम रोम रविया हर नाम, सतगुर पूरा की नो दान, नाम रतन मेरे पंडार, अगम अमोला अपर अपार, रहाओ नाम हमारे निश्चल तनी, नाम की महिमा सब मह बनी, नाम हमारे पूरा साह, नाम हमारे बेपरवाह, नाम हमारे भोजन पाओ।

सुख होए, कर कृपा जा को मेले सोए, रहाओ जाके करतब लखे ना जाहे, जाका परवासा सब घट माए, प्रगट भया साधु कै संग, भगत अराध अन दिन रंग, देंदे तोट नहीं पंडार, चिन मह थाप्यो।

की आसा, दुख सुख हमरा तिस ही पासा, राख लीनो सब जन का पड़दा, नानक तिसकी उस्तत करदा, पैरू महला पंजवा, रोवन हारी रोज बनाया, बलन बर्तन को संबंध चेते आया, बूझ बैराग करे जे कोई, जन्म मरण फिर सोग ना होए, बिख्या का सब तंद पसार, विरले कीनो नाम आधार रहाउ, त्रिविध माया रही व्याप, जो लपटानो तिस दुख संताप, सुख नाही बिन नाम त्याए, नाम निदान बड़ पागी पाए, स्वांगी स्यों जो मन री जावे, स्वांग उतारे है फिर पछतावे, मेघ की छाया जैसे बर्तन हार, तैसो परपंच मोह बेकार, एक वस्त जे पावे कोई, पूर्ण काज ताही का होई।

अणहुंदा पार निंदक सिर तरा पार ब्रह्म के भगत निरवैर सो निस्तर जो पूजे पैर आद पुरख निंदक पोलाया नानक किरत ना जाए मिटाया पैरों महला पंजवा नाम हमारे वेद अर नाद

मन तन नानक हर गुण गाओ साध संग जिस देवै नाओ भैरो महला पंजवा निर्धन को तुम देव हो तना अनक पाप जाहे निर्मल मना।

तुम थान बैठावो, दास अपने को भगति लावो, नमाणी को प्रभ दे तो मान, मूड मुग्ध होए चतर सुगयान, सगल पयान का पौ नसे, जाने अपने कह हर मन बसे, पार ब्रह्म प्रभ सुख निदान, तत ज्ञान हर अमृत नाम, कर कृपा संत टहले लाए, नानक साधु संग समाए, पैरो महला पंजवां, संत मंडल में हर मन वसे, संत मंडल में दुर्त सब नसे, संत मंडल में निर्मल रीता, संत संग होए एक परीता, संत मंडल तहा का नाओ, पार ब्रह्म केवल गुण गाओ, रहाओ, संत मंडल में जन्म मरण रह, संत मंडल में जम किशु ना कह, संत संग होए निर्मल बाणी, संत मंडल में नाम वखाणी, संत मंडल का निह चले आसन, संत मंडल में पाप बनासन, संत मंडल में निर्मल कथा, संत संग हो मैं दुख नसा, संत मंडल का नहीं बनास, संत मंडल में हर गुण तास, संत मंडल ठाकुर विश्राम, नानक ओत पोत भगवान, भैरो महला पंजवां, रोग कवन जा राखे आप, तिस जन होए ना दुख संताप, जिस ऊपर प्रभ कृपा करे, तिस ऊपर ते काल पर हरे, सदा सखाई हर हर नाम, जिस चीत आवे तिस सदा सुख होए, निकट न आवे ता कै जाम, रहाव जब एहो ना सो तब किन्ह उपाया, कवन मूल ते क्या प्रगटाया, आपह मार आप जीवाले, अपने भगत को सदा प्रतपाले, सब किस जान हो तिस कै हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, दुख भंजन ताका है नाउ, सुख पावे है तिसके गुण गाओ, सुन स्वामी संतन अरदास, जियो प्राण धन तुमरे पास, एहो जग तेरा सब तुझे त्याए।

उतर गई सब मन की चिंता, लोभ मोह सब कीनो दूर, परम वैष्णो प्रभ देख हजूर, ऐसो त्यागी बिरला कोए, हर हर नाम जपै जन सोए, रहाउ अहम बुद्ध का छोड़िया संग, काम क्रोध का उतरिया रंग, नाम ते आए हर हर हरे, साध जना कै संग निस्तरे, बैरी मीत होए सम्मान, सर्व मह पूर्ण भगवान।

तै धन खाटे सुख नाही पेखे निरत नाटे सुख नाही बहु देश कमाए सर्व सुखा हर हर गुण गाए सुख सहज आनंद लहो साध संग पाइए वडभागी गुरमुख हर हर नाम कहो रहाउ बंधन मात पिता सुत बनता बंधन कर्म धर्म हो करता बंधन काटन हार मन वसै तौ सुख पावे निज कर बसै सब जाचक प्रभ देवन हार गुण निदान बेअंत अपार जिसनो कर्म करे प्रभ अपना हर हर नाम तिने जन जपना गुर अपने आगे अरदास कर कृपा पुरख गुणतास कहो नानक तुमरी सरनाई ज्यों पावे त्यों रखो गुसाई पैरो महला पंजवा गुर मिल त्यागियो दूजा पाओ गुरमुख जपियो हर का नाओ बिसरी चिंत नाम रंग लागा जन्म जन्म का सोया जागा कर कृपा अपनी सेवा लाए साधु संग सर्व सुख पाए रहाओ रोग दुख गुर शब्द निवारी नाम औखद मन पीतर सारी गुर पेटत मन पया आनंद सर्व निदान नाम भगवंत।

परवान, सफल होई जप हर हर नाम, कहो नानक प्रभ कृपा करी, सास ग्रास जपो हर हरी, भैरो।

आवण जान रहे हर त्याय, भगत पाए प्रभ की लिव लाए, बिनसे काम क्रोध अहंकार, टूटे माया मोह प्यार, प्रभ की टेक रह दिन रात, पार ब्रह्म करे जिस दात, कर्ण करावनहार स्वामी, सगल कटां के अंतर जामी।

सोवै हर सिमरन छाड परम गत चाहै मूल बिना साखा कत्या है गुरु गोविंद मेरे मन त्याई

का मूल हर के भजन बिन बिरथा पूल बिन खाए दूजे नहीं भूख रोग जाए ता उतर है दुख काम क्रोध लोभ मोह व्यापिया जिन प्रभ कीना सो प्रभ नहीं जापिया तन तन साध तन हर नाओ आठ पहर कीर्तन गुण गाओ तन हर भगत तन करण हार शरण नानक प्रभ पुरख अपार भैरो महला पंजवां गुर सो प्रसन्न होए पौ गए नाम निरंजन मन मह लई दीन दयाल सदा किरपाल बिनस गए सगले जंजाल सुख सहज आनंद घने साध संग मिटे भय भरमा अमृत हर हर रसन भने रहाओ चरण कमल स्यों लागो हेत खिन मह बिन स्यो महा परेत आठ पहर हर हर

करन कारण समरथ गुर मेरा, जी प्राण सुख दाता नेरा, पै भजन अवनासी राय, दर्शन देखे है सब दुख जाए, जत कत पेखो तेरी सरना, बल बल जाई सतगुर चरना, रहाऊ पूर्ण काम मिले गुरुदेव, सब फल दा

पूरन मन पाणी जल थल मही अल रवे आसोई नानक सब किश प्रभ ते होए पैरो महला पंजवा मन तन राता राम रंग चरनी सर्ब मनोरथ पूरन करनी आठ पहर गावत भगवंत।

सोतनवंता जिस बुद्ध विवेका सोकलवंता जे सिमरै स्वामी सोपतवंता जे आप पछानी गुर प्रसाद परम पद पाया।

हर सिमरन की सगली बेला, हर सिमरन बहु माहे अकेला। जात अजात जपै जान कोई, जो जापै तिसकी गत होए।

नित सुख प्रतपाल, अपने दास कहो दे राखे हाथ, निमख न छोड़े सद ही साथ, हर सा प्रीतम अवर न कोए, सार संभाले साचा सोए, मात पिता सुत बंद नारायण, आदि जुगाद भगत गुण गायन, तिसकी धार प्रभ का मन जोर, एक बिना दूजा नहीं होर, नानक कै मन एहो परखारथ, प्रभु हमारा सारे स्वार्थ, पैरू महला पंजवां, पै कौ भौ पढ़िया सिमरत हर नाम, सगल ब्याद मिटी त्रिहो गुण की, दास के होए पूर्ण काम, रहाओ हर के लोक सदा गुण गावे, तिनको मिलिया पूर्ण धाम, जन का दर्श बांछे दिन राती,

नहीं भंग पैरो महला पंजवा निंदक को फिटके संसार निंदक का झूठा व्यवहार निंदक का मैला आचार दास अपने को राखनहार निंदक मुआ निंदक कै नाल पार ब्रह्म परमेश्वर जन राखे निंदक कै सिर कड़के ओ काल रहाओ निंदक का कहया कोई ना माने निंदक झूठ बोल पछताने हाथ पछोर है सिर धरन लगाहे निंदक को दई छोड़े नाहीं हर का दास किस बुरा ना मांगे।

कै मन परगास, तिस जन कै पार ब्रह्म का निवास, तिस गुर को सद करी नमस्कार, तिस गुर को सद जाओ बलिहार, सतगुर के चरण तोए तोए पीवा, गुरु नानक जप जप सद जीवा, राग पहरू महला पंजवा, पड़ताल घर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, प्रतपाल प्रभ कृपाल कमन गुन गुनी, अनक रंग बहुत रंग सर्ब को तनी रहाओ, अनक ज्ञान अनक ध्यान, अनक जाप जाप ताप, अनक गुणत तुनत ललत, अनक तार मुनि, अनक नाद अनक बाज, निमख निमख अनक स्वाद, अनक दोख अनक रोग, मिट है जस सुनी, नानक सेव अपार देव, तट है खट है बर्त पूजा, गमन पवन जातर करन, सगल फल पुनी, पैरों अष्टपदियां महला पहला कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आत्म मह राम राम मह आत्म, चीनस गुर बीचारा, अमृत बाणी शब्द पछाणी, दुख काटै हो मारा, नानक हो मैरू।

ताक ना हुई जिनको नदर पई गुर मेले प्रभ पाणा सच सोई पौन पानी बै संतर रोगी रोगी तरत सपोगी मात पिता माया देह से रोगी रोगी कुटुंब संजोगी रोगी ब्रह्मा विष्णु सुरुद्रा रोगी सगल संसारा हर पद चीन पए से मुक्ते गुर का शब्द विचारा रोगी सात समुंद सनदियां खंड पताल से रोग परे हर के लोक से साच सुहेले सर्वी थाई नदर करे रोगी खट दर्शन भेख तारी नाना हठी अनेका बेदक तेव करह कह बपरी नह बूझ एक एका मिठरा सखाए सो रोग परिजय कंद मूल सुख नाही नाम विसार चल है अन मार्ग अंत काल पछताही तीरथ पर मैं रोग ना छूटस पड़या बाद विवाद भया दुबदा रोग सो अधिक वडेरा माया का मोहताज भया गुरमुख साचा शब्द सलाह है मन साचा तिस रोग गया नानक हर जन अन दिन निर्मल जिनको कर्म निशान पया पैरों महला तीजा कर दूजा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद तिन करता एक चलते उपाया अनहद बाणी शब्द सुनाया मनमुख फूले गुरमुख बुझाया कारण करता करदा आया।

सब नगरी मह भगत दिरड़ाई, दुष्ट सभा का किसना वसाई। संडै मरकै की पुकार, सबे दैत रहे चख मार। भगत जना की पत राखै सोई, कीते कै कहे क्या होई। किरत संजोगी दैत राज चलाया, हर ना बूझै तिने आप पुलाया। पुत्र प्रहलाद स्यो वाद रचाया, अंधा ना बूझै काल नेड़ै आया। प्रहलाद कोठे विच राखिया, बार दिया ताला। निरपो बालक मूल ना डरई, मेरे अंतर गुरु गोपाला। कीता हुआ श्री की करे, अनहोंदा ना उतराया। जो तुर लिखिया सो आई पहुता, जन स्यो वाद रचाया। पिता प्रहलाद स्यो गुरजे उठाई, कहां तुम्हारा जगदीश गुसाई। जग जीवन दाता।

गुर सेवा ते अमृत फल पाया, हौ मैं तृष्ण बुझाई, हर का नाम हृदय मन बसिया, मनसा मन है समाई, हर जियो कृपा करो मेरे प्यारे, अन दिन हर गुण दीन जन मांगे, गुर कै शब्द उधारे रहाओ, संत जना को जम जोहे ना साके, रत्ती

कीरत हर साची बहुर बहुर किस संग मन राची रहाओ अचिंत हमारे पूजन पाओ अचिंत हमारे लीचे नाओ अचिंत हमारे शब्द उदार अचिंत हमारे परे पंडार अचिंत हमारे कार्य पूरे अचिंत हमारे लथे वसूरे अचिंत हमारे बैरी मीता अचिंतो ही इहो मन वस कीता अचिंत प्रभु हम किया दलासा अचिंत हमारी पूर्ण आसा अचिंत हमा को सगल सिद्धांत अचिंत हम को गुरदीनो मंत अचिंत हमारे बिन से बैर अचिंत हमारे मिटे अंधेर अचिंतो ही मन कीर्तन मीठा अचिंतो ही प्रभ घट घट दीठा अचिंत मिट्यो है सगलो परमा अचिंत वस्यो मन सुख बिसरामा अचिंत हमारे अनहत वाजे अचिंत हमारे गोविंद गाजे अचिंत हमारे मन पतियाना निश्चल तनी अचिंत पछाना अचिंतो उपजियो सगल बिबेका अचिंत चरी हाथ हर हर टेका अचिंत प्रभु तुर लिखिया लेख अचिंत मिल्यो प्रभ ठाकुर एक चिंत अचिंता सगली गई प्रभ नानक नानक नानक मई भैरों बाणी भगतां की कबीर जियो घर पहला।

कह कबीर हो भया दीवाना, मुस मुस मनुआ सहज समाना, गंगा कै संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा हुए निबरी, बिगरियो कबीरा राम दोहाई, साच पयो अन कत है ना जाई, रहाऊ चंदन कै संग तरवर बिगरियो, सो तरवर चंदन हुए निबरियो, पारस कै संग तांबा बिगरियो, सो तांबा कंचन हुए।

शाड़ चले हम कछु ना लिया, हृदय इखलास निरखले मीरा, आप खोज खोज मिले कबीरा, निरतन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे ओहो चेतना तरे रहाऊ, जो निरतन सर तन कह जाए, आगे बैठा पीठ फुराए, जो सर धन निर्धन कह जाए, दिया आदर लिया बुलाए, निर्धन सर धन

सो देही पज हर की सेव भजो गोविंद भूल मत जाहो मानस जन्म का एही लाहो रहाओ जब लग जरा रोग नहीं आया जब लग काल ग्रसी नहीं काया जब लग बिकल भई नहीं बानी भज लेहे रे मन सारिंग पानी अब ना भजस भजस कब भाई

रावी ऊपर गहरा ख्या चंद पच्छम द्वार सूरज तपै मेर डांड सिर ऊपर बसै पश्चिम द्वार।

पीतर आने गगन मंडल मह लश्कर करे सो सुरतान सतर सिर तरे जोगी गोरख गोरख करे हिंदू राम नाम उच्चरे मुसलमान का एक खुदाई कबीर का स्वामी रहे आसमाई।

फंद ना पात्र बोले ना किस दे फूकट कर्म निफल है सेव जे मृतक को चंदन चढ़ावे उसते कहो कवन फल पावे जे मृतक को बिस्टा माही रुलाई ता मृतक का क्या काट जाई कहत कबीर हो कहो पकार समझ देख साकत गावार दूजे भाए बहुत कर गाले राम भगत है सदा सुखाले जल मह मीन माया के बेदे दीपक पतंग माया के छेदे काम माया कुंचर को व्यापे भुयंगम प्रिंग माया मह खापे।

जाती साकरमाखी अधिक संतापी तुरे उष्ट माया मह पीला सिद्ध चौरासी ही माया मह खीला शे जति माया के बंदा नवे नाथ सूरज अरचंदा तपे रखी सर माया मह सूता माया मह काल अर पंच दूता स्वान स्याल माया मह राता बंतर चीते अर सिंगाता मां जार गाडर अर लूंभरा बिरख मूल माया मह परा माया अंतर पीने देव सागर इंद्र।

मेरी मिट जाए तब प्रभ काज सुवार है आई। ऐसा ज्ञान विचार मना हर की ना सिमर हो दुख भंजना रहाऊ। जब लग सिंह रह बन माही

पार उतरै, गुर प्रसादी पार उतरै, दास कबीर कहे समझाए, केवल राम रहो लिव लाए, सतर साई सलार है जाकी, सवा लाख पै कंबर ताकी, सेख जो कही है कोट अठासी, छप्पन कोट जाके खेल खासी, मो गरीब की को गुजरावे, मजलस दूर महल को पावे, रहाउ तेतीस करोड़ी है खेल खाना, चौरासी लख फिरे दीवाना, बाबा आदम को किसने

पंका पाई, दोवर कोट अर तेवर खाई, रहाऊ पांच पचीस मोह मद मत्सर, आडी पर बल माया, जन गरीब को जोर ना पहुंचे, कहां करो रघुराया, काम कवारी दुख सुख दरवानी, पाप पुन दरवाजा, क्रोध प्रधान महाबड दुंदर, तह मन मावासी राजा, स्वाद सनाहा टोप ममता को, कबुद्ध कमान चढ़ाई, तिसना तीर रहे काट पीतर, यों गाड़ लियो ना जाई, प्रेम पलीता सुरत हवाई, गोला ज्ञान चलाया, ब्रह्म अगन सहजे पर जाली, एक है चोट सजाया, सत संतोख ले लरने लागा, तोरे दुए दरवाजा, साध संगत अर गुर की कृपा ते, पकरियो गढ़ को राजा, भगवत पीर सकत सिमरन की, कटी काल पै फासी, दास कमीर चढ़ियो गढ़ ऊपर, राज लियो अबनासी, गंगा गुसाइन गहर गंभीर, जंजीर बांध

अनहद शब्द होत चुनकार जिह पौड़े प्रभ श्री गोपाल खंडल मंडल मंडल मंडा त्रया स्थान तीन त्रय खंडा अगम अगोचर रहया अभ्यंत पार न पावे को धरनी तर मंत कदली पोह धूप परगास रस पंकज महलियो निवास द्वादश दल अब अंतर मंत जह पौड़े श्री कमला कंत अर्ध उर्ध

नास। दुर्गा कोट जाकै मर्दन करै, ब्रह्मा कोट बेद उच्चरै। ज्यों जाच्यों तो केवल राम, आन देव स्यों नाही काम। रहाउ कोट चंद्र में करह चराक, सुरते

फिर है, बासक कोट सेज बिस्थर है, समुंद कोट जाके पानी हार, रमावल कोट अथार है पार, कोट कमेर पर है पंडार, कोटक लक्ष्मी करे श्रृंगार, कोटक पाप पुन बहो हिर, इंद्र कोट जाके सेवा करे, छप्पन कोट जाके

संडा मर का जाए पुकारी, पड़े नहीं हम ही पाचहारी। राम कहे करताल बुझावे, चटिया सबे बिगारी। राम नामा जप भो करे, हृदय हर जी को सिमरन तरे। रहाउ बसदा बस कीनी सब राजी, बिनती करे पटराणी। पूत प्रहलाद कहया नहीं माने, तिन तो औरे ठानी। दुष्ट सभा मिल मंत्र उपाया, कर सह औध कनेरी। गिर तर जल ज्वाला पै राखियु, राजा राम माया फेरी। काड खड़ग काल पै कूपियो, मोहि बताओ जो तुहे राखे। पीत पितांबर त्रे पवन तनी, थंब माहे हर पाखे। हर नाखश जिन नखह बुदारे हो, सुर नर किए सनाथा। कह नाम देहो हम नर हर त्यावे, राम अपै।

आई नातर गर्दन मारो ठाई बादशाह ऐसी क्यों हुए बिस्मिल किया न जीवे कोई मेरा किया कछु न होए कर है राम हुए है सोए बादशाह चढ़ो अहंकार गज हस्ती दीनो चमकार रुदन करे नामे की माए छोड़ राम की ना भजै खुदाए ना हो तेरा पुंगड़ा ना तू मेरी माए पिंड पड़े तो हर गुण गाए।

गोपाल गंग जमन जो उल्टी बह तो नामा हर करता रह सात घड़ी जब बीती सुनी अजहो ना आयो त्रे पवन धनी पाखंतन बाज बुझाएला गरुड़ चढ़े गोविंद आएला अपने भगत पर की प्रतपाल गरुड़ चढ़े आए गोपाल कह

रहे जब मटकी भरी, ले बादशाह के आगे तरी, बादशाह महल में जाए, औकट की घट लागी आए, काजी मुल्ला बिनती फुरमाए, बख्शी हिंदू मैं तेरी गाय, नामा कह सुनो बादशाह, एहो किस

समाहे मिल हिंदू सब नामे पह जाए जो अब की बार ना जीवे गाए ता नाम देव का पतिया जाए नामे की कीर्त रही संसार भगत।

बुरा भला एक, जो गुरुदेव ललाटह लेख, जो गुरुदेव कंध नहीं हिरे, जो गुरुदेव देहुरा फिरे, जो गुरुदेव ता शापर शाही, जो गुरुदेव सहज निकसाई, जो गुरुदेव ता अठ सठ नाया, जो गुरुदेव तन चक्र लगाया, जो गुरुदेव ता द्वादस सेवा, जो गुरुदेव सबै बेख मेवा, जो गुरुदेव ता संसार टूटै, जो गुरुदेव ता जम के छूटै, जो गुरुदेव ता पौ जल तरै, जो गुरुदेव ता जन्म ना मरै, जो गुरुदेव अठ दस व्यवहार, जो गुरुदेव अठारह भार, बिन गुरुदेव अवर नहीं जाई, नाम देव गुर की शरणाई, भैरो बाणी रविदास जियो की कर दूजा।

जो कोई पारस परसै दुबदा ना होई रहाओ सो मन मन की दुबदा खाई बिन द्वारे त्रै लोक समाई मन का सुभाव सब कोई करे करता हुए सुअन पै रह फल कारण फूली बन राई फल लागा तब फूल बुलाई ज्ञान कारण कर्म अभ्यास ज्ञान भया तह कर्म है नास कृत कारण दद मथे सयान जीवत मुकत सदा निर्वाण कह रविदास परम बैराग हृदय राम की ना जपस अभाग।

काजी मुल्ला हुवे सेख, जोगी जंगम भगवे पेख, को गिरही कर्मा की संद, बिन बूजे सब खड़ियस बंद, जेते जी लिखी सिरकार, करनी ऊपर होवग सार, हुक्म करह मूर्ख गावार, नानक साचे के सिफत पंडार, बसंत महला तीजा, बस्तर उतार दिगंबर होग, जटा तार

पार उत्तर जाहे एक खिना रहाऊ सिमरत शास्त्र करह वख्यान नादी बेदी पढ़ पुराण पाखंड दृष्ट मन कपट कमाहे तिनके रमैया नेड़ नाई जे को ऐसा संजमी होए क्रिया वसेख पूजा करे।

संत महला तीजा एक तुका साहिब भावै सेवक सेवा करै जीवत मरै सब कुल उधर है।

न खाया मान है तिना ही सेती वासा प्रणवत नानक दासन दासा खिन तोला खिन मासा बसंत हंडोल महला पहला साचा साहो गुरु सुख दाता हर मेले भुख गवाई कर कृपा हर भगत दरडाई अन दिन हर गुण गाई मत भूलै रे मन चेत हरी बिन गुरमुक्त नाही त्रै लोई गुरमुख पाईऐ नाम हरि रहाओ बिन भगती नहीं सतगुर पाईऐ बिन भागा नहीं भगत हरि बिन भागा सतसंग न पाईऐ कर्म मिलै हर नाम हरि घट घट गुप्त उपाय वेखै प्रगट गुरमुख संत जना हर हर करहै सो हर रंग पीने हर जल अमृत नाम मना जिनको तख्त मिलै वडियाई गुरमुख से प्रधान किए पारस भेट भये से पारस नानक हर गुर संग थीए बसंत महला तीजा कर पहला दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद महारुति मह सद बसंत जित हरे।

सेव परम सुख पावह आत्म देव रहाउ कर्म होवे ता सेवा करे गुर प्रसादी जीवत मरे अन दिन साच नाम उचरे इन विद प्राणी दुत्तर तरे देखे अमृत करतार पाई संसार बिरख को दोए पल लाई आपे करता करे कराई जो तिस पावे तिसै खुआई नानक जिसनो नदर करे अमृत नाम आपे दे विख्या की बासना मन है करे अपना पाणा आप करे बसंत महला तीजा राते साच हर नाम निहाला दया करो प्रभ दीन दयाला तिस बिन अवर नहीं मैं कोई ज्यों

लोभाना राम विसार बहुर पछताना विसरत मलाए गुर सेवरांगी हर नाम दियो मस्तक वड भागी।

तृष्णा जलत जले अहंकारी गुर राखे वडभागी तारे जन नानक और हरे अमृत तारी।

पाई, तौ जग जीवन वसै मन आई। भगत करे सद वेखै हजूर, मेरा प्रभ सद रहया भरपूर। इस भगती का कोई जाने पियो, सब मेरा प्रभ आत्म देव। आपे सतगुर मेल मलाई, जग जीवन स्यो आप चित लाई। मन तन हरिया सहज सुपाई, नानक नाम रहे लिव लाई। बसंत महला तीजा, भगत वचल हर वसै मन आई। गुर कृपा ते सहज सुपाई, भगत करे विचों आप खोए। तद ही साच मलावा होए, भगत सोह है सदा हर प्रभ द्वार। गुर कै हित साचे प्रेम प्यार, रहाउ भगत करे सो जन निर्मल होए। गुर शब्दी विचों

मन तन हरिया रव गुण गोविंद बिन नावे सूका संसार अग्न तृष्णा जले वारो वार सोई करे जे हर जियो पावे।

मन आई बसंत महला तीजा माया मोह शब्द जलाई मन तन हरिया सतगुर पाई सफलो बिरख हर कै द्वार साची बाणी नाम प्यार ए मन हरिया सहज सुपाई सच फल लागे सतगुर पाई रहाउ आपे नेड़ आपे दूर गुर कै शब्द वेखै सद हजूर शाम घणी फूली बनराई गुरमुख बिबसै सहज सुपाई अन दिन कीर्तन करह दिन रात सतगुर गवाई विचों जूठ परांत परपंच वेख रहया विस्माद गुरमुख पाईऐ नाम प्रसाद आपे करता सब रस भोग जो किछ करे सोई पर होग वड्डा दाता तिन नात माई नानक मिलिया शब्द कमाई बसंत महला तीजा पूरे भाग सचकार कमावे एको चेता फिर जोन ना आवे सफल जन्म इस जग में आया।

मन निर्मल निर्मल सच सोए जिन ज्ञान किया तिस हर तू जान साच शब्द प्रभ एक संजान हर रस चाखै ता शुद्ध होए नानक नाम रते सच सोए बसंत महला तीजा नाम रते कुला का करह उदार साची बाणी नाम प्यार मनमुख भूले काहे आए नामो भूले जन्म गवाए जीवत मरे मर मरन सवारे गुरु कै शब्द साच उर धारे रहाउ गुरमुख सच भोजन पवित्र शरीरा मन निर्मल सच

गुर कै शब्द हर दर निशान है, दर साचै सच सोभा होए, निज कर वासा पावै सोए, आप अकुल सच्चा सच सोए।

बहु अभमान अपनी पत खोए, सेवड भागी जिन शब्द पछाणिया, बाहर जांदा घर मह आणिया, घर मह वस्त अगमे अपारा, गुरमत खोजह शब्द बीचारा, नाम नव निद पाई घर ही माहे, सदा रंग राते सच समाहे, आप करे किस करण ना जाए।

होए बसंत महला तीजा सब जुग तेरे कीते होए सतगुर भेटै मत बुद्ध होए हर जियो आपे लहो मलाए गुर कै शब्द सच नाम समाए रहाओ मन बसंत हरे सब लोए फलह फुलियह राम नाम सुख होए सदा बसंत गुर शब्द विचारे राम नाम राखै उर तारे मन बसंत तन मन हरिया होए नानक एहो तन बिरख राम नाम फल पाए सोए बसंत महला तीजा तिन बसंत जो हर गुण गाए पूरे भाग हर भगत कराए इस मन को बसंत की लगै ना सोए एहो मन जलिया दूजै दोए रहाओ एहो मन धंधै बांधा कार कमाए माया मूठा सदा बिन लाए एहो मन छूटै जां सतगुर भेटै जम काल की फिर आवै ना फेटै एहो मन छूटा गुर लिया छदाए नानक माया मोह शब्द जलाए बसंत महला तीजा बसंत चढ़िया फूली बनराए एह जी जंत फूलह हर चित लाए इन बिद एहो मन हरिया होए हर हर नाम जपै दिन राती गुरमुख हौ मैं कढै धोए रहाउ सतगुर बाणी शब्द सुनाए एहो जग हरिया सतगुर पाए फल फूल लागे जां आपे लाए मूल लगै तां सतगुर पाए आप बसंत जगत सब वारी नानक पूरै भाग भगत निराली बसंत हंडोल महला तीजा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर की बाणी बिटहो वारिया पाई गुर शब्द बिटहो बल जाई गुर सलाही सदा अपना पाई गुर चरणी चित लाई मेरे मन राम नाम चित लाई मन तन तेरा हरिया होए एक हर नामा फल पाए रहाओ गुर राखे से उबरे पाई हर रस अमृत पियाई विचो हों मैं दुख उठ गया पाई सुख बुठा मन आई तुरे आपे जिन्ना नु बख्शियो नु पाई

करे आप पाई, जिन हरिया किया सब कोए। नानक मन तन सुख सद वसै पाई, शब्द मलावा होए। राग बसंत महला चौथा कर पहला एक तुके, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ज्यों पसरी सूरज किरण ज्योत, त्यों घट घट रमैया ओत पोत। एको हर रविया सर्ब थाए, गुर शब्दी मिलिया मेरी माए। रहाउ घट घट अंतर एको हर सोए, गुर मिलिया एक प्रगट होए। एको एक रहिया भरपूर, सागत नर लोभी जान है दूर। एको एक वरतै हर लोए, नानक हर एको करे सो होए। बसंत महला चौथा, रैन दिनस दोए सदे पए। मन हर सिमर हो अंत सदा रख लए, हर हर चेत सदा मन मेरे। सब आलस दुख भंज प्रभ पाया, गुरमत गावो गुण प्रभ केरे। रहाउ मनमुख फिर हो मैं मुए, काल दैत संघारे जमपुर गए। गुरमुख हर हर हर लिव लागे, जन्म मरण दो दुख भागे। भगत जना को हर कृपा तारी, गुरु नानक तुठा मिलिया बनवारी। बसंत हंडोल महला चौथा घर दूजा, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद। राम नाम रतन कोठड़ी, गढ़ मंदर एक लुकानी। सतगुर मिले ता खोजिए, मिल ज्योति ज्योत समानी। माधो साधु जन देहो मलाए, देखत दर्स पाप सब नासह। पवित्र परम पद पाए रहाउ, पंच चोर मिल लागे नगरिया। राम नाम तन हिरिया, गुरमत खोज परे तब पकरे। धन साबत रास उबरिया, पाखंड भरम उपाव कर थाके। हृदय अंतर माया माया, साधु पुरख पुरख पत पाया। अज्ञान अंधेर गवाया, जगन्नाथ जगदी सुग साई। कर कृपा साध मलावे, नानक शांत होए मन अंतर। नित हृदय हर गुण गावे, बसंत महला चौथा हिंडोल। तुम वड पुरख वड अगम गुसाई, हम कीरे किरम तुमन से। हर दीन दयाल करहो प्रभ कृपा, गुर सत गुर चरण हम बनशे। गोविंद जी ओ सत संगत मेल कर कृप से। जन्म जन्म के किल विक मन भरिया, मिल संगत कर प्रभ हंसे। रहाउ तुमरा जन जात अव जाता, हर जप्यो पतत पवीसे। हर कियो सगल भवन ते ऊपर, हर सुबा हर प्रभ दिन से। जात अजात कोई प्रभ ते आवे, सब पूरे मानस तिन से। से धन वड्डे वड पूरे हर जन, जिन हर धारियो हर उरसे। हम ढींदे ढीम बहुत अत पारी, हर धार कृपा प्रभ मिलसे। जन नानक गुर पाया हर तूठे, हम किए पतत पवीसे। बसंत हंडोल महला चौथा, मेरा एक खिन मनुआ रह ना सकै। नित हर हर नाम रस गीदे, ज्यो बारक रसक पर्यो थन माता। थन काढ़े बिलल बलीदे, गोविंद जियो मेरे मन तन नाम हर बीदे। वड्डा भाग गुर सत गुर पाया, विच काया नगर हर सीधे। रहाउ जन के सास सास है जेते, हर बिरह प्रभु हर बीते। ज्यो जल कमल प्रीत अत भारी, बिन जल देखे सुख लीदे। जन जपयो नाम निरंजन नर हर, अपदेश गुरु हर प्रीदे। जन्म जन्म के हों मैं मल निकसी, हर अमृत हर जल नीदे। हमरे कर्म ना बिचर हो ठाकुर, तुम पैज रखो हो अपनीदे। हर भावै सुन बिनो बेनती, जन नानक सरण पवीदे। बसंत हंडोल महला चौथा,
मन खिन खिन परम परम बहुत आवे तिल घर नहीं वासा पाई है। गुरे अंकस शब्द दारू सिर धारियो घर मंदर आन वसाई है। गोविंद जियो सत संगत मेल हर त्याई है। हों मैं रोग गया सुख पाया हर सहज समाज लगाई है। रहाओ कर रतन लाल बहुमानक लादी मन भ्रमिया लह ना सकाई है। ज्यो ओडा कूप गोहज खिन काढ़े त्यो सतगुर वस्त लहाई है। जिने ऐसा सतगुर साधना पाया ते त्रिग त्रिग नर जीवाई है। जन्म पदार्थ पुन फल पाया कौडी बदलै जाई है। मद सूदन हर धार प्रभ कृपा कर कृपा गुरु मिलाई है। जन नानक निर्वाण पद पाया मिल साधु हर गुण गाई है। बसंत हंडोल महला चौथा आवन जान भया दुख बिखिया देह मनमुख सुनी सुन्य राम नाम खिन पल नहीं चेतिया जम पकरे काल सुनुन्य। गोविंद जियो बिकहु मैं ममता मुन्य सत संगत गुर की हर प्यारी मिल संगत हर रस।

देव बिरख जम्यो है पार जात फूल लगे फल रतन पांत तृप्त अगाने हर गुण है गाई जन नानक हर हर हर त्याई बसंत।

दयाल नाम जपत होवत निहाल मेरे प्रीतम कारण करण जोग हों पावो तुम ते सगल थोक रहाउ नाम जपत होवत उदार नाम जपत सुख सहज सार नाम जपत पत सोबा होई नाम जपत बिघन नाही कोई जा कारण ए दलभ दे

प्राण आधार मन जियो प्राण सब तेरो धन रहाउ जा को खोज है सुर नर देव मुन जन सेख ना लह भेव जा की गतमित कही ना जाए घट घट घट घट रहे आसमाए जा के भगत आनंद मै जा के भगत को नाही खै जा

जिसके तारे तरन आकाश कट कट जिसका है परगास जिस सिमरत पतत पनीत होए अंतकाल फिर ना रोए सगल धर्म मह उत्तम धर्म कर्म करतूत कै ऊपर कर्म जिसको चाह है सुर नर देव संत सभा की लगो सेव आद

संत जनी किया उपदेश, जह गोविंद भगत सो धन देस, हर भगत हीन उदयान थान, गुर प्रसाद घट घट पहचान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाप करत तू सदा संग, निकट पेख प्रभ करनहार, ईत ऊत प्रभ कार्ज सार, चरण कमल स्यों लगो

जन प्रभु आप रखी दुष्ट दूत सब भ्रम थके बिन गुर साचे नहीं जाए दुख देश दसंतर रहे ताई किरत ओना का मिटस नाही वे अपना बीजिया आप खाए जन का रखवाला आप सोए जन को पहुंच ना सकस कोई प्रभ दास रखे कर जतने आप।

पंजवा गुरचरण सरेवत दुख गया पार ब्रह्म प्रभ करी मया सर्व मनोरथ पूर्ण काम जप जीवै नानक राम नाम सारुत सुहावी जित हर केते आवे बिन सतगुर दीसै बिल लांती साकत फिर आवे जावे रहाउ से तनवंत जिन हर प्रभ रास काम क्रोध गुर शब्द नास पै बिन से निरपै पद पाया गुरमिल नानक खसम ते आया साध संगत प्रभ कियो निवास हर जप जप होई पूर्ण आस जल तल मही अल रव रहिया गुरमिल नानक हर हर कहिया अष्ट सिद्ध नव निध एह कर्म परापत जिस नाम दे प्रभ जप जप जीव है तेरे दास गुरमिल नानक कमल परगास बसंत महला पंजवा घर पहला एक तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल इच्छा जप पुनिया प्रभ मेले चिरी वछुनिया तुम रब हो गोबिंद रमण योग जित रवे सुख सहज भोग रहाउ कर कृपा नदर निहालिया अपना दास आप संभालिया सेज सुहावी रस बनी आए मिले प्रभ सुख धनी मेरा गुण अवगुण ना बिचारिया प्रभ नानक चरण पूजारिया बसंत महला पंजवा किल बिख बिन से गाए गुना अन दिन उपजी सहज धुना मन मौले ओ हर चरण संग कर कृपा साधु जन पेटे नित रातो हर नाम रंग रहाउ कर कृपा प्रगटे गोपाल लड़ लाए उदार।

कल्याण रूप जप हर हर मंत रहाउ, सोग संताप कटे प्रभु आप, गुरे अपने को नित नित जाप, जो जन तेरा जपे नाउ, सब फल पाए निश्चल गुण गाओ, नानक भगतां।

वहां पकर पवजल निस्तारियु प्रभ काट मैल निर्मल करे गुरपूरे की सरनी परे आप करह आप करन हारी।

फूल फूल फूले अहं त्याग त्यागे चरण कमल पागे तुम मिलो हो प्रभ सुभागे हर चेत मन मेरे रहाओ सगन बास कूले एक रहे सूख कठूले बसंत रुत आई पर फूल ता रहे अब कलू आयो रे एक नाम बोवहो अन रूत नाही नाही मत परम भूलो गुर मिले हर पाए जिस मस्तक है लेखा मन रुत नाम रे गुण कहे नानक हर हरे बसंत महला पंजवां घर दूजा हिंडोल एक ओंकार सतगुर प्रसाद होए एकत्र मिलो मेरे भाई दुबदा दूर करहो लिवलाई हर नामे के होवो जोड़ी गुरमुख बैसो सफा विछाई इन

क्या करता भगत तेरा सोई तुद पावे जिसनो तू रंग धरता तू वरदाता तू वरदाना और नहीं को दूजा।

पया द्वारे रख ले वो मुगद अजाना बसंत हंडोल महला पंजवा मूल ना बूझै आप ना सूझै भरम व्यापी अहं मनी पिता पार ब्रह्म प्रभ धनी मोहे निस्तार हो निर्गुणी रहाउ ओपत परलो प्रभ ते होवे एह बिचारी हर जनी नाम प्रभु के जो रंग राते कलम है सुखिये से जनी अवर अपाओ न कोई सूझै नानक तरियै गुर बचनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग बसंत हंडोल महला नौवां साधो ए तन मिथ्या जानो जा भीतर जो राम बसत है साचो ताहे पछानो रहाओ एहो जग है संपत सुपने की देख कहां ऐडानो संग तिहारै कछु ना चालै ताहे कहां लपटानो उस्तत निंदा दो पर हर हर कीरत उरियानो जन नानक सब ही मैं पूरन एक पुरख भगवानो बसंत महला नौवां पापी ही है मैं काम बसाए मन चंचल याते गहयो ना जाए रहाउ जोगी जंगम अर सन्यास सब ही पर डारी एह फास जेह जेह हर को नाम समार ते भव सागर उतरे पार जन नानक हर की सरनाए दीजै नाम रह गुण गाए।

संग तेरा हर बसत मीत निस बासर भज ताहे मीत बार अंत की हुए सहाय कहो नानक गुण ता के गाए बसंत महला पहला अष्टपदियां घर पहला दो तुकिया

गाछुह पुत्री राज कुवार, नाम भणुहु सच दूत सवार, प्रियो सेवहो प्रभ प्रेम आधार, गुर शब्दी बिख त्यास निवार, मोहन मोहे लिया मन मोहे, गुर कै शब्द पछाना तोहे, नानक ठाडे चाह प्रभु द्वार, तेरे नाम संतोखे कृपा धार, बसंत महला पहला, मन भूलो भरम से आए जाए, अत लुब्ध लुभानो बिखम माए, नह अस्थर दिसै एक पाए, ज्यों मीन कुंडलिया कंठ पाए, मन भूलो समझस साच नाए, गुर शब्द बिचारे सहज पाए, रहाओ मन भूलो परमस पवर तार, बिल बिरथे चाहे बहु बेकार, मैगल ज्यों फासस काम हार, कड़ बंधन बांध

लीन सब दुख सखाई गुण है बीन मन चले न जाई ठाक राख बिन हर रस राते पत ना साख तू आपे सुरता आप राख तर धारण देखे जाने आप आप भलाए किस कहो जाए गुरमेले बिरथा कहो माए अवगुण छोड़ो गुण कमाए गुर शब्दी राता सच समाए सतगुर मिले है मत उत्तम होए मन निर्मल हो मैं कदै धोए सदा मुक्त बंद ना सकै कोई सदा नाम वखाणै और ना कोई मन

हित तू किया। मत भस्म अंधूले गर्भ जाहे, इन बिद नांगे जोग नाहे। मूढ़े काहे बसारे ओ तै राम नाम अंत का।

बसंत महला पहला दुबदा दुर्मत अंदुली कार मन मुख पर मैं मज गुबार माने अंदुला अंदुली मत लागे गुर करनी बिन भरम ना भागे रहाउ मन मुख अंदुले गुरमत ना पाई पशु भय अभमान ना जाई लख चौरासी जनते पाए मेरे ठाकुर पाणे सिर जसमाए सगली भूलै नहीं शब्द अचार सो समझै जिस

आपे बशरू गऊ खीर, आपे मंदर थम शरीर, आपे करनी करनहार, आपे गुरमुख कर विचार, तू कर देख करनहार, जोत जी असंख दे आधार, तू सर सागर गुण गहीर, तू अकुल निरंजन परमहीर, तू आपे करता करन जोग, नेह केवल राजन सुखी लोग, नानक त्रापे हर नाम स्वाद, बिन हर गुर प्रीतम जन्म वाद, बसंत हंडोल महला पहला कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नौ सत चौदह तीन चार कर, महलत चार बहाली, चारे दीवे चहो हथ दिए, एकाएका वारी, मेहरवान मधुसूदन माधो, ऐसी सकत तुम्हारी रहाओ, कर कर लश्कर पावक तेरा, धर्म करे सिखदारी।

हर पवै नित मुदगर पाप करे कोटवारी पावे चंगा पावे मंदा जैसी नदर तुम्हारी आद पुरख को अल्लाह कही है सिखा आई वारी देवल देवतिया कर लागा ऐसी कीरत चाली कूजा बांग निवाज मुसल्ला।

चारी कुंट सलाम करहेंगी, घर घर सिफत तुम्हारी, तीरथ सिमरत पुन दान, किश लाहा मिले दिहाड़ी, नानक नाम मिले वड्याई, नेका घड़ी संभाली, बसंत हंडोल घर दूजा महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, काया नगर एक बालक वसिया, हिन पल फिर न रहाई, अनक अपाव जतन कर थाकी, बारंबार परमाई, मेरे ठाकर बालक इकत कार्याण, सतगुर मिले ता पूरा पाईए, पज राम नाम निशान, रहाउ एहो मृतक मड़ा शरीर है सब जग, जित राम नाम नहीं वसिया, राम नाम गुर उदक चुआया।

रहम खीली इकरती तेलना कटाई जानकी उस्तत है राम नामा दह दिस सुबा पाई निंदक साकत खाव ना सकै तेल अपने।

के जन प्रीतम प्यारी जो हो दासन दासा आपे जल अपरंपर करता आप ही मेल मलावे नानक गुरमुख सहज मलाई ज्यो जल जल है समावे बसंत महला पंजवा घर पहला दो तुकिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुन साखी मन जप प्यार अजा मल

नरेन ले मस्तक लाऊ कर कृपा देन रहाउ गन का उदरी हर कह तूत गज इंद्र त्यायो हर कियो मूख बिपर सदामे दाल पंज रे मन तू पी पज गोविंद बदक उदारे हो खम परहार कुबजा उदरी अंगुष्ट धार बिदर उदारे उदास्त पाय रे मन तू पी हर त्याय प्रहलाद रखी हर पैज आप बस्तर सीनत द्रौपदी रखी लाज जिन जिन सेव्या अंत बार रे मन सेव तू परह पार तन्नै सेव्या बाल बुद्ध त्रिलोचन गुरमिल पई सिद्ध बेणी कौ गुर कियो परगास रे मन तू पी होई दास जय

भगत राख तिनका गुण अवगुण ना बिचार्यो कोई। एह बिद देख मन लगा सेव कबीर त्यायो एक रंग नाम देव हर जियो बसह संग रविदास त्याए प्रभ अनूप गुरु नानक देव गोविंद रूप बसंत महला पंजवा अनक जन्म भ्रमे जो न माहे हर सिमरन बिन नरक पाहे भगत बिहूना खंड खंड बिन बूझे जम देत दंड गोविंद भजो हो मेरे सदा मीत साच शब्द कर सदा प्रीत रहाउ संतोख ना आवत कहूं काज धूम बादर सब माया साज पाप करम तव नह संगाई विख का माता आवै जाई हौ हौ करत बदे बेकार मोह लोभ डूबो संसार काम क्रोध मन वस किया सुपने नाम ना हर लिया कब ही राजा कब मंगन हार दुख सुख बांधो संसार मन उधरन का

मौली सिंह कतेब शंकर मौल्यो जोग त्यान कबीर को स्वामी सब समान पंडित जन माते पढ़ पुराण जोगी माते जोग त्यान सन्यासी माते अहमेव तपसी माते तप कै भेव सब मद माते को न जाग संग ही चोर कर मुसन लाग रहाउ जागै सुख देओ अर अकूर हनुमंत जागै तर लंकूर शंकर जागै चरण सेव कल जागे नामा जय देव जागत सोवत बहु प्रकार गुरमुख जागै सोई सार इस देही के अधिक काम कह कबीर पज राम नाम जोए खसम है जाया पूत बाप खेलाया बिन श्रवणा खीर पिलाया देखो लोगा कल को पाओ सुतम कलाई अपनी माओ रहाओ पगा बिन हुरिया मारता बदने बिन खिर खिर हासता निंद्रा बिन नर पैसो है बिन बासन खीर बलोवै बिन अस्थन गऊ लवेरी पेंडे बिन बाट कनेरी बिन सतगुर बाट न पाई कहो कबीर समझाई प्रहलाद पठाए पर्ण साल संग सखा बहु लिए बाल मोको कहां पढ़ाव से आल जाल मेरी पटिया लिख दे हो श्री गोपाल नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम मेरो और पढ़न स्यो नहीं काम रहाओ संडे मर कह कहो जाए प्रहलाद बलाए बेग ताए तू राम कहन की छोड़ बान तुझ तुरत छाऊ मेरो कहो मान मोको कहां सताव हो बार बार प्रभ जल थल गिर किए पहार एक राम ना छोड़ो गुरहगार मोको काल जार पावे मार डार काड खड़ग को प्यो रिसाए तुझ राखनहार मोहे बताए प्रभ थंब ते निकसे कै विस्थार हरनाक्ष छेदे हो नख बेदार ओए परम पुरख देवाद देव भगत हेत नर सिंह भेव कह कबीर को लखै ना पार प्रहलाद उधारे अनक बार इस तन मन मधे मदन चोर जिन ज्ञान

बैठ खाया। गोबर जूठा चौका जूठा जूठी दीनी कारा, कह कबीर तेई नर सूचे साची परी बेचारा। रामानंद जी का

मेरा चेतना चले मन भयो पंग रहाउ एक दिवस मन भई उमंग कस चंदन चोआ बहु सुगंध पूजन चाली ब्रह्म ठाए सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माहे।

कैसे संत जना राम नाम ना छाड़े, गंगा गया गोदावरी संसार के कामा नारायण सो प्रसन्न होए।

युवराज तू तिसते खरे उतावली रहाऊ। जैसे कुरंक नहीं पायो भेद तन सुगंध ढूंढै परदेस। आप तन काजो करे विचार

पाछी किसह पकार है पियो पियो साधु की जो लेहे ओट तेरे मिट है पाप सब कोट कोट कहरव दास जो जपे नाम तिस जात ना जन्म ना जोन काम बसंत कबीर जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुरा की जैसी तेरी चाल तेरी पूछत ऊपर चमक बाल इस कर्म है।

साहब न फीकी रस बिन बिन प्रभ काल संता पैराहाउ जब लग दर्शन परसै प्रीतम तब लग भूख प्यासी दर्शन देखत ही मन मानिया जल रस कमल बिगासी ऊनम कनहर गरजै बरसै कोकिल मोर बैरागै तरवर बिरख बिहंग पोयंगम घर पेर तन सोहागै कुचिल रूप कुनार कुलखनी फिरका सहज ना जानिया हर रस रंग रसन नहीं तृप्ती दुर्मत दुख समानिया आए ना जावे ना दुख पावे ना दुख दर्द शरीरे नानक प्रभ ते सहज सुहेली प्रभ देखत ही मन धीरे सारंग महला पहला दूर नाही मेरो प्रभ प्यारा सतगुर बचन मेरो मन मानिया हर पाए प्राण अधारा रहाउ इन विद हर मिलिया वर कामन तन सुहाग प्यारी जात बरन कुल सहसा चूका गुरमत शब्द बिचारी जिस मन माने अभमान ना ताको हिंसा लोभ बसारे सहज रवै वर कामन पिरकी गुरमुख रंग सुवारी जारो ऐसी प्रीत कटंब संबंधी माया मोह पसारी जिस अंतर प्रीत राम रस नाही दुबदा कर्म बेकारी अंतर रत्न पदार्थ हित को दुरै न लाल प्यारी नानक गुरमुख नाम अमोलक जुग जुग अंतर तारी सारंग महला चौथा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर के संत जना की हम तूर मिल सत संगत परम पद पाया आत्म राम रहया भरपूर रहाउ सतगुर संत मिले शांत पाईए हिल विख दुख काटे सब दूर आत्म ज्योत पई परफूलत पुरख निरंजन देखिया हजूर वड्डे भाग सत संगत पाई हर हर नाम रहया भरपूर अठ सठ तीरथ मज्जन किया सत संगत पग नाए तूर दुर्मत बेकार मलीन मत होछी हिरदा कसुद लागा मोह पूर बिन कर्मा क्यों संगत पाईए हों मैं व्याप रहया मन चूर हो दयाल कृपा कर हर जी मांगो सत संगत पग तूर नानक संत मिले हर पाईए जन हर पेटिया राम हजूर सारंग महला चौथा गोबिंद चरणन को बलिहारी भवजन जगत ना जाई तरना जप हर हर पार उतारी रहाउ हृदय प्रति

गुरमुख मन मानिया तिनके काज सुवारे रहाऊ। जो जन दीन भये गुरे आगे तिनके दुख निवारी। आन दिन भगत करह गुरे आगे गुर कै शब्द सुवारी। हिरदय नाम अमृत रस रसना रस गावह रस बिचारी। गुर प्रसाद अमृत रस चीनिया वे पावह मूख द्वारी। सतगुर पुरख अचल अचलहा मत जिस दृढ़ता नाम अधारी। किस आगे जियो देवो अपना हौ सतगुर कै बलिहारी। मन मुख ब्रह्म दूजै पाए लागी अंतर अज्ञान गुबारी। सतगुर दाता नदर ना आवे ना उरवार ना पारी। सर्वे कट कट रवे आ स्वामी सर्व कला कल तहारी। नानक दासन दास कहते है कर कृपा ले हो उभारी। सार महला चौथा गोविंद की ऐसी कार कमाई। जो किछ करे सो सत कर मानो गुरमुख नाम रहो लिव लाई रहाओ। गोविंद प्रीत लगी अत मीठी अवर विसर सब जाय। अन दिन रहस भया मन मानिया ज्योति जोत मलाई। जब गुण गाए तब ही मन तृप्त शांत वसै मन आई। गुर कृपाल भये तब पाया हर चरणी चित लाए। मत प्रगास भई हर त्याया ज्ञान तत् लिव लाए। अंतर ज्योत प्रगटी मन मानिया हर सहज समाध लगाए। हृदय कपट नित कपट कमावह मुखो हर हर सुनाई। अंतर लोभ महा गुबारा तोह कूटै दुख खाए। जब सो प्रसन्न भये प्रभ मेरे गुरमुख पर क्या लाए। नानक नाम

नित लगाई। मन हर हर कथा सुखानी रहाव। दीन दयाल हो जन ऊपर, जन देव हो अकथ कहानी। संत जना मिल हर रस पाया, हर मन तन मीठ लगानी। हर कै

हिरदय हर हर पानी पंच जना गुर वस गत्याणी तौ उन मन नाम लगानी जन नानक हर कृपा तहारी हर राम नाम समानी। सारंग महला चौथा जप मन राम नाम पढ़ सार राम नाम बिन थिर नहीं कोई होर निफल सब विस्थार रहाओ। क्या लीजै क्या तजियै बौरे जो दिसै सो शार जिस बिख्या कौ तुम अपनी कर जानो छाछ छाड़ जाहो सिर पार तिल तिल पल पल औद फुन काटै बूझ ना सकै गवार सो किछ करै जे साथ ना चालै इहो साकत का आचार संत जना कै

मेरा प्रीतम जन संतो मोहे मार्ग दिखलावे। तिस जन के हो मल मल तू आ पाऊं, हर जन को हर मिलिया, हर श्रद्धा ते मिलिया, गुरमुख हर मिलिया। मेरा मन तन आनंद भये, मैं देखिया हर राउ। जन नानक को कृपा भई, हर की कृपा भई, जगदीश्वर कृपा भई। मैं अनदिनो सद सद सदा, हर जपिया हर नाउ। सारंग महला चौथा, जप मन निरभउ, सत सत सदा सत, निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी संभव।

दर्शन कहो कोट कोट ते तीस सिद्ध जति जोगी तट तीर्थ पर पवन करत रहत निराहारी किन जन की सेवा थाए पई जिनको कृपाल होवत बनवारी हर के हो संत भले ते उत्तम भगत भले जो

मन हर बोल हर पुरख अविनाशी रहाउ हर का नाम अमृत हर हर हरि सो पिए जिस राम प्यासी हर आप दयाल दया कर मेल जिस सतगुरु सो जन हर हर अमृत नाम च खासी जो जन सेव है सद सदा मेरा हर हरि तिनका सब दुख भरम पहु जासी जन नानक नाम लए ता जीवै ज्यो चात्रक जल पिए त्रिपतासी सारंग महला चौथा जप मन श्री राम राम रमत राम सत सत राम बोलो पैया सद राम राम राम रव रहिया सर्वगे रहाउ राम आपे आप आपे सब करता राम आपे आप आप सबत जगे जिस आप कृपा करे मेरा राम राम राम राय सो जन राम नाम लिव लागे राम नाम की उपमा देखो हर संतो हो जो भगत जना की पात राखै बिच कल युग अगे जन नानक का अंग किया मेरे राम राय दुश्मन दुख गए सब भगे सारंग महला पंजवां चौपदे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर मूर्त कहो बल जाऊं अंतर प्यास चात्रक ज्यों जल की सफल दर्शन कद पाऊं रहाओ अनाथा को नाथ सर्व प्रतपालक भगत वत्सल हर

मित नहीं पाईए, सब तेरो खेल दिखाओ। साधन का संग साध स्यों गोसत, हर साधन स्यों लिवलाऊ। जन नानक पाया है गुरमत, हर देहो दर्श मन चाओ। सार महला पंजवा, हर जियो अंतर जामी जान। करत बुराई मनुख ते छपाई, साखी भूत पवान रहाओ। वैष्णो नाम करत खट करमा, अंतर लोभ जुठान। संत सभा की निंदा करते, डूबे सब अज्ञान। करह सोम पाक हिरह पर दर्श।

रह सब वर्ता जो सपरी दम्फान प्रभु पुलाए उजड़ पाए निफल सब कर्मान सो ज्ञानी सो वैष्णव पढ़िया जिस करी कृपा भगवान उन सतगुर सेव परम पद पाया उदरिया सगल विस्वान क्या हम कथ है किस कथ नहीं जान है प्रभ भावै तिवै बलान साध संगत की

सतगुर बचन लहू रहाउ। कुवार कन्या जैसे संग सहेरी, प्रिय बचन उपहास कहो। जो सुरजन ग्रह पीतर आयो, तब मुख काज लजो। ज्यो कनको कुठारी चढ़ो, कबरो होत फिरो। जब ते सुध पए है बारह, तब ते थान थिरो। जो दिन रैन तौ लो बजियो, मूर्त करी पलो। बजाव नहारो ऊठ सधारियो, तब फिर बाज ना पयो। जैसे कुंभ उदक पूरे आने हो, तब ओहो भिन्न दृष्टो। कहो नानक कुंभ जलै मह डारियो, अंबे अंब मिलो। सारंग महला पंजवां, अब पूछे क्या कहा। लैनो नाम अमृत रस नीको।

कालर बिरख जिवहां आयो लाभ लाभन कहताई मोहन ठगौरी स्यो उलझ पाहा काच बादर लाल खोई है फिर एहो अवसर कद लाहा सगल पराध एक गुण नाही ठाकर छोड़ है दास भजहा आई मस्त जड़वत की न्याई ज्यो तस्कर दरसानेहा आन अपाओ न को सूजै हर दासा सरणी पर रहा कहो नानक तब ही मन छुटिया जो सगले अवगुण मेट तरहा सारग महला पंजवा माई तीर रही प्रिय बहुत बरागेव अनक पात अनूप रंग रे तिन स्यो रुचै न लाग्यो रहाओ निसबासर प्रिय प्रिय मुख टेरो नींद पलक नहीं जाग्यो हार कजर बस्तर अनक श्रृंगार रे

सब मन तने अर्पण शीस चरण पर राखियो चरण बंदना मोल दासरु देव साध संगत अरदागियो करहु कृपा मोहे प्रभु मलावहु निमुख दर्स पे खागियो दृष्ट भई तब पीतर आयो मेरा मन अन दिन सीत लागियो कहो नानक रस मंगल गाए शब्द अनाहद बाजियो सारंग महला पंजवां माई सत सत सत हर सत सत सत साधा बचन गुरु जो पूरै कहियो मैं शीक गांठरी बांधा रहा निसबासर नखियतर बनासी राव ससियर बेनादा गिर बसदा जल पवन जाएगु एक साध बचन अटलादा हंड बनासी जेर बनासी उत्पुज सेहत बनाधा चार बनासी खटह बनासी एक साध बचन निहचलादा राज बनासी ताम बनासी सातक पी बेनादा दृष्ट मान है सगल बनासी एक साध बचन आघादा आपे आप आप ही आपे सब आपन खेल दिखादा पायो ना जाई कहीं पांतरे प्रभ नानक गुर मिल लादा सार महला पंजवा मेरा मन बास गो गुर गोबिंद जहां सिमरन पयो है ठाकुर तहां नगर सुख आनंद रहाउ जहां बीसरे ठाकुर प्यारू तहां दुख सब आपद जह गुण गाए आनंद मंगल रूप तहां सदा सुख संपद जहां श्रवण हर कथा ना सुनिए तह महाप्यान उदयांद जहां कीर्तन साध संगत रास तह सगन बास फलानंद बिन सिमरन कोट बरख जीवै सगली औद बिरथानंद एक निमख गोविंद भजन कर तो सदा सदा जीवानंद सरन सरन सरन प्रभु पावो दीजै साध संगत किरपानंद नानक पूर रहयो है सर्व मैं सगल गुणा बिद जानंद सार महला पंजवा अब मोहे राम पुरुषो पाए जो जो सरन परयो करना निद ते ते भवह तराई रहाओ सुख सोयो अर सहज सुमायो सहसा गुरह गवाए जो चाहत सोई हर कियो मन बाचत फल पाए हृदय जपो नेत्र ध्यान लावो श्रवणी कथा सुनाए करनी चलो मार्ग ठाकुर कह रसना हर गुण गाए देखियो दृष्ट सर्व मंगल रूप उल्टी संत कराए पायो लाल अमोल नाम हर छोड़।

आय सारंग महल्ला पंजवा ओए सुख का सियो बरन समावत आनंद बनोद पेख प्रभ दर्शन मन मंगल गुण गावत रहाउ बिसम पई पेख बिस्मादी पूर रहे कृपावत पियो अमृत नाम अमोलक ज्यों चाक गूंगा मुस्कावत जैसे पवन बंद कर राखियो बूझ न आवत जावत जा को हृदय प्रगास भयो हर वाकी कही न जाए कहावत आन उपाव जेते किश कही है तेते सीखे पावत अचिंत लाल ग्रह पीतर प्रगट्यो अगम जैसे परखावत निर्गुण निरंकार अबनासी अतुल्यो तुल्यो न जावत कहो नानक अजार जिन जरिया किसी को बन आवत सार महला पंजवा बिखई दिन रैन इव ही गुदारे गोविंद ना भजै अहम बुद्ध माता जन्म जुए ज्यों हारे रहाउ नाम अमोला प्रीत ना तिस सियों।

काजर मह परया बहोर बहोर फिर चारे काटे पेड़ डाल पर ठांडो खाए खाए मुश्कार है गिरयो जाए रसातल परयो सिति सिति सिर भार है निर्वैर संग वैर रचाए पहुंच ना सके ग्वार है कहो नानक संतन का राखा पार ब्रह्म निरंकार है सारंग महला पंजवां अवर सब भूले भ्रमत ना जानिया एक सदाखर जा कै हिरदय वसिया किन बेद है तत पछानिया रहाऊ परविरत मार्ग जेता किश होई है तेता लोग पचारा जौ लो हृदय नहीं परगासा तौ लो अन्न अंधारा जैसी धरती साधे बहु बिद बिन बीजे नहीं जामे राम नाम बिन मुक्त ना हुई है टुटे नाही अभमान नीर बलोवे अत श्रम पावे नैनू कैसे रिसे बिन गुर पेटे मुक्त ना काहू मिलत नहीं जगदीसे खोजत खोजत एह बिचारियु सर्व सुखा हर नामा कहो नानक तिस पयो प्राप्त जा कह लेख मथामा सारंग महला पंजवां आन दिन राम के गुण कही है सगल पदार्थ सर्व सुख सिद्ध मन बाचत फल लही है रहाउ आवहु संत प्राण सुख दाते सिमरह प्रभ अवनासी अनाथ नाथ दीन दुख भंजन पूर रहो घटवासी गावत सुनत सनावत शरदा हर रस पी वड भागे कल कलेश मिटे सब तन ते राम नाम लिव जागे काम क्रोध झूठ तज निंदा हर सिमरन बंधन टूटे मोह मगन अहं अंध ममता गुर कृपा ते छूटे तू समरथ पार ब्रह्म स्वामी कर कृपा जन तेरा पूर रहो सर्ब मह ठाकुर नानक सो प्रभ नेरा सारंग महला पंजवां बलिहारी गुरदेव चरण जा कै संग पार ब्रह्म त्याई है अपदेश हमारी गत करन रहाउ दुख रोग पै सगल बनासी जो आवे हर संत सरन आप जपै अवरह नाम जपावे वड समरथ तारन तरन जाको मंत्र उतारे सहसा ऊणे कहो सुभर भरन हर दासन की आज्ञा मानत ते नाही फुन गर्भ परन।

तिन हर हर अजर जरन हर रसह अगाने सहज समानी मुख ते नाही जात बरन गुर प्रसाद नानक संतोखे नाम प्रभु जप जप उधरन सारंग महला पंजवां गायोरी मैं गुण निद मंगल गायो भले संजोग भले दिन अवसर जो गोपाल रिजायो रहाओ संतह चरण मोर लो माथा हमरे मस्तक संत धरे हाथा साध है मंत्र मोर लो मनुआ ता

यह अघावन पान को अकाल मूर्त है साध संतन की ठाहरने की ध्यान को वाणी मंत्र महापुरखन की मन है उतारन मान को खोज लहियो नानक सुख थाना हर नामा विश्राम को सारंग महल्ला पंजवा मन सदा मंगल गोविंद गाय रोग सोग तेरे मिट है सगल अग निमख ही है हर नाम त्याए रहाओ छोड़ सियानप बहो चतराई साधु सरनी जाए पाए जो होए कृपाल दीन दुख भंजन जमते होए धर्म राय एक सबिन नाही को दूजा आरना बियो लवे लाए मात पिता पाई नानक को सुख दाता हर प्राण साए सारंग महला पंजवा हर जन सगल उधारी संग के पये पनीत पवित्र मन जन्म जन्म के दुख हरे रहाउ मार्ग चले तिन्नी सुख पाया जिन स्यो गोष्ट से तरे बूढ़त कोर अंध कूप में है ते साधु संग पार परे जिनके भाग बड़े हैं भाई तिन साधु संग मुख जोरे तिनकी धूर बांचे नित नानक प्रभ मेरा कृपा करे सार महला पंजवा हर जन राम राम राम त्याय एक पलख सुख साध समागम।

पतत के पातक उत्तर है, हर नामा उर धार है। जो जो सुने राम जस निर्मल, ताका जन्म मरण दुख नासा, कहो नानक पाई है वड भागी।

करो अब मान बोलो भूल चूक तेरी प्रिय क्रिया रहाओ निकट सुनो अर पेखो नाही परम परम दुख परिया होए कृपाल गुरलाहे पार दो मिलो लाल मन हरिया एक निमक जे बिसरे स्वामी जानो कोट दिन सलाख बरिया साध संगत की।

नामी हर एकसते मेरी गाते रहाओ देखे नाना रूप बहुरंगा अन नाही तुम पांते देहे आधार सर्ब को ठाकुर जी प्राण सुख दाते प्रमतो प्रमतो हार जो परयो तव गुर मिल चरण पराते कहो नानक मैं सर्ब सुख पाया ए सुख बेहानी राते सार महला पंजवा अब मोहे लभ दियो है हर टेका गुर दयाल पये सुखदाई अंधुलै मानक देखा रहाऊ काटे अज्ञान तिमर निर्मलिया बुद्ध विगास विवेका ज्यो जल तरंग फेन जल हुई है सेवक ठाकुर पये एका जह ते उठ्यो तह ही आयो सब ही एकै एका नानक दृष्ट आयो सर्ब ठाई प्राणपति हर समका सारंग महला पंजवा मेरा मन एकै ही प्रिय मांगै पेखायो सर्ब थान देश प्रिय रोम ना समसर लागै रहाउ मैं नीरे अनक भोजन बहु बिंजन तिन स्यों दृष्ट ना करै रुचांगै हर रस चाहै प्रिय प्रिय मुख तेरै जो अल कमला लोभांगै गुण निधान मन मोहन लालन सुखदाई सर्बांगै गुरु नानक प्रभ पाहे पठायो मिलहु सखा गल लागै।

तुम ही सुगर सुजाना सगल जोग अर ज्ञान ध्यान एक निमख ना कीमत जाना तुम ही नायक तुम्हे शत्रपत तुम पूर रहे भगवाना पामु दान संत सेवा हर नानक सद कुर्बाना सार महला पंजवा मेरा मन चीत आए प्रियरंगा विसरयो तंद बंद माया को रजन सबाई जंगा रहाऊ हर सेवो हर हृदय बसावो हर पाया सतसंगा ऐसो मिलो मनोहर प्रीतम सुख पाए मुख मंगा प्रियो अपना गुरबस कर दीना भोगो भोग नसंगा निरपौ भय नानक पौ मिटिया हर पायो पाठंगा सारंग महला पंजवा हर जियो के दर्शन कौ कुर्बानी बचन नाद मेरे श्रवन हो पूरे देहा प्रिय अंक सुमानी रहाओ शूटर ते गुर की सुहागन हर पायो सुगुड़ सुजानी जेह घर मह बैसन नहीं पावत सो थान मिलो बासानी उनके बास आयो भगत बचल जिन राखी आन संतानी कहो नानक हर संग मन

सुटह संघार निमुख कृपा ते कोट ब्रह्मांड उदार है रहाओ करह अरदास बहुत बेनंती निमुख निमुख समार है हो कृपाल दीन दुख पंजन हाथ दे निस्तार है क्या ये कूपत बपरे कही है कहो ए किसनो मार है राख राख राख सुख दाते सब नानक जगत तुम्हार है सारग महल्ला।

मूर्ख सहामा गोबिंद भजन के निर्भय व्यापारी हर रास नानक राम नामा सारंग महला पंजवा मेरा मन मिष्ट लगे प्रिय बोला गुरबाह पकर प्रभ सेवा लाए सद दयाल हर ढोला रहाओ प्रभ तू ठाकुर सर्व प्रित पालक मोहे कलकर सहत सब गोला मान तान सब तू है एक नाम तेरा मैं भोला जे तख्त बसाल है तो दास तुम्हारे कास बढ़ाव है के तक बोला जन नानक के प्रभ पुरख बधाते मेरे ठाकुर अगह अतोला सारंग महला पंजवा रसना राम कहत गुण सोहं एक निमख पाए समावे देख चरित मन मोहं रहाव जिस सुनिए मन हुए रहस्यत हृदय मान दुख जोहं सुख पायो दुख दूर परायो बाण आई प्रभ तोहं किल विख गए मन निर्मल होई है गुर काटे माया द्रोहं कहो नानक मैं सो प्रभ पाया करन कारण समर्थो हं सारंग महला पंजवा नैनहु देखियो चलत तमाशा सब हूं दूर सब हूं ते नेरे अगम अगम घट वासा रहाओ अपूल ना पूले लिखियो ना चलावे मता ना करे पचासा खिन मह साज सुवार बना है भगत वश्चल गुणतासा अंध कूप मह दीपक बलियो गुर हृदय कियो परगासा कहो नानक दर्स पेख सुख पाया सब पूरन होई आसा सारंग महला पंजवा चरन है गोबिंद मार्ग सुहावा आन मार्ग जेता किस ताई है ते तो ही दुख हावा रहाओ नेत्र पनीत पये दर्स पेखे हस्त पनीत टहलावा हृदय पनीत हृदय हर बसेओ मस्त पनीत संत तुरावा सर्व निदान नाम हर हर कै जिस कर्म लिखिया तिन पावा जन नानक कहो गुर पूरा भेटियो सुख सहजे आनंद बेहावा सारंग महला पंजवा त्यायो अंत बार नाम सखा जह मात पिता सुत भाई ना पहुंचे तहां तहां तू रखा रहाओ अंध कूप ग्रह मह तिन सिमरियो जिस मस्तक लेख लिखा खुले बंधन मुक्त गुर कीनी सब तू है तुही दिखा अमृत नाम पिया मन तृप्तिया अघाए रसन चखा कहो नानक सुख सहज मैं पाया गुर लाही सगल तिखा सारंग महला पंजवा गुर मिले ऐसे प्रभु ते आया भयो कृपाल दयाल दुख भंजन लगे ना ताती बाया रहाओ जेते सास सास हम लेते तेते ही गुण गाया निमख न बिसरे करी न बिसरे सद संगे जत जाया हौ बल बल बल बल चरण कमल कहो बल बल गुरदर साया कहो नानक काहू परवाहा जो सुख सागर में पाया।

परगासा कट कट हर हर दीठा रहाओ पार ब्रह्म आजोनी संभव सर्वथान कट बीठा पयो प्रापत अमृत नामा बाल बाल प्रभ चरणीठा सत संगत कीरेण मुख लागी किए सगल तीर्थ मजनीठा तोह नानक रंग चलूल पय है हर रंग न लह मजीठा सारंग महला पंजवा हर हर नाम दियो गुर साथे निमख बचन प्रभ हियर बसेओ सगल

पूल पूल बेख खाई रहाव, प्रभ सुंदर चतुर अनूप बधाते, तिस स्यो रुच नहीं राई, मोहन स्यो बावर मन मोहयो, झूठ ठगौरी पाई, पयो दयाल कृपाल दुख हरता, संतन स्यो बन आई, सगल निदान करै मह पाई, कहो नानक जोत समाई, सारंग महला पंजवां, वंग प्रिय प्रीत चीत पहलरिया, जो तौ बचन दियो मेरे सतगुर, तौ मैं साज सिंगरिया रहाओ, हम भूले हैं तुम सदा अपूला, हम पतत तुम पतत उधरिया, हम नीच बिरख तुम मैलागर, लाज संग संग बसरिया, तुम गंभीर तीर उपकारी, हम क्या बपरे जंतरिया।

सिद्ध कार्य सब सवरे अहं रोग सगल ही खया कोट पराध खिन मह खो पई है गुर मिल हर हर कहया पंच दास गुर वसगत कीने मन निश्चल निर्भया आए ना जावे ना कत ही डोले थिर नानक राजया सार मोहल्ला पंजवा प्रभ मेरो इते उत सदा सहाय मन मोहन मेरे जी को प्यारो कमन कहां गुण गाई रहाओ खेल खलाए लाड लडावे सदा सदा अनदाई व्रत पाले बारक की न्याई जैसे मात पिताई तिस बिन निमक नहीं रह सकिए बिसरना कब हूं जाई कहो नानक मिल संत संगत ते मगन पए लिवलाई सारंग महला पंजवा अपना मीत स्वामी गाइए आसना अवर काहू की कीजे सुखदाता प्रभ त्याइए रहाओ सुख मंगल कल्याण जिसह कर तिस ही सरनी पाइए किसह त्याग मनुख जे सेव हो तो लाज लोन होए जाइए एक ओट पकरी ठाकुर की गुर मेल मत बुद्ध पाइए गुण निधान नानक प्रभ मिलिया सगल चुकी मोहताइए सारंग महला पंजवा ओट सतानी प्रभ जियो मेरे दृष्ट न लियावो अवर काहू को मान महत प्रभ तेरे रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने काड लिया बिख केरे।

के हरेउ ऊहा ले तरेउ जैसे बासा मास जेत चाटली देवनहार बसारेउ अंदले ज्यो सफरी उदर पर है बह हाटली साध बकार बकार झूठ रस

एक की आपकी ओ बंधान आद जगाद सेवक की राख है नानक को प्रभ जान। सारंग महला पंजवा तू मेरे मीत सखा हर प्राण मन तन जियो पिंड सब तुमरा एहो तन सीतो तुमरै तान रहाओ। तुम ही दिए अनक प्रकारा तुम ही दिए मान सदा सदा तुम ही पात राख हो अंतर जामी जान। जिन संतन जानिया तू ठाकुर ते आए परवान जन का संग पाइय वड भागी नानक संतन कै कुर्बान। सारंग महला पंजवा करहो गत दयाल संतो मोरी तुम समरथ कारण करना टूटी तुम ही जोरी रहाओ। जन्म जन्म के बिखई तुम तारी समत संग तुम्हारे पाई अनक जोन भ्रम ते प्रभ बिसरत सास सास हर गाई। जो जो संग मिले साधु कै ते ते पतत पनीता कहो नानक जाके वड भागा तिन जन्म पदार्थ जीता। सारंग महला पंजवा ठाकुर बिनती करन जाने आयो सर्व सुख आनंद सहज रस सुनत तुहारो नायो रहाओ। कृपा निधान सुख के सागर जस सब मैं जा को छायो संत संग रंग तुम किए अपना आप।

समाये अनंद अनंद गुण गाया बाहा पकर कड लीने अपने ग्रह अंध कूप ते माया कहो नानक गुर बंधन काटे बिचरत आन मलाया सारंग महला पंजवा हर के नाम की गत ठांडी वेद प्राण सिमरत साधु जन खोजत खोजत काढ़ी रहाओ सेव ब्रंच अर इंदर लोक तामह जल तौ फिरिया सिमर सिमर स्वामी पय सीतल दुख दर्द भ्रम हिरिया जो जो तरयो परातन नवतन भगत पाए हर देवा नानक की बेनंती प्रभ जियो मिले संत जन सेवा सारंग महला पंजवा जिहवे अमृत गुण हर गाओ हर हर बोल कथा सुन हर की उच्चरहो प्रभ को नाओ रहाओ राम नाम रतन तन संचो मन तन लाभ हो पाओ आन बेभूत मिथ्या कर मन साचा एह सुआओ जी प्राण मुक्त को दाता एक सस्यो लिव लाओ कहो नानक ता की सरनाई देत सगल अपयाओ सारंग महला पंजवा होती नहीं कमन कछ करनी यह ओट पाई मिल संत है गोपाल एक की सरनी रहाओ पंच दोख छिदर या तन मह बिखे ब्याद की करनी आस अपार दिनस गण राखी ग्रस्त जात बल जरनी अनाथ है नाथ दयाल सुख सागर सर्व दुख पै हरनी मन बाछत चितवत नानक दास देख जीवा प्रभ चरनी सारंग महला पंजवा फीके हर के नाम बिन साध अमृत रस कीर्तन हर गाइए अहनस पूर्ण नाद रहाओ सिमरत शांत महा सुख पाइए मिट जाहे सगल बिखाद हर हर लाभ साध संग पाइए कर ले आवहलाद सब ते ऊच ऊच ते ऊचो अंत नहीं मर जात वर्ण ना साखो नानक महिमा देख रहे बिस्माद सारंग महला पंजवा।

रहाओ समझ अचेत चेत मन मेरे कथी संतन अकथ कहानी लाभ लै हो हर हृदय अरद हो छुटकै आवन जानी उदम सकत सियाणप तुमरे देहे ता नाम बखानी से भगत भगत से लागे नानक जो प्रभु पहानी सारी महला पंजवा तनवंत नाम के बनजारी सांझी करहो नाम तन खाटो गुर का शब्द विचारे रहाओ छोड़ो हो कपट होए निर्वैरा सो प्रभ संग निहारी सच तन बन जो हो सच तन संचो हो कबहू ना आव हो हारे खात खर्चत किसन खुटत नाही अगंत भरे पंडारी कहो नानक सोबा संग जाव हो पार ब्रह्म कै द्वारे सारंग महला पंजवा प्रभ जी मोहे कमन अनाथ बेचारा कमन मून ते मनुख करिया एहो परत

सर्व प्रत पालक सर्व कटा आधारा कोई न जाने तुमरी गत मित आप है एक पसारा साध नाव बठावो नानक भव सागर पार उतारा सारंग महला पंजवा आवे राम सरन बड भागी एक सबिन किस होर न जाने अवर अपाव त्यागी रहाउ मन बच क्रम अराध हर हर साध संग सुख पाया आनंद बनोद कथ कथा रस साचे सहज समाया कर कृपा जो अपना कीनो ताकि उत्तम बाणी साध संग नानक निस्तरी है जो राते प्रभ निर्वाणी सारंग महला पंजवां जाते साधु शरण गही शांत सहज मन भयो परगासा बिरथा कछ न रही रहाओ हो कृपाल नाम देहो अपना बिनती एह कही आन व्यवहार बिसरे प्रभ सिमरत पायो लाभ सही जहते उपजेओ तही समानो साई बस्त आही कहो नानक परम गुरु खोयो ज्योति ज्योत समही सारंग महला पंजवा रसना राम को जस गाओ आन स्वाद विसार सगले भलो नाम सुआओ रहाओ चरण कमल बसाए हृदय एक स्यों लिवलाओ साध संगत होहे निर्मल बहुड़ जोन ना आओ जियो प्राण आधार तेरा तून थावे थाओ सास सास समाल हर हर नानक सद बल जाओ सारंग महला पंजवा बैकुंठ गोविंद चरण नित त्याओ मुक्त पदार्थ साधु संगत अमृत हर का नाओ रहाओ उत्तम कथा सुनी जय श्रवणी माया करो भगवान आवत जात दो पख पूरन पाइय सुख विश्राम सोदत सोदत तत बिचार्यो भगत श्रेष्ठ पूरी कहो नानक एक राम नाम बिन अवर सगल बिद उरी सारंग महला पंजवा साचे सत गुरु दा तारा दर्शन देख सगल दुख नास्त है चरण कमल बलिहारा रहाओ सत परमेश्वर सत साध जन निचल हर का नाऊ भगत भावनी पार ब्रह्म की अविनाशी गुण गाओ अगम अगोचर मित नहीं पाईए सगल घटा आधार नानक वाहो वाहो कहो ताको जा का अंत ना पार सारंग महला पंजवा गुर के चरण बसे मन मेरा पूर रहे ओ ठाकुर सब थाई निकट बसे सब नेरे रहाओ बंधन तोर राम निवलाई संत संग बने आई जन्म पदार्थ भयो पनीता इच्छा सगल पुजाई जाको कृपा करहु प्रभ मेरे सो हर का जस गावे आठ पैर गोविंद गुण गावे जन नानक सद बल जावे सारंग महला पंजवा जीवन तो गनी है हर पेखा करहु कृपा प्रीतम मन मोहन फोर परम की रेखा रहाओ कहत सुनत किश शांत ना उपजत बिन बसास क्या सेखा प्रभु त्याग आन जो चाहत तां कै मुख लागे का लेखा जां कै रास सर्व सुख स्वामी आन न मानत भेखा नानक दर्स मगन मन मोहयो पूरन अर्थ बेसेखा सारंग महला पंजवा सिमरन राम को एक नाम कलमल दग्ध होहे खिनयंतर कोट दान इशनान रहाओ आन जंजार वृथा श्रम कालत बिन हर फोकट ज्ञान जन्म मरण संकट ते छूटै जगदीश भजन सुख ध्यान तेरी शरण पूर्ण सुख सागर कर कृपा देव दान सिमर सिमर नानक प्रभ जीवै बिन सजाए अभमान सारंग महला पंजवा तूरत सोई जे तुर को लागै
सोई पुरंदर सोई बसुंदर हर एक प्रेम रस पागे रहाउ। बलबंच करे ना जाने लाभ है सो धूरत नहीं मूड़ा। स्वार्थ त्याग असारथ रच्यो नह सिमरै प्रभ रूड़ा। सोई चतुर सियाणा पंडित सो सूरा सो दाना। साध संग जिन हर हर जप्यो नानक सो परवाना। सारंग महला पंजवां हर हर संत जना की जीवन बिखै रस भोग अमृत सुख सागर। राम नाम रस पीवन रहाउ संचन राम नाम धन रतना। मन तन भीतर सीवन हर रंग रांग पए मन लाला। राम नाम रस खीवन।

जंजाल रहाउ। बिन प्रभ सेव करते अन सेवा, बिरथा काटे काल। जब जम आए संघारे प्राणी, तब तुमरो कौन हवाल। राख ले हो दास अपने को, सदा सदा कृपाल। सुख निदान नानक प्रभ मेरा, साध संग धन माल। सारंग महला पंजवां, मन तन राम को व्यवहार। प्रेम भगत गुण गावत गीते, पोहत नह संसार रहाओ। श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी, एहो साध को आचार। चरण कमल अस्थित हृदय अंतर, पूजा प्राण को आधार। प्रभ दीन दयाल सुनो बेनंती।

हर के नामहीन मत थोरी सिमरत नाहे श्री तर ठाकुर मिलत अंध दुख घोरी रहाओ। हर के नाम स्यों प्रीत न लागी अनक भेख बहु जोरी टूटत बार न लागे ताको ज्यो गागर जल फोरी। कर कृपा भगत रस दीजै मन खचत प्रेम रस खोरी नानक दास तेरी सरनाई प्रभ बिनयान न होरी। सारंग महला पंजवां चितवो वा अवसर मन माहे हुए अकत्तर मिलहो संत साजन गुण गोविंद नित गाहे रहाओ।

तेरी सरनाई जो पावै तिवै चलाए। सारंग महला पंजवा मन रे नाम को सुख सार आन काम विकार माया सगल दिसह शार रहाओ। ग्रह अंध कूप पतत प्राणी नरक घोर गुबार अनक जोनी भ्रमत हारे हो भ्रमत बारंबार। पतत पावन भगत बच्छल दीन कृपा तार कर जोड़ नानक दान मांगे साध संग उधार। सारंग महला पंजवा विराजित राम को प्रताप आद बियाद उपाद सब नास्ती।

काम क्रोध लोभ मद मत्सर साधु कै संग खाप भगत वचल तै काटन हारे नानक के माई बाप सारंग महला पंजवा आतुर नाम बिन संसार त्रिपत न होवत कुकरी आसा इत लागो बिखिया चार रहाओ पाए ठगौरी आप पलायो जन्मत बारो बार हर का सिमरन निमख ना सिमरियो जम कंकर करत खुआर हो कृपाल दीन दुख पंजन तेरिया संत है की रावार नानक दास दर्श प्रभ जाचे मन तन को आधार सारंग महला पंजवा मैला हर के नाम बिन जियो तिन प्रभ साचे आप भुलाया बिखै ठगौरी पियो रहाओ कोट जन्म भ्रम तो बहु भांति थित नहीं कतहु पाई पूरा सतगुर सहज ना भेटिया साकत आवै जाई राख ले हो प्रभ समृत दाते तुम प्रभ अगम अपार नानक दास तेरी सरनाई पव जल उतरियो पार सारंग महला पंजवा रमण को राम के गुण बाद साध संग त्याय परमेश्वर अमृत जाके स्वाद रहाओ सिमरत एक अचुत अबनासी बिनसे माया माद सहज आनंद अनहद धुन बाणी बहुर न पये बिखाद सनकादक ब्रह्मादक गावत गावत सुख प्रहलाद पीवत अमेओ मनोहर हर रस जप नानक हर बिस्माद सारंग महला पंजवा कीने पाप के बहु कोट दिन सरैणी थकत नाही कतह नाही छोट रहाव महाबज्जर बिख ब्यादि सिर उठाई पोट उगर गइया खिनह पीतर जमह ग्रासे झूट पशु परेत उष्ट गर्धव अनक जोनी लेट भज साध संग गोविंद नानक कछ ना लागै फेट सारंग महला पंजवा अंधे खावह बिसु के गताक नैन श्रवन शरीर सब हुट्यो सास गयो तत घाट रहाओ अनाथ रिझान उदर लै पुख है माया गैया हाट किल बिख करत करत पछताव है कबू ना साक है शांत निंदक जमदूती आए संघारेओ देव है मूड ऊपर मटाक नानक आपन कटारी आपस को लाई माने अपना की नो फाट सारंग महला पंजवा टूटी निंदक की अद बीच जानकार राखा आप स्वामी बेमुख को आए पहुंची मीच रहाव उसका कहया कोई ना सुनी कहीं ना बैसन पावे इहां दुख आगे नरक पुंचे बहु जोनी परमावे प्रगट भया खंडी ब्रह्मणी कीता अपना पाया नानक शरण निरपहु करते की आनंद मंगल गुण गाया सारंग महला पंजवा तृष्णा चलत बहु प्रकार पूर्ण होत न कतहु बात है अंत प्रतिहार रहाओ सांत सूख न सहज उपजे यह इस व्यवहार।

रहाओ। कर मस्तक धार्यो मेरे माथे, साध संग गुण गाए, तुमरी कृपा ते सब फल पाए, रसक राम नाम त्याए, अब चल नीमत राई सतगुर, कबहू डोलत नाही, गुर नानक जब भये दयारा, सर्व सुखा निद पाही। सारी महला पंजवा, निभे नाम की सच खेप, लाभ हर गुण गाए निद तन, बिखे माहे अलेप रहाव। जी जंत सगल संतोखे, अपना प्रभ त्याए, रत्न जन्म अपार जीत्यो।

बेअंत अपरंपर स्वामी गुर कृपा कोई लाख है। बिन बकने बिन कहन कहावन अंतर जामी जान जां को मेल लए प्रभ नानक से जन दरगाह मानी। सारंग महला पंजवा चौपदे घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर भज आन कर्म बेकार मान मोह ना बुझत तृष्णा काल ग्रस संसार रहाउ खात पीवत हस्त सोवत औद बिती असार नरक उदर परमंत जल तो जमह की निसार पर द्रोह करत बेकार निंदा पाप रत कर चार बिना सतगुर बूझ नाही तम मोह महा अंधार बिख ठगौरी खाए मूठो चेतना सिरजनहार गोविंद गुप्त होए रहो नियारो मातंग मत अहंकार कर कृपा प्रभ संत राखे चरण कमल आधार कर जोर नानक सरने आयो गोपाल पुरख अपार सारंग महला पंजवा कर सेवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद शुभ बचन बोल गुण अमोल किंकरी बेकार देखरी विचार गुर शब्द त्याए महल पाए हर संग रंग करती।

सर्वरी प्रीत प्यार प्रभ सदारी दयार काए आन आन रुचिय हर संग संग खचिय जो साध संग पाए कहो नानक हर त्याए अब रहे जमह मेल सारन महला पंजवा कंचना बहु दत करा भूम दान अर्प धरा मन अनक सोच पवित्र करत नाही रे नाम तुल मन चरण कमल लागे रहाओ चार भेद जेहव भने दस अष्ट खष्ट सर्वन सुने नहीं तुल गोविंद नाम तुने मन चरण कमल लागे वर्त संध सोच चार क्रिया कुंट निराहार अपरस करत पाक सार निवली कर्म बहु विस्तार धूप दीप करते हर नाम तुल ना लागे राम दयार सुन दीन बेनती देहो दर्स नैन पेखो जन नानक नाम मिष्ट लागे सारंग महला पंजवा राम राम राम जाप रमत राम सहाई रहाओ संतन कै चरण लागे काम क्रोध लोभ त्यागे गुर गोपाल भये कृपाल लभदे अपनी पाई बिनसे भ्रम मोह अंध टूटे माया के बंद पूर्ण सर्वत्र ठाकुर नह को बैराई स्वामी सो प्रसन्न भये जन्म मरण दुख गए संतन कै चरण लाग नानक गुण गाई सारंग महला पंजवा हर हरे हर मुख बोल हर हरे मन तारे रहाओ श्रवण सुनन भगत करन अनक पातक पुनः चरण।

नौ परी चुनातकार सुंदर अनग भाव करत फिरत बिन गोपाल तुहे रहाओ तीन पौने लपटाए रही काच कर्म ना जात सही उनमत अंध तंद रचत जैसे महासागर होहे उदरे हर संत दास काट दीनी जम की फास पतत पावन नाम जाको सिमर नानक ओहे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सारंग महला नौवा हर बिन तेरो को ना सहाय का की मात पिता सुत बनता को काहू को भाई रहाओ तन धरनी अर संपत सगरी जो मान्यो अपनाई तन छूटै कछ संग ना।

जगत सब मिथ्या ज्यों सुपना रह नाई सारंग महला नौवां कहां मन बिखिया स्यों लपताही या यग मह को रहन ना पावे।

सह ज्यो बादर की शाही ताज अवमान सरण संतन गहो मुक्त हो हे शिन माही जन नानक भगवंत भजन बिन सुख सुपने पी नाही सारंग महला नौवां कहा नर अपनो जन्म गुआवे माया मद भिख्या रस रचियो राम शरण नहीं आवे रहाओ इह संसार सगल है सुपनो देख कहां लोभावे।

जन नानक सो जन मुक्ता राम भजन चित लावे सारंग महला नौवां मन कर कबहू ना हर गुण गायो बिख्या सख्त रहो निस बासुर कीनो अपनो पायो रहाओ गुर उपदेश सुनियो नह कानन पर दारा लपटायो पर निंदा कारण बहु तावत समझियो नह समझायो कहां कहो मैं अपनी करनी जिह बिद जन्म गवायो कह नानक सब औगन मोह मह राख लेहो सरनायो राग सारंग अष्टपदियां।

रखिया ऐसी गुरमत पाई। सनक सनाद ब्रह्माद इंद्रादिक भगत रते बन आई। नानक हर बिन करी न जीवा हर का नाम बढ़ाई। सारंग महला पहला हर बिन क्यों तीरै मन मेरा। कोट कल्प के दुख बनासन साच दृढ़ाए निबेरा रहाओ। क्रोध नवार जले हो ममता प्रेम सदा नौरंगी। अनुभव बिसर गए प्रभ जाचिया हर निर्माल संगी। चंचल मत त्याग भव भंजन पाया एक शब्द लिव लागी। हर रस चाख त्रिखा निवारी हर मेल लय बड भागी। अपरत सिंच पये सुपर सर गुरमत साच निहाला। मन रतना अमृते नेह केवल आद जुगाद दयाला। मोहन मोहे लिया मन मोरा बड़े भाग लिव लागी। साच विचार किल विख दुख काटे मन निर्मल अनरागी। गहर गंभीर सागर रतनागर अवर नहीं अन पूजा। शब्द विचार परम पहु पंजन अवर न जानिया दूजा। मनुआ मार निर्मल पद चीनिया हर रस रते अदकाई। एक बिन मैं अवर न जाना सतगुर बूझ बुझाई। अगम अगोचर अनाथ अजोनी गुरमत एको जानिया। सुपार भरे नाही चित डोले मन ही ते मन मानिया। गुर प्रसादी अकथो कथिया कहो कहावे सोई। नानक दीन दयाल हमारे अवर ना जानिया कोई। सारंग महला तीजा अष्टपदियां कर पहला। एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद मन मेरे हर कै नाम बढ़ाई। हर बिन अवर ना जाना कोई हर कै नाम मुक्त गत पाई रहाओ। शब्द पौ भंजन जम काल निखंजन हर सेती लिवलाई। हर सुख दाता गुरमुख जाता सहजे रहे आसमाई। भगता का भोजन हर नाम निरंजन पहनन भगत बढ़ाई। निज कर वासा सदा हर सेवन हर दार शोभा पाई। मनमुख बुद्ध काची मनुआ डोले अकथ न कथै कहानी। गुरमत निश्चल हर मन वस्या अमृत साची बानी। मन के तरंग शब्द निवारे रसना सहज सुपाई। सतगुर मिल रही है सद अपने जिन हर से ती लिवलाई। मन शब्द मरे ता मुक्तो होवे हर चरणी चित लाई। हर सर सागर सदा जल निर्मल नावे सहज सुपाई। शब्द विचार सदा रंग राती हम मैं तृष्णा मारी। अंतर नेह केवल हर रविया सब आत्म राम मरारी। सेवक सेव रहे सच राते जो तेरे मन पाणी। दुबदा महल ना पावे जग झूठी गुण अवगण ना पछाणी। आपे मेल लए अकथ कथिया सच शब्द सच बाणी। नानक साचे सच समाणी हर का नाम बखाणी। सारंग महला तीजा मन मेरे हर का नाम अत मीठा। जन्म जन्म के किल विख पौ भंजन गुरमुख एको डीठा रहाओ। कोट कुटंतर के पाप बनासन हर साचा मन पाया। हर बिन अवर ना सूजै दूजा सतगुर एक बुझाया। प्रेम पदार्थ जिन घट वसिया सहजे रहे सुमाई। शब्द रते से रंग चलूले राते सहज सुपाई। रसना शब्द विचार रस राती लाल पई रंग लाई। राम नाम ने केवल जानिया मन तृप्तिया शांत आई। पंडित पढ़ पढ़ मोनी सब थाके ब्रह्म भेख थके भेख तारी। गुर प्रसाद निरंजन पाया साचै शब्द विचारी। आवा गौण निवार सच राती साच शब्द मन पाया। सतगुर सेव सदा सुख पाइय
जिन विच्चों आप गुआया साचा शब्द सहज तुन उपजै मन साचा लिव लाई अगम अगोचर नाम निरंजन गुरमुख मन वसाई एक समय सब जगतो वरतै विरला एक पछाण है शब्द मरे ता सब किस सूजै अन दिन एको जान जिसनो नदर करे सोई जन बूजै होर कहना कथन ना जाई नानक नाम रते सदा बैरागी एक शब्द लिवलाई सारंग महला तीजा मन मेरे हर की अकथ कहानी हर नदर करे सोई जन पाए गुरमुख विर लै जानी रहाओ हर गहर गंभीर गुणी गहीर गुर कै शब्द पछानिया बहु विध कर्म करह पाए दूजे बिन शब्द बौरानिया हर नाम नावै सोई जन निर्मल फिर मैला मूल ना होई नाम बिना सब जग है मैला दूजे परम पत खोई क्या दृढ़ा क्या संग्रह त्यागी मैं ता बूझ ना पाई हो दयाल कृपा कर हर जियो नामो हुए सखाई सच्चा सच दाता कर्म विधाता जिस भावै तिस नाए लाए गुरु द्वारे सोई बूझै

पूजै पाए मोख द्वारा, जिन दर सूजै से कदे ना बगाड़ै। सतगुर बूझ बुझाई सत संयम करनी किरत कमावै, आवण जान रहाई से दर साचै साच कमावै। जिन गुरमुख साच आधारा, मन मुख दूजै परम भुलाए, ना बूझै विचारा। आपे गुरमुख आपे देवै, आपे कर कर वेखै। नानक से जर थाए पए हैं,

सतगुर प्रसाद गुसाई प्रताप तुहारो डीठा करन करावन अपाए समावन सगल सत्र पत बीठा रहाओ राणा राओ राज भय रंका उन झूठे कहन कहायो हमरा राजन सदा सलामत ताको सगल घटा जस गायो उपमा सुनहो राजन की संतो कहत जेत पहुंचा बेशमार वद साहदा तारा ऊचे ही ते ऊचा पमन परोयो सगल अकारा पावक काष्ट संगे नीर तरन कर राखे एकत कोई ना किसे ही संगे काट काट कथा राजन की चाल कर कर तुझह उमाहा जी जंत सब पाछे करया प्रथमे रिजक समाहा जो किछ करना सो आपे करना मसलत काहू दीनी अनक जतन कर करह दिखाए साची साखी चीनी हर भगता कर राखे अपनी दीनी नाम बडाई जिन जिन करी अवग्या जन की ते तै दिए रुड़ाई मुक्त भए साध संगत कर तिनके अवगन सब पर हरिया तिनको देख भए कृपाला तिन भव सागर तरिया हम नाने नीच तुमे बड साहिब कुदरत कौन बीचारा मन तन शीतल गुरदर्श देखे नानक नाम आधारा सारग महला पंजवा अष्टपदी घर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अगम अगाध सुनो जन कथा पार ब्रह्म की अचर्ज सभा रहाओ सदा सदा सतगुर नमस्कार गुर कृपा ते गुण गाए अपार मन भीतर होवे परगास ज्ञान अंजन अज्ञान बनास मित नाही जाका विस्थार सोभा ताकी अपर अपार अनक रंग जाके गने ना जाहे सोग हरख दोहू मैं नाहे अनक ब्रह्मे जाके वेद धुन करह अनक महेश बैस ध्यान धरह अनक पुरख अंसा अवतार अनक इंदर उभे दरबार अनक पवन पावक अरनीर अनक रतन सागर दद खीर अनक सूर ससियर नख्यात अनक देवी देवा बहुपात अनक बसुदा अनक काम तेन अनक पार जात अनक मुख बेन अनक आकाश अनक पाताल अनक मुखी जपिया गोपाल अनक शास्त्र सिमरत पुराण अनक जुगत होवत बखियान अनक सरोते सुनह निदान सर्व जी पूर्ण भगवान अनक धर्म अनक कुमेर अनक वर्ण अनक कनक सुमेर अनक सेख नवतन नाम ले पार ब्रह्म का अंत ना ते अनक पुरिया अनक तह खंड अनक रूप रंग ब्रह्मांड अनक बना अनक फल मूल आपह सूक्ष्म आपह असथूल अनक जुगाद दिनस अर रात अनक परलो अनक उत्पात अनक जी जाके ग्रह माहे रमत राम पूर्ण सर्व ठाए अनक माया जाकी लखी ना जाए अनक कला खेले हर राय अनक तुनत ललत संगीत अनक गुपत प्रगटे तहचीत सब ते ऊच भगत जा कै संग आठ पहर गुण गावह रंग अनक अनाहद आनंद चुनकार वा रस का काश अंत न पार सत पुरख सत स्थान ऊच ते ऊच निर्मल निर्वाण अपना किया जन है आप आपे घट घट रहे हो बे आप कृपा निदान नानक दयाल जिन जपया नानक ते पहे निहाल सारंग संत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब देखिए अनपह का दाता कट कट पूर्ण है अनपाता कट कट पूर्ण कर बिस्थीरन जल तरंग स्यो रचन किया अब रस माने भोग कटाने आनना दिया कोथिया हर रंगी इक रंगी ठाकुर संत संग प्रभ जाता
नानक दर्श लीना ज्यों जल मीना सब देखिए अनपह का दाता कौन उपमा देऊं कमल बढ़ाई पूर्ण पूर रहो सर्ब ठाई पूर्ण मन मोहन कट कट सोहन जब खिंचे तब शाई क्यों ना अराध हो मिल कर साधु हो करी मोहतक बेला आई अर्थ दर्ब सब जो किस दिसै संग ना कछु हो जाई कहो नानक हर हर अराध हो कवन उपमा देओ कवन बढ़ाई पूछो संत मेरो ठाकुर कैसा हियो अरापो देहो संदेसा प्रभ जियो कैसा कह मोहन परवेसा अंग अंग सुखदाई पूर्ण ब्रह्माई थान थान अंतर देसा बंधन ते मुक्ता कट कट जुगता कह ना सको हर जैसा देख चरित नानक मन मोहयो पूछे दीन मेरो ठाकुर कैसा कर कृपा अपने पह आया तन सोरदा जेह चरण बसाया संत संगाया अज्ञान अंधेर गुआया भया प्रगास हृदय उलास प्रभ लोड़ींदा पाया दुख नाठा सुख घर मह बूठा महा आनंद सहजाया।

धुन एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला दूजा गुर कुंजी पाहु निवल मन कोठा तन छत नानक गुरबिन मन का ताक न उगड़ै अवर न कुंजी हाथ महला पहला ना पी जय रागी ना दी वेद ना पी जय सुरती ज्ञानी योग ना पी जय सोगी की तैरोज ना पी जय रूपी माली रंग ना पी जय तीत पवै नंग ना पी जय दाती की तै पुन ना पी जय बाहर बैठिया सुन ना पी जय भेड़ मरह भिड़ सूर ना पी जय केते होए धूड़ लेखा लिखिए मन कै पाए नानक पी जय साचै नाए महला पहला नव शे खटका करे विचार निस दिन उचरै पार अठार तिन पी अंत न पाया तोहे नाम बिहून मुक्त क्यों होए नाभ वस्त ब्रह्म अंत ना जानिया गुरमुख नानक नाम पछाणिया पौड़ी आपे आप निरंजना जिने आप उपाया आपे खेल रचायोन सब जगत सबाया त्रै गुण आप सिरजियन माया मोह वधाया गुर प्रसादी उबरे जिन पाणा पाया नानक सच वरतदा सब सच समाया।

पौड़ी गुरमुख चल तर चायन गुण प्रगति आया गुरबाणी सद उच्चरै हर मन वसाया सकत गई भ्रम कटिया शिव जोत जगाया जिनकै पोतै पुन है गुरपुरख मलाया नानक सहजे मिल रहे हर नाम समाया सलोक महला दूजा सा चले बन जा रहा लिखिया देवै नाल लिखे उपर हुक्म होए लइए वस्त संभाल वस्त लई बनजारी वखर बद्दा पाए के इलाहा लै चले इक चले मूल गवाए थोड़ा किने ना मंगियो किस कहिए साबास नदर तिन्ना को नानका जे साबत लाए रास महला पहला जुड़ जुड़ विछड़े विछड़ जुड़े जीव जीव मोए मोए जीवे केतिया के बाप केतिया के बेटे केते गुर के ले हुए आगे पाछे गणत ना आवे क्या जाती क्या हुन हुए सब करना किरत कर लिखिए कर कर करता करे करे मन मुख मरिए गुरमुख तरिए नानक नदरी नदर करे पौड़ी मन मुख दूजा परम है दूजा लोभाया कूड़ कपट कमावंदे कूड़ो आलाया पुत्र कलत्र मोह हेत है सब दुख सबाया जम दर बद्दे मारी है परम है परमाया मन मुख जन्म गवाया नानक हर पाया सलोक महला दूजा जिन वडियाई तेरे नाम की तेरते मन माहे नानक अमृत एक है दूजा अमृत नाहे नानक अमृत मने माहे पाईए गुर प्रसाद तिन्नी पीता रंग सियों जिनको लिखिया आद महला दूजा कीता क्या सलाही है करे सोए सलाहे नानक एकी बाहरा दूजा दाता नाहे करता सो सलाही है जिन कीता आकार दाता सो सलाही है जे सब सह दे आधार नानक आप सदीव है पूरा जिस भंडार वड्डा कर सलाही है अंत ना पारावार पौड़ी हर का नाम निदान है सेवे है सुख पाई नाम निरंजन उच्चरा पत स्यों कर जाई गुरमुख बाणी नाम है नाम हृदय वसाई मत पंखे रू वस हुए सतगुरु त्याई नानक आप दयाल हुए नामे लिवलाई सलोक महला दूजा किस स्यो कैसा बोलना जे आपे जाने जान चीरी जाकी ना फिरे साहिब सो परवान चीरी जिसकी चलना मीर मलक सालार जो तिस पावे नानका साई भली कार जिन्ना चीरी चलना।

आख एक आख आख है शब्द पाख है अर्ध उर्ध दिन रात जे कहो होए ता केहो दिसे जापे रूप ना जात सब कारण करता करे काटे ओ काट काट थाप आखने ओखा नानका आख ना जापे आख पौड़ी नाए सुने मन रहसी है ना मेशां ते आई नाए सुने मन तृप्ति है सब दुख गवाई नाए सुने ना उपजे नामे वड्याई नामे ही सब जात पत नामे गत पाई गुरमुख नाम ते आई है नानक लिवलाई सलोक महला पहला झूठ न रागी झूठ न वेदी झूठ न चंद सूरज की भेदी झूठ न अन्नी झूठ न नाई झूठ न मिंबर है सब थाई।

की गृही का सतदान राजे चुड़ी नियाम की पढ़िया सच ध्यान पानी चेतना धूपै मुख पीता तिख जाए पानी पिता जगत का फिर पानी सब खाए पौड़ी नाए सुनिए सब सिद्ध है रिद पिछे आवे नाए सुनिए नौ निध मिले मन चिंदिया पावे नाए सुनिए संतोख हुए कबला चरण ते आवे नाए सुनिए सहजी उपजे सहजी सुख पावे गुरमति ना उपाइये नानक गुण गावे सलोक महला पहला दुख विच जम्मन दुख मरन दुख वर्तन संसार दुख दुख अगे आखिए पढ़ पढ़ करह पुकार दुख किया पंडा खुलिया सुख ना निकले ओ कोए दुख विच जियो जलाया दुखिया चलिया रोए नानक सिफती रतिया मन तन हरिया होए दुख किया अग्नि मारी है ई दुख दारू होए महला पहला नानक दुनिया पास रंग पशु हूं पास खे पशु पास कमावनी पी पास परिया दे जा जियो विचों कढ़िए पशु परिया जाए अगे लेख मंगे होर दसूनी पाए पौड़ी नाए सुनिए सुच संयमो जम नेड़ ना आवे नाए सुनिए घट चानना अनेर गुआवे नाए सुनिए आप बुझिए लाहा ना पावे नाए सुनिए पाप कटिए निर्मल सच पावे नानक नाए सुनिए मुख उजले नाउ गुरमुख त्यावे सलोक महला पहला कर नारायण सभा नाल पूज करे रखे नवाल कुंगू चन्नन फुल चढ़ाए पैरी पै पै बहुत मनाए माणुआ मंग मंग पहने खाए अंधी कमी अंध सजाए।

तीर्थ ज्ञान सबे बुद्धि सुध सब सब तीर्थ सब थान सब पातशाहियां अमर सब सब खुशियां सब खान सब

हुक्म चलाए अपने करमी वह कलाम नानक सच्चा सच नाए सच सभा दीबान पौड़ी नाए मने सुख उपजे नामे गत होई नाए मने पत पाई है हिरदय हर सोई नाए मने पव जल लंघी है फिर बिघन ना होई नाए मने पंथ प्रगटा नामे सब लोई नानक सतगुर मिले नाओ मनी है जिन देवे सोई। श्लोक महला पहला। पुरियां खंडा सिर करे इक पैर ते आए पौन मार मन जप करे सिर मुंडी तले दे किस ऊपर ओह टिक टिक किसनो जोर करे किसनो कहिए नानका किसनो करता दे हुक्म रहाए अपने।

सहजे हर रस पीजे, नानक सुखदाता सदा सलाहु, रसना राम रवीजे। पौड़ी गढ़ काया शिंगार बहु भांत बनाई, रंग परंग कतीफिया पहरह धर्माई, लाल सफेद दुलीचिया बहु सभा बनाई।